सुप्रभात। एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है। आज गुरुवार है, शक संवत 1948, आषाढ़ मास की 18वीं तिथि, तदनुसार 9 जुलाई ईस्वी सन 2026। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 5:58 हो रहे हैं। आरंभ होती है हमारी आज की सभा।

ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है, FM के 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। अब आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित हिंदी और अंग्रेजी में समाचार।

मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मेलबर्न में ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ बातचीत करेंगे। दोनों नेताओं के बीच व्यापार, रक्षा, प्रौद्योगिकी, शिक्षा और जनसंपर्क मजबूत करने पर चर्चा होने की संभावना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भारत ऑस्ट्रेलिया मुख्य कार्यकारी अधिकारी मंच को भी संबोधित करने का कार्यक्रम है। श्री मोदी मेलबर्न में प्रवासी भारतीयों से भी बातचीत करेंगे। श्री मोदी ऑस्ट्रेलिया की 3 दिन की यात्रा पर कल शाम

0: मेलबर्न पहुंचे थे। प्रधानमंत्री ने मेलबर्न में भारतीय समुदाय का गर्मजोशी से स्वागत के लिए आभार व्यक्त करते हुए इसे अविस्मरणीय बताया। हमारे संवाददाता ने बताया है कि स्वागत समारोह में स्थानीय कलाकारों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए।
1: सांस्कृतिक प्रस्तुति की शुरुआत ऑस्ट्रेलिया के पारंपरिक वाद्य यंत्र डिडजेरिडू और भारतीय तबले की अनूठी जुगलबंदी से हुई। कार्यक्रम का समापन ऑस्ट्रेलिया इंडिया ऑर्केस्ट्रा की प्रस्तुति से हुआ। कलाकारों ने एआर रहमान के प्रसिद्ध गीत माँ तुझे सलाम की सिम्फनी प्रस्तुति देकर दर्शकों का मन मोह लिया।

0: मेलबर्न से सुहास राम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
1: ऑस्ट्रेलिया में भारत के उच्चायुक्त नागेश सिंह ने बताया कि एक दशक में श्री मोदी की ऑस्ट्रेलिया की तीसरी यात्रा द्विपक्षीय संबंधों में महत्वपूर्ण प्रगति दर्शाती है। उच्चायुक्त ने कहा कि दोनों देशों के बीच कई क्षेत्रों में सहयोग में वृद्धि भारत ऑस्ट्रेलिया संबंधों की मजबूती और विविधता दर्शाता है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस देश में कृषि अर्थव्यवस्था को नई गति दे सकता है। उन्होंने कहा कि एआई के उपयोग से प्रत्येक किसान सालाना लगभग 5,000 रुपए की बचत कर सकता है। नई दिल्ली में कल 17वें कृषि नेतृत्व सम्मेलन में डॉक्टर सिंह ने कहा कि कृषि स्टार्टअप भारत के कृषि क्षेत्र का भविष्य है। केंद्र सरकार ने किसानों के हितों के लिए तमिलनाडु के किसानों से खोपरा और तोतापुरी आमों की खरीद को मंजूरी दे दी है। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने कहा कि इससे उत्पादकों को बेहतर मूल्य मिलेगा और उन्हें बाजार में उतार चढ़ाव की कीमतों से राहत मिलेगी। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने किसानों के हितों की रक्षा और उनका विश्वास बहाल करने के लिए तंबाकू कंपनियों को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर तंबाकू की खरीद प्रक्रिया तत्काल शुरू करने का निर्देश दिया है। अमरावती में अधिकारियों और व्यापारियों के साथ तंबाकू खरीद की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि तंबाकू की कीमत 200 रुपए प्रति किलोग्राम से कम नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कंपनियों से नीलामी प्रक्रिया में तेजी लाने का भी निर्देश दिया। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज ओडिशा के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान उपराष्ट्रपति भुवनेश्वर स्थित ओडिशा कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में खुले समुद्र में मत्स्य पालन के लिए प्राधिकरण पत्र जारी करेंगे। श्री राधाकृष्णन ओडिशा डीप सी फिशिंग मिशन दस्तावेज का भी विमोचन करेंगे। इसके बाद उपराष्ट्रपति भुवनेश्वर स्थित राष्ट्रीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान खुर्दा के 15वें दीक्षांत समारोह में भाग लेंगे। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के चालू वर्ष में 7% की वृद्धि दर के अनुमान के साथ भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था के रूप में अपना स्थान बरकरार रखे हुए है। IMF द्वारा कल जारी की गई प्रमुख अर्धवार्षिक रिपोर्ट वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक अपडेट के अनुसार अगले वर्ष भारत के सकल घरेलू उत्पाद GDP में 6.4% की मामूली वृद्धि का अनुमान है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने CSIR UGC NET जून 2026 परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं। ये परीक्षा 17 और 18 जुलाई को आयोजित की जाएगी। परीक्षार्थी अपना प्रवेश पत्र आधिकारिक वेबसाइट www.csirnet.nta.in पर डाउनलोड कर सकते हैं। अमरीकी सेना ने कहा है कि वो ईरान पर फिर से हवाई हमले कर रही है। ये हमले एक दिन पहले होर्मुज जलडमरू मध्य में ईरान द्वारा जहाजों पर किए गए हमलों के बाद शुरू हुए। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 2-3 दिन में दक्षिण पश्चिम मानसून के उत्तरी अरब सागर के शेष हिस्सों राजस्थान हरियाणा और पंजाब में पहुंचने की संभावना है। वहीं राजधानी दिल्ली में रात से वर्षा जारी है। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Akhila. Prime Minister Narendra Modi will hold talks with his Australian counterpart Anthony Albanese in Melbourne today. Discussions between the two leaders are expected to focus on strengthening cooperation in trade, defence, critical technologies, education and people-to-people ties. His visit is expected to provide fresh momentum to the India-Australia Comprehensive Strategic Partnership. Prime Minister Modi is also scheduled to participate in the India-Australia CEOs Forum and address business leaders from both the

अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित हिंदी और अंग्रेजी में समाचार। ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है FM के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर। अब आप सुनेंगे खेती की बातें। इस कार्यक्रम के तहत श्रोताओं आज आप जानकारी प्राप्त करेंगे बारिश के दिनों में तालाब जल का प्रबंधन। इस विषय पर जानकारी दे रहे हैं प्रवीण सिट्टी।

खेती की बातें कार्यक्रम सुनने वाले सभी ग्रामीण भाई बहनों को प्रवीण सेठी का जोहार। श्रोता मित्रों, खेती की बातें कार्यक्रम के तहत आज हम सुनेंगे बारिश के दिनों में मछली पालन के उद्देश्य से तालाब जल का प्रबंधन, इस विषय पर। जी हां, ढेर सारी जानकारियों को भी साझा करेंगे। सर्वप्रथम हम बात करते हैं बारिश के दिनों में मछलियों को संक्रमण और ऑक्सीजन की कमी से बचाने के लिए तालाब की मेड़बंदी मजबूत करें, अतिरिक्त पानी निकालने की व्यवस्था रखें और प्रति एकड़ 15 से 20 किलो कृषि चूना यानी लाइम नियमित अंतराल पर डालें, गंदे पानी को बाहर निकालें और ताजा पानी बनाए रखें। हमने मेड़बंदी की बात की है। जी हां श्रोता मित्रों, आप देखते होंगे बारिश के पानी के कारण अगर तालाब पूरी तरह से भर जाता है तो ओवरफ्लो होकर पानी का बहाव तालाब से बाहर की ओर होने लगता है। ऐसे में जो मछलियां हैं वो बाहर की ओर निकल जाती हैं। मछलियां बाहर ना निकले इसलिए मेड़ों को ऊंचा और मजबूत बनाए रखना होगा ताकि बारिश का जो पानी है वो तालाब के अंदर ही रहे, बाहर ना निकले। लगातार बारिश से तालाब का जलस्तर बहुत ऊपर नहीं आना चाहिए। अतिरिक्त पानी को निकालने के लिए जाली नेट लगी निकास प्रणाली आउटलेट का उपयोग अवश्य करना चाहिए जिससे मछलियां बाहर ना तैरें। श्रोता मित्रों, बारिश के मौसम में पानी का पीएच स्तर गिरने का खतरा रहता है, यानी अम्लीय होने का खतरा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। इससे बचने के लिए आवश्यकता अनुसार हर 15 दिन में लगभग 20 किलो प्रति एकड़ की दर से चूना पानी में अवश्य डालें। बरसात में आसपास का गंदा पानी या कीचड़ तालाब में नहीं जाना चाहिए, या पानी तालाब के अंदर जाकर ऑक्सीजन का स्तर गिरा सकता है जिसके कारण मछलियां मर सकती है। श्रोता मित्रों, लगातार बादल छाए रहने से धूप नहीं मिलती और पानी में ऑक्सीजन का स्तर कम होता चला जाता है। ऐसे में तालाब में पानी को घुमाते रहे और आवश्यकता पड़ने पर एरेटर मशीन चलाएं ताकि उसमें ऑक्सीजन का संतुलन बना रहे। बारिश के मौसम में मछलियों में फंगल और बैक्टीरियल संक्रमण जैसे गलफड़ा, सड़ना, लाल चकते का खतरा बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता है। विशेषज्ञों की सलाह के अनुसार पोटेशियम पर मैग्नेट यानी लाल दवा या अन्य सुरक्षित एंटीसेप्टिक का उपयोग आप अवश्य करें। बारिश या लगातार बादलों के दिन में मछलियों की भूख कम हो जाती है, ऐसे में चारे की मात्रा कम कर दे ताकि बचा हुआ चारा सड़कर पानी को दूषित ना करे। क्योंकि श्रोता मित्रों, बारिश के मौसम में मछलियों को फंगल और बैक्टीरियल संक्रमण का खतरा होता है। बचाव के लिए हर 15 दिन में पोटेशियम पर मैग्नेट का घोल तालाब में डाले या नमक प्रति एकड़ 50 किलो का छिड़काव करें। बीमार मछलियों को तुरंत बाहर निकालें और राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड द्वारा अनुशंसित दवाओं का प्रयोग करें। बारिश के मीठे पानी से प्राकृतिक पलवक पनपने लगते हैं। पानी के प्राकृतिक भोजन को बढ़ावा देने के लिए झारखंड कृषि विभाग की मार्गदर्शिका के अनुसार गोबर और रासायनिक खादों यानी यूरिया और सिंगल सुपर फास्फेट का संतुलित मात्रा में प्रयोग करते रहें। अधिक बारिश और पत्तों के सड़ने से अमोनिया गैस बनती है, इससे बचने के लिए तालाब में प्रोबायोटिक्स या जल शोधक का इस्तेमाल आप अवश्य करें। ग्रामीण श्रोता मित्रों, झारखंड की भौगोलिक स्थिति लाल और लेटराइट मिट्टी को ध्यान में रखते हुए ही जल स्तर और जल निकासी का प्रबंधन आप अवश्य करेंगे। इस दौरान अतिरिक्त पानी की निकासी, जैसा कि हमने पहले बताया है, तटबंध की सुरक्षा, जल की गुणवत्ता और रासायन प्रबंधन पर आपको ध्यान देना होगा। तब जाकर हम बारिश के मौसम में मछली पालन के उद्देश्य से तालाब जल का प्रबंधन अच्छी तरह से कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे अगले कार्यक्रम में ढेर सारी जानकारियों के साथ। तो दीजिए अनुमति प्रवीण को जोहार।

अभी आप सुन रहे थे खेती की बातें। ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है, FM के 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर।

ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है, FM के 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर प्रस्तुत है कार्यक्रम वंदना। इस कार्यक्रम में आइए सबसे पहले सुनवाते हैं ये देशभक्ति गीत।

आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र FM के 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर और सुन रहे हैं कार्यक्रम वंदना। इस कार्यक्रम में आइए अब सुनवाते हैं भक्ति रचनाएं। आज के गायक हैं पंडित भीमसेन जोशी।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे पंडित भीमसेन जोशी का गाया ये भक्ति गीत, और इसी के साथ हमारा आज का वंदना अब यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से बोल रहे हैं FM के 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। अब आप सुनेंगे श्री रामचरित मानस।

परशुराम पर श्रीराम का वास्तविक स्वरूप प्रकट होने के साथ ही राजा जनक का धनुष यज्ञ पूर्ण रूप से संपन्न हो गया। मिथिलेश को अपने सम्मुख नतमस्तक देख मुनिवर विश्वामित्र बोले, हे राजन, यूं तो विवाह धनुष के अधीन था जो उसके टूटते ही संपन्न हो गया। फिर भी ब्राह्मणों, कुलगुरु तथा अन्य आदरणीय जनों से पूछकर जो भी आपके कुल की रीतियां हों उन्हें पूरा कीजिए। अयोध्या दूत भेजकर राजा दशरथ को ये शुभ संवाद दीजिए ताकि उनके आगमन पर ये मंगल कार्य विधिपूर्वक पूरा हो सके। दूत अयोध्या को चले और इधर राजा जनक ने सगे संबंधियों तथा राज कर्मचारियों को पूरी नगरी, बाजार, राजमार्गों, भवनों, देवालयों को सजाने के आदेश दिए। मंडप बनाने वाले कुशल कारीगरों को बुला भेजा गया जिन्होंने हरित मणियों के पत्तों तथा फूलों और पद्मराग

माणिकों के फलों से ऐसा मंडप बनाया जिसकी शोभा देख ब्रह्मा भी अपनी रचना भूल गए। भांति भांति के माणिक मोतियों, बहुमूल्य रत्नों तथा अन्य उपकरणों से नगर की सजावट होने लगी। जिस मंडप में जनक नंदिनी दुल्हन और रूप और गुणों के भंडार श्री राम दुल्हा होंगे, वो मंडप त्रिलोक में अनूठा होना ही चाहिए।

अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरित मानस। ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है FM के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर। श्रोताओं, अब आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित हिंदी में समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी ऑस्ट्रेलिया यात्रा के दौरान मेलबर्न में भारत ऑस्ट्रेलिया मुख्य कार्यकारी आधिकारिक मंच को संबोधित किया। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने कहा कि व्यापारिक साझेदारियों को हमें ऊंचाइयों पर ले जाना है।
1: भारत आपके फंड्स को सेफ, स्टेबल और सस्टेनेबल ग्रोथ का अवसर देता है। हमारा प्रयास रहेगा कि आपका ट्रस्ट भी बढ़े और आपका कैपिटल भी बढ़े। एजुकेशन और स्किल्स में दोनों देशों के बीच नेचुरल सिनर्जी है। डिकिन यूनिवर्सिटी और वुलोंगोंग यूनिवर्सिटी ने कीप सिटी में कैंपस खोलकर एक नया अध्याय शुरू किया। यह भारत के प्रति उनके कॉन्फिडेंस का प्रतिबिंब है। हमारा साझा लक्ष्य होना चाहिए कि हम स्टूडेंट मोबिलिटी को टैलेंट पार्टनरशिप में बदले।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज से बातचीत करेंगे। दोनों

नेताओं के बीच व्यापार, रक्षा, महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकी, शिक्षा और जनसंपर्क को मजबूत करने पर चर्चा होने की संभावना है। प्रधानमंत्री ने मेलबर्न में भारतीय समुदाय को गर्मजोशी से स्वागत के लिए उनका आभार व्यक्त करते हुए इसे अविस्मरणीय बताया। ऑस्ट्रेलिया में भारत के उच्चायुक्त नागेश सिंह ने कहा कि एक दशक में श्री मोदी की ऑस्ट्रेलिया की तीसरी यात्रा द्विपक्षीय संबंधों में हुई महत्वपूर्ण प्रगति को दर्शाती है। भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली प्रमुख अर्थव्यवस्था बना हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF ने वर्ष 2026 के दौरान इसकी 7% की वृद्धि दर का अनुमान लगाया है। IMF ने यह भी अनुमान जताया है कि अगले वर्ष में भारत की GDP वृद्धि दर कुछ घटकर 6.4% रह सकती है। केंद्र सरकार ने किसानों के हितों की रक्षा के लिए तमिलनाडु के किसानों से खोपरा और तोतापुरी आमों की खरीद को मंजूरी दे दी है। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि इससे उत्पादकों को बेहतर मूल्य मिलेगा और उन्हें बाजार में उतार चढ़ाव की कीमतों से राहत भी मिलेगी। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में शिक्षकों और गैर शिक्षण कर्मचारियों के लिए नकदी रहित स्वास्थ्य योजना शुरू की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वाराणसी से मुख्यमंत्री शिक्षक नकदी रहित चिकित्सा योजना का शुभारंभ किया, जिसके तहत 15 लाख से अधिक शिक्षण कर्मचारियों को 5 लाख रुपए तक का चिकित्सा उपचार मिलेगा। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस देश में कृषि अर्थव्यवस्था को नई गति दे सकता है। नई दिल्ली में 17वें कृषि नेतृत्व सम्मेलन में डॉक्टर सिंह ने कहा कि कृषि स्टार्टअप भारत के कृषि क्षेत्र का भविष्य हैं। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन आज ओडिशा के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान उपराष्ट्रपति भुवनेश्वर स्थित ओडिशा कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में खुले समुद्र में मत्स्य पालन के लिए प्राधिकरण पत्र जारी करेंगे। श्री राधाकृष्णन ओडिशा डीप सी फिशिंग मिशन दस्तावेज का भी विमोचन करेंगे और इसके बाद उपराष्ट्रपति भुवनेश्वर स्थित राष्ट्रीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान खुर्दा के 15वें दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे। अमरीका ने ईरान पर फिर हवाई हमले किए हैं। ये हमले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा ईरान के फिर से किए गए हमलों को दोनों देशों के बीच युद्ध विराम की समाप्ति के बाद किए गए हैं। केरलम के 5 उत्तरी जिलों में कहीं कहीं तेज बारिश की संभावना का येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने उत्तराखंड के देहरादून, हरिद्वार, उधम सिंह नगर, नैनीताल और चंपावत जिलों में अगले 36 घंटों के दौरान तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं राजधानी दिल्ली में रात से ही लगातार बारिश हो रही है। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की T20 श्रृंखला का 4th मुकाबला आज ब्रिस्टल के काउंटी ग्राउंड में खेला जाएगा। इससे पहले 3rd मैच में भारत को इंग्लैंड से 125 रन से हार का सामना करना पड़ा था। और इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित हिंदी में समाचार। ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, आइए अब आपको जानकारी दे दें आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की। अब से थोड़ी देर बाद यानी 7:10 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम आप और हम। 7:20 का समय होता है लोकगीतों का और 7:35 पर हमारे श्रोता सुनते हैं बांग्ला गीतों पर आधारित कार्यक्रम सुरांजलि। 7:50 का समय होता है स्वास्थ्य चर्चा का। सुबह 8 बजे समाचार प्रभात आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया जाएगा और यहीं से आप सुनेंगे 8:15 पर मॉर्निंग न्यूज। 8:30 पर प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के रांची केंद्र से प्रसारित किया जाएगा और 8:45 पर श्रोताओं

आनंद ले सकते हैं फिल्म संगीत का। सुबह 9 बजे हिंदी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया जाएगा और 9:05 पर कार्यक्रम सुरंजना में आज आप सुनेंगे एक ही गायक को। 9:30 पर शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम होगा और सुबह 10 बजे हिंदी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया जाएगा। यहीं से आप सुनते हैं 10:05 पर अंग्रेजी में समाचार और 10:10 पर विश्व दर्पण। 10:20 पर आप सुन सकते हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम। सुबह 11 बजे और दोपहर 12 बजे श्रोता सुनते हैं हिंदी में समाचार आकाशवाणी दिल्ली से। 11:05 का समय होता है कार्यक्रम नमस्कार जमशेदपुर का और दोपहर 12:05 पर आप सुनते हैं भावगीत। 12:30 पर शास्त्रीय संगीत का प्रसारण होगा। दोपहर के 1 बजे हिंदी में समाचार, 1:05 पर अंग्रेजी में समाचार और 1:10 पर प्रादेशिक समाचार का प्रसारण होगा। 1:20 और दोपहर 2:30 पर श्रोताओं आप आनंद ले सकते हैं फिल्म संगीत का। दोपहर के 2 बजे मिड डे न्यूज, 2:15 पर दोपहर समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया जाएगा और 2:55 पर प्रादेशिक समाचार आप सुनेंगे आकाशवाणी रांची से। अपराह्न के 3 बजे NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग का प्रसारण होगा और 3:30 पर आप आनंद लेंगे सुगम संगीत में आज भूपेंद्र सिंह और मिताली सिंह के गाए गजलों का। 3:45 पर श्रोता सुनते हैं लोकगीत का कार्यक्रम। संध्या 4 बजे एवं 5 बजे समाचार मुख्यांश आकाशवाणी के रांची केंद्र से प्रसारित किया जाएगा। 4:02 पर आज के दिन हमारे श्रोता सुनते हैं कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर आकाशवाणी दिल्ली से। 5:02 पर युवा साथियों को संबोधित कार्यक्रम युवाणी का प्रसारण होता है और 5:30 पर आप सुनते हैं कल कारखाने। संध्या 6 बजे हिंदी में समाचार, 6:05 पर अंग्रेजी में समाचार और 6:20 पर संस्कृत में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया जाएगा। 6:10 पर आप सुनते हैं झारखंड के लोकगीत। संध्या 6:30 का समय होता है कृषि जगत का। 7 बजे प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के रांची केंद्र से प्रसारित किया जाएगा और 7:10 पर यहीं से आप सुनेंगे जिले में आजकल। 7:15 का हमारा समय होता है बांग्ला कार्यक्रम का और 7:45 पर आज के दिन हमारे श्रोता सुनते हैं खेल कार्यक्रम। रात्रि 8 बजे फिल्म संगीत का प्रसारण होगा। 8:45 पर समाचार संध्या आकाशवाणी दिल्ली से प्रसारित किया जाएगा और यहीं से आप सुनेंगे रात्रि 9 बजे न्यूज़ एट नाइट, 9:15 पर स्पॉटलाइट। रात्रि 10 बजे फिल्म संगीत का प्रसारण होगा। 10:30 पर आप आनंद ले सकते हैं शास्त्रीय संगीत का। रात्रि 11 बजे हिंदी में समाचार और 11:05 पर अंग्रेजी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किए जाएंगे। रात्रि 11:10 पर हमारी आज की सभा संपन्न होगी।

0: ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है, एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर प्रस्तुत है आपके पत्रों और मेल पर आधारित कार्यक्रम आप और हम।
1: आप और हम, आप और हम। धरा की खामोशी को मिटाने बारिश की बूंदें गिरती हैं और नई ऊर्जा एवं चेतना जगाते हुए प्रकृति में एक संगीत का स्वर लहरी घोल देती है। तरंगों की मिठास जब मानव मस्तिष्क तक पहुंचती है तो मानव जीवन का भी नव श्रृंगार होता है, और जीवन के श्रृंगार के लिए रेडियो का साथ एक अहम भूमिका निभाता है। ये भूमिका तब पूर्ण होती है जब आपका पसंदीदा कार्यक्रम आप और हम के साथ आपके पत्र और मेल का जवाब दिया जा रहा होता है। निमिषा के प्यार भरे नमस्कार के साथ शुरू करते हैं आज का आपका अपना कार्यक्रम, जिसमें आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ हैं हमारे कार्यक्रम प्रमुख राजेश कुमार राय। राय सर, कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है।

0: नमस्कार।
1: नमस्कार
0: सर, जैसा कि हमारे पास आज भी मेल और खत आए हुए हैं और इसमें से हमने ये मेल सबसे पहले लिया हुआ है कांड्रा के दीपक कुमार अवस्थी जी का।
1: अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया
0: जी। हाँ, इस मेल में इन्होंने बड़ी खूबसूरती से लिखा है, आकाशवाणी जमशेदपुर के तमाम प्रस्तुतकर्ताओं को मेरा प्रणाम।
1: सब परिवार दीपक कुमार अवस्थी जी को हमारी ओर से नमस्कार।
0: ये आगे जिक्र करते हैं अपने मेल में, मैं एक कंपनी में काम करने वाला श्रमिक हूँ और काम करने के दौरान रेडियो सुनने का भी शौक रखता हूँ। आपके केंद्र से प्रसारित हर कार्यक्रम बहुत अच्छे होते हैं। ये जो शाम के वक्त कार्यक्रम कल कारखाने प्रसारित किया जाता है वो मैं जरूर सुनता हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा महसूस होता है जैसे ये कार्यक्रम हम श्रमिकों के लिए ही प्रसारित किया जा रहा है। कई तरह की भेंट वार्ताओं के साथ गीत संगीत दिन भर की थकान दूर कर देती है। कार्यक्रम सुनने के दौरान मैंने लोकतंत्र में लोक सेवा की भूमिका विषय पर एक वार्ता सुनी। वार्ताकार थे बसंत कुमार और ये वार्ता कई तरह की जानकारी के अलावे हमारा मार्गदर्शन भी किया है। अतः मैं आपके जरिए बसंत सर का हार्दिक धन्यवाद देना चाहता हूँ। नमस्कार।
1: नमस्कार और धन्यवाद आप भाई दीपक कुमार अवस्थी जी। जैसा कि आपने लिखा है कि आप हमारे कार्यक्रमों को सुनने का बहुत ही शौक रखते हैं। मूलतः जो हमारे देश की दो रीढ़ है, एक तो कृषक समाज और दूसरा हमारे श्रमिक भाई बंधु, तो आप जो है किसी कंपनी में कार्यरत है जैसा कि आप लिखते हैं और रेडियो को सुनने का आप शौक रखते हैं, और आपने लिखा है कि आप जो हमारी जो संध्याकालीन सभा में जो कल कारखाने कार्यक्रम है वो आप विशेष रुचि से सुनते हैं। स्वाभाविक है, चूंकि निमिषा जी ये जो हमारे संध्याकालीन सभा के कार्यक्रम है वो विशिष्ट श्रोता वर्ग के कार्यक्रमों से ही भरे पड़े
0: हैं।
1: आरंभ होता है 5 बजे युवाओं के कार्यक्रम युवानी से, फिर कल कारखाने है श्रमिक भाइयों बहनों का कार्यक्रम, उसके बाद कृषि जगत है जो हमारे ग्रामीण और कृषक भाइयों बहनों का कार्यक्रम है, फिर उसमें बंगला कार्यक्रम है जो कि हमारे बंगला भाषी भाइयों बहनों का कार्यक्रम है, उसी अनुसार किसी दिन विज्ञान पत्रिका है, किसी दिन साहित्यिक पत्रिका है, किसी दिन फिर बुजुर्ग श्रोताओं के लिए कार्यक्रम है, तो इस तरह कई तरह के कार्यक्रम है। और जहाँ तक आपने लिखा है कि कल कारखाने आपको बहुत ही अच्छा लगता है, तो ये जानकर हमें भी बहुत ही अच्छा लग रहा है। और आपने जो है जो चर्चा की है, मुझे ध्यान आ रहा है कि पिछले दिनों आपने जिस वार्ता की चर्चा की है वो बसंत कुमार की जो वार्ता थी लोकतंत्र में लोक सेवा की भूमिका, तो मूलतः लोक सेवा संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस जो 23 जून को मनाया जाता है उसी दिन ये कार्यक्रम प्रसारित हुआ। जो हमारे सिविल सर्वेंट्स है, लोक सेवक है, उनकी देश को आगे ले जाने में, किसी भी लोकतंत्र को आगे बढ़, जैसे हम लोग निमिषा जी बोलते हैं हमारे लोकतंत्र के 3 स्तंभ हैं, जिसमें की है एग्जीक्यूटिव है मतलब कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका, पार्लियामेंट, जुडिशियरी एंड एग्जीक्यूटिव। तो जो लोक सेवक है वो एग्जीक्यूटिव का काम कार्यान्वयन के काम को सटीक तरीका से वो जब निभाते हैं तभी जो है लोकतंत्र जो है सफलता की ओर आगे बढ़ता है, जैसा कि हमारे देश में हो रहा है। और खास करके निमिषा जी पिछले 12 वर्षों के दौरान जो हमने विकास की नई ऊंचाइयों को छुआ है, इस तरह के कार्यक्रम भी हम लगातार प्रसारित कर रहे हैं हर एक क्षेत्र में। ये कार्यक्रम आपको अच्छा लगा, निश्चित रूप से हमारे जो ये टॉकर थे, वार्ताकार थे, वो धन्यवाद के पात्र हैं, और हम कार्यक्रम बैठक में चर्चा करके और भी इस तरह के कार्यक्रमों को समय समय पर तो हम लोग प्रसारित करते ही हैं, इस तरह के समीचीन कार्यक्रम और भी हम लोग करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद भाई दीपक कुमार जी को।
0: दीपक कुमार अवस्थी जी के इस मेल के बाद अब बारी आती है एक चिट्ठी की, और ये चिट्ठी आई हुई है 3 प्लेट जमशेदपुर से रश्मि अग्रवाल जी की।
1: अच्छा अच्छा, क्या लिखती है रश्मि बहन?
0: रश्मि जी लिखती है, रेडियो के सभी साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार।
1: तो रश्मि अग्रवाल जी, आपको भी सब परिवार हमारी ओर से नमस्कार।
0: आगे इन्होंने अपनी चिट्ठी में लिखा है, मैं रेडियो की एक पुरानी श्रोता हूँ और आकाशवाणी के कार्यक्रमों को हमेशा सुना करती हूँ। यूँ तो मैं एक गृहिणी हूँ लेकिन लिखना मेरी हॉबी है और मैंने अपने इस आदत को आज भी बरकरार रखा है। मुझे साहित्य का कार्यक्रम बहुत भाता है और मैं कार्यक्रम स्वर्ण रेखा अवश्य सुनती हूँ। गीत संगीत तो मेरे जीवन का एक अंश है, लेकिन इसके अलावा आपके केंद्र से प्रसारित हर कार्यक्रमों को भरपूर इंजॉय करती हूँ। विगत दिनों आज के मेहमान कार्यक्रम में एक बहुत ही प्रतिष्ठित व्यक्तित्व NIT के डायरेक्टर डॉक्टर गौतम सूत्रधर का इंटरव्यू सुनवाया गया था। यकीनन ये इंटरव्यू मुझे बेहद अच्छा लगा। डॉक्टर सूत्रधर एवं आप सभी अधिकारियों को ऐसे कार्यक्रम के लिए कोटि कोटि धन्यवाद।
1: बहुत बहुत धन्यवाद बहन रश्मि अग्रवाल जी। आपने लिखा है कि आप पुरानी श्रोता हैं, ये जानकर हमें बहुत ही अच्छा लग रहा है, और आप गृहिणी हैं। अभी निमिषा जी हम लोग जो है कृषक समाज और हमारे श्रमिक वर्ग की बात कर रहे थे, तो गृहिणियों की भी भूमिका जो है किसी भी सबसे पहले तो परिवार के निर्माण में, समाज को आगे बढ़ाने में और अंततः राष्ट्र विकास में उतना ही अहम है, क्योंकि जब तक एक घर सफल नहीं होगा, शिक्षित नहीं होगा, विकसित नहीं होगा, तब तक फिर समाज और फिर राष्ट्र का विकसित की कड़ी है। तो आप गृहिणी हैं और कार्यक्रमों में रुचि रखती हैं, जानकर हमें अच्छा लग रहा है। आपको साहित्य का कार्यक्रम भी अच्छा लगता है, स्वर्णरेखा की आप चर्चा करती हैं। निमिषा जी पिछले जो मेल के जवाब में मैंने जो साहित्यिक पत्रिका कार्यक्रम की चर्चा की थी, तो

0: आपका ये स्वर्णरेखा कार्यक्रम ही है, हिंदी साहित्यिक पत्रिका कार्यक्रम, जो प्रत्येक बुधवार को रात्रि 10 बजे होता है, सिवाय दूसरे बुधवार को, जिस दिन ओडिया भाषा का कार्यक्रम होता है, दूसरे बुधवार को रात्रि 10 बजे जो है गीत संगीत भी आपको आनंदित करता है। जहाँ तक आपने आज के मेहमान की बात की है, तो आज के मेहमान निमिषा जी, जैसा कि हमारे श्रोताओं को फिर से बता दें, हमारा एक मासिक कार्यक्रम है और इसमें समाज के काफी सफल, प्रतिष्ठित अथवा काफी लोकप्रिय व्यक्तित्व का एक प्रोफाइल इंटरव्यू प्रसारित किया जाता है। तो हमारा जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जमशेदपुर है, जो आदित्यपुर में स्थित है, देश का एक अग्रणी संस्थान है तकनीकी और प्रौद्योगिकी प्रशिक्षण का, अध्ययन का, और उसके जो है काफी विद्वान और काफी सफल जो निदेशक है, डायरेक्टर डॉक्टर गौतम सूत्रधर जी की भेंटवार्ता प्रसारित हुई। वाकई वो बहुत ही सूचनाप्रद, और साथ में उसमें उनकी जीवन के विभिन्न पहलू और साथ ही साथ कैसे NIT आगे प्रगति पथ पर युवाओं को कौशल विकास में आगे बढ़ा रहा है, वो सारे पहलू समाहित थे। भेंटवार्ता अच्छी लगी, निश्चित रूप से हमारे अन्य श्रोताओं ने भी इससे लाभ उठाया होगा और उन्हें भी ये भेंटवार्ता अच्छी लगी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद बहन रश्मि जी को।
1: रश्मि जी के इस पत्र के बाद अब फिर से बारी आती है एक मेल की, और ये मेल आया हुआ है के रोड बिष्टुपुर से ख्याति पांडे का।
0: क्या लिखती है ख्याति बहन?
1: ख्याति जी लिखती है, सबसे पहले नमस्ते।
0: नमस्कार ख्याति पांडे जी।
1: आगे इन्होंने लिखा है, आकाशवाणी जमशेदपुर का प्रसारण बहुत ही अच्छा है, साथ ही आपके यहाँ की प्रस्तुति भी बहुत अच्छी होती है। आपके केंद्र से प्रसारित इन्फॉर्मेटिक कार्यक्रम बहुत ही अच्छे होते हैं। कई बार ऐसा लगता है जैसे युवाओं के लिए ये एक प्रेरित करने वाला संस्थान है, क्योंकि मेरे समझ से आकाशवाणी एक ऐसा माध्यम है जिसमें एक युवा अपने करियर की शुरुआत के लिए अगर रेडियो सुनते हैं तो तनाव से भी मुक्त होते हैं और अपने व्यक्तित्व को भी निखार पाते हैं। रेडियो के जरिए भाषा शैली के अलावे हम अपने प्रेजेंटेशन को भी एक रूप दे सकते हैं। मसलन, अगर कोई युवा किसी इंटरव्यू को फेस कर रहा हो, उसे किस तरह से सवालों का सटीक जवाब देना है, इस बारे में भी रेडियो से बहुत कुछ सीखा जा सकता है। रेडियो युवाओं के लिए हमेशा एक सक्रिय भूमिका निभाती है, अतः युवाओं के लिए कार्यक्रम की प्रस्तुति जिसमें करियर गाइडेंस के साथ साथ रोजगार की संभावनाओं के लिए दिशा निर्देश भी दिए जाते हैं, आप सभी प्रस्तुतकर्ताओं की मैं दिल से आभारी हूँ। नमस्कार।
0: नमस्कार, धन्यवाद ख्याति पांडे बहन को। आपने जो मेल किया है और अपने आरंभ में ही लिखा है कि आपके केंद्र के कार्यक्रम इन्फॉर्मेटिक होते हैं, तो वाकई इसमें सूचना का निमिषा जी तो समावेश, इन्होंने स्वयं इस बात की तस्दीक की है कि इन्फॉर्मेटिक कार्यक्रम हम प्रसारित करते हैं, और मुझे लग रहा है कि इन जो है युवानी कार्यक्रम से आजकल विशेष इनको अभिरुचि है, क्योंकि जिस तरह के इन्होंने प्रेजेंटेशन की बात की है, आजकल युवानी कार्यक्रम हमारा काफी अभिनव दौर से गुजर रहा है और इसमें युवाओं को विशेष रूप से सूचना का, शिक्षा का और मनोरंजन का, तीनों का एक सुंदर समावेश का प्रसारण हो रहा है। कैरियर गाइडेंस के अलावा जो जनरल नॉलेज की बातें हैं, युवाओं को आगे बढ़ाने की बातें हैं, कई तरह की बातों को कंपियर्स के माध्यम से, जो नए उसमें साइनीज है उनके माध्यम से आगे बढ़ाया जा रहा है, जो इसके कार्यक्रम अधिशासी है राजीव रंजन तिवारी जी के कुशल मार्गदर्शन में। तो ये कार्यक्रम अच्छा लग रहा है ख्याति पांडे जी को भी, और निश्चित रूप से हमारे अन्य जो युवा साथी हैं, श्रोता हैं, उनको भी अच्छा लग रहा होगा। अब यूं ही कार्यक्रम से अपना स्नेह बनाए रहें और बीच बीच में अपने विचारों से हमें अवगत कराते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद
1: ख्याति जी के इस मेल के साथ ही हमें इस कार्यक्रम से विराम लेना होगा।
0: बिल्कुल।
1: और चलते चलते हम अपने श्रोताओं को कार्यक्रम का पता बता दें।
0: बिल्कुल।
1: जिन श्रोताओं को पत्र लिखना है वो हमारा पता नोट कर लें। पता है कार्यक्रम आप और हम द्वारा केंद्र निदेशक आकाश जमशेदपुर, पिन है 831013। और अगर आप मेल करते हैं तो हमारा ईमेल आईडी है airjsrcbs@gmail.com। मेल करें, पत्र लिखें। फिलहाल मुझे और राय सर को इस साप्ताहिक कार्यक्रम से विदा दें।
0: नमस्कार।
2: आप और हम, आप और हम।
1: आप सुन रहे थे पत्रों और मेल पर आधारित कार्यक्रम आप और हम। ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है FM 102.4 मेगाहर्ट्ज पर। थोड़ी ही देर में आपको सुनवाते हैं लोकगीतों का कार्यक्रम।
3: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
4: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
3: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
4: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
3: डायल कीजिए 8700014242।
4: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
2: हाय,
5: हर घर की वाणी।

0: आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी। और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
1: मन की बात, प्रधानमंत्री आकाशवाणी पर।
2: मेरी मन की बात के संबंध में अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो आप मन की बात आकाशवाणी संसद मार्ग नई दिल्ली, अगर चिट्ठी भी भेज देंगे और कुछ सुझाव देंगे वो जरूर मुझ तक पहुंच जाएगा और मैं जरूर उसको गंभीरता से लूंगा।
1: यदि आप माननीय प्रधानमंत्री को मन की बात के लिए कोई सुझाव देना चाहते हैं तो पता नोट करें। मन की बात आकाशवाणी संसद मार्ग नई दिल्ली 110001।
2: मैं आपको निमंत्रण देता हूँ, मेरे मन की बात के लिए आपके मन की बात भी जुड़नी चाहिए।

सुनिए हमारा खास कार्यक्रम हेलो आपकी फरमाइश, हर मंगलवार रात 10 बजे से 11 बजे तक FM के 102.4 MHz पर। और हाँ, अपनी फरमाइश रिकॉर्ड करवाने के लिए हमें कॉल करें हर बुधवार दोपहर 12:30 बजे से 1 बजे के बीच। हमारा फोन नंबर है 0657-296-0445। हेलो आपकी फरमाइश, संगीत वही जो आप चाहें। ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है FM के 102.4 MHz पर। प्रस्तुत है लोक गीतों का कार्यक्रम। इस कार्यक्रम में हमारे श्रोता आज सुनेंगे हरिवंश प्रसाद सिंह का गाया मगही गीत।

हरिवंश प्रसाद सिंह और साथियों के गाए मगहे गीत के साथ ही श्रोताओं, हमारा आज का लोकगीतों का ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से बोल रहे हैं FM के 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। इस समय सुबह के 7:35 हो रहे हैं। अब आइए सुनवाते हैं सुरांजलि। कार्यक्रम सुरांजलि में श्रोताओं, आज आप सुनेंगे नजरुल गीति मानवेंद्र मुखोपाध्याय सिंह।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे मानवेंद्र मुखोपाध्याय का गाया नजरुल गीति, और इसी के साथ हमारा आज का सुरांजलि कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से बोल रहे हैं FM के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर। इस समय सुबह के 7:50 हो रहे हैं। अब आइए सुनवाते हैं स्वास्थ्य चर्चा। इस कार्यक्रम में आज आप जानकारी प्राप्त करेंगे महिलाओं में आर्थराइटिस की समस्या। इस विषय पर जानकारी दे रही हैं डॉक्टर पूनम सिंह, जिनसे बातें कर रहे हैं राजेश कुमार।
1: श्रोताओं, स्वास्थ्य चर्चा के आज के अंक में हम बातें करेंगे आर्थराइटिस के बारे में। खासकर महिलाओं में आर्थराइटिस की समस्या काफी देखने को मिलती है। क्या है आर्थराइटिस, किन कारणों से ये होता है, कैसे इसके लक्षण उभर कर आते हैं और इनसे फिर हम कैसे बच सकते हैं, इन सारी बातों को बताने के लिए आज हमारे साथ हैं डॉक्टर पूनम सिंह।
2: नमस्ते
1: डॉक्टर साहिबा। सबसे पहले हमारे श्रोताओं को आप ये जानकारी दीजिए कि आर्थराइटिस वास्तव में है क्या।
2: आर्थराइटिस एक जेनरिक वर्ड है जिसका उपयोग जोड़ों के विभिन्न तरीकों की बीमारियों के लिए किया जाता है। इस बीमारी में जोड़ के दोनों तरफ की सतह की चिकनाई खत्म हो जाती है और हड्डियाँ एक दूसरे से रगड़ खाने लगती है। यदि यह बीमारी ना हो तो हर जोड़ों के बीच में चिकनाई की एक परत होती है।
1: अच्छा।
2: बहुत तरह की बीमारियों के कारण यह परत घिसने लगती है, जैसे कि संक्रमण, जिन्हें हम इन्फेक्शन कहते हैं, ट्रॉमा, चोट लग गया किसी वजह से और

0: एक्सीडेंट इम्परफेक्ट अलाइनमेंट, जैसे किसी के खड़े होने का तरीका सही ना हो, चलने का तरीका सही ना हो, बैठने का तरीका, और उम्र के साथ भी चिकनाई घिसती जाती है और हड्डियां एक दूसरे से रगड़ खाने लगती हैं। इसे ही आम भाषा में अर्थराइटिस कहते हैं।
1: महिलाओं में ये अर्थराइटिस ज्यादा होता है या कि किसी को भी हो सकता है?
0: यह आमतौर पर किसी को भी हो सकता है, पर महिलाओं को ये ज्यादा तकलीफ देता है।
1: किस तरह के लक्षण उभर कर आते हैं?
0: इसके लक्षण हैं कि घुटनों में दर्द लंबे समय तक बने रहता है, सुबह उठने के तुरंत बाद जोड़ों में दर्द होता है, जोड़ों में सूजन भी आ जाती है, घुटनों को हिलाने डुलाने और उठने बैठने में परेशानी होती है, मांसपेशियां कमजोर हो जाती हैं, हल्का बुखार भी महसूस होता है किन्हीं किन्हीं को, और लंबे समय तक बैठने के बाद जोड़ों में जकड़न महसूस होती है, और जब ये क्रॉनिक रूप ले लेता है तो जोड़ जो हैं टेढ़े हो जाते हैं।
1: किस उम्र के लोगों में ये ज्यादा देखने को मिलता है?
0: आमतौर पर यह 50 साल के बाद परेशान करता है। हालांकि खराब लाइफ स्टाइल से अब यह युवाओं में भी देखने को मिल रहा है। इसमें असर आमतौर पर घुटनों पर होता है, इसके अलावा उंगलियों और कुल्हों में भी परेशानी होती है, जैसे कि पैरों के भी छोटे छोटे जोड़ों में दर्द होता है। एक जानकारी के अनुसार 18 करोड़ भारतीय अर्थराइटिस से जूझ रहे हैं, इनमें 52% महिलाएं हैं।
1: तो महिलाओं में अर्थराइटिस होने का मुख्य कारण क्या होता है? क्या उनका रहन सहन ऐसा होता है कि ताकि वो ज्यादा अर्थराइटिस से प्रभावित होती हैं?
0: महिलाएं अपने खान पान पर ज्यादा ध्यान नहीं देती हैं, और आजकल के शहरी लाइफ स्टाइल में जो है लोग एसी कमरों में बंद रहने लगे हैं, धूप में नहीं जाते हैं, वो भी एक बहुत बड़ा कारण है।
1: अर्थराइटिस का उपचार कैसे हो सकता है या फिर क्या सावधानियां हमें बरतनी चाहिए ताकि अर्थराइटिस से बचे रहें लोग?
0: यहाँ आपको यह जानने की जरूरत है कि रूमेटॉइड अर्थराइटिस का कोई इलाज होता ही नहीं है
1: जी।
0: इसमें सिर्फ दर्द के लक्षणों को कम किया जा सकता है। दर्द के लिए शुरुआती दिनों में कुछ दर्द निवारक दवाएं दी जाती हैं, वहीं ऑस्टियोआर्थराइटिस में हल्की फुल्की दवाएं दी जाती है, साथ में वजन घटाना इसमें प्रमुख उपाय है। महिलाओं में वजन की भी काफी समस्या है, और वजन का जोर मेनली घुटनों पे पड़ता है, जिसके कारण अर्थराइटिस समस्या महिलाओं में ज्यादा होता है। और खान पान और व्यायाम पर भी ध्यान देना जरूरी है। कुशन वाला जूता चप्पल बहुत कारगर होता है। इसमें तकलीफ और स्थिति के अनुसार दवाओं का डोज बढ़ भी सकता है। कभी कभी जोड़ों में इंजेक्शन भी लगाना पड़ सकता है। यदि मरीज की तकलीफ इतनी बढ़ जाए कि वह उठ बैठ ना पाए तो ज्वाइंट सर्जरी या ज्वाइंट रिप्लेसमेंट की भी जरूरत पड़ती है। अर्थराइटिस से बचाव के लिए मसल्स को मजबूत करने वाले एक्सरसाइजेस, स्ट्रेचिंग, जॉगिंग, ब्रिस्क वॉक और साइकिलिंग करें। आप जितना एक्टिव रहेंगे अर्थराइटिस से पीड़ित रहने का खतरा उतना कम रहेगा। बैलेंस्ड डाइट जरूर लें, जैसे कि सालमन मछली है उसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड पाया जाता है जो जोड़ों के सूजन को कम करने में काफी लाभकारी होता है। और जो शाकाहारी लोग हैं अपने भोजन में अलसी, अखरोट, मूंगफली, बादाम आदि का सेवन करें, और नियमित रूप से फल और सब्जी का सेवन जरूर करें।
1: तो श्रोताओं, आपने सुना कि अर्थराइटिस से यदि आपको बचना है तो अपने लाइफ स्टाइल में थोड़ा सा बदलाव लाने की जरूरत है। जैसा कि डॉक्टर साहिबा ने बताया, उनकी बातों पे यदि आप अमल करेंगे तो निश्चित तौर पर आप अर्थराइटिस से बचे रहेंगे। डॉक्टर साहिबा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: अभी आप सुन रहे थे स्वास्थ्य चर्चा। ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है FM 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: सुनो ना,
2: हाँ?
1: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
2: तो रोका किसने है, हाँ?
1: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
2: मुझसे।
1: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
2: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
1: पर उससे मेरा क्या फायदा?
2: देखो,

0: फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुंच जाओ।
1: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
0: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 870-001-4242।
1: ओ 870-001-4242। लो अभी फोन लगाता हूँ 870-001-4242 पर।

0: सुनिए हमारा खास कार्यक्रम हेलो आपकी फरमाइश, हर मंगलवार रात 10 बजे से 11 बजे तक एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर। और हाँ, अपनी फरमाइश रिकॉर्ड करवाने के लिए हमें कॉल करें हर बुधवार दोपहर 12:30 बजे से 1 बजे के बीच। हमारा फोन नंबर है 0657-296-0445। हेलो आपकी फरमाइश, संगीत वही जो आप चाहें।
1: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।

ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है, FM के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर। अब आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित समाचार प्रभात और मॉर्निंग न्यूज़।

0: एक एक बूंद को हमें बचाना है, तो मेरा खास आग्रह है वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं।
1: जल है तो हम है, आइए घरों ऑफिसों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक अपनाएं। रिचार्ज पिट और शाफ्ट बनवाएं, अनुपयोगी बोरवेलों को ठीक करें, जलाशयों से गाद निकालें, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। इस बारिश आइए जुड़े कैच द रेन अभियान से।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेलबर्न में भारत ऑस्ट्रेलिया सीईओ फोरम को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने कहा, अनिश्चितता, सप्लाई चेन में रुकावट और ऊर्जा संकट वाले दौर में भारत और ऑस्ट्रेलिया का भरोसेमंद साझेदार के तौर पर आगे बढ़ना स्वाभाविक और जरूरी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मेलबर्न में ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ वार्ता करेंगे। केंद्र सरकार ने तमिलनाडु के किसानों के हित में खोपरा और तोतापुरी आमों की खरीद को मंजूरी दी। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में शिक्षकों और गैर शिक्षण कर्मचारियों के लिए नकदी रहित स्वास्थ्य योजना शुरू की। भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बना रहेगा। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने 2026 में 7% की विकास दर रहने का अनुमान जताया।

0: राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा युद्ध विराम खत्म होने की घोषणा के बाद अमेरिका ने ईरान पर नए हमले किए और भारत के अर्णव पापरकर ने विंबलडन जूनियर्स 2026 में सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंचकर इतिहास रचा। पिछले 36 वर्षों में सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंचने वाले भारत के पहले खिलाड़ी बने। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने आज सुबह मेलबर्न में भारत ऑस्ट्रेलिया सीईओ फोरम में भाग लिया। दोनों नेताओं ने भारत और ऑस्ट्रेलिया के उद्योग जगत के प्रमुखों से भी मुलाकात की। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि विश्व इस समय अनिश्चितता, आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान और ऊर्जा संकट के दौर से गुजर रहा है। ऐसे समय में भारत और ऑस्ट्रेलिया के लिए स्वाभाविक और विश्वसनीय साझेदार के रूप में आगे बढ़ना स्वाभाविक है और आवश्यक भी। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में दोनों देशों ने अपनी शक्तियों का लाभ उठाते हुए भविष्य की साझेदारी के लिए एक मजबूत ढांचा तैयार किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि 2022 में रिकॉर्ड समय में संपन्न हुए आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते से दोनों देशों के आर्थिक संबंधों में मजबूती आई है।
1: साल 2022 में रिकॉर्ड समय में किए गए एक्टा समझौते से हमारी आर्थिक साझेदारी और सशक्त हुई है। इसके लागू होने के बाद भारत से ऑस्ट्रेलिया को एक्सपोर्ट डबल हुआ है और दोनों देशों के बिजनेसेस को नए मार्केट एक्सेस इसका लाभ मिला है। अब हम व्यापक सीका समझौता करने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। इन प्रयासों से दोनों देशों की सरकारों ने एक नया रनवे तैयार किया है। अब इस पर इन्वेस्टमेंट और इनोवेशन का विमान उड़ान भरने के लिए तैयार है।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने विनिर्माण, स्वच्छ ऊर्जा, महत्वपूर्ण खनिज, खनन, अवसंरचना, शहरी विकास, विमानन, रसद, उन्नत प्रौद्योगिकी, एआई, खाद्य प्रसंस्करण और डिजिटल अर्थव्यवस्था क्षेत्रों में भारत में उपलब्ध विशाल अवसरों का उल्लेख किया। श्री मोदी ने ऑस्ट्रेलिया के निवेशकों को भारत में दीर्घकालिक निवेश के अवसरों का लाभ उठाने के लिए आमंत्रित किया।
1: भारत आपके फंड्स को सेफ, स्टेबल और सस्टेनेबल ग्रोथ का अवसर देता है। हमारा प्रयास रहेगा कि आपका ट्रस्ट भी बढ़े और आपका कैपिटल भी बढ़े। एजुकेशन और स्किल्स दोनों देशों के बीच नेचुरल सिनर्जी है। डिकिन यूनिवर्सिटी और वुलोंगोंग यूनिवर्सिटी ने किप सिटी में कैंपस खोलकर एक नया अध्याय शुरू किया। यह भारत के प्रति उनके कॉन्फिडेंस का प्रतिबिंब है। हमारा साझा लक्ष्य होना चाहिए कि हम स्टूडेंट मोबिलिटी को टैलेंट पार्टनरशिप में बदले।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मेलबर्न में ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज से बातचीत करेंगे। दोनों नेताओं के बीच व्यापार, रक्षा, महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकी, शिक्षा और जनसंपर्क मजबूत करने पर चर्चा होने की संभावना है। श्री मोदी मेलबर्न में प्रवासी भारतीयों से भी बातचीत करेंगे। श्री मोदी ऑस्ट्रेलिया की 3 दिन की यात्रा पर कल शाम मेलबर्न पहुंचे थे। ऑस्ट्रेलिया में भारत के उच्चायुक्त नागेश सिंह ने कहा है कि एक दशक में श्री मोदी की ऑस्ट्रेलिया की तीसरी यात्रा द्विपक्षीय संबंधों में हुई महत्वपूर्ण प्रगति को दर्शाती है।
2: तीसरा एनुअल लीडर्स समिट भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में इस वर्ष और पिछले सालों में जो आपने देखा कि जो एक पूरे विश्व में एक हल्का सा तनाव है, चाहे युद्ध का है, जो डिस्प्यूट्स हैं, जियोपॉलिटिकल चैलेंजेस हैं, उस संदर्भ में इंडिया ऑस्ट्रेलिया रिलेशनशिप एक स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है हमारी रिलेशनशिप को उस क्षेत्र में जिसको हम लोग इंडो पैसिफिक बोलते हैं।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
1: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के

0: चिकित्सा खर्च में लगभग 2,00,000 करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4555 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। केंद्र सरकार ने किसानों के हितों की रक्षा के लिए तमिलनाडु के किसानों से खोपरा और तोतापुरी आमों की खरीद को मंजूरी दे दी है। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि इससे उत्पादकों को बेहतर मूल्य मिलेगा और उन्हें बाजार में उतार चढ़ाव की कीमतों से राहत मिलेगी। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि स्वीकृत खरीद का कुल MSP मूल्य 1,000 करोड़ रुपए से अधिक है। इसके अलावा बाजार हस्तक्षेप योजना MIS के तहत इस वर्ष तमिलनाडु में 96,000 मीट्रिक टन से अधिक तोतापुरी आमों की खरीद को भी मंजूरी मिल गई है। यह खरीद MIS के तहत की जाएगी, जिसमें बाजार हस्तक्षेप मूल्य 1,000 रुपए प्रति क्विंटल से अधिक निर्धारित किया गया है। अनुपम मिश्र के साथ सकलेन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने किसानों के हितों की रक्षा और उनका विश्वास बहाल करने के लिए तंबाकू कंपनियों को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर तंबाकू की खरीद प्रक्रिया तत्काल शुरू करने का निर्देश दिया है। अमरावती स्थित सचिवालय में अधिकारियों और व्यापारियों के साथ तंबाकू खरीद की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि तंबाकू की कीमत 200 रूपये प्रति किलोग्राम से कम नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कंपनियों से नीलामी प्रक्रिया में तेजी लाने का निर्देश दिया। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में शिक्षकों और गैर शिक्षण कर्मचारियों के लिए नकदी रहित स्वास्थ्य योजना शुरू की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वाराणसी से मुख्यमंत्री शिक्षक नकदी रहित चिकित्सा योजना का शुभारंभ किया, जिसके तहत 15,00,000 से अधिक शिक्षण कर्मचारियों को 5,00,000 रूपये तक का चिकित्सा उपचार मिलेगा। और ब्यौरे के साथ हैं हमारे संवाददाता।
3: इस योजना के तहत राज्य भर के शिक्षकों और उनके परिवारों को 5,00,000 रुपए तक की कैशलेस चिकित्सा सुविधा मिलेगी। प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा से जुड़े लगभग 15,00,000 शिक्षक और गैर शिक्षण कर्मचारी इस योजना से लाभान्वित होंगे। नियमित शिक्षकों के अलावा इस योजना से शिक्षा मित्रों, प्रशिक्षकों, रसोइयों और कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों के पात्र कर्मचारियों को भी लाभ मिलेगा। शिक्षकों और उनके परिवारों को सामाजिक सुरक्षा कवर प्रदान करने के लिए भारतीय स्टेट बैंक के साथ एक समझौता ज्ञापन पर भी हस्ताक्षर किए गए हैं। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने शिक्षकों के स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा की रक्षा करने के अपने वायदे को पूरा किया है। उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा विभाग के कर्मचारियों के लिए ये व्यापक सामाजिक सुरक्षा और बीमा कार्यक्रम देश में अपनी तरह की पहली पहल है। इस योजना के तहत 10,000 रुपए से ज्यादा मासिक वेतन पाने वाले संविदा कर्मचारियों को 30,00,000 रुपए से 80,00,000 रुपए तक का व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा कवर मिलेगा। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली प्रमुख अर्थव्यवस्था बना हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF ने वर्ष 2026 के दौरान इसकी 7% की वृद्धि दर का अनुमान लगाया है। IMF ने यह भी अनुमान जताया है कि अगले वर्ष में भारत की GDP वृद्धि दर कुछ घटकर 6.4% रह सकती है। अमरीका ने ईरान पर फिर हवाई हमले किए हैं। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर होर्मुज जलडमरू मध्य में वाणिज्यिक जहाजों पर हमला करने का आरोप लगाते हुए कहा है कि अमरीकी हमले जवाबी कार्रवाई में किए गए। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर ईरान ने फिर हमले किए तो अमरीका इसका और कड़ा जवाब देगा। मौसम विभाग ने अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, बिहार, पूर्वी राजस्थान, मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल तथा हिमालय के निचले इलाकों, सिक्किम और पश्चिम उत्तर प्रदेश में दिन में तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। उत्तराखंड में भी आज इसी तरह के मौसम की संभावना है। इधर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में रात से ही बारिश हो रही है। दिन में भी शहर में ऐसा ही मौसम रहने का अनुमान है। मौसम विभाग ने उत्तराखंड के देहरादून, हरिद्वार, उधम सिंह नगर, नैनीताल और चंपावत जिलों में अगले 36 घंटों के दौरान तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। हमारी संवाददाता ने बताया कि राज्य में कल रात से ही मूसलाधार बारिश हो रही है। केरलम के 5 उत्तरी जिलों में कहीं कहीं तेज बारिश की संभावना का येलो अलर्ट जारी किया गया है। मलप्पुरम, कोझिकोड, वायनाड, कन्नूर और कासरगोड जिलों में येलो अलर्ट पहले से ही जारी है। इन जिलों में कल रेड और ऑरेंज

0: ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया था। भारत के अर्णव पापरकर ने विंबलडन जूनियर्स 2026 में लड़कों के सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंचकर इतिहास रच दिया है। पिछले 36 वर्षों में सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंचने वाले वे भारत के पहले खिलाड़ी हैं। 18 वर्षीय पापरकर ने प्री क्वार्टर फाइनल में जापान के रियो ताबाता को मात्र 52 मिनट में 6-2, 6-1 से हराया। पापरकर का अगला मुकाबला आज शाम 5 बजे क्वार्टर फाइनल में अमरीका के जॉर्डन ली से होगा। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार।
1: धन्यवाद मुनीश। देश की राजधानी से प्रकाशित सभी हिंदी समाचार पत्रों ने ईरान अमेरिका युद्ध विराम खत्म होने के अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ऐलान और बारिश के चलते देश में प्रभावित जनजीवन के समाचारों को सुर्खियों में जगह दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इंडोनेशिया यात्रा का समाचार भी कई अखबारों ने अपने पहले पन्ने पर प्रमुखता से प्रकाशित किया है। अमर उजाला ने इंडोनेशिया के प्रम्बानन मंदिर में पूजा अर्चना करते प्रधानमंत्री का चित्र सबसे ऊपर छापा है। खबर को शीर्षक दिया है इंडोनेशिया के सबसे बड़े हिंदू मंदिर में मोदी ने की पूजा। वीर अर्जुन ने इस खबर को प्रधानमंत्री के इस बयान के साथ प्रकाशित किया है कि सांस्कृतिक विरासत हमें जोड़ती है। देश बंधु की सुर्खी है इंडोनेशिया के सबसे बड़े शिव मंदिर में पहुंचे मोदी। ऑस्ट्रेलिया में भारतीय समुदाय से स्वागत स्वीकार करते हुए प्रधानमंत्री का चित्र भी कुछ अखबारों ने प्रकाशित किया है। दैनिक जागरण ने अपने संपादकीय में दिल्ली के रोहिणी इलाके में एक निर्माणाधीन इमारत के ढहने के समाचार को देश भर में भवन निर्माण संबंधी अनियमितताओं के मामले से जुड़ी स्थिति का विश्लेषण प्रकाशित किया है। पत्र का कहना है कि नियमों का उल्लंघन कर लोग 5 से 6 मंजिला भवन बना रहे हैं। स्थिति को सुधारने के लिए अधिकारियों की जिम्मेदारी तय होनी चाहिए ताकि ऐसी अप्रिय घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। लोकसत्य ने नौकरी पेशा पेंशन धारकों के लिए खुशखबरी शीर्षक से पीएफ खाते में 8.25% की दर से ब्याज देने की सरकार की घोषणा को प्रकाशित किया है।
0: और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेलबर्न में भारत ऑस्ट्रेलिया सीईओ फोरम को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने कहा अनिश्चितता, सप्लाई चेन में रुकावट और ऊर्जा संकट वाले दौर में भारत और ऑस्ट्रेलिया का भरोसेमंद साझेदार के तौर पर आगे बढ़ना स्वाभाविक और जरूरी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मेलबर्न में ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ वार्ता करेंगे। केंद्र सरकार ने तमिलनाडु के किसानों के हित में खोपरा और तोतापुरी आमों की खरीद को मंजूरी दी है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा युद्ध विराम खत्म होने की घोषणा के बाद अमेरिका ने ईरान पर नए हमले किए और भारत के अर्णव पापरकर ने विंबलडन जूनियर्स 2026 में सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंचकर रचा है इतिहास। इसके साथ ही समाचार प्रभात का अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning. I'm Shagun Chopra. The headlines. Prime Minister Narendra Modi addresses India-Australia CEOs Forum in Melbourne, says it is natural and essential for India and Australia to move forward as trusted partners in a world marked by uncertainty, supply chain disruptions and energy crisis. Prime Minister Modi to also hold talks with his Australian counterpart Anthony Albanese in Melbourne today. Centre approves procurement of Khopra and Totapuri mangoes from farmers in Tamil Nadu to safeguard farmers' interests. Uttar Pradesh government launches cashless health scheme for teachers as well as non-teaching staff in the state. IMF projects India to remain world's fastest growing major economy with 7% growth this year. US launches new strikes on Iran after President Donald Trump said ceasefire is over. And India's Arnav Paparkar creates history by becoming first Indian in 36 years to reach boys singles quarterfinals at Wimbledon Juniors 2026. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi and his Australian counterpart Anthony Albanese participated in the India-Australia CEO Forum in Melbourne this morning. Both leaders also met the leading business leaders from India and Australia. Speaking on the occasion, Prime Minister Modi said the world is currently navigating a period marked by uncertainty, supply chain disruptions and energy crisis. He said that in such times, it is both natural and essential for India and Australia to move forward as natural.

0: and trusted partners. The Prime Minister further said economic cooperation and trade agreement concluded in record time in 2022 has further strengthened the economic ties between the two countries.
1: साल 2022 में रिकॉर्ड समय में किए गए एक्टा समझौते से हमारी आर्थिक साझेदारी और सशक्त हुई है। इसके लागू होने के बाद भारत से ऑस्ट्रेलिया को एक्सपोर्ट डबल हुआ है और दोनों देशों के बिजनेसेस को नए मार्केट एक्सेस इसका लाभ मिला है। अब हम व्यापक सीका समझौता करने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। इन प्रयासों से दोनों देशों की सरकारों ने एक नया रनवे तैयार किया है। अब इस पर इन्वेस्टमेंट और इनोवेशन का विमान उड़ान भरने के लिए तैयार है।
0: Prime Minister Modi also noted the complementarities between the Indian and Australian economies, underlining vast opportunities available in India across a number of sectors.
1: हमारी पार्टनरशिप केवल दोनों राजधानियों या कुछ शहरों तक सीमित नहीं रहनी चाहिए। हमें हमारे राज्यों, छोटे बड़े शहरों, विश्वविद्यालयों, उद्योगों सभी के स्टेक होल्डर्स बनाना होगा। वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया की क्रिटिकल मिनरल स्ट्रेंथ, उसको हम उड़ीसा और गुजरात की मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी के साथ जोड़ सकते हैं। क्वींसलैंड और टेस्मेनिया की क्लीन एनर्जी और एग्रीकल्चर एक्सपर्टीज, पंजाब और तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के रिन्यूएबल कॉरिडोर्स और फूड प्रोसेसिंग इकोसिस्टम को नई गति दे सकते हैं।
0: Mr. Modi invited Australian investors to take advantage of opportunities for long-term investments in the country and also welcomed the growing presence of Australian universities in India.
1: भारत आपके फंड्स को सेफ, स्टेबल और सस्टेनेबल ग्रोथ का अवसर देता है। हमारा प्रयास रहेगा कि आपका ट्रस्ट भी बढ़े और आपका कैपिटल भी बढ़े। एजुकेशन और स्किल्स दोनों देशों के बीच नेचुरल सिनर्जी है। डिकिन यूनिवर्सिटी और वुलोंगोंग यूनिवर्सिटी ने किप सिटी में कैंपस खोलकर एक नया अध्याय शुरू किया। यह भारत के प्रति उनके कॉन्फिडेंस का प्रतिबिंब है। हमारा साझा लक्ष्य होना चाहिए कि हम स्टूडेंट मोबिलिटी को टैलेंट पार्टनरशिप में बदले।
0: Following the CEO's forum, Prime Minister Modi also addressed the Economic Roadmap Business Event, a large gathering of over 200 CEOs and business leaders from both sides. Speaking about natural synergies between India and Australia, he highlighted that shared democratic values, a common vision for the Indo-Pacific, vibrant people-to-people ties and strong political understanding created fertile ground for the business partnership between the two countries to grow and prosper together.
1: लोकतांत्रिक मूल्यों और इंडो पैसिफिक साझा विजन के आधार पर हमारे बीच गहरा स्ट्रेटेजिक कन्वर्जेंस बना है। हम अपनी बिजनेस पार्टनरशिप को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए प्रतिबद्ध है। इस प्रयास में आप सभी की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। मुझे विश्वास है कि आज का ये संवाद नए आइडियाज, नई पार्टनरशिप और नए कमिटमेंट्स को जन्म देगा।
0: Now we go over to our Melbourne correspondent who is sharing more details on the Prime Minister's visit.
2: The India-Australia CEOs Forum marked a decisive shift from parallel diplomatic tracks to an integrated, future-proof economic engine. Prime Minister Modi signaled a new era of decentralized economic diplomacy, calling for direct state-to-state corridors that link Australia's raw resources directly with India's massive clean energy, chip manufacturing and digital infrastructure pipelines. Echoing this vision, Prime Minister Albanese mapped out massive capital commitments, anchored by Australian super's multi-billion dollar investments, unprecedented higher education partnerships and landmark industrial projects like the Perdaman plant. Together, both leaders made it clear that while policy sets the runway, it is a direct synergy of our corporate titans and the unstoppable aspiration of 1 million strong diaspora that will pilot this relationship to its $100 billion target. Suhas Ram, Akashvani News, Melbourne.
0: Moreover, Prime Minister Modi will hold talks with his Australian counterpart Anthony Albanese in Melbourne later today. Discussions between the two leaders are expected to focus on strengthening cooperation in trade, defence, critical technologies, education and people-to-people ties. Mr. Modi arrived in Melbourne yesterday evening on a three-day visit to Australia at the invitation of Australian Prime Minister. PM Modi arrived in Melbourne from Indonesia in the second leg of his three-nation tour. The Prime Minister thanked the Indian community in Melbourne for the warm welcome accorded to him, describing the reception as truly unforgettable.

प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं नैन्सी कुमारी। पहले मुख्य समाचार। नई दिल्ली में दो दिवसीय राष्ट्रीय हितधारक परामर्श के दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने वैश्विक कंपनियों के साथ की बैठक, रणनीतिक साझेदारी और विभिन्न तकनीकी प्रस्तावों पर चर्चा। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने रांची में इटकी टीबी सैनिटोरियम का किया निरीक्षण, आधुनिक स्वास्थ्य सुविधाएं बहाल करने और पुरानी पहचान लौटाने का दिया निर्देश। बोकारो वन भूमि घोटाले में सीआईडी की बड़ी कार्रवाई, मुख्य आरोपी शैलेश कुमार सिंह पटना से गिरफ्तार, रांची की अदालत ने भेजा न्यायिक हिरासत में। खूंटी में 5 वर्षों से फरार पीएलएफआई उग्रवादी और सिमडेगा में कोरोना काल के 8 वारंटी गिरफ्तार, भेजे गए जेल। और रांची समेत राज्य के अधिकांश जिलों में आज छाए रहेंगे बादल, गरज चमक के साथ वज्रपात और बारिश की संभावना, मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने नई दिल्ली में विजन 2050 पर आयोजित दो दिवसीय राष्ट्रीय हितधारक परामर्श

0: के दौरान वैश्विक प्रौद्योगिकी कंपनियों के साथ एक महत्वपूर्ण बिजनेस टू गवर्नमेंट यानी B2G बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, ओरेकल, IBM और AWS जैसी दुनिया की शीर्ष तकनीकी कंपनियों के प्रतिनिधि शामिल हुए। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस अवसर पर कहा कि राज्य सरकार झारखंड को नवाचार आधारित प्रौद्योगिकी विकास का अग्रणी राज्य बनाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।
1: आप सबको मालूम है कि वर्तमान में परिवर्तन का दौर है, कई चीजों पर टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जा रहा। चूंकि हमारे राज्य में मुख्य रूप से माइनिंग आधारित अर्थव्यवस्था में रहे, आज माइनिंग से ऊपर निकलने का, माइनिंग से बाहर निकलकर नॉलेज बेस्ड विकास में कदम रखने का हम लोगों ने निर्णय लिया है।
0: रक्षा राज्य मंत्री और रांची के सांसद संजय सेठ ने रांची के इटकी स्थित ऐतिहासिक TB सेनिटोरियम का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने अस्पताल की स्वास्थ्य सुविधाओं, आधारभूत संरचना और मरीजों को मिल रहे उपचार की विस्तृत समीक्षा की। संजय सेठ ने सेनिटोरियम के अधिकारियों के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक की और संस्थान की वर्तमान आवश्यकताओं व संसाधनों में सुधार को लेकर जरूरी दिशा निर्देश दिए। हजारीबाग के चौपारण स्थित बिरहोर टोला में केंद्र सरकार के आदि कर्मयोगी अभियान के तहत विशेष शिविर का आयोजन किया गया। इस मुख्य उद्देश्य आदिम बिरहोर समुदाय, अनुसूचित जनजाति और वंचित परिवारों तक सरकारी योजनाओं का सीधा लाभ पहुंचाना है। शिविर में ऑन स्पॉट आवेदन सहायता देकर अंतिम व्यक्ति के सामाजिक आर्थिक सशक्तिकरण का प्रयास किया गया।
2: अपना बच्चा का आधार कार्ड बनवाने आए थे और अपना स्वास्थ्य जांच करवाने, अपना BP, शुगर, हेमोग्लोबिन, उसी का मतलब दवा ली।
3: हम यहाँ पे बच्चा का आधार कार्ड बनवाने के लिए आए हैं। फिर ये जॉब कार्ड में नाम है कि नहीं है उसको जांच करने के लिए आए हैं। जॉब कार्ड से बहुत फायदा है भी।
0: केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि पिछले कुछ दिनों में देश के विभिन्न हिस्सों में अच्छी बारिश हुई है, जिससे वर्षा की कमी वाले जिलों की संख्या 262 से घटकर 178 रह गई है।
4: जुलाई की अच्छी बारिश से बोनी की संभावनाएं बढ़ गई है। अब बोनी और तेजी से होगी। कल तक 350,85,000 हेक्टर में बोनी हुई है। मानसून में देरी के कारण तुअर, सोयाबीन और कपास पर थोड़ा प्रतिकूल बोनी पर प्रभाव पड़ा है। अब किसानों को यह सलाह दी जा रही है कि इनकी जगह मक्का, बाजरा और मूंग जैसी फसल जो कम समय में आ जाती है, उनकी बुआई को प्राथमिकता दें।
0: झारखंड CID ने बोकारो के तेतुलिया मौजा में से 103 एकड़ संरक्षित वन भूमि की अवैध खरीद बिक्री के मामले में मुख्य आरोपी शैलेश कुमार सिंह को पटना से गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी को रांची लाया गया, जहां अदालत में पेशी के बाद उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। झारखंड पुलिस मुख्यालय ने 16 से 25 जुलाई तक आयोजित होने वाली भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा और बहुड़ा यात्रा के लिए कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के निर्देश दिए हैं। सभी जिलों के उपायुक्तों और पुलिस अधीक्षकों को संवेदनशील क्षेत्रों में अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात करने को कहा गया है। सुरक्षा के लिए CCTV, ड्रोन निगरानी और सोशल मीडिया मॉनिटरिंग की जाएगी। आपातकालीन सेवाएं भी मुस्तैद रहेंगी। अफवाह फैलाने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। आकाशवाणी के ताज़ा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताज़ा समाचार एक्स हैंडल @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIRNews Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। खूंटी पुलिस ने 5 वर्षों से फरार PLFI उग्रवादी तोपाल मुंडा को मुरहू से गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। वह अपनी पहचान छिपाकर सामान्य जीवन जी रहा था और ड्राइवर का काम कर रहा था। उसके खिलाफ पुलिस मुठभेड़, फायरिंग और 17 CLA एक्ट सहित कई गंभीर मामले दर्ज हैं। सिमडेगा की पाकड़ टाड़ थाना पुलिस ने कोरोना काल के आपदा प्रबंधन अधिनियम उल्लंघन मामले में पिछले 6 वर्षों से फरार चल रहे 8 वारंटियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। SDPO धर्मदेव पासवान के अनुसार पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर चलाए गए विशेष अभियान के तहत यह सफलता मिली है।

0: रामगढ़ के भुरकुंडा में पुलिस ने पंचायत भवन के पीछे चल रही मिनी गन फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। छापेमारी के दौरान भारी मात्रा में अवैध हथियार बनाने के उपकरण और अर्धनिर्मित हथियार बरामद किए गए हैं। पुलिस अधीक्षक मुकेश लुनायत ने बताया कि इस अवैध नेटवर्क से जुड़े लोगों की पहचान करने और कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए सघन जांच कर रही है।
1: भुरकुंडा उप अंतर्गत अवैध हथियार के निर्माण और उसकी तस्करी के संदर्भ में प्राप्त गुप्त सूचना के आधार पर विगत रात्रि दिनेश विश्वकर्मा के घर पर छापामारी किया गया। छापामारी के क्रम में अपराधकर्मी दिनेश विश्वकर्मा के घर पर अवैध हथियार निर्माण की इकाई का पर्दाफाश हुआ है और घर की विधिवत तलाशी के क्रम में अवैध हथियार निर्माण में प्रयुक्त होने वाली कई सामग्रियां सबको बरामद किया गया है।
0: गोड्डा के कारगिल चौक स्थित बंगाल ज्वेलर्स में कल शाम 3 नकाबपोश अपराधियों ने 6 राउंड फायरिंग कर करीब 30 लाख रुपए के आभूषण और नकदी लूट ली। घटना के विरोध में पूर्व विधायक अमित मंडल और स्थानीय स्वर्णकारों ने आज गोड्डा बाजार बंद रखने का आह्वान किया है।
2: 7 बजे शाम में अगर इस तरह की घटना घटेगी तो मुझे लगता है कि इससे बड़ा दुर्भाग्य गोड्डा के लिए और कुछ नहीं हो सकता। मैं पुलिस से भी मांग करता हूं, स्थानीय जनप्रतिनिधि से भी मांग करता हूं कि त्वरित गति से जो भी कल्प्रिट है, दोषी है, उसको गिरफ्तारी हो। और पुलिस प्रशासन क्या काम कर रही है, यहाँ के जनप्रतिनिधि क्या काम कर रहे हैं, ये काफ़ी चिंता का विषय दिखने को मिल रहा है।
0: राज्य की पुलिस महानिदेशक आज रांची स्थित क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय में आयोजित पासपोर्ट सेवा दिवस के विशेष कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगी। इस गरिमामयी समारोह में पासपोर्ट सेवाओं को सुगम बनाने और सुरक्षा सत्यापन प्रक्रियाओं में तेजी लाने से जुड़े प्रयासों पर चर्चा होगी। रांची सहित राज्य के अधिकांश जिलों में आज बादल छाए रहेंगे और कई हिस्सों में हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश की संभावना है। मौसम केंद्र ने गरज चमक के साथ वज्रपात का येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 4 दिन मॉनसून थोड़ा कमजोर रहेगा। और अब अखबारों की सुर्खियां। रांची से प्रकाशित सभी प्रमुख अखबारों ने नई दिल्ली में विजन 2050 पर झारखंड की ओर से आयोजित 2 दिवसीय राष्ट्रीय हितधारक परामर्श की खबर को पहले पन्ने पर प्रकाशित किया है। दैनिक भास्कर ने मुख्यमंत्री के हवाले से लिखा है, माइंड से माइंड्स की ओर बढ़ेगा झारखंड, एआई पर फोकस। हिंदुस्तान के शब्द हैं, रांची संघ कार्यालय पर हमले में देश भर में एनआईए छापे। प्रभात खबर लिखता है, वित्त मंत्री दिल्ली में मौजूद लेकिन सरकार के कार्यक्रम से रखी दूरी। दैनिक जागरण की सुर्खी है, जमीन माफिया को लाभ दिलाने के लिए डीसी की सही रिपोर्ट को पलट दिया था कमिश्नर ने। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। नई दिल्ली में 2 दिवसीय राष्ट्रीय हितधारक परामर्श के दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने वैश्विक कंपनियों के साथ की बैठक, रणनीतिक साझेदारी और विभिन्न तकनीकी प्रस्तावों पर चर्चा। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने रांची में इटकी टीबी सैनिटोरियम का किया निरीक्षण, आधुनिक स्वास्थ्य सुविधाएं बहाल करने और पुरानी पहचान लौटाने का दिया निर्देश। बोकारो वन भूमि घोटाले में सीआईडी की बड़ी कार्रवाई, मुख्य आरोपी शैलेश कुमार सिंह पटना से गिरफ्तार, रांची की अदालत ने भेजा न्यायिक हिरासत में। खूंटी में 5 वर्षों से फरार पीएलएफआई उग्रवादी और सिमडेगा में कोरोना काल के 8 वारंटी गिरफ्तार, भेजे गए जेल। और रांची समेत राज्य के अधिकांश जिलों में आज छाए रहेंगे बादल, गरज चमक के साथ वज्रपात और बारिश की संभावना, मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 10 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

घर घर तक पहुंचाएं आपका विज्ञापन। आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न चैनल देश के किसी भी कोने में विज्ञापन देने के लिए प्रसार भारती के मार्केटिंग प्रभाग से संपर्क कीजिए।

अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के रांची केंद्र से प्रसारित प्रादेशिक समाचार। ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है, FM के 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर।

आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र FM के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर और अब हम हाजिर हैं फिल्म संगीत लेकर। गीतों भरे इस सफर में स्वागत है आपका। श्रोताओं, जिंदगी में कुछ पल, कुछ चेहरे और कुछ मौसम ऐसे होते हैं जिनका इंतजार दिल बरसों तक करता है, और जब वो लंबे अरसे के बाद लौट कर आते हैं तो दिल सिर्फ एक ही बात कहता है, आजा खो जाए ख्वाबों ख्यालों में।

इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में कभी कभी दिल करता है कि सब कुछ छोड़कर कहीं दूर निकल जाएं, कोई ऐसी जगह जहां सुकून हो, ताजी हवा हो और कोई अपना साथ हो। आज का मौसम भी कुछ ऐसा ही इशारा कर रहा है।

कहते हैं ना, जब मौसम में ऐसी बेअंतहा मोहब्बत घुली हो तो दिल काबू में कहाँ रहता है। दिल तो बस मचलने का बहाना ढूंढता है।

0: श्रोताओं, आज के फिल्म संगीत के कार्यक्रम में आपने सुना आक्रमण, दूसरा आदमी और धरती फिल्म के गाने। आवाज़ें लता मंगेशकर, किशोर कुमार और मोहम्मद रफ़ी साहब की थी। और इस गाने के साथ ही हमारा आज का फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से बोल रहे हैं, FM के 102.4 MHz पर। अब आप सुनेंगे हिंदी में समाचार आकाशवाणी दिल्ली से।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने आज मेलबर्न में उच्च स्तरीय भारत ऑस्ट्रेलिया सीईओ फोरम और आर्थिक कार्य योजना कार्यक्रम को संबोधित किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत ऑस्ट्रेलिया साझेदारी एक परिवर्तनकारी उच्च तकनीकी युग में प्रवेश कर चुकी है। उन्होंने वर्ष 2030 तक 100 अरब अमरीकी डॉलर के द्विपक्षीय व्यापार को गति देने के लिए एक दूरदर्शी कार्य योजना की रूपरेखा प्रस्तुत की। प्रधानमंत्री ने इस बात पर बल दिया कि वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधानों के बीच भारत और ऑस्ट्रेलिया स्थिरता के स्वाभाविक विश्वसनीय स्तंभों के रूप में एक साथ खड़े हैं। उन्होंने कहा कि वर्ष 2022 में दोनों देशों के बीच संपन्न हुए व्यापार समझौते से आर्थिक संबंधों में और मजबूती आई है।
2: साल 2022 में रिकॉर्ड समय में किए गए एक्टा समझौते से हमारी आर्थिक साझेदारी और सशक्त हुई है। इसके लागू होने के बाद भारत से ऑस्ट्रेलिया को एक्सपोर्ट डबल हुआ है और दोनों देशों के बिजनेसेस को नए मार्केट एक्सेस इसका लाभ मिला है।
1: ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने भारत ऑस्ट्रेलिया गठबंधन के ऐतिहासिक परिवर्तन का उल्लेख किया, जो समानांतर यात्राओं से एकीकृत भविष्य के लिए तैयार साझेदारी में परिवर्तित हुआ है। हमारे संवाददाता ने बताया कि श्री अल्बनीज ने इस बात पर जोर दिया कि भारत विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की राह पर मजबूती से अग्रसर है।
3: भारत और ऑस्ट्रेलिया ने आर्थिक साझेदारी को नई दिशा देने के लिए व्यापार, निवेश और औद्योगिक सहयोग को और मजबूत करने पर जोर दिया है। मेलबर्न में आयोजित भारत ऑस्ट्रेलिया सीईओ फोरम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि दोनों देशों के बीच आर्थिक सहयोग अब पारंपरिक कूटनीतिक ढांचे से आगे बढ़कर भविष्य की आवश्यकताओं के अनुरूप विकसित हो रहा है। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने कहा कि दोनों देशों के बीच निवेश और औद्योगिक

0: के सहयोग लगातार विस्तार पा रहा है। मेलबर्न से सुहास राम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से फरहत नाज।
1: केंद्र सरकार ने किसानों के हितों की रक्षा के लिए तमिलनाडु के किसानों से खोपरा और तोतापुरी आमों की खरीद को मंजूरी दे दी है। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि इससे उत्पादकों को बेहतर मूल्य मिलेगा और उन्हें बाजार में उतार चढ़ाव की कीमतों से राहत भी मिलेगी। इसके अंतर्गत राज्य में 87,226 मीट्रिक टन से अधिक खोपरा की खरीद की जाएगी। इसके अलावा बाजार हस्तक्षेप योजना के तहत इस वर्ष तमिलनाडु में 96,000 मीट्रिक टन से अधिक तोतापुरी आमों की खरीद को भी मंजूरी मिल गई है। उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री ने कल वाराणसी में राज्य के शिक्षकों और गैर शिक्षण कर्मचारियों के लिए नकदी रहित स्वास्थ्य योजना का शुभारंभ किया। इस योजना के तहत 15 लाख से अधिक शिक्षण कर्मचारियों को 5 लाख रुपए तक का चिकित्सा उपचार मिलेगा। प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा से जुड़े लगभग 15 लाख शिक्षक और गैर शिक्षण कर्मचारी इस योजना से लाभान्वित होंगे। नियमित शिक्षकों के अलावा इस योजना से शिक्षा मित्रों, प्रशिक्षकों, रसोइयों और कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों के पात्र कर्मचारियों को भी लाभ मिलेगा। अमेरिका ने ईरान पर फिर हवाई हमले किए हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर होर्मुज जलडमरू मध्य में वाणिज्यिक जहाजों पर हमला करने का आरोप लगाते हुए कहा है कि अमरीकी हमले जवाबी कार्रवाई में किए गए। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर ईरान ने फिर हमले किए तो अमरीका इसका और कड़ा जवाब देगा। मौसम विभाग ने अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, बिहार, पूर्वी राजस्थान, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल में हिमालय के निचले इलाकों, सिक्किम और पश्चिम उत्तर प्रदेश में दिन में तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। कर्नाटक के तटीय भाग, पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल में गंगा के मैदानी इलाकों, गुजरात, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में भी दिन में तेज बारिश की संभावना है। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की T20 श्रृंखला का चौथा मुकाबला आज ब्रिस्टल के काउंटी ग्राउंड में खेला जाएगा। भारतीय समय के अनुसार ये मैच रात 10 बजे से शुरू होगा। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित हिंदी में समाचार। ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। थोड़ी देर में हम हाजिर होते हैं सुरंजना लेकर।

0: घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी। और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
1: नमस्कार जमशेदपुर, नमस्कार जमशेदपुर का एक अलग अंदाज,
2: ज्ञान विज्ञान,
3: इतिहास के पन्नों से,
2: सेहत और बॉलीवुड की बातें,
1: मौसम का मिजाज,
2: अपने शहर की खबरें,
3: बातों मुलाकातों के साथ
1: सुरीला मनोरंजन
2: और भी बहुत कुछ।
1: आप सुनते हैं कार्यक्रम नमस्कार जमशेदपुर में दिन के 11:05 से 12 तक
3: आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से।
1: नमस्कार जमशेदपुर।
4: हेलो मन भावन, आप सुनेंगे नए अंदाज में मेरे यानी निमिषा के साथ। प्रत्येक रविवार दिन के 11 आकाशवाणी जमशेदपुर के विविध भारती केंद्र से 100.8 MHz पर। आपके फोन कॉल्स की रिकॉर्डिंग होगी प्रत्येक बुधवार दोपहर 12 से 12:30।

ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर और अब हम हाजिर हैं सुरंजना लेकर। तो आज के कार्यक्रम सुरंजना में आप सुनेंगे एक ऐसे महान गायक को जिनकी आवाज़ में पंजाब की मिट्टी की खनक और भारतीयता का गौरव झलकता है। जी हाँ, आज हम आपको सुनवा रहे हैं बुलंद आवाज़ के मालिक महेंद्र कपूर जी को।

महेंद्र कपूर ने रोमांटिक अंदाज में मोहब्बत को आवाज़ दी तो हर दिल धड़क उठा। अब सुनवाते हैं एक ऐसा गीत जो आज भी टूटे दिलों का सहारा है।

दोस्तों, जब भी भारतीय सिनेमा के सुनहरे दौर के रोमांटिक गीतों का जिक्र होता है तो एक गाना ऐसा है जो खुले आसमान और बेपनाह मोहब्बत की याद दिलाता है। आइए सुनवाते हैं मखमली आवाज़ से अमर बनाने वाले फनकार महेंद्र कपूर का गाया ये गाना।

दोस्तों, कभी कभी मोहब्बत एक ऐसा साया बन जाती है जो दूर रहकर भी महबूब की हिफाजत करता है, जहां कोई शर्त नहीं होती, कोई शिकायत भी नहीं होती, बस एक दुआ होती है। जब भी बिना किसी शर्त वाली सच्ची मोहब्बत का जिक्र होता है तो रूह से एक ही आवाज़ गूंजने लगती है, जिसमें दर्द भी है और एक अजीब सा सुकून भी। तो आइए सुनाते हैं महेंद्र कपूर का गाया ये गाना।

आज के कार्यक्रम सुरंजना में श्रोताओं, आपने जिन फिल्मों के गाने सुने वो फिल्में थी गुमराह, हमराज और ये रात फिर ना आएगी। गीतकार थे साहिर लुधियानवी और एस डी बर्मन। संगीत निर्देशन था रवि और ओपी नैयर का। आज के कार्यक्रम सुरंजना में आप सुन रहे थे महेंद्र कपूर को।

0: ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है, FM के 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। थोड़ी ही देर में हम हाजिर होते हैं शास्त्रीय संगीत लेकर।
1: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
2: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
1: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
2: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
1: डायल कीजिए 8700014242।
2: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
3: मन की बात, प्रधानमंत्री आकाशवाणी पर।
4: मेरी मन की बात के संबंध में अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो आप मन की बात आकाशवाणी संसद मार्ग नई दिल्ली, अगर चिट्ठी भी भेज देंगे और कुछ सुझाव देंगे वो जरूर मुझ तक पहुंच जाएगा और मैं जरूर उसको गंभीरता से लूंगा।
3: यदि आप माननीय प्रधानमंत्री को मन की बात के लिए कोई सुझाव देना चाहते हैं तो पता नोट करें, मन की बात आकाशवाणी संसद मार्ग नई दिल्ली 110001।
4: मैं आपको निमंत्रण देता हूँ, मेरे मन की बात के लिए आपके मन की बात भी जुड़नी चाहिए।
0: ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है, FM के 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत। शास्त्रीय संगीत के इस कार्यक्रम में श्रोताओं, आज आप सुनेंगे ख्याल गायन राग रामकली पर आधारित DB पलुस्कर से।

अभी आपने सुना राम कली पर आधारित ख्याल गायन डीबी पलुस्कर से। आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से हमारे श्रोता सुन रहे हैं शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम। अब आइए सुनवाते हैं ये भजन डीबी पलुस्कर के स्वर में।

अभी आप सुन रहे थे डीवी पलुस्कर से ये भजन, और इसी के साथ हमारा आज का शास्त्रीय संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से बोल रहे हैं, एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर। अब आप सुनेंगे आकाशवाणी दिल्ली से प्रसारित समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने आज मेलबर्न में भारत ऑस्ट्रेलिया मुख्य कार्यकारी अधिकारी मंच और आर्थिक कार्य योजना कार्यक्रम को संबोधित किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत ऑस्ट्रेलिया साझेदारी एक परिवर्तनकारी उच्च तकनीकी युग में पहुंच गई है। उन्होंने वर्ष 2030 तक 100 अरब डॉलर के द्विपक्षीय व्यापार को गति देने के लिए एक दूरदर्शी कार्य योजना प्रस्तुत की।
1: हम भारत में हाइड्रो प्रोजेक्ट्स, ग्रीन हाइड्रोजन, सोलर मॉड्यूल्स और विंड मिल्स के लिए मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम तैयार कर रहे हैं। भारत ने 2030 तक 500 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी और 2070 तक नेट जीरो का लक्ष्य रखा। हमने 2047 तक 100 गीगावाट न्यूक्लियर एनर्जी का लक्ष्य रखा।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधानों के बीच भारत और ऑस्ट्रेलिया स्थिरता के स्वाभाविक और विश्वसनीय स्तंभों के रूप में एक साथ हैं। उन्होंने कहा कि वर्ष 2022 में दोनों देशों के बीच संपन्न हुए व्यापार समझौते से आर्थिक संबंधों में मजबूती आई है।
1: साल 2022 में रिकॉर्ड समय में किए गए एक्टा समझौते से हमारी आर्थिक साझेदारी और सशक्त हुई है। इसके लागू होने के बाद भारत से ऑस्ट्रेलिया को एक्सपोर्ट डबल हुआ है और दोनों देशों के बिजनेसेस को नए मार्केट एक्सेस इसका लाभ मिला है।
0: ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने भारत ऑस्ट्रेलिया साझेदारी के ऐतिहासिक परिवर्तन का उल्लेख किया। हमारे संवाददाता ने बताया कि श्री अल्बनीज ने कहा कि भारत विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की राह पर मजबूती से अग्रसर है।
2: भारत और ऑस्ट्रेलिया ने आर्थिक साझेदारी को नई दिशा देने के लिए व्यापार, निवेश और औद्योगिक सहयोग को और मजबूत करने पर जोर दिया है। मेलबर्न में आयोजित भारत ऑस्ट्रेलिया सीईओ फोरम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि दोनों देशों के बीच आर्थिक सहयोग अब पारंपरिक कूटनीतिक ढांचे से आगे बढ़कर भविष्य की आवश्यकताओं के अनुरूप विकसित हो रहा है। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने कहा कि दोनों देशों के बीच निवेश और औद्योगिक सहयोग लगातार विस्तार पा रहा है। मेलबर्न से सुहास राम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से फरहत नाज।
0: ऑस्ट्रेलिया सुपर के 500 मिलियन ऑस्ट्रेलियाई डॉलर के निवेश का भारत ने स्वागत किया है। मेलबर्न में कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी पॉल श्वेडर ने आज मेलबर्न में इसकी घोषणा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि निवेश भारत के विकास पथ पर दुनिया भर के विश्वास को

0: दर्शाता है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कल वाराणसी में राज्य के शिक्षकों और गैर शिक्षक कर्मचारियों के लिए नकदी रहित स्वास्थ्य योजना का शुभारंभ किया। इस योजना के अंतर्गत 15 लाख से अधिक शिक्षण कर्मचारियों को 5 लाख रुपए तक का निःशुल्क चिकित्सा उपचार मिलेगा। शिक्षकों और उनके परिवारों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए भारतीय स्टेट बैंक के साथ एक समझौते पर भी हस्ताक्षर किए गए। भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली प्रमुख अर्थव्यवस्था बना हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने वर्ष 2026 के दौरान इसके 7% की वृद्धि दर का अनुमान लगाया है। गृह मंत्री अमित शाह ने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के स्थापना दिवस पर परिषद के सभी कार्यकर्ताओं को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि स्वामी विवेकानंद के आदर्शों का अनुसरण करते हुए ये संगठन विद्यार्थियों को संगठित करने और युवाओं में देशभक्ति की भावना का प्रसार करने का कार्य कर रहा है। दिल्ली के मुख्यमंत्री कार्यालय ने कहा है कि दिल्ली की सभी मुख्य सड़कों पर जल भराव की स्थिति नियंत्रण में है। मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद सभी संबंधित एजेंसियां अलर्ट पर हैं। मौसम विभाग ने अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, बिहार, पूर्वी राजस्थान, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल में हिमालय के निचले इलाकों, सिक्किम और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में दिन में तेज वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। भारत के अर्णव पापरकर ने विंबलडन जूनियर्स 2026 में लड़कों के सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंचकर इतिहास रच दिया है। पिछले 36 वर्ष में सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंचने वाले वे भारत के पहले खिलाड़ी हैं। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की T20 क्रिकेट श्रृंखला का चौथा मैच आज ब्रिस्टल के काउंटी ग्राउंड में खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Sarabjit Kaur. Prime Minister Narendra Modi and his Australian counterpart Anthony Albanese participated in the India-Australia CEO Forum in Melbourne this morning. Both leaders also met the leading business leaders from India and Australia. Speaking on the occasion, Prime Minister Modi said, "The world is currently navigating a period marked by uncertainty, supply chain disruptions, and an energy crisis." He said that in such times, it is both natural and essential for India and Australia to move forward as natural and trusted partners. Following the CEO's forum, Prime Minister Modi also addressed the Economic Roadmap Business Event, a larger gathering of over 200 CEOs and business leaders from both sides.
2: लोकतांत्रिक मूल्यों और इंडो पैसिफिक साझा विजन के आधार पर हमारे बीच गहरा स्ट्रेटेजिक कन्वर्जेंस बना है। हम अपनी बिजनेस पार्टनरशिप को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए प्रतिबद्ध है। इस प्रयास में आप सभी की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। मुझे विश्वास है कि आज का ये संवाद नए आइडियाज, नई पार्टनरशिप और नए कमिटमेंट्स को जन्म देगा।
1: Prime Minister Modi will hold talks with his Australian counterpart Anthony Albanese in Melbourne today. Discussions between the two leaders are expected to focus on strengthening cooperation in trade, defence, critical technologies, education and people-to-people ties. Mr. Modi arrived in Melbourne last evening on a three-day visit to Australia at the invitation of Australian Prime Minister. PM Modi arrived in Melbourne from Indonesia in the second leg of his three-nation tour. India welcomed the $500 million Australian dollar investment from Australian Super announced by their Chief Executive Officer Paul Schroeder this morning in Melbourne. In a social media post, Prime Minister Narendra Modi said that this is another glimpse of the global confidence in India's growth and reform trajectory. He added it also reflects the immense opportunities that India's dynamic economy offers to global investors. Centre has approved the procurement of copra and totapuri mangoes from farmers in Tamil Nadu to safeguard farmers' interests. Union Agriculture and Farmers Welfare Ministry said this will ensure better price realisation for producers and protect them from distressed sales caused by market fluctuations. Uttar Pradesh government has launched the cashless health scheme for teachers as well as non-teaching staff in the state. Chief Minister Yogi Adityanath launched the Chief Minister

0: Doctors, Teachers Cashless Medical Scheme from Varanasi, which will offer medical coverage of up to 5 lakh rupees to more than 15 lakh teaching staff. US launched another round of airstrikes on Iran after President Donald Trump said Iran's latest attacks had effectively ended the ceasefire. President Donald Trump also accused Iran of attacking commercial ships in the Strait of Hormuz, said the latest US strikes were carried out in retaliation. The India Meteorological Department, IMD, has issued an orange alert for heavy to very heavy rainfall over Arunachal Pradesh, Assam, Meghalaya, Bihar, East Rajasthan, Madhya Pradesh, Sub-Himalayan West Bengal, Sikkim and West Uttar Pradesh during the day. Meanwhile, moderate rainfall lashed several parts of the national capital this morning, bringing fresh weather and much-needed relief to residents. The waterlogging situation on all major roads in Delhi is under control. The Delhi Chief Minister's Office, CMO, said that all concerned agencies are on alert following the directions of Chief Minister Rekha Gupta. It said the Chief Minister has reviewed the situation with officials. The CMO said that the teams of the Delhi Jal Board, Public Works Department and the Municipal Corporation are on the ground and prepared to deal with any situation. India's Arnav Paparkar created history by becoming the first Indian in 36 years to reach the boys' singles quarter-finals at the Wimbledon Juniors 2026. The 18-year-old Paparkar defeated Japan's Rio in the pre-quarter-finals. He will next face either Jordan Lee of the United States in the quarter-finals today. And that is the end of this news bulletin.
1: नमस्कार आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं मुनीश शर्मा मुख्य समाचार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेलबर्न में भारत ऑस्ट्रेलिया सीईओ फोरम को संबोधित किया वैश्विक अनिश्चितता आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान और ऊर्जा संकट के बीच भारत ऑस्ट्रेलिया संबंधों को मजबूत करने पर जोर दिया प्रधानमंत्री मोदी आज मेलबर्न में ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ वार्ता करेंगे पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में प्रदर्शनकारियों का आज विशाल और अंतिम विरोध प्रदर्शन सरकार को मांगे मनवाने के लिए 48 घंटे का समय दिया राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के संघर्ष विराम को समाप्त किए जाने की घोषणा के बाद अमेरिका ने ईरान पर नए हमले किए और भारत के अर्णव पापरकर 36 वर्षों में विंबलडन जूनियर्स 2026 में एकल क्वार्टर फाइनल में पहुंचने वाले पहले भारतीय बने और अब समाचार विस्तार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने आज मेलबर्न में उच्च स्तरीय भारत ऑस्ट्रेलिया सीईओ फोरम और आर्थिक कार्य योजना कार्यक्रम को संबोधित किया इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत ऑस्ट्रेलिया साझेदारी एक परिवर्तनकारी उच्च तकनीकी युग में प्रवेश कर चुकी है उन्होंने वर्ष 2030 तक 100 अरब अमरीकी डॉलर के द्विपक्षीय व्यापार को गति देने के लिए एक दूरदर्शी कार्य योजना की रूपरेखा प्रस्तुत की उन्होंने वैश्विक अनिश्चितता आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान और ऊर्जा संकट के बीच भारत ऑस्ट्रेलिया संबंधों को और मजबूत करने पर जोर दिया प्रधानमंत्री ने इस बात पर बल दिया कि वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधानों के बीच भारत और ऑस्ट्रेलिया स्थिरता के स्वाभाविक विश्वसनीय स्तंभों के रूप में एक साथ खड़े हैं उन्होंने कहा कि वर्ष 2022 में दोनों देशों के बीच संपन्न हुए व्यापार समझौते से आर्थिक संबंधों में मजबूती आई है
2: साल 2022 में रिकॉर्ड समय में किए गए एक्टा समझौते से हमारी आर्थिक साझेदारी और सशक्त हुई है इसके लागू होने के बाद भारत से ऑस्ट्रेलिया को एक्सपोर्ट डबल हुआ है और दोनों देशों के बिजनेसेस को नए मार्केट एक्सेस इसका लाभ मिला है
1: उन्होंने भविष्य के लिए तैयार सीमाओं पर गहन वाणिज्यिक सहयोग का आह्वान किया प्रमुख

0: उद्योगों का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने भारत के अभूतपूर्व ढांचागत विस्तार के बारे में भी जानकारी दी।
1: भारत में पोर्ट, एयरपोर्ट, रोड, रेलवे और अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर में ऑस्ट्रेलिया के लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए अनेक अनेक संभावनाएं हैं। आज भारत में नेशनल हाईवे लगभग 34 किलोमीटर प्रतिदिन की गति से बढ़ रहे हैं। हर दिन 8 किलोमीटर से अधिक रेलवे ट्रैक्स लगाए जा रहे हैं। यह स्केल, स्पीड और स्टेबिलिटी तीनों का संगम है।
0: श्री मोदी ने कहा कि उच्च तकनीकी क्षेत्र में 10 अरब अमरीकी डॉलर के सरकारी प्रोत्साहन कार्यक्रम के माध्यम से सेमीकंडक्टर, एआई क्वांटम कंप्यूटिंग, डेटा सेंटर और डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना में प्रगति संभव है।
1: एआई मिशन, क्वांटम मिशन और सेमीकंडक्टर प्रोग्राम के अंतर्गत भारत सरकार ने $10 बिलियन से ज्यादा का सपोर्ट दिया। हम डेटा सेंटर, एआई, क्वांटम, सेमीकंडक्टर और डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में मिलकर ग्लोबल सॉल्यूशंस तैयार कर सकते हैं।
0: ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने ऑस्ट्रेलिया भारत गठबंधन के ऐतिहासिक परिवर्तन का उल्लेख किया, जो समानांतर यात्राओं से एकीकृत भविष्य के लिए साझेदारी में परिवर्तित हुआ है। हमारे संवाददाता ने बताया कि श्री अल्बनीज ने इस बात पर जोर दिया कि भारत विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की राह पर मजबूती से अग्रसर है।
2: भारत और ऑस्ट्रेलिया ने आर्थिक साझेदारी को नई दिशा देने के लिए व्यापार, निवेश और औद्योगिक सहयोग को और मजबूत करने पर जोर दिया है। मेलबर्न में आयोजित भारत ऑस्ट्रेलिया सीईओ फोरम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि दोनों देशों के बीच आर्थिक सहयोग अब पारंपरिक कूटनीतिक ढांचे से आगे बढ़कर भविष्य की आवश्यकताओं के अनुरूप विकसित हो रहा है। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के प्राकृतिक संसाधनों को भारत की स्वच्छ ऊर्जा, सेमीकंडक्टर विनिर्माण और डिजिटल अवसंरचना से जोड़ने के लिए राज्यों के बीच प्रत्यक्ष आर्थिक सहयोग बढ़ाने का आह्वान किया। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने कहा कि दोनों देशों के बीच निवेश और औद्योगिक सहयोग लगातार विस्तार पा रहा है। दोनों नेताओं ने नीतिगत सहयोग के साथ साथ उद्योग जगत की सक्रिय भागीदारी और ऑस्ट्रेलिया में रह रहे 10 लाख से अधिक भारतीय मूल के लोगों की भूमिका भारत ऑस्ट्रेलिया आर्थिक संबंधों को और मजबूत बनाने तथा द्विपक्षीय व्यापार को 100 अरब डॉलर के लक्ष्य तक पहुंचाने पर बल दिया। सुहास राम की रिपोर्ट के साथ विश्व दर्पण के लिए समाचार कक्ष से मैं फरहत नाज।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज से बातचीत करेंगे। दोनों नेताओं के बीच व्यापार, रक्षा, महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकी, शिक्षा और जनसंपर्क मजबूत करने पर चर्चा होने की संभावना है। भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली प्रमुख अर्थव्यवस्था बना हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF ने वर्ष 2026 के दौरान इसकी 7% की वृद्धि दर का अनुमान लगाया है। IMF ने यह भी अनुमान जताया है कि अगले वर्ष में भारत की GDP वृद्धि दर कुछ घटकर 6.4% रह सकती है। विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में बढ़ती राजनीतिक अशांति के बीच विरोध प्रदर्शन कर रहे प्रमुख गुट संयुक्त अवामी एक्शन कमेटी JAC ने आज एक बड़े और आखिरी विरोध प्रदर्शन का आह्वान किया है। यह आह्वान उनकी मांगे मानने के लिए 48 घंटे की समय सीमा का पालन करने में पाकिस्तान के विफल रहने के बाद किया गया है। अमरीका ने ईरान पर फिर हवाई हमले किए हैं। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर होर्मुज जलडमरू मध्य में वाणिज्यिक जहाजों पर हमला करने का आरोप लगाते हुए कहा है कि अमरीकी हमले जवाबी कार्रवाई में किए गए थे। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर ईरान ने फिर हमले किए तो अमरीका इसका और कड़ा जवाब देगा। और अब खेल जगत की हलचल के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
3: जी मुनीश, खेल खबरों में सबसे पहले बात करते हैं क्रिकेट की। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 T20 मैचों की श्रृंखला का चौथा मुकाबला आज ब्रिस्टल में खेला जाएगा। भारतीय समय के अनुसार ये मैच रात 10 बजे शुरू होगा। इंग्लैंड श्रृंखला में फिलहाल 2-0 से आगे है और श्रृंखला में बने रहने के लिए भारत को हर हाल

0: में ये मैच जीतना ही होगा। और भारत के अर्णव पापरकर ने विंबलडन जूनियर से टेनिस में लड़कों के सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंचकर इतिहास रच दिया है। पिछले 36 वर्षों में सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंचने वाले वे भारत के पहले खिलाड़ी हैं। 18 वर्षीय पापरकर ने प्री क्वार्टर फाइनल में जापान के रयो ताबाता को मात्र 52 मिनट में 6-2, 6-1 से हराया। इससे पहले उन्होंने पहले दौर में ब्रिटेन और अगले दौर में अमरीकी खिलाड़ी को हराया था। उन्होंने इस टूर्नामेंट में अभी तक एक भी सेट नहीं गंवाया है। पापरकर का अगला मुकाबला आज शाम 5 बजे क्वार्टर फाइनल में अमेरिका के जॉर्डन ली से होगा। और अगर बात करें शतरंज की बाजी की तो कन्याकुमारी के 17 वर्षीय अश्वथ एस पुणे इंटरनेशनल ग्रैंड मास्टर राउंड रॉबिन में अपना अंतिम ग्रैंड मास्टर नाम हासिल करते हुए भारत के 98वें ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। अंतिम दौर में अश्वथ ने काले मोहरों से खेलते हुए अमेरिका के कन्नन वैद्यनाथन को हराकर ग्रैंड मास्टर का खिताब अपने नाम किया। उन्होंने 9 राउंड में 7 अंक प्राप्त करते हुए दूसरा स्थान हासिल किया है। जी मुनीष, तो ये थी आज की खेल जगत से जुड़ी खबरें।
1: शुक्रिया मुकेश। और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेलबर्न में भारत ऑस्ट्रेलिया सीईओ फोरम को संबोधित किया। प्रधानमंत्री मोदी आज मेलबर्न में ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ वार्ता करेंगे। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर प्रदर्शनकारियों का आज विशाल और अंतिम विरोध प्रदर्शन। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के संघर्ष विराम को समाप्त किए जाने की घोषणा के बाद अमेरिका ने ईरान पर नए हमले किए। और भारत के अर्णव पापरकर 36 वर्षों में विंबलडन जूनियर्स 2026 में एकल क्वार्टर फाइनल में पहुंचने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। और इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित विश्व दर्पण। ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है FM के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर। इस समय सुबह के 10:20 हो रहे हैं और अब हम हाजिर हैं फिल्म संगीत लेकर। गीतों भरे सुहाने सफर में स्वागत है आपका। करते हैं कार्यक्रम का आगाज और सुनवाते हैं बेहद ही प्यारा गीत।

अभी आप सुन रहे थे हम आपके दिल में रहते हैं का ये गीत। गीतकार थे समीर और संगीत निर्देशन था अनु मलिक का। आवाज़ें अनुराधा पौडवाल और कुमार सानू के थे।

ये गीत आप सुन रहे थे फिल्म लगान से, ये आवाज़ें अलका याग्निक, उदित नारायण, सुखविंदर सिंह, शंकर महादेवन और सान की थी। गीत रचा था जावेद अख्तर ने, धुन ए आर रहमान का था।

0: देवदास, इस फिल्म का आपने सुना ये गाना कविता कृष्णमूर्ति और उदित नारायण के युगल स्वरों में, नुसरत बद्र की रचना थी, धुन इस्माइल दरबार का था।
1: दस लाख की लॉटरी मुझे,
2: फर्जी ऑफर से सावधान।
3: RBI कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: सुनो ना।
4: हाँ?
3: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
4: तो रोका किसने है? हाँ?
3: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
4: मुझसे?
3: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
4: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
3: पर उससे मेरा क्या फायदा?
4: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
3: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
4: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 8700-001-4242।
3: ओ, 8700-001-4242। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700-001-4242 पर।
1: मन की बात, प्रधानमंत्री आकाशवाणी पर।
5: मेरी मन की बात के संबंध में अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो आप मन की बात आकाशवाणी संसद मार्ग नई दिल्ली, अगर चिट्ठी भी भेज देंगे और कुछ सुझाव देंगे वो जरूर मुझ तक पहुंच जाएगा और मैं जरूर उसको गंभीरता से लूंगा।
1: यदि आप माननीय प्रधानमंत्री को मन की बात के लिए कोई सुझाव देना चाहते हैं तो पता नोट करें, मन की बात आकाशवाणी संसद मार्ग नई दिल्ली 110001।
5: मैं आपको निमंत्रण देता हूँ, मेरे मन की बात के लिए आपके मन की बात भी जुड़नी चाहिए।
6: हेलो डॉक्टर,
7: आकाशवाणी जमशेदपुर का लाइव फोन इन कार्यक्रम
6: हेलो डॉक्टर।
7: सुनिए हर माह के आखिरी बुधवार को रात 8 बजे से FM 102.4 MHz पर विशेषज्ञों से कीजिए बातें लाइव कार्यक्रम के दौरान और पाइए अपनी समस्याओं से निदान। तो कॉल कीजिए साथियों 0657-2960-445 पर। नंबर एक बार पुनः सुनिए 0657-2960-445 और बातें कीजिए लाइव डॉक्टर के साथ।
6: हेलो डॉक्टर।

सुनिए हमारा खास कार्यक्रम हेलो आपकी फरमाइश, हर मंगलवार रात 10 बजे से 11 बजे तक FM के 102.4 MHz पर। और हाँ, अपनी फरमाइश रिकॉर्ड करवाने के लिए हमें कॉल करें हर बुधवार दोपहर 12:30 बजे से 1 बजे के बीच

हमारा फ़ोन नंबर है 0657-296-0445। हेलो, आपकी फरमाइश, संगीत वही जो आप चाहें। आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र FM के 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर और सुन रहे हैं फिल्म संगीत की। तो भरे सफ़र में एक बार फिर से आपका स्वागत है।

गीत अभिजीत और अलका याग्निक की आवाज़ों में समीर की रचना थी, धुन नदीम श्रवण का था। अब आइए सुनवाते हैं अगला गाना, मैं हूं ना फिल्म से। केके और वसुंधरा दास की आवाज़ है, शब्दकार हैं जावेद अख्तर और संगीतकार हैं अनु मलिक।

कार्यक्रम के आखिर में आइए सुनवाते हैं हम दिल दे चुके सनम का ये शीर्षक गीत। आवाज़ें कविता कृष्णमूर्ति और मोहम्मद सलामत की है। इस गीत को रचा है महबूब ने, संगीत निर्देशन इस्माइल दरबार का है।

0: हम दिल दे चुके सनम, आप सुन रहे थे इस फिल्म का शीर्षक गीत और इसी के साथ हमारा आज का फिल्म संगीत का ये सफ़र अब यहीं पूरा होता है।
1: हमारा अगला कार्यक्रम नमस्कार जमशेदपुर आप सुनेंगे इसी चैनल पर।
0: ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। अब आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित हिंदी में समाचार।

0: ये समानताएं और हमारा कॉमन वर्ल्ड व्यू हमें गहरे आपसी विश्वास के साथ निरंतर आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। हमारी कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप ने पिछले कुछ वर्षों में अभूतपूर्व प्रगति की है और आज तीसरी एनुअल समिट से हमारे सहयोग में कई नए आयाम जुड़े हैं।
1: ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने रक्षा, सुरक्षा और शिक्षा के क्षेत्र में हुए समझौते का उल्लेख किया। उन्होंने बताया कि भारत के लिए यूरेनियम आपूर्ति सुनिश्चित करने पर और सेनाओं के बीच अंतर संचालन क्षमता को बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की गई। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री अल्बनीज ने आज मेलबर्न में भारत ऑस्ट्रेलिया मुख्य कार्यकारी अधिकारी मंच और आर्थिक कार्ययोजना कार्यक्रम को संबोधित किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत ऑस्ट्रेलिया साझेदारी एक परिवर्तनकारी उच्च तकनीकी युग में पहुंच गई है। उन्होंने वर्ष 2030 तक 100 अरब डॉलर के द्विपक्षीय व्यापार को गति देने के लिए एक दूरदर्शी कार्ययोजना प्रस्तुत की। प्रधानमंत्री ने वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधानों के बीच भारत और ऑस्ट्रेलिया स्थिरता के स्वाभाविक और विश्वसनीय स्तंभों के रूप में एक साथ हैं। उन्होंने कहा कि वर्ष 2022 में दोनों देशों के बीच संपन्न हुए व्यापार समझौते से आर्थिक संबंधों में मजबूती आई है। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने ऑस्ट्रेलिया भारत साझेदारी के ऐतिहासिक परिवर्तन का उल्लेख किया। श्री अल्बनीज ने कहा कि भारत विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की राह पर मजबूती से अग्रसर है। ऑस्ट्रेलिया सुपर के 500 मिलियन ऑस्ट्रेलियाई डॉलर के निवेश का भारत ने स्वागत किया है। मेलबर्न में कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी पॉल शोडर ने इसकी घोषणा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि निवेश भारत के विकास पथ पर दुनिया भर के विश्वास को दर्शाता है। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों ने बुधवार को कठुआ जिले में एक आतंकवादी ठिकाने का भंडाफोड़ किया और वहां से दो हथगोले बरामद किए। हमारे संवाददाता ने बताया है कि जिले के बिलावर क्षेत्र के ऊपरी इलाकों में स्थित इस ठिकाने का पता ओवरग्राउंड वर्कर हाजी लतीफ के से चला। रामबागा निवासी लतीफ को 2 जुलाई को गिरफ्तार किया गया था। उस पर पिछले कई वर्षों से सीमा पार से एक दर्जन से अधिक आतंकवादियों की घुसपैठ में मदद करने का आरोप है। भारत दुनिया

ई सबसे तेजी से बढ़ने वाली प्रमुख अर्थव्यवस्था बना हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF ने वर्ष 2026 के दौरान इसके 7% के वृद्धि दर का अनुमान लगाया है। गृहमंत्री अमित शाह ने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के स्थापना दिवस पर परिषद के सभी कार्यकर्ताओं को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि स्वामी विवेकानंद के आदर्शों का अनुसरण करते हुए ये संगठन विद्यार्थियों को संगठित करने और युवाओं में देशभक्ति की भावना का प्रसार करने का कार्य कर रहा है। दिल्ली के मुख्यमंत्री कार्यालय ने कहा है कि दिल्ली की सभी मुख्य सड़कों पर जलभराव की स्थिति नियंत्रण में है। मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद सभी संबंधित एजेंसियां अलर्ट पर हैं। मौसम विभाग ने अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, बिहार, पूर्वी राजस्थान, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल में हिमालय के निचले इलाकों, सिक्किम और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में दिन में तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की T20 श्रृंखला का चौथा मुकाबला आज ब्रिस्टल के काउंटी ग्राउंड में खेला जाएगा। भारतीय समय के अनुसार ये मैच रात 10 बजे से शुरू होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हिंदी में समाचार प्रसारित हो रहे थे। अभी ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है FM के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर। दिन के 11:05 हुए हैं। अब आइए सुने कार्यक्रम नमस्कार जमशेदपुर।

0: 1.7불.
1: नमस्कार, जमशेदपुर कार्यक्रम में स्वागत है आप सभी श्रोताओं का। और आज कार्यक्रम में आपके साथ मैं हूं आपके रेडियो सखी श्रीति। नमस्कार साथियों, तो चलिए अब करते हैं शुरुआत अपने दिवाकालीन सभा के कार्यक्रमों की। रोचक जानकारियों, दिन विशेष की बातों और गीत संगीत के मनोरंजन के साथ लेकर आ रहे हैं कार्यक्रम नमस्कार जमशेदपुर।

दोस्तों, विद्यार्थी जीवन व्यक्ति के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण और मूल्यवान समय होता है। ये समय न केवल शिक्षा प्राप्त करने का होता है, बल्कि ये जीवन के मूल्यों, आदर्शों और व्यक्तित्व के निर्माण का भी समय होता है। विद्यार्थी जीवन में हम अलग अलग अनुभवों से और सीखों से गुजरते हैं, जो हमारे भविष्य को दिशा देते हैं। विद्यार्थी जीवन का मुख्य उद्देश्य शिक्षा और ज्ञान का अधिग्रहण करना है। विद्यालय और महाविद्यालयों में हम अलग अलग विषयों का अध्ययन करते हैं, जिससे हमें न केवल अकादमिक ज्ञान मिलता है, बल्कि तर्क शक्ति, विचारशीलता और समस्या समाधान की क्षमता भी विकसित होती है हमें। ये ज्ञान और शिक्षा हमारे भविष्य की नींव रखते हैं। विद्यार्थी जीवन हमारे जीवन का सबसे सुनहरा और महत्वपूर्ण समय होता है। ये समय हमें शिक्षा, अनुशासन, मित्रता और नैतिक मूल्यों का महत्व सिखाता है। इस दौरान प्राप्त अनुभव और सीखें हमारे व्यक्तित्व और भविष्य के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं और जीवन पर्यंत हमारे साथ साथ चलती हैं। विद्यार्थी जीवन को सही दिशा में जीकर हम अपने और समाज के लिए बेहतर भविष्य का निर्माण कर सकते हैं। आने वाला समय उन्हीं लोगों का होगा जो दुनिया को ध्यान से देखेंगे, स्थापित घटनाओं पर सवाल उठाएंगे, नए विचारों को परखेंगे, असफलताओं से सीखेंगे और स्वयं को लगातार बेहतर बनाते रहेंगे। 21वीं सदी में सबसे बड़ी क्षमता होगी आलोचनात्मक सोच और रचनात्मक ढंग से समस्याओं का समाधान करने की योग्यता, और हमारे युवाओं को अब इस ओर कदम जरूर बढ़ाना होगा।

सुखविंदर सिंह और तनिष्का सांघवी की आवाज़ों में दसवीं फिल्म का गाना अभी आप सुन रहे थे। सचिन जिगर का संगीतबद्ध किया हुआ गाना था, गीत लिखा था आशीष पंडित ने।

श्रोताओं, क्या आप जानते हैं आज राष्ट्रीय डिम्पल दिवस है। ये खास दिन इसलिए मनाया जाता है कि डिम्पल वाले लोगों की सराहना की जा सके जो उन्हें आकर्षक बनाता है। माना जाता है कि जिस व्यक्ति के डिम्पल पड़ते हैं वो दिखने में काफ़ी आकर्षक लगता है। हमारे बॉलीवुड में भी कई ऐसे सेलिब्रिटीज़ हैं जिनके डिम्पल पड़ते हैं और वो काफ़ी चार्मिंग और अट्रैक्टिव लगते हैं, जैसे शाहरुख खान।

प्रीति जिंटा। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा क्या होता है जिसकी वजह से कुछ लोगों के चेहरे पर डिंपल पड़ते हैं तो कुछ लोगों के चेहरे पर नहीं पड़ते। तो बता दें आपको कि डिंपल जाइगोमैटिक्स मेजर मांसपेशी द्वारा बनते हैं जो चेहरे के भावों को नियंत्रित करती है और गाल की हड्डी से जुड़ती है। डिंपल वाले लोगों में दो जाइगोमैटिक्स मांसपेशियां होती हैं, एक जो गाल की हड्डी से जुड़ती है और दूसरी जो मुंह के कोने से जुड़ती है। दोनों गालों पर डिंपल सिर्फ एक गाल पर डिंपल की तुलना में ज़्यादा आम है। इसके अलावा बाएँ तरफ के डिंपल दाएँ तरफ के डिंपल की तुलना में आमतौर पर देखे जाते हैं। जिनके डिंपल पड़ते हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन हम तो आपसे यही कहेंगे कि डिंपल पड़े ना पड़े, आप हमेशा हंसते मुस्कुराते रहिए, क्योंकि मुस्कुराने से हर इंसान खूबसूरत और आकर्षक लगता है।

युवराज। जी हाँ श्रोताओं, इसी फिल्म का गाना अभी आप सुन रहे थे अलका याग्निक और जावेद अली की आवाज़ों में। ए आर रहमान का संगीत निर्देशन था, गुलजार का लिखा हुआ गीत।

और श्रोताओं, अब नमस्कार जमशेदपुर कार्यक्रम में बातें करेंगे आज के दिन विशेष की, 9 जुलाई के ऐतिहासिक महत्व की। तो पहला विंबलडन चैंपियनशिप 9 जुलाई 1877 को आयोजित किया गया था, जिसका आयोजन उस समय के ऑल इंग्लैंड क्रॉकेट और लॉन टेनिस क्लब द्वारा किया गया था। टूर्नामेंट की घोषणा साप्ताहिक खेल पत्रिका द फील्ड में की गई थी, जिसमें शौकिया खिलाड़ियों को एक गिनी के शुल्क पर भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया था। खेल जगत में कई प्रतियोगिताएं होती हैं, लेकिन विंबलडन का नाम ही कुछ और है। दक्षिण पश्चिम लंदन में स्थित ऑल इंग्लैंड लॉन टेनिस एंड क्रिकेट क्लब AELTC के प्रतिष्ठित मैदानों पर हर ग्रीष्मकाल में आयोजित होने वाली ये चैंपियनशिप 1877 से ही दुनिया को मंत्रमुग्ध कर रही है। टेनिस के वैश्विक स्तर पर फैलने से बहुत पहले और किसी भी पेशेवर खिलाड़ी के सेंटर कोर्ट पर कदम रखने से भी पहले, लगभग 150 वर्षों के बदलावों के बावजूद जो चीज़ कायम है वो है एक दुर्लभ आयोजन। एक ऐसा आयोजन जहां इतिहास और विश्व स्तरीय प्रतिस्पर्धा हर साल साथ साथ मौजूद रहते हैं। 2026 में विंबलडन का आयोजन 29 जून से 12 जुलाई तक किया जा रहा है। ये प्रतिष्ठित टेनिस टूर्नामेंट लंदन के ऑल इंग्लैंड क्लब में पूरे 14 दिनों तक खेला जाएगा। शुरुआती दौर क्वालिफाइंग मुख्य ड्रॉ से पहले 22 जून के सप्ताह में क्वालिफाइंग मैच आयोजित हुए। 29 जून 2026 को एकल मैचों के साथ शुरुआत हुई। शनिवार 11 जुलाई 2026 को महिला एकल फाइनल मैच खेला गया और पुरुष एकल फाइनल मैच खेला जाएगा रविवार 12 जुलाई 2026 को।

मोहित चौहान की आवाज़ में, शशि सुमन के संगीत निर्देशन में, प्रशांत इंगोली का लिखा हुआ गीत अभी आप सुन रहे थे फिल्म मैरी कॉम से। श्रोताओं बातें कर रहे हैं आज के दिन विशेष की, तो 9 जुलाई 1969 को भारतीय वन्यजीव बोर्ड इंडियन वाइल्ड लाइफ बोर्ड ने एशियाई शेर को भारत का राष्ट्रीय पशु बनाया था। बाद में शेरों की घटती आबादी और बाघों के संरक्षण को ध्यान में रखते हुए 18 नवंबर 1972 को रॉयल बंगाल टाइगर को आधिकारिक तौर पर भारत का नया राष्ट्रीय पशु घोषित किया गया। इसे अधिकृत रूप से अप्रैल 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत के साथ अपनाया गया।

और 9 जुलाई 1875 को स्थापित हुआ बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE भारत और एशिया का सबसे पुराना शेयर बाजार है। इसे प्रसिद्ध व्यवसायी प्रेमचंद रॉयचंद ने द नेटिव शेयर एंड स्टॉक ब्रोकर्स एसोसिएशन के रूप में शुरू किया था। 1850 के दशक में बॉम्बे के कुछ व्यापारी और शेयर ब्रोकर टाउन हॉल और बाद में दलाल स्ट्रीट के पास बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर शेयरों का अनौपचारिक व्यापार करते थे। बढ़ते कारोबार के कारण ब्रोकर्स ने स्थायी जगह की मांग की और आखिरकार वे मुंबई तत्कालीन बॉम्बे की उस गली में बस गए जिसे आज दलाल स्ट्रीट के नाम से जाना जाता है। 1956 में प्रतिभूति अनुबंध विनियमन अधिनियम के तहत भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त ये देश का पहला स्टॉक एक्सचेंज बना। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड का प्रमुख सूचकांक सेंसेक्स है। ये बाजार पूंजीकरण यानी मार्केट कैपिटलाइजेशन के मामले में दुनिया के शीर्ष एक्सचेंजों में गिना जाता है।

स्वर्ग फिल्म का गाना अभी आप सुन रहे थे अमित कुमार की आवाज़ में। संगीतबद्ध किया था आनंद मिलिंद ने और गीत लिखा था समीर ने। और श्रोताओं अब नमस्कार जमशेदपुर कार्यक्रम में वक्त है एक छोटे से अंतराल का। अंतराल के बाद वापस लौटेंगे, थोड़ी बातचीत करेंगे आपके साथ, कुछ जानकारियां साझा करेंगे और साथ होगा गीत संगीत का सिलसिला भी। तो सुनते रहिए आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र FM के 102.4 MHz पर।

0: अभी आप सुन रहे हैं कार्यक्रम नमस्कार जमशेदपुर।
1: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
2: मन की बात, प्रधानमंत्री आकाशवाणी पर।
3: मेरी मन की बात के संबंध में अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो आप मन की बात आकाशवाणी

0: नई दिल्ली, अगर चिट्ठी भी भेज देंगे और कुछ सुझाव देंगे वो जरूर मुझ तक पहुंच जाएगा और मैं जरूर उसको गंभीरता से लूंगा।
1: यदि आप माननीय प्रधानमंत्री को मन की बात के लिए कोई सुझाव देना चाहते हैं तो पता नोट करें। मन की बात, आकाशवाणी, संसद मार्ग, नई दिल्ली, 110001।
0: मैं आपको निमंत्रण देता हूँ, मेरे मन की बात के लिए आपके मन की बात भी जुड़नी चाहिए।

अंतराल के बाद एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी श्रोताओं का कार्यक्रम नमस्कार जमशेदपुर में। और आज कार्यक्रम के साथ मैं हूं आपके रेडियो सखी श्रीति। तो श्रोताओं, अंतराल में जाने से पहले हम बात कर रहे थे आज के दिन विशेष की। तो रूस ने 9 जुलाई 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द सेंट एंड्रयू द पोस्टल से सम्मानित किया था। मॉस्को के क्रेमलिन में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन द्वारा ये पुरस्कार प्रदान किया गया था। उन्हें ये सम्मान भारत और रूस के बीच रणनीतिक साझेदारी को बढ़ावा देने और दोनों देशों के संबंधों को मजबूत करने में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया गया था। पुरस्कार ग्रहण करते हुए प्रधानमंत्री ने इसे 140 करोड़ भारतीयों को समर्पित किया था।

मिशन रानीगंज। जी हां श्रोताओं, इसी फिल्म का गाना भी आप सुन रहे थे बी प्राक और साथियों की आवाजों में। ऑर्को का संगीत निर्देशन था, गीत लिखा था डॉक्टर कुमार विश्वास ने।

श्रोताओं को बता दें कि आज वरिष्ठ नेता और स्वतंत्रता सेनानी सत्यनारायण सिन्हा की जयंती है। उनका जन्म 9 जुलाई 1900 को बिहार में हुआ था। वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से जुड़े रहे और कई महत्वपूर्ण पदों पर आसीन भी रहे। सत्यनारायण सिन्हा स्वतंत्र भारत के पहले संसदीय कार्य मंत्री बने और उन्होंने शिक्षा और प्रशासन के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान दिया। वो बिहार के पहले मुख्यमंत्री बनने का गौरव भी प्राप्त कर चुके हैं। सत्यनारायण सिन्हा का योगदान लोकतांत्रिक मूल्यों और प्रशासनिक दक्षता के लिए हमेशा याद किया जाता रहेगा। उनका निधन 1983 में हुआ था। राजनीति के वरिष्ठ नेता और स्वतंत्रता सेनानी सत्यनारायण सिन्हा की जयंती पर हम उन्हें नमन करते हैं।

सत्यमेव जयते टू फिल्म का गाना अभी आप सुन रहे थे बीप्राक और साथियों की आवाज़ों में। संगीत और को गाथा और गीत लिखा था मनोज मुंतशिर ने।

और श्रोताओं, आज अभिनेता, निर्माता, निर्देशक गुरुदत्त का जन्मदिवस है। गुरुदत्त हिंदी सिनेमा के प्रसिद्ध अभिनेता, निर्देशक और निर्माता थे। उनका जन्म आज ही के दिन 9 जुलाई 1925 को बेंगलुरु में हुआ था। गुरुदत्त ने भारतीय फिल्म इंडस्ट्री को प्यासा, कागज के फूल, साहिब बीबी और गुलाम जैसी क्लासिक फिल्में दी, जिन्हें आज भी बेहतरीन सिनेमा माना जाता है। उनकी फिल्मों में सामाजिक संवेदना, दिल छू लेने वाला संगीत और बारीक निर्देशन साफ नजर आता है। गुरुदत्त को हिंदी सिनेमा में कलात्मकता और भावनाओं का जादू रचने वाला माना जाता है। उनका समय निधन 10 अक्टूबर 1964 को हुआ, लेकिन वे आज भी सिनेमा प्रेमियों के दिलों में अमर हैं।

गुरुदत्त अभिनीत फिल्म कागज़ के फूल फिल्म का गाना अभी आप सुन रहे थे गीता दत्त की आवाज़ में। संगीत निर्देशन था एस डी बर्मन का और गीत लिखा था कैफी आजमी ने।

0: श्रोताओं, संजीव कुमार हिंदी सिनेमा के बहुमुखी और प्रतिभाशाली अभिनेता माने जाते हैं। उनका असली नाम हीरा भाई जरीवाला था। उनका जन्म 9 जुलाई 1938 को सूरत, गुजरात में हुआ था। संजीव कुमार ने शोले, आंधी, कोशिश, त्रिशूल जैसी फिल्मों में यादगार भूमिकाएं निभाई। वे गंभीर, संवेदनशील और चुनौतीपूर्ण किरदारों को बड़ी सहजता से निभाते थे। उनके अदाकारी में गहराई और सादगी दर्शकों को हमेशा प्रभावित करती है। संजीव कुमार को 2 बार राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला। उनका निधन 6 नवंबर 1985 को हुआ। वे आज भी सिनेमा प्रेमियों के दिलों में जीवित हैं और हमेशा रहेंगे। आइए आज उनके जन्म दिवस पर उन्हीं के अभिनीत फिल्म मंजली का ये गाना आपको सुनवाते हैं।
1: हाय, गम का फसाना बन गया अच्छा
2: अच्छा जी,
1: एक बहाना बन गया अच्छा
2: अच्छा।

किशोर कुमार और लीना चांदवरकर की आवाजों में लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत निर्देशन में आनंद बख्शी का लिखा हुआ गीत अभी आप सुन रहे थे मनचली फिल्म से। और श्रोताओं, अब कार्यक्रम के आखिर में हम बात करेंगे कि मॉनसून के मौसम में अपने स्वास्थ्य की देखभाल कैसे करें। मॉनसून की फुहारें जहां मौसम को खुशनुमा बना देती हैं, वहीं ये मौसम पाचन तंत्र से जुड़ी कई समस्याएं भी लेकर आता है। वर्षा ऋतु में नमी, उमस और गंदगी बढ़ने से बैक्टीरिया तेजी से पनपते हैं। यही वजह है कि इस दौरान पेट और आंतों के संक्रमण, डायरिया, फूड पॉइजनिंग और हैजा जैसी बीमारियों के मामले बढ़ जाते हैं। बारिश का मौसम राहत तो देता है, लेकिन इस दौरान आंखों के संक्रमण का खतरा भी बढ़ जाता है। साफ सफाई को लेकर थोड़ी सी लापरवाही फंगल इन्फेक्शन, एलर्जी और कंजक्टिवाइटिस जैसी समस्याओं का कारण बन सकती है। इसलिए मॉनसून में आंखों की भी विशेष देखभाल बहुत जरूरी है। मॉनसून की बारिश जहां गर्मी से राहत लेकर आई है, वहीं अपने साथ कई गंभीर बीमारियों का खतरा भी बढ़ा दिया है। पूर्वी सिंहभूम में जल जमाव, गंदगी और दूषित पानी के कारण मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, डायरिया और वायरल फीवर के मरीज तेजी से बढ़ रहे हैं। 29 जून से 6 जुलाई के बीच जिले में 29,165 लोगों में मलेरिया की जांच में 1,256 संक्रमित मिले। बढ़ते खतरे को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने अस्पतालों को अलर्ट कर दिया है, जबकि प्रभावित क्षेत्रों में फॉगिंग, एंटीलार्वा छिड़काव और जागरूकता अभियान तेज कर दिए गए हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि थोड़ी सी सावधानी से बड़ी बीमारी से आप बच सकते हैं और मॉनसून का आनंद भी ले सकते हैं।

शंकर महादेवन और सनी की आवाज़ों में पंगा फिल्म का गाना था ये। शंकर एहसान लॉय का संगीतबद्ध किया हुआ गाना था, गीत लिखा था जावेद अख्तर ने। और इसी गाने के साथ हम नमस्कार जमशेदपुर कार्यक्रम से मुझे यानी श्रीति को दीजिए इजाज़त, नमस्कार।

Hood. आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है ये एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर। दिन के 12 बजने वाले हैं, थोड़ी ही देर में सुनिएगा आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हिंदी में समाचार। कृपया थोड़ी प्रतीक्षा करें।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनक लता। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने दोहराया है कि बदलते जटिल रणनीतिक माहौल में रक्षा और सुरक्षा सहयोग दोनों देशों के बीच साझेदारी का प्रमुख आधार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने रक्षा और सुरक्षा सहयोग पर संयुक्त घोषणा पत्र जारी किया है। ये दोनों देशों के द्विपक्षीय रक्षा और सुरक्षा संबंधों में एक महत्वपूर्ण बदलाव को दर्शाता है। घोषणा पत्र में दोनों नेताओं ने भारत ऑस्ट्रेलिया समुद्री सुरक्षा सहयोग रोडमैप के माध्यम से समुद्री सहयोग को और मजबूत करने पर सहमति व्यक्त की। मेलबर्न में संयुक्त वक्तव्य में प्रधानमंत्री मोदी ने शांतिपूर्ण, स्थिर और समृद्ध हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए साझा दृष्टिकोण में समुद्री सहयोग को रेखांकित किया।
1: भारत और ऑस्ट्रेलिया दो वाइब्रेंट डेमोक्रेसीज हैं, दो मल्टी कल्चरल सोसाइटीज हैं और दो महत्वपूर्ण ओशन पावर्स हैं। हमारी ये समानताएं और हमारा कॉमन वर्ल्ड व्यू हमें गहरे आपसी विश्वास के साथ निरंतर आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। आज तीसरी एनुअल समिट से हमारे सहयोग में कई नए आयाम जुड़े हैं।
0: ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने रक्षा, सुरक्षा और शिक्षा के क्षेत्र में हुए समझौते का उल्लेख किया। उन्होंने बताया कि भारत के लिए यूरेनियम आपूर्ति सुनिश्चित करने पर और सेनाओं के बीच अंतर संचालन क्षमता को बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की गई। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री अल्बनीज ने भारत ऑस्ट्रेलिया मुख्य कार्यकारी अधिकारी मंच और आर्थिक कार्ययोजना कार्यक्रम को संबोधित किया। श्री मोदी ने कहा कि भारत ऑस्ट्रेलिया साझेदारी एक परिवर्तनकारी उच्च तकनीकी युग में पहुंच गई है। उन्होंने वर्ष 2030 तक 100 अरब डॉलर के द्विपक्षीय व्यापार को गति देने के लिए एक दूरदर्शी कार्य योजना प्रस्तुत की। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने ऑस्ट्रेलिया भारत साझेदारी के ऐतिहासिक परिवर्तन का उल्लेख किया, जो समानांतर यात्राओं से एकीकृत भविष्य के लिए तैयार साझेदारी में परिवर्तित हुआ है। ऑस्ट्रेलिया सुपर के 500 मिलियन ऑस्ट्रेलियाई डॉलर के निवेश का भारत ने स्वागत किया है। मेलबर्न में कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी पॉल श्रोडर ने इसकी घोषणा की। ऑस्ट्रेलिया भारत बिजनेस काउंसिल के प्रमुख सदस्य विश्व विश्वनाथन ने मेक विद इंडिया पहल के बढ़ते असर पर जोर दिया। ये समूह रणनीतिक कॉरपोरेट पार्टनरशिप को बढ़ावा देकर ऑस्ट्रेलिया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मेक इन इंडिया दृष्टिकोण को लागू करने का काम कर रहा है। भारत के ब्रिक्स अध्यक्षता में ब्रिक्स परिवहन मंत्रियों की तीसरी बैठक आज महाराष्ट्र के नागपुर में शुरू होगी। इस बैठक में ब्रिक्स सदस्य देशों के मंत्री और वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे। इसमें परिवहन क्षेत्र, बुनियादी ढांचे जैसे मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। ये बैठक भारत के ब्रिक्स अध्यक्षता की थी, बिल्डिंग फॉर रेजिलियंस इनोवेशन कोऑपरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी के तहत आयोजित की जा रही है। केंद्र सरकार ने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में अंत्योदय अन्न योजना परिवारों से आने वाले कक्षा 9 से 12 तक के विद्यार्थियों के शुल्क को पूरी तरह से माफ करने की मंजूरी दी है। स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा जारी एक आदेश में कहा गया है कि यह निर्णय तत्काल प्रभाव से लागू होगा। इसका उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों पर वित्तीय बोझ कम करने और पढ़ाई जारी रखने के लिए उन्हें प्रोत्साहित करना है। गृहमंत्री अमित शाह ने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद एबीवीपी के स्थापना दिवस पर परिषद के सभी कार्यकर्ताओं को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में

शाह ने कहा कि स्वामी विवेकानंद के आदर्शों का अनुसरण करते हुए ये संगठन विद्यार्थियों को संगठित करने और युवाओं में देशभक्ति की भावना का प्रसार करने का कार्य कर रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी एबीवीपी के सभी विद्यार्थियों को बधाई दी है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में दोपहर के सत्र में 0.7% की बढ़त देखी गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स लगभग 561 अंक बढ़कर 77,065 पर और निफ्टी 179 अंक की बढ़ोतरी के साथ 24,061 पर था। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की T20 श्रृंखला का चौथा मुकाबला आज ब्रिस्टल के काउंटी ग्राउंड में खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हिंदी में समाचार अभी आप सुन रहे थे। हम आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से बोल रहे हैं FM के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर। लेकर हाजिर हैं कार्यक्रम भावगीत, सुनवाएंगे बस थोड़ी ही देर में।
1: नमस्कार युवा साथियों,
2: आज शाम ट्यून इन कीजिए 102.4 मेगाहर्ट्ज पर आने वाले शो क्यों वाणी के साथ,
1: जहां बात होगी भारत के स्वतंत्रता की स्वर्णिम गाथा की।
2: इसके साथ हम बात करेंगे शहर में हो रहे अवैध अतिक्रमण और उसके साथ आने वाली परेशानियों के बारे में।
1: साथ ही बात करेंगे व्यापार की दुनिया की एक अहम मुद्दे के बारे में। तो जुड़ना ना भूलें हमारे यानी आयुषी झा
2: और नीलेश राज के साथ 5:02 में आने वाले शो क्यों वाणी में।

एक आवश्यक संदेश के बाद हाजिर हैं हम भावगीत कार्यक्रम के साथ। स्वागत है इस कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का, और कार्यक्रम के साथ मैं हूं आपकी रेडियो सखी श्रीति। स्वीकार कीजिए स्नेह भरा नमस्कार।

दिल की सूखी ज़मीन पर अभी अभी मोहब्बत का सैलाब आया है। बंजर सी इस ज़मीन पर अब बहारों की धड़कनें सुनाई देने लगी हैं, ऐसे जैसे मानो अब जीना चाहती हूँ। यूँ तो पहले भी जी रहे थे, ज़िंदगी में कोई कमी भी नहीं थी, मगर जब से तुम मिले हो तो समझ आता है कि वो ज़िंदगी तो थी मगर ज़िंदगी में ज़िंदगी कहीं नहीं थी।

उनसे मिलने के बाद तो दीवाने पागल से दिल को लाख समझाओ लाख बार मनाओ, वो नहीं सुनता, बस अपनी ही मनमर्जी करता है। ठीक उस पिंजरे के पंछी की तरह जिसे खुला आसमान अब नहीं चाहिए, उसी पिंजरे में रहकर खुला आसमान देखना चाहता है वो। अब वही पिंजरा उसका घर है, पूरी दुनिया है, क्योंकि इस उम्र कैद से उसे मोहब्बत जो हो गई है।

तेरे ही कदमों के निशान चुनता हुआ रह गुजर बनाता हूँ। अब इनमें फूल बिछे हों के कांटों की चुभन हो, सब मंजूर है। तेरे होने से ही तो मेरा होना भी खास हो गया है, वरना तो हर शय फजूल है। अब तू दर्द दे, दवा दे, गम दे या खुशी, सब कबूल है।

जब तेरी राह चलना कबूल कर लिया तो मेरी सारी मोहब्बत पर अब तेरा हक हुआ। मेरा सफ़र भी तू है और सफ़र की मंजिल भी तू ही है। मेरी हर कहानी में तू शामिल है और आखिरी सांस तक रहेगा। तू भी अपनी कहानी में मेरा जिक्र ज़रूर रखना। मोहब्बत ना सही मगर मेरी फ़िक्र ज़रूर करना।

जिस दिल पर का दिल पर कब्जा हो, हर आती जाती सांस जिसका जिक्र करती हो, रूठ जाने पर अक्सर सुबह उसे जाने का कहती है और निगाहों में रुक जाने की इल्तिजा होती है।

और इसी गाने के साथ आज का भावगीत कार्यक्रम अब बस यहीं तक। जिन फिल्मों के गाने आज आपने इस कार्यक्रम में सुने वो फिल्में थीं 21, रॉकी और रानी की प्रेम कहानी, हक, डंकी और दो पत्ती। आवाज़ें थीं गानों के लिए अरिजीत सिंह, श्रेया घोषाल, शादाब फरीदी, अल्तमश फरीदी, अरमान खान और विशाल मिश्रा और परंपरा टंडन की। संगीतबद्ध किया था सचिन जिगर, प्रीतम, विशाल मिश्रा और सचेत परंपरा ने। गीतकार थे अमिताभ भट्टाचार्य, कौशल किशोर, इरशाद कामिल और कौसर मुनीर। इसी के साथ भावगीत कार्यक्रम यहीं संपन्न हुआ।

एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र। दिन के 12:30 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम। शास्त्रीय संगीत के आज के इस कार्यक्रम में आइए सुने पंडित बुधादित्य मुखर्जी का सितार वादन राग शुद्ध सारंग में।

राग शुद्ध सारंग में पंडित बुधादित्य मुखर्जी का सितार वादन अभी आप सुन रहे थे। इसी के साथ शास्त्रीय संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न हुआ। आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है ये, FM के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर। दिन का 1 बजने को

0: थोड़ी ही देर में आकाशवाणी के दिल्ली और रांची केंद्रों से समाचारों का प्रसारण होगा, कृपया थोड़ी प्रतीक्षा करें।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने दोहराया है कि बदलते जटिल रणनीतिक माहौल में रक्षा और सुरक्षा सहयोग दोनों देशों के बीच साझेदारी का प्रमुख आधार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने रक्षा और सुरक्षा सहयोग पर संयुक्त घोषणा पत्र जारी किया है। ये दोनों देशों के द्विपक्षीय रक्षा और सुरक्षा संबंधों में एक महत्वपूर्ण बदलाव को दर्शाता है। घोषणा पत्र में दोनों नेताओं ने भारत ऑस्ट्रेलिया समुद्री सुरक्षा सहयोग रोडमैप के माध्यम से समुद्री सहयोग को और मजबूत करने पर सहमति व्यक्त की। मेलबर्न में संयुक्त वक्तव्य में प्रधानमंत्री मोदी ने शांतिपूर्ण, स्थिर और समृद्ध हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए साझा दृष्टिकोण में समुद्री सहयोग को रेखांकित किया।
2: भारत और ऑस्ट्रेलिया दो वाइब्रेंट डेमोक्रेसीज हैं, दो मल्टीकल्चरल सोसाइटीज हैं और दो महत्वपूर्ण ओशन पावर्स हैं। हमारी ये समानताएं और हमारा कॉमन वर्ल्ड व्यू हमें गहरे आपसी विश्वास के साथ निरंतर आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। आज तीसरी एनुअल समिट से हमारे सहयोग में कई नए आयाम जुड़े हैं।
1: ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने रक्षा, सुरक्षा और शिक्षा के क्षेत्र में हुए समझौते का उल्लेख किया। उन्होंने बताया कि भारत के लिए यूरेनियम आपूर्ति सुनिश्चित करने पर और सेनाओं के बीच अंतर संचालन क्षमता को बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की गई। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री अल्बनीज ने भारत ऑस्ट्रेलिया मुख्य कार्यकारी अधिकारी मंच और आर्थिक कार्य योजना कार्यक्रम को संबोधित किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत ऑस्ट्रेलिया साझेदारी एक परिवर्तनकारी उच्च तकनीकी युग में पहुंच गई है। उन्होंने वर्ष 2030 तक 100 अरब डॉलर के द्विपक्षीय व्यापार को गति देने के लिए एक दूरदर्शी कार्य योजना प्रस्तुत की। ऑस्ट्रेलिया सुपर के 500 मिलियन ऑस्ट्रेलियाई डॉलर के निवेश का भारत ने स्वागत किया है। मेलबर्न में कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी पॉल श्रोडर ने इसकी घोषणा की। ऑस्ट्रेलिया भारत बिजनेस काउंसिल के प्रमुख सदस्य विश्व विश्वनाथन ने मेक विथ इंडिया पहल के बढ़ते असर पर जोर दिया। ये समूह रणनीतिक कॉरपोरेट पार्टनरशिप को बढ़ावा देकर ऑस्ट्रेलिया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मेक इन इंडिया दृष्टिकोण को लागू करने का काम कर रहा है। भारत के ब्रिक्स अध्यक्षता में ब्रिक्स परिवहन मंत्रियों की तीसरी बैठक आज महाराष्ट्र के नागपुर में शुरू होगी। इस बैठक में ब्रिक्स सदस्य देशों के मंत्री और वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे। इसमें परिवहन क्षेत्र और बुनियादी ढांचे जैसे मुद्दों पर चर्चा होगी। ये बैठक भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता की थीम बिल्डिंग फॉर रिजिलियंस इनोवेशन कोऑपरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी के तहत आयोजित की जा रही है। केंद्र सरकार ने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में अंत्योदय अन्न योजना परिवारों से आने वाले कक्षा 9 से 12 तक के विद्यार्थियों के शुल्क को पूरी तरह से माफ करने की मंजूरी दी है। स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा जारी एक आदेश में कहा गया है कि यह निर्णय तत्काल प्रभाव से लागू होगा। इसका उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों पर वित्तीय बोझ कम करने और पढ़ाई जारी रखने के लिए उन्हें प्रोत्साहित करना है। गृहमंत्री अमित शाह ने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के स्थापना दिवस पर परिषद के सभी कार्यकर्ताओं को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि स्वामी विवेकानंद के आदर्शों का अनुसरण करते हुए ये संगठन विद्यार्थियों को संगठित करने और युवाओं में देशभक्ति की भावना का प्रसार करने का कार्य कर रहा है। मौसम विभाग ने अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, बिहार, पूर्वी राजस्थान, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्रों, सिक्किम और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आज तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। कर्नाटक के तटीय भाग, पूर्वी उत्तर प्रदेश, गांगेय पश्चिम बंगाल, गुजरात, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में भी दिन में तेज बारिश की संभावना है। हिमाचल प्रदेश, केरलम, माहे, कोंकण, गोवा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, पंजाब, दक्षिण कर्नाटक के भीतरी भाग, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कारेकाल और उत्तराखंड में भी आज इसी तरह के मौसम की संभावना है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में दोपहर

0: नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं नैंसी कुमारी। पहले मुख्य समाचार। नई दिल्ली में झारखंड विजन 2050 परामर्श का आज आखिरी दिन। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने समिट का किया स्वागत, लेकिन राज्य की कानून व्यवस्था पर उठाए सवाल। राज्य में स्वैच्छिक रक्तदान को बढ़ावा देने के लिए सरकार का बड़ा फैसला। सभी जिलों में उपायुक्तों की अध्यक्षता में बनेगी रक्तदान निगरानी समिति। धनबाद में खनन ब्लास्टिंग का असर। 44 करोड़ की लागत से बनी झरिया सिंदरी बलियापुर सड़क कई जगह धसी। उपायुक्त ने BCCL से मांगी मरम्मत राशि। गिरडी समेत राज्य के कई जिलों में अल नीनो के प्रभाव से सूखे जैसे हालात। कृषि विभाग ने किसानों को कम पानी वाले मोटे अनाज और दलहन की खेती करने का दिया सुझाव। और साहिबगंज में खेलो इंडिया साइकिलिंग सिटी लीग का सफल आयोजन। 3 आयु वर्गों की 203 बालिकाओं ने दिखाया दम। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में नई दिल्ली में चल रहे 2 दिवसीय राष्ट्रीय हितधारक परामर्श का आज दूसरा और आखिरी दिन है। विजन 2050 के तहत आयोजित इस परामर्श में झारखंड को तकनीकी रूप से अग्रणी बनाने के लिए वैश्विक उद्योगपतियों के साथ महत्वपूर्ण MOU पर हस्ताक्षर होने की संभावना है। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने झारखंड सरकार के 2 दिवसीय इन्वेस्टर्स समिट का स्वागत करते हुए कहा कि निवेश से रोजगार के अवसर पैदा होंगे। इसके साथ ही उन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से राज्य की कानून व्यवस्था सुधारने पर जोर देने की अपील की। संजय सेठ ने कहा कि अपराध नियंत्रण और सुरक्षा को मजबूत करने के लिए झारखंड के बड़े शहरों में लंबे समय से लंबित पुलिस कमिश्नरेट प्रणाली को तुरंत लागू किया जाना चाहिए।
1: माननीय मुख्यमंत्री, मेरी शुभकामनाएं हैं, आप अपने मिशन में सफल हो, पूंजी निवेश हो, किंतु उसके पहले बिजली की आपूर्ति 24 घंटे हो, लॉन्डर दुरुस्त हो, हालात माने बियॉन्ड कंट्रोल है। और इसीलिए कई सालों से हम यहाँ आवाज उठाते हैं कि पुलिस कमिश्नर बनना चाहिए। आप पुलिस कमिश्नर आज तक बना नहीं।
0: वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर द्वारा राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था पर सवाल उठाने के बाद झामुमो के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने तंज कसा है। उन्होंने कहा है कि हर चीज की एक हद होती है।
2: मंत्री प्रिविलेज क्लास होता है, उनको बोलने दीजिए। सबका लिमिट है ना, सब चीज का एक स्काई इज द लिमिट हम लोग कहते हैं। तो यदि स्काई ही लिमिट है तो बाकी का तो लिमिट है ही।
0: इस पर कांग्रेस के प्रदेश मीडिया प्रभारी राकेश सिन्हा ने मंत्री के रुख का बचाव करते हुए कहा है, किसी भी DGP की यह प्रशासनिक जिम्मेदारी बनती है कि वे मंत्री द्वारा लिखे गए पत्र का संज्ञान ले और उचित जवाब दें, ताकि शासन में पारदर्शिता बनी रहे।
3: बार बार पत्र लिखने पर अगर वो संज्ञान ना लें तो स्वाभाविक तौर पे प्रश्न खड़ा होता है, और यही प्रश्न माननीय मंत्री ने खड़ा किया है। और हमें यह लगता है कि ऐसे प्रश्नों का जवाब पुलिस महानिदेशक को देना चाहिए।
0: राज्य सरकार ने स्वैच्छिक रक्तदान को बढ़ावा देने के लिए सभी जिलों में उपायुक्त की अध्यक्षता में रक्तदान जागरूकता एवं निगरानी समिति के गठन का निर्णय लिया है। मुख्य सचिव अविनाश कुमार द्वारा जारी ये निर्देश झारखंड हाईकोर्ट और WHO के मानकों के अनुरूप है। इसका उद्देश्य थैलीसीमिया और सिकल सेल के मरीजों के लिए रक्त की उपलब्धता सुनिश्चित करना है। धनबाद में 44 करोड़ की लागत से बनी झरिया सिंदरी बलियापुर सड़क निर्माण 1 साल के भीतर ही BCCL की हैवी ब्लास्टिंग के कारण कई जगह धस गई है। स्थानीय विधायक रागिनी सिंह सहित अन्य जनप्रतिनिधियों ने निर्माण में अनियमितता का आरोप लगाते हुए जांच की मांग की है। वहीं उपायुक्त आदित्य रंजन ने बताया कि पथ निर्माण विभाग ने मरम्मत का प्राकलन तैयार कर BCCL को भेज दिया है। राशि मिलते ही काम शुरू होगा।
4: तो रोड का जो डिपॉजिट पैसा है वो BCCL को देना है। हम लोगों ने BCCL को 3 महीने पहले ही पत्र लिखा, जैसे ही पैसा BCCL डिपॉजिट स्लिप्स में देगा हम लोग उसमें काम लगाएंगे। मुद्दा झरिया CEO के द्वारा उठाया गया, थाना प्रभारी द्वारा उठाया गया, हम लोग उसको संज्ञान में लिए हैं और आज निर्देश दिए हैं कि तत्काल जितनी जल्द से जल्द हो सके BCCL हम लोगों को उसमें फंड दे, ताकि RCD उसका काम कर सके।
0: पूर्वी सिंहभूम जिले में ब्रेन मलेरिया से 2 और मरीजों की मौत के साथ इस वर्ष मरने वालों की संख्या बढ़कर 7 हो गई है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा की गई 12,518 लोगों की जांच में

0: 128 नए मरीज मिले हैं, जिनमें 98 ब्रेन मलेरिया से पीड़ित हैं। संक्रमण को रोकने के लिए प्रभावित गांवों में सघन जांच, दवा वितरण, फॉगिंग और जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। आकाशवाणी के ताज़ातरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताज़ा समाचार एक्स हैंडल @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज़ पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज़ रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIRNews Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी और रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के स्थापना दिवस पर संगठन के कार्यकर्ताओं को बधाई दी है। सोशल मीडिया के एक्स हैंडल पर दोनों नेताओं ने कहा कि राष्ट्र प्रथम की भावना के साथ यह संगठन दशकों से छात्रों को राष्ट्र सेवा, नेतृत्व और सामाजिक जिम्मेदारी के लिए प्रेरित कर रहा है। पलामू के चियांकी में नेशनल हाईवे 39 निर्माण के दौरान बिना मुआवजा मकान तोड़े जाने का विरोध कर रहे ग्रामीणों और पुलिस में आज सुबह झड़प हो गई। ग्रामीणों की पत्थरबाजी के बाद पुलिस ने लाठीचार्ज किया, जिसमें कई ग्रामीणों और 2 पुलिसकर्मी घायल हो गए। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए सदर SDM संजय पांडे ने क्षेत्र में 2 दिनों के लिए निषेधाज्ञा लागू कर दी है और बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात कर दिया है। भाजपा ने राज्य में मॉनसून के आगमन के बाद किसानों को खाद और बीज न मिलने का मुद्दा उठाते हुए राज्य सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। पार्टी के प्रदेश महासचिव मनोज सिंह ने हेमंत सोरेन सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा है कि राज्य का अन्नदाता आज संकट में है।
1: किसानों को समुचित खाद बीज नहीं मुहैया करा सकते हैं तो हम कह सकते हैं कि राज्य सरकार किसानों के प्रति अपनी असंवेदनशीलता प्रदर्शित करती है। किसानों के प्रति उनके मन में कोई सहानुभूति नहीं है।
0: राज्य के कई हिस्सों में इस वर्ष कम बारिश के कारण खरीफ फसलों पर अल नीनो का प्रभाव दिख रहा है, जिससे धान की रोपणी प्रभावित हुई है। कृषि विभाग के अनुसार गिरिडीह में मात्र 38% वर्षा होने से धान के बिचड़े तैयार करने में रुकावट आ रही है। जिला कृषि पदाधिकारी आशुतोष कुमार ने किसानों को कम पानी वाली फसलों की वैकल्पिक खेती अपनाने का सुझाव दिया है।
2: गिरिडीह जिले में इस वर्ष 62% बारिश कम हुई है। वर्षापात के अभाव में धान के बिचड़े 5000 हेक्टेयर में ही हुआ है, जबकि 8000 हेक्टेयर में लग जाना चाहिए था। जिले में 88000 हेक्टेयर में धान रोपनी का लक्ष्य रखा गया है। किसान भाइयों से आग्रह होगा कि आने वाले दिनों में अगर बारिश नहीं होगी तो वैसी स्थिति में दलहन, तिलहन, मड़ुआ और दूसरे अनाज की खेती की जा सकती है।
0: आज सुबह के सत्र में घरेलू इक्विटी इंडेक्स लगभग 0.7% की बढ़त के साथ कारोबार कर रहे थे। सेंसेक्स 561 अंक चढ़कर 77065 पर पहुंच गया, जबकि निफ्टी 179 अंक बढ़कर 24061 पर पहुंच गया। राजधानी रांची के सराफा बाजार में आज 22 कैरेट सोने की कीमत 1,33,400 रुपये प्रति 10 ग्राम है, जबकि चांदी की कीमत 2,28,000 रुपये प्रति किलो है। साहिबगंज में आज केंद्र सरकार के निर्देश पर आयोजित खेलो इंडिया साइकिलिंग सिटी लीग में 203 बालिकाओं ने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। सिदो कान्हू स्टेडियम से समाहरणालय परिसर रोड तक हुई इस रेस का आयोजन 3 आयु वर्गों अंडर 14, अंडर 18 और सीनियर महिला ओपन वर्ग में किया गया। सभी विजेता और प्रतिभागी खिलाड़ियों को मेडल एवं सर्टिफिकेट देकर सम्मानित किया गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। नई दिल्ली में झारखंड विजन 2050 परामर्श का आज आखिरी दिन। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने समिट का किया स्वागत, लेकिन राज्य की कानून व्यवस्था पर उठाए सवाल। राज्य में स्वैच्छिक रक्तदान को बढ़ावा देने के लिए सरकार का बड़ा फैसला। सभी जिलों में उपायुक्तों की अध्यक्षता में बनेगी रक्तदान निगरानी समिति। धनबाद में खनन ब्लास्टिंग का असर। 44 करोड़ की लागत से बनी झरिया सिंदरी बलियापुर सड़क कई जगह धसी। उपायुक्त ने BCCL से मांगी मरम्मत राशि। गिरिडीह समेत राज्य के कई जिलों में अल नीनो के प्रभाव से सूखे जैसे हालात। कृषि विभाग ने किसानों को कम पानी

वाले मोटे अनाज और दलहन की खेती करने का दिया सुझाव। और साहिबगंज में खेलो इंडिया साइकिलिंग सिटी लीग का सफल आयोजन, 3 आयु वर्गों की 203 बालिकाओं ने दिखाया दम। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक बुलेटिन दोपहर 2:55 पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: आकाशवाणी के दिल्ली और रांची केंद्रों से समाचारों का प्रसारण हो रहा था। अभी आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र FM के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर। दिन के 1:20 हुए हैं। फिल्म संगीत का कार्यक्रम सुनवाएंगे आपको थोड़ी ही देर में।
1: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
2: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
1: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
2: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
1: डायल कीजिए 8700014242।
2: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
3: नमस्कार जमशेदपुर का एक अलग अंदाज,
4: ज्ञान विज्ञान
5: इतिहास के पन्नों से,
6: सेहत और बॉलीवुड की बातें,
3: मौसम का मिजाज,
4: अपने शहर की खबरें,
6: बातों मुलाकातों के साथ
3: सुरीला मनोरंजन
4: और भी बहुत कुछ।
3: आप सुनते हैं कार्यक्रम नमस्कार जमशेदपुर में
5: दिन के 11:05 से 12 बजे तक
6: आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से।
3: नमस्कार जमशेदपुर।
7: जलवायु परिवर्तन क्या है, यह यूनेस्को का संदेश है। जलवायु हमेशा प्राकृतिक रूप से बदलती रही हैं, जिसमें अत्यधिक ठंड और गर्म अवधियां शामिल हैं। वैज्ञानिक बर्फ के परतों, पेड़ों के तनों पर बने छल्लों और अनेक प्रकार के कोरल को देखकर इन परिवर्तनों का अध्ययन करते हैं। लेकिन आज मानवीय गतिविधियां जैसे तेल, गैस और कोयला जलाना और जंगलों को काटना जलवायु परिवर्तन को तेजी से बढ़ा रही है। इससे मौसम में और भी ज्यादा उतार चढ़ाव, पौधों और जानवरों की हानि तथा पानी, भोजन और ऊर्जा की समस्याएं पैदा होती हैं। जलवायु परिवर्तन का मतलब है तापमान और मौसम के तरीकों में लंबे समय तक होने वाला बदलाव। यह एक रोचक तथ्य है। औद्योगिक युग से अब तक पृथ्वी का औसत तापमान 1 डिग्री सेल्सियस से अधिक बढ़ चुका है।
8: हेलो डॉक्टर,
3: आकाशवाणी जमशेदपुर का लाइव फोन इन कार्यक्रम।
8: हेलो डॉक्टर,
3: सुनिए हर माह के आखिरी बुधवार को रात 8 बजे से FM 102.4 मेगाहर्ट्ज पर विशेषज्ञों से कीजिए बातें लाइव कार्यक्रम के दौरान और पाइए अपनी समस्याओं से निदान। तो कॉल कीजिए साथियों 0657-2960-445 पर। नंबर एक बार पुनः सुनिए 0657-2960-445 और बातें कीजिए लाइव डॉक्टर के साथ।
8: हेलो डॉक्टर।

0: सुनिए हमारा खास कार्यक्रम हेलो आपकी फरमाइश, हर मंगलवार रात 10 बजे से 11 बजे तक एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर। और हाँ, अपनी फरमाइश रिकॉर्ड करवाने के लिए हमें कॉल करें हर बुधवार दोपहर 12:30 बजे से 1 बजे के बीच। हमारा फोन नंबर है 0657-296-0445। हेलो आपकी फरमाइश, संगीत वही जो आप चाहें।
1: नमस्कार युवा साथ।

0: करती हो।
1: आज शाम ट्यून इन कीजिए 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर आने वाले शो युवाणी के साथ,
2: जहां बात होगी भारत के स्वतंत्रता की स्वर्णिम गाथा की।
1: इसके साथ हम बात करेंगे शहर में हो रहे अवैध अतिक्रमण और उसके साथ आने वाली परेशानियों के बारे में।
2: साथ ही बात करेंगे व्यापार की दुनिया की एक अहम मुद्दे के बारे में। तो जुड़ना ना भूले हमारे यानी आयुषी झा
1: और नीलेश राज के साथ 5:02 में आने वाले शो युवाणी।

कुछ आवश्यक संदेशों के बाद हाजिर हैं हम कार्यक्रम फिल्म संगीत के साथ। आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है ये FM के 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। इस समय आप हमारी दिवाकालीन सभा के कार्यक्रमों के साथ हैं। फिल्म संगीत के इस कार्यक्रम में स्वागत है आप सभी श्रोताओं का और इस संगीतमय सफर की हम सफर मैं हूं आपकी रेडियो सखी श्रीति। नमस्कार साथियों, कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं भूल भुलैया 2 फिल्म के गाने से। अरिजीत सिंह और श्रेया घोषाल की आवाजों में है ये गाना। संगीत प्रीतम का है, गीत लिखा है समीर ने। आइए सुनते हैं।

अंकित तिवारी की आवाज में, जुबिन नौटियाल की आवाज में काबिल फिल्म का गाना अभी आप सुन रहे थे। राजेश रोशन का संगीत निर्देशन था, गीत लिखा था मनोज मुंतशिर ने। अब आइए आपको सुनवाते हैं एक विलन फिल्म का गाना अंकित तिवारी की आवाज में। संगीत भी अंकित तिवारी का है और गीत लिखा है मनोज मुंतशिर ने।

यारियां टू, इसी फिल्म का गाना भी आप सुन रहे थे सचेत टंडन की आवाज़ में। गीत और संगीत मनन भारद्वाज का था। आइए अब आपको सुनवाते हैं तू झूठी मैं मक्कार फिल्म का गाना अरिजीत सिंह और निकिता गांधी की आवाज़ों में। संगीत प्रीतम का है, गीत लिखा है अमिताभ भट्टाचार्य ने।

भूल भुलैया फिल्म का गाना भी आप सुन रहे थे केके की आवाज़ में। संगीतबद्ध किया था प्रीतम ने और गीत लिखा था सईद कादरी ने। और इसी गाने के साथ फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न हुआ। दीजिए अपनी रेडियो सखी श्रीति को इजाज़त। नमस्कार। आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर यह कार्यक्रम अभी आप सुन रहे थे। थोड़ी ही देर में यानी दिन में 2 बजे सुनिएगा मिड डे न्यूज़ और 2:15 का समय होगा दोपहर समाचारों का। आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे। दो बजकर 30 मिनट पर गीत संगीत का सिलसिला यानी फिल्म संगीत का कार्यक्रम आपको सुनवाएंगे। एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र। दिन के 2 बजने वाले हैं। थोड़ी ही देर में आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से मिड डे न्यूज़ और दोपहर समाचारों का प्रसारण होगा। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: expected to be discussed. The conference also takes place against the backdrop of the centre's decision to constitute a high-level committee a few months ago to examine the extent of demographic changes taking place in different parts of the country and identify the factors responsible for them. The Indian Pickleball Association has announced the Indian contingent in both men's and women's category to represent India in the pro category at the Pickleball World Cup 2026. The competition will be held at Da Nang in Vietnam from August 30th to September the 6th. Harsh Mehta, a recurring name on the international pickleball circuit, will be leading the charge. Arjun Singh, Anish Walian and Aman Patel have also made the cut in the men's category. Mihka Yadav, Alia Ibrahim, Pearl Amalsadiwala and Naomi Amalsadiwala will make up the contingent on the women's side. Benchmark domestic equity indices were trading around 0.7% up in the afternoon session today. The Sensex climbed 565 points to 77,069, while the Nifty added 168 points to 24,050 when reports last came in. And now before we end the bulletin, the headlines once again. India and Australia signed landmark deals on uranium supply and dedicated critical minerals corridor. Australia and India partnership on cyber critical technologies and supply chains becomes operational. Prime Minister Narendra Modi holds annual summit with his Australian counterpart Anthony Albanese in Melbourne. Says bilateral relationship entered an expansive era anchored in deep mutual trust. Vice President C.P. Radhakrishnan unveils national mission for sustainable use of high seas fishery resources in Bhubaneswar. And with that, we end the midday news.
1: नमस्कार आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता भारत और ऑस्ट्रेलिया ने यूरेनियम आपूर्ति और महत्वपूर्ण खनिज गलियारे पर ऐतिहासिक समझौतों पर हस्ताक्षर किए साइबर प्रौद्योगिकी और आपूर्ति श्रृंखलाओं पर ऑस्ट्रेलिया भारत साझेदारी की शुरुआत हुई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनेस के बीच मेलबर्न में वार्षिक शिखर वार्ता श्री मोदी ने कहा द्विपक्षीय संबंध गहरे आपसी विश्वास पर आधारित विस्तृत युग में प्रवेश कर चुके हैं उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने भुवनेश्वर में खुले समुद्र के मत्स्य संसाधनों के सतत उपयोग के लिए राष्ट्रीय मिशन का अनावरण किया मॉनसून पूरे देश में सक्रिय लगातार बारिश से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में जनजीवन प्रभावित उत्तराखंड राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत वयस्कों के लिए निर्धारित साक्षरता मानकों को प्राप्त कर पूर्णतः साक्षर राज्य बना और वियतनाम में होने वाले पिकलबॉल विश्व कप 2026 के लिए भारतीय दल की घोषणा अब समाचार विस्तार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनेस विक्टोरिया के गवर्नमेंट हाउस में आयोजित तीसरे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल हुए बैठक के बाद प्रधानमंत्री मोदी और प्रधानमंत्री अल्बनेस ने संयुक्त वक्तव्य दिया हमारे संवाददाता ने बताया है कि दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों में आए परिवर्तनकारी बदलाव का स्वागत किया और क्षेत्रीय स्थिरता ऊर्जा सुरक्षा तथा प्रौद्योगिकी नवाचार के लिए व्यापक रूपरेखाओं को अंतिम रूप दिया
2: यह महत्वपूर्ण शिखर सम्मेलन एक ऐतिहासिक परिवर्तन को दर्शाता है जिसमें भारत और ऑस्ट्रेलिया मिलकर हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए एक मजबूत ढांचा तैयार कर रहे हैं पारंपरिक व्यापार से हाईटेक डिफेंस कॉरिडोर की ओर बढ़ने महत्वाकांक्षी सीका समझौते में तेजी लाने और ऐतिहासिक परमाणु समझौते के अंतर्गत लंबे समय के लिए यूरेनियम निर्यात शुरू करने जैसी पहलों से दोनों देशों के बीच आपसी भरोसा को अभूतपूर्व स्तर पर पहुंचाया गया है जहां ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री अल्बनीज ने कहा कि 10 लाख लोगों का भारतीय प्रवासी समुदाय इस साझेदारी की असली धड़कन है वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने दोनों देशों के विकास की गति को क्रिकेट की तरह बताया
3: क्रिकेट भारत और ऑस्ट्रेलिया के रिश्तों की अपनी डिप्लोमेटिक लैंग्वेज है इसलिए हमारी मीटिंग्स भी क्रिकेट जैसी लगती है एजेंडा वनडे जैसा फोकस है डिसीजन ट्वीट एंट्री जितने तेज है और पार्टनरशिप टेस्ट मैच जितनी लंबी और गहरी
2: मेलबर्न से सुहास राम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जया भारती
1: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत ऑस्ट्रेलिया साझेदारी भविष्य के लिए निर्मित एक सुदृढ़ और स्थायी संबंध है संवाददाताओं को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देशों के संबंध

0: संबंध गहरे पारस्परिक विश्वास के आधार पर एक नए युग में प्रवेश कर चुके हैं। शिखर वार्ता की प्रमुख उपलब्धियों में आर्थिक और व्यापारिक सहयोग को नई गति देना शामिल रहा। प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि दोनों देशों ने यूरेनियम आपूर्ति और महत्वपूर्ण खनिज गलियारे पर ऐतिहासिक समझौतों पर हस्ताक्षर किए।
1: पीएम सूर्यघर योजना को सपोर्ट करने के लिए हमने मिलकर गुजरात में रूफटॉप सोलर ट्रेनिंग एकेडमी बनाई है। ये एकेडमी अनेक महिलाओं और युवाओं की कैपेसिटी बिल्डिंग में योगदान देगी। न्यूक्लियर एनर्जी के क्षेत्र में आज हमने एक महत्वपूर्ण समझौता किया है। इससे ऑस्ट्रेलिया से भारत को यूरेनियम सप्लाई का मार्ग खुलेगा और हमारे क्लीन एनर्जी के उद्देश्यों को नई ताकत मिलेगी।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि रणनीतिक प्रौद्योगिकी और संसाधन सुरक्षा के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। इसके अंतर्गत ऑस्ट्रेलिया भारत साइबर क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज और सप्लाई चेन साझेदारी को क्रियान्वित किया गया और महत्वपूर्ण खनिज कॉरिडोर की स्थापना की गई।
1: हमने सीका पर तेजी से काम करने का निर्णय लिया है, जो दोनों देशों के लिए बैलेंस एम्बिशियस। हम बायलेटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी पर भी तेजी से आगे बढ़ेंगे। हमारी रिन्यूएबल एनर्जी पार्टनरशिप, क्लीन एनर्जी और क्लाइमेट एक्शन में हमारे प्रयासों को साकार रूप दे रही है। इसके तहत हम इन्वेस्टमेंट, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री कोलैबोरेशन पर विशेष बल दे रहे हैं।
0: हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति और स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए दोनों नेताओं ने रक्षा और सुरक्षा सहयोग पर ऐतिहासिक संयुक्त घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए। वार्षिक रक्षा मंत्रियों के संवाद को संस्थागत रूप दिया गया तथा समुद्री सुरक्षा सहयोग रोडमैप का शुभारंभ हुआ।
1: हमारे मैरिटाइम सिक्योरिटी कोलैबोरेशन रोडमैप से इंडो पैसिफिक में हमारे साझा प्रयासों को नई ताकत मिलेगी। हम शिप बिल्डिंग, शिप रिपेयर और मेंटेनेंस में भी मिलकर आगे बढ़ेंगे। फ्रेंड्स, आज हमने कई क्षेत्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी विस्तार पूर्वक चर्चा की।
0: शिक्षा के क्षेत्र में भी सहयोग पर अभूतपूर्व प्रगति हुई है। इसके तहत ऑस्ट्रेलियाई विश्वविद्यालयों के नए शाखा परिसर बंगलुरु और गुरुग्राम में स्थापित किए जाएंगे। प्रधानमंत्री अल्बनीज ने भी इस भविष्य उन्मुख साझेदारी को और मजबूत बनाने की बात कही।
2: We share a focus on deepening and diversifying the relationship between our countries.
3: हम दोनों देशों के बीच संबंध को गहरा और विविध बनाने पर ध्यान दे रहे हैं, जिससे हम लगातार मजबूत होते रहे। आज हमने हर पहलू पर चर्चा की। नए और अहम समझौतों के माध्यम से हम रक्षा सुरक्षा, शिक्षा, विज्ञान और तकनीक तथा ऊर्जा सुरक्षा और जरूरी खनिजों के क्षेत्रों में अपने संबंधों का विस्तार कर रहे हैं।
2: And critical minerals.
0: इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री अल्बनीज ने भारत ऑस्ट्रेलिया मुख्य कार्यकारी अधिकारी मंच और आर्थिक कार्य योजना कार्यक्रम को संबोधित किया। ऑस्ट्रेलिया सुपर के 500 मिलियन ऑस्ट्रेलियाई डॉलर के निवेश का भारत ने स्वागत किया है। मेलबर्न में कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी पॉल श्रोडर ने इसकी घोषणा की। ऑस्ट्रेलिया भारत बिजनेस काउंसिल के प्रमुख सदस्य विश्व विश्वनाथन ने मेक विथ इंडिया पहल के बढ़ते असर पर जोर दिया। ये समूह रणनीतिक कॉरपोरेट पार्टनरशिप को बढ़ावा देकर ऑस्ट्रेलिया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मेक इन इंडिया दृष्टिकोण को लागू करने का काम कर रहा है। भारत की अध्यक्षता में आज नागपुर में ब्रिक्स 2026 के तहत तीसरे ब्रिक्स परिवहन मंत्रियों की बैठक हुई। कार्यकारी समूह की इस बैठक के बाद मीडिया से बातचीत में केंद्रीय परिवहन सचिव वी उमाशंकर ने कहा कि वरिष्ठ अधिकारियों ने गतिशीलता, शहरी बुनियादी ढांचा और सतत विकास जैसे मुख्य मुद्दों पर चर्चा की। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsoneair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने भुवनेश्वर में खुले समुद्र के मत्स्य संसाधनों के सतत उपयोग के लिए राष्ट्रीय मिशन का अनावरण किया है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
4: भारत ने आज गहरे समुद्र में मछली पकड़ने के संसाधनों के टिकाऊ इस्तेमाल के लिए एक अहम राष्ट्रीय पहल शुरू करके अपनी समुद्री विकास में एक बड़ा मुकाम हासिल किया। उड़ीसा के एक दिन के दौरे पर आए उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने दूर के समुद्रों में काम करने वाली भारतीय झंडे वाली मछली पकड़ने वाली नावों के लिए अनुमति पत्र जारी करने की राष्ट्रीय

0: जो प्रक्रिया की शुरुआत की, इससे जिम्मेदारी से गहरे समुद्र में मछली पकड़ने और समुद्री संसाधनों को संरक्षण के लिए एक मजबूत ढांचा तैयार होगा। उन्होंने उड़ीसा डीप सी फिशिंग मिशन डॉक्यूमेंट भी जारी किया, जो राज्य में गहरे समुद्र में मछली पकड़ने को इकोसिस्टम को मजबूत करने और ब्लू इकोनॉमी समुद्री अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिए एक रणनीतिक योजना है। उपराष्ट्रपति ने युवा भारतीयों से मछली पालन को वैश्विक मौके वाला एक आधुनिक विज्ञान आधारित पेशे के तौर पर अपनाने का आग्रह किया।
1: I urge our institutions to continue supporting our fishing community with knowledge, technology and finance. May this historic initiative bring prosperity to every coastal family and contribute significantly to the realization of Viksit Bharat by 2047.
0: Prakash Das, Akashvani Samachar, Bhubaneswar.
2: गृहमंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में सीमावर्ती जिलों के पुलिस अधीक्षकों के सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे। सम्मेलन का उद्देश्य संवेदनशील सीमावर्ती क्षेत्रों की वर्तमान सुरक्षा स्थिति की समीक्षा करना तथा कानून प्रवर्तन व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाने के उपायों की पहचान कर देश की सीमा सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करना है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा शनिवार को हिमाचल प्रदेश के केलांग में इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के हाई एल्टीट्यूड मेडिसिन और पब्लिक हेल्थ रिसर्च सेंटर की आधारशिला रखेंगे। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि यह सेंटर पूरे भारत के हिमालय क्षेत्र में जलवायु अनुकूल हेल्थ केयर और बायोमेडिकल रिसर्च को मजबूत करेगा। कृषि यंत्रीकरण उपमिशन के तहत सरकार ने अब तक देश भर में किसानों को 9,404 करोड़ रुपए मूल्य की लगभग 22 लाख कृषि मशीनें वितरित करने में सहायता प्रदान की है। ये मिशन वर्ष 2014-15 में कृषि मशीनीकरण को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया था। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज पुणे मुंबई घाट में रेलवे लाइन की मरम्मत के काम की समीक्षा की। भूस्खलन भीषण था और रेलवे लाइन के साथ साथ आसपास के क्षेत्रों को भी भारी नुकसान हुआ था। मध्य रेलवे और पश्चिमी रेलवे की टीमें समन्वय से काम कर रही हैं। नीति आयोग ने उभरते क्षेत्रों के लिए महत्वपूर्ण खनिजों की आवश्यकता पर हितधारकों के साथ परामर्श बैठक आयोजित की। इस बैठक में सरकार, अनुसंधान संस्थानों, शिक्षाविदों और उद्योग जगत के विशेषज्ञों ने हिस्सा लिया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और उल्लास नए भारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत निर्धारित वयस्क साक्षरता मानकों को हासिल करने के बाद उत्तराखंड देश का छठा पूर्णतः साक्षर राज्य बन गया है। शिक्षा मंत्रालय के अधीन विद्यालय शिक्षा एवं साक्षरता विभाग द्वारा निर्धारित मानकों की पूर्ति के बाद राज्यपाल ने 8 जुलाई 2026 को इस घोषणा को मंजूरी दी। दक्षिण पश्चिम मॉनसून पूरे देश में सक्रिय हो गया है। राजस्थान, हरियाणा, पंजाब और उत्तरी अरब सागर के शेष हिस्सों में भी ये आगे बढ़ चुका है। आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में मौसम विभाग के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉ. नरेश कुमार ने बताया कि पिछले कुछ दिनों से दिल्ली, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में मध्यम से तेज बारिश जारी है। दिल्ली वासियों की सुबह मूसलाधार बारिश और आंधी के साथ शुरू हुई। बारिश के कारण कई स्थानों पर जलभराव हो गया, जिससे यातायात बुरी तरह प्रभावित हुआ। मौसम विभाग ने हरियाणा सहित राष्ट्रीय राजधानी में तेज बारिश का रेड अलर्ट जारी किया था।
3: अगर हम आने वाले कुछ दिनों की बात करें, सबसे पहले NCR दिल्ली की बात करें, तो NCR दिल्ली के लिए आज के लिए भी हमारा रेड अलर्ट, हम अनुमान लगा रहे हैं कि जहां आज मॉडरेट टू हैवी रेनफॉल एक्टिविटी हो सकती है, इसके अलावा कल ये रेनफॉल एक्टिविटी कम हो जाएगी, परसों हल्का फुल्का रेनफॉल होने का अनुमान है। वेस्ट उत्तर प्रदेश के लिए आज के लिए हमारा रेड अलर्ट है, वहाँ हम एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल अनुमान लगा रहे हैं।
2: मौसम विभाग ने उत्तराखंड के कई जगहों पर मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है।
4: राजधानी देहरादून सहित प्रदेश के अधिकांश जिलों में रुक रुक कर बारिश का दौर जारी है। बारिश और भूस्खलन से पर्वतीय जिलों के कुछ राष्ट्रीय मार्गों, राज्य राजमार्गों और ग्रामीण क्षेत्रों के संपर्क मार्गों पर यातायात प्रभावित हुआ है। बंद सड़कों को खोलने के प्रयास किए जा रहे हैं। आपदा प्रबंधन व पुनर्वास सचिव विनोद कुमार सुमन ने संबंधित विभागों को किसी भी संभावित आपदा से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए 24 घंटे सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने प्रदेशवासियों से मौसम विभाग द्वारा जारी चेतावनियों का गंभीरता से पालन करने की भी अपील की है। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, देहरादून।
2: केरल के अधिकांश हिस्सों में आज बारिश की तीव्रता कम हो गई है। उत्तरी केरल के 5 जिलों में आज

येलो अलर्ट जारी किया गया है। ये जिले कल रेड अलर्ट और ऑरेंज अलर्ट पर थे। वायनाड में 5 से 15 मिलीमीटर तक मध्यम बारिश दर्ज की गई। यहां मंगलवार को भूस्खलन हुआ था। भारतीय पिकलबॉल संघ ने 2026 पिकलबॉल विश्व कप के लिए भारतीय दल की घोषणा कर दी है। ये दल एक प्रतिस्पर्धी चयन प्रक्रिया के बाद चुना गया है। 30 अगस्त से 6 सितंबर तक वियतनाम के दानांग में आयोजित होने वाले पिकलबॉल विश्व कप में पेशेवर वर्ग में देश का प्रतिनिधित्व करेगा। अंतर्राष्ट्रीय पिकलबॉल जगत में एक जाना पहचाना नाम हर्ष मेहता दल की कप्तानी करेंगे। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की टी20 श्रृंखला का चौथा मुकाबला आज रात 10 बजे से ब्रिस्टल के काउंटी ग्राउंड में खेला जाएगा। आज दोपहर के सत्र में घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांक लगभग 0.7% की बढ़त के साथ कारोबार कर रहे थे। नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार सेंसेक्स 565 अंक चढ़कर 77,069 पर और निफ्टी 168 अंक बढ़कर 24,050 पर पहुंच गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने यूरेनियम आपूर्ति और महत्वपूर्ण खनिज गलियारे पर ऐतिहासिक समझौतों पर हस्ताक्षर किए। साइबर प्रौद्योगिकी और आपूर्ति श्रृंखलाओं पर ऑस्ट्रेलिया भारत साझेदारी की शुरुआत हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के बीच मेलबर्न में वार्षिक शिखर वार्ता। श्री मोदी ने कहा, द्विपक्षीय संबंध गहरे आपसी विश्वास पर आधारित विस्तृत युग में प्रवेश कर चुके हैं। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने भुवनेश्वर में खुले समुद्र के मत्स्य संसाधनों के सतत उपयोग के लिए राष्ट्रीय मिशन का अनावरण किया। मॉनसून पूरे देश में सक्रिय, लगातार बारिश से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में जनजीवन प्रभावित। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से मिट्टी न्यूज और दोपहर समाचार अभी आप सुन रहे थे। एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र। दिन के 2:30 हुए हैं। एक बार फिर से गीत संगीत का सिलसिला, जी हाँ, फिल्म संगीत का कार्यक्रम लेकर हाजिर हैं। सुनवाएंगे थोड़ी ही देर में

0: नमस्कार युवा साथियों,
1: आज हम ट्यून इन कीजिए 102.4 मेगाहर्ट्ज पर आने वाले शो क्यू वाणी के साथ,
0: जहां बात होगी भारत के स्वतंत्रता की स्वर्णिम गाथा की।
1: इसके साथ हम बात करेंगे शहर में हो रहे अवैध अतिक्रमण और उसके साथ आने वाली परेशानियों के बारे में।
0: साथ ही बात करेंगे व्यापार की दुनिया की एक अहम मुद्दे के बारे में। तो जुड़ना ना भूलें हमारे यानी आयुषी झा
1: और नीलेश राज के साथ 5:02 में आने वाले शो क्यों वाणी में।

फिल्म संगीत कार्यक्रम के साथ हाजिर हैं हम। स्वागत है इस कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का और कार्यक्रम के साथ मैं हूं आपकी दोस्त और होस्ट श्रीति। नमस्कार साथियों, कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं राज रिबूट फिल्म के इस गाने से। आइए सुनते हैं।

राज रिबूट। जी हाँ श्रोताओं, इसी फिल्म का गाना अभी आप सुन रहे थे। जीत गांगुली के संगीत निर्देशन में कौसर मुनीर का लिखा हुआ गीत था और आवाज़ थी अरिजीत सिंह की। फिल्म संगीत कार्यक्रम का अगला गाना आइए आपको सुनवाते हैं दिलवाले फिल्म से। अमिताभ भट्टाचार्य की शब्द रचना है, प्रीतम का संगीत निर्देशन है और आवाज़ एक बार फिर से अरिजीत सिंह की।

सोनू निगम और नीति मोहन की आवाज़ों में ब्रदर्स फिल्म का गाना अभी आप सुन रहे थे। अमिताभ भट्टाचार्य की शब्द रचना थी, संगीतबद्ध किया था अजय अतुल ने। आइए अब आपको सुनवाते हैं देवदास फिल्म का ये गाना।

कविता कृष्णमूर्ति की आवाज में देवदास फिल्म का गाना अभी आप सुन रहे थे। संगीत पर किया था इस्माइल दरबार ने और गीत लिखा था नुसरत बद्र ने। आइए अब आपको सुनवाते हैं फिल्म संगीत कार्यक्रम की आखिरी पेशकश राहत फतेह अली खान और श्रेया घोषाल की आवाजों में। प्रीतम का संगीत निर्देशन है, मयूर पुरी का लिखा हुआ गीत और गाना हमने लिया है फिल्म सिंग इज किंग से।

और इसी गाने के साथ फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न हुआ। आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर यह कार्यक्रम अभी आप सुन रहे थे। दिन के 2:55 होने को हैं। थोड़ी ही देर में आकाशवाणी के रांची केंद्र से सुनिएगा प्रादेशिक समाचार।

नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पूजा कुमारी। राज्य सरकार ने नई दिल्ली में आयोजित 2 दिवसीय नेशनल स्टेक होल्डर्स कंसल्टेशन के आखिरी दिन राज्य के डिजिटल परिवर्तन को गति देने तथा झारखंड को सार्वजनिक प्रशासन आधारित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI के क्षेत्र में देश का अग्रणी राज्य बनाने के उद्देश्य से एक व्यापक रोड मैप प्रस्तुत किया। इसका उद्देश्य शासन, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, उद्योग तथा नागरिक सेवाओं में कृत्रिम बुद्धिमत्ता का प्रभावी उपयोग सुनिश्चित करना है। इसके साथ ही पारदर्शी, त्वरित, जवाबदेह तथा डेटा आधारित निर्णय प्रणाली विकसित करना है, ताकि आम नागरिकों को गुणवत्तापूर्ण, प्रभावी और सुलभ सरकारी सेवाएं उपलब्ध कर

0: जा सके। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी से आज रिम्स 2 निर्माण से प्रभावित रैयत और ग्रामीणों ने मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने श्री मरांडी को समस्याओं से अवगत कराया और सहयोग की अपील की। बाद में पत्रकारों से बातचीत में नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि नगरी में रिम्स 2 के निर्माण को लेकर राज्य सरकार हर धर्मिता पर अड़ी है। श्री मरांडी ने कहा कि बेकार पड़ी बंजर भूमि पर रिम्स 2 का निर्माण होना चाहिए।
1: युद्ध पर सरकार अड़ी हुई है, जिस जनता को आज वो उजाड़ रही है वही लोग आने वाला सरकार को लोग उजाड़ देगी। और यह खेती की जमीन आदिवासियों की है और आप हॉस्पिटल के नाम से जबरदस्ती आपस को छीन रहे हैं। लोग विरोध कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं और मैं समझता हूँ कि भाई सभी पॉलिटिकल पार्टी को और राज्य की जनता को भी ऐसे लोगों को साथ दीजिए।
0: राज्य में वर्ष 2030 तक रेबीज से होने वाली मौतों को शून्य पर लाने के लक्ष्य के साथ राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तत्वावधान में राज्य स्तरीय बैठक आयोजित की गई। बैठक में व्यापक कार्य योजना तैयार करने पर सहमति बनी। इस दौरान सभी सरकारी अस्पतालों में एंटी रेबीज वैक्सीन और इम्यूनोग्लोबुलिन की नियमित उपलब्धता सुनिश्चित करने तथा विश्व रेबीज दिवस पर 28 सितंबर को राज्य कार्य योजना लॉन्च करने की जानकारी दी गई। इसके अलावा रेबीज नियंत्रण अभियान को प्रभावी बनाने पर जोर दिया गया। रांची नगर निगम में डेली मार्केट, न्यू मार्केट और खादगढ़ा के प्रमुख बाजारों के पुनर्विकास के लिए आधुनिक व्यावसायिक परिसरों, मल्टी लेवल पार्किंग और बेहतर नागरिक सुविधाओं से जुड़े विस्तृत योजना प्रस्तुत की है। नगर आयुक्त सुशांत गौरव की अध्यक्षता में हुई बैठक में पुराने बाजारों को आधुनिक स्वरूप देने, यातायात प्रबंधन, स्वच्छता और सार्वजनिक सुविधाओं को प्राथमिकता देने पर जोर दिया गया। प्रस्ताव के अनुसार खादगढ़ा बस टर्मिनल परिसर और डेली मार्केट क्षेत्र का चरणबद्ध विकास कर व्यापारियों तथा आम नागरिकों के लिए बेहतर और सुव्यवस्थित बाजार व्यवस्था विकसित की जाएगी। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। झारखंड पुलिस मुख्यालय की अनुकंपा समिति ने लंबित 160 मामलों पर विचार करते हुए 153 आश्रितों को नियुक्ति देने का निर्णय लिया है। इनमें 62 बाल आरक्षी, 24 महिला आरक्षी, 66 आरक्षी तथा एक अग्निशमन चालक के पद पर नियुक्ति शामिल है। पुलिस मुख्यालय की ओर से जानकारी दी गई है कि दिव्यांगत पुलिस कर्मियों के आश्रितों को सम्मानजनक आजीविका उपलब्ध कराने और अनुकंपा नियुक्ति प्रक्रिया का समयबद्ध निष्पादन सुनिश्चित करने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। राजधानी रांची के अशोक नगर में बीती रात अज्ञात चोरों ने एक व्यवसायी के घर पर चोरी की घटना को अंजाम दिया, जबकि एक अन्य आवास में चोरी करने में असफल रहे। हटिया पुलिस उपाधीक्षक नीरज कुमार ने बताया कि पुलिस सीसीटीवी फुटेज और अन्य साक्षियों के साथ मामले की छानबीन में जुटी हुई है।
2: एक घर में चोरी हुई है और एक घर में जो है वो चोरी करने का प्रयास किया गया था। उस दौरान जो है वो जैसा लोग सीसीटीवी में देखे हैं किसी और के द्वारा फायरिंग करने का अभी तक नहीं मिला है। बॉडीगार्ड जो है तो उसका हाथ से गोली चलने की संभावना ऐसा लग रहा है कि उसके पैर में अपने से गोली चली है। गोली का भी हम लोगों के पास कहीं बाहर से और प्लेट एक मिला है।
0: दुमका जिले के सरैयाहाट प्रखंड सह अंचल कार्यालय के प्रधान लिपिक आनंद भारद्वाज को एसीबी ने 5,000 रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार लिपिक जमीन से संबंधित कार्यों के लिए एक व्यक्ति से रिश्वत की मांग की थी, जिस पर यह कार्रवाई एसीबी ने की है। मौसम विज्ञान केंद्र ने तत्कालिक पूर्वानुमान में बताया है कि अगले कुछ घंटों के दौरान पूर्वी तथा पश्चिमी सिंहभूम, लोहरदगा, खूंटी, गढ़वा, पलामू, रांची, सरायकेला खरसावां और सिमडेगा जिले में गरज के साथ बारिश हो सकती है। इस दौरान वज्रपात होने की भी संभावना है, जिसे लेकर चेतावनी जारी की गई है। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार शाम 4 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: उमंग सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: कीजिए स्वीकार। नमस्कार, विमलेश का उमंग कार्यक्रम में
3: और अजीत का भी जोहर। गांव गणेश धाम परसुली पोस्ट खेरथा बाजार जिला बालोद छत्तीसगढ़ से जितेंद्र दास मानिकपुरी, मिलव दास, जय दास, देवेश दास, धनवंतीन बाई और मोतीम बाई मानिकपुरी जी ने सुविचार भेजा है। लिखते हैं,
2: तन और मन के स्वास्थ्य के लिए योग एक बेहतरीन टॉनिक है।
3: बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका इस सुंदर विचार के लिए। जी हाँ, सच है, तन और मन के स्वास्थ्य के लिए योग एक बेहतरीन टॉनिक है। आइए अब सुनते हैं श्रोताओं के नाम जिन्होंने हमें भेजा है संदेश।
2: ग्राम चरौदा बार नवापारा अभ्यारण्य जिला बालोद छत्तीसगढ़ से नंद कुमार ठाकुर, प्रमिला ठाकुर, खुशबू और ज्योति ठाकुर।
3: और छत्तीसगढ़ रूपापाली बसना से हीरालाल जगत, देवेश, ब्रिजेश जगत और एकता लवण्य कश्यप।
2: पलारी छत्तीसगढ़ से नितेश कुमार देवांगन।
3: और माँ महामाया चौक मेघापारा लोरमी से राम कुशल पटेल, संतोषी पटेल, दीपांशु पटेल, दिव्या पटेल, दीपांजलि पटेल, दीपक पटेल और टेकलाल पटेल।
2: और छत्तीसगढ़ पलारी से ही प्रकाश वर्मा, निखिल वर्मा, प्रिंस वर्मा और यशस्वी वर्मा।
3: बहुत बहुत धन्यवाद श्रोताओं संदेश भेजने के लिए। एक बार फिर से आपका स्वागत है श्रृंखला ये भी जानिए की अगली कड़ी में। श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं, इस सप्ताह हम बात कर रहे हैं पेड़ पौधों की अनूठी और रहस्यमयी दुनिया के बारे में।
2: पिछले दो दिनों में हमने जाना था पेड़ पौधों के बीच के संचार की व्यवस्था के बारे में। आज हम बात करेंगे एक और रोचक विषय पर।
3: जी हाँ श्रोताओं, आज हम जानेंगे दुनिया के कुछ ऐसे पेड़ों के बारे में जो हजारों हजार वर्षों से जीवित हैं। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि ये पेड़ मिस्र के पिरामिडों से भी पुराने हैं और भारत में सिंधु घाटी की सभ्यता जब अपने विकास के प्रारंभिक चरण में थी उससे भी पुराने ये पेड़ हैं।
2: जी, ऐसे तो बहुत से वृक्ष हैं, लेकिन सबसे अधिक ज्ञात वृक्षों में से एक है ग्रैन एबियलो। वैज्ञानिक अनुमान के अनुसार इसकी आयु 5000 वर्ष से भी अधिक मानी जाती है। ये लैटिन अमेरिका के चिली देश में है। ये नॉन क्लोनल पेड़ है। अजीत जी, श्रोताओं को ये भी बता दें कि नॉन क्लोनल पेड़ किसे कहते हैं।
3: विमलेश जी, वैज्ञानिक वर्गीकरण के अनुसार नॉन क्लोनल पेड़ उसे कहते हैं जिसका एक ही तना होता है। इसके तने से कई और नए तने नहीं निकलते हैं, यानी ये अपना क्लोन नहीं बनाते हैं। सरल उदाहरण से समझिए, यदि एक आम का पेड़ एक गुठली से उगा और 200 वर्षों या एक निश्चित अवधि तक जीवित रहा तो ये नॉन क्लोनल पेड़ है, क्योंकि इसके तने से कोई और नया पेड़ नहीं उगा। लेकिन इसके विपरीत,
2: क्लोनल पेड़ों में एक ही मूल वृक्ष से कई नए तने और पौधे निकलते रहते हैं। जैसे भारत में मुख्य रूप से पाए जाने वाला बरगद का पेड़, ये पेड़ अपना प्रतिरूप या क्लोन बना लेता है। बरगद की शाखाओं से ही बहुत सारी हवाई जटाएं निकलती हैं, ये भूमि तक पहुंच जाती हैं और उनसे फिर नई शाखाएं निकलने लगती हैं। बांस भी क्लोनल पेड़ों में गिना जाता है, क्योंकि इसके प्रकंदों से कई नए नए बांस के पौधे पनपने लगते हैं।
3: जी विमलेश जी, जब बरगद के पेड़ की बात आई तो मुझे अपने देश के ग्रेट बैनियन ट्री की भी याद आई। ये कोलकाता के आचार्य जगदीश चंद्र बोस इंडियन बोटेनिकल गार्डन में स्थित है।
2: बिल्कुल।
3: बताते हैं कि इसकी आयु 300 से भी अधिक वर्ष आंकी गई है।
2: जी।
3: हवाई जटाओं या एरियल रूट्स के कारण ये पेड़ इतना फैल चुका है कि देखने में एक विशाल जंगल की तरह दिखाई देता है। है तो ये एक ही पेड़, लेकिन इसने अपने हजारों क्लोन बना लिए हैं।
2: जी जी जी, विशालता की दृष्टि से एक अद्भुत पेड़ है। इसका मूल तना बिजली गिरने से नष्ट हो गया था, लेकिन अपनी हजारों सहायक जड़ों के कारण ये आज भी जीवित है। जी, तो आज हम बात कर रहे थे दीर्घजीवी पेड़ों के बारे में। एक और पेड़ है जिसका नाम है मतुशेलाह। ये अमेरिका के कैलिफोर्निया में है। इसकी आयु लगभग 4,850 वर्ष से भी अधिक मानी जाती है। ये ग्रेट बेसिन ब्रिसल पाइन कोन प्रजाति का पेड़ है। ये मानव जाति के अधिकांश लिखित इतिहास से भी पुराना माना जाता है।
3: माना जाता है श्रोताओं कि इस पाइन वृक्ष का अंकुरण संभवतः 2,800 ईसा पूर्व हुआ होगा।

0: मिलेश जी, हम बात कर रहे हैं पेड़ों की आयु की, तो हमारे श्रोताओं के लिए ये जानना भी बहुत रोचक होगा ना कि पेड़ों की आयु भला कैसे आंकी जाती है।
1: जी, पेड़ों की आयु को जानने के लिए कई वैज्ञानिक तरीके हैं। सबसे पहला तरीका है पेड़ों के वार्षिक वलयों की गिनती। इन वलयों को ट्री रिंग्स भी कहते हैं। आपने किसी कटे हुए पेड़ के तने को यदि देखा होगा कि उसमें कई वलय, छल्ले या रिंग्स दिखाई पड़ते हैं।
0: जी, माना जाता है कि एक छल्ला एक वर्ष को दिखाता है। पेड़ के तने में जितने छल्ले होंगे उसकी आयु लगभग उतने वर्षों की होगी। लेकिन विमलेश जी, फिर तो किसी पेड़ की आयु को जानने के लिए उसे काटना होगा।
1: जी नहीं अजीत जी, ऐसी बात नहीं है। इसके लिए वैज्ञानिक एक विशेष विधि से तने के भीतर से पतली लकड़ी का नमूना निकालते हैं और उसका अध्ययन करते हैं। इससे पेड़ों को काटना नहीं पड़ता।
0: और हाँ श्रोताओ, कभी कभी तने की परिधि से भी पेड़ की उम्र का अंदाजा लगाया जाता है। इसके लिए उस पेड़ की वृद्धि की औसत दर का पता लगाना पड़ता है। विमलेश जी, एक और विधि है जिसे हम रेडियो कार्बन डेटिंग कहते हैं।
1: जी अजीत जी, बहुत पुराने या विशेषकर मृत पेड़ों की लकड़ी के नमूनों से वैज्ञानिक उसकी उम्र का पता लगाते हैं।
0: तो श्रोताओ, आपको बता दें कि पेड़ों के वलय मात्र उम्र ही नहीं बताते, बल्कि ये भी बताते हैं कि किसी विशेष वर्ष में मौसम कैसा था। चौड़े वाले रिंग्स संकेत देते हैं कि उस वर्ष में अच्छी वर्षा हुई थी, जबकि सकरे वाले सूखा या मौसम की प्रतिकूल परिस्थितियों का संकेत देते हैं।
1: तो श्रोताओ, ये थी हमारी आज की जानकारी विश्व के कुछ दीर्घजीवी पेड़ों के बारे में। साथ ही साथ हमने चर्चा की उनकी आयु जानने की विधियों के बारे में। अब आज का प्रश्न, आज की ही जानकारी से।
0: आज का प्रश्न है, क्लोनल और नॉन क्लोनल वृक्षों का एक एक उदाहरण दीजिए। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
1: क्लोनल और नॉन क्लोनल वृक्षों का एक एक उदाहरण दीजिए।
0: 8800440559 है हमारा IVRS नंबर, और audio@cit.nic.in है हमारे ईमेल का पता। संदेश जरूर भेजिएगा।
1: आप इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं। इससे आपको CIET NCERT के बारे में ताज़ा जानकारी मिलती रहेगी।
0: और आइए अब सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम। हमारा पहला कार्यक्रम है भारत तू है सबसे प्यारा।
1: हिंदी की पाठ्य पुस्तक की एक कविता पर आधारित इस कार्यक्रम में भारत भूमि के गौरव और विविधता का बड़े सुंदर ढंग से वर्णन किया गया है और बताया गया है क्यों हमारा देश सभी अन्य देशों से अनूठा है।

0: आपने आज अपने देश भारत के बारे में बहुत सी अच्छी बातों को सुना। आपने सुना भारत की नदियों, समुद्रों, अन्न, फल और फूलों के बारे में। सच में कितना सुंदर है ना हमारा देश। अब जरा सोचिए, अपने देश भारत की और कौन कौन सी बातें आपको बहुत अच्छी लगती हैं? सोचिए और हमें लिख भेजिए। आप हमें audio@ciet.nic.in पर अपना संदेश भेज सकते हैं। अब एक और बात, जरा बताइए कि क्या आपने भारत पर कुछ और भी कविताएं सुनी हैं? यदि सुनी हैं, तो उन कविताओं का संकलन कीजिए और अपने मित्रों के संग मिलकर उसका पाठ कीजिए। अभी आपने सुना कार्यक्रम भारत तू है सबसे प्यारा, और अब सुनते हैं कार्यक्रम उत्तर वैदिक काल।
1: इस कार्यक्रम में उत्तर वैदिक काल के बारे में विस्तार से बताया गया है, विशेषकर उस समय की शासन व्यवस्था और संस्कृति की चर्चा की गई है।
2: आर्य लोग जब भारत में आए तो भारत का अधिकतर भाग जंगलों से ढका हुआ था। यहाँ कुछ लोग पहले

आर्यों ने उन्हें दस्यु या दास कहा है। आर्य लोग मुख्यतः पशुपालक थे। ये लोग अपने साथ गाय, बैल, भेड़ बकरियां और घोड़े लेकर आए थे। आर्यजन पहले पहले आज के पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के कुछ भागों में आकर बसे थे। इस क्षेत्र में सरस्वती नाम की एक नदी बहती थी जिसमें सदा जल रहता था। ये नदी अब सूख गई है। ऋग्वेद की अधिकतर ऋचाओं की रचना इसी नदी के तट पर हुई थी।

इस काल में समाज चार वर्णों में बंटने लगा था। ये वर्ण हैं ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र।

सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद की रचना भी इसी उत्तर वैदिक काल में हुई। ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद ग्रंथों की रचना भी इसी समय हुई थी। आर्यों का जीवन घुमक्कड़ी दशा से स्थायित्व की ओर बढ़ रहा था। कृषि अब उनका प्रमुख धंधा बन गया था। आइए चलते हैं उत्तर वैदिक काल के आर्यों की दुनिया में।

0: अरे वो काली गाय कैसे धुली तुमने? ये तो लात मारती है।
1: इसने मेरी काली और लाल दोनों मटकियाँ तोड़ दी है। हाँ
0: अरे धृताची।
2: हाँ भैया।
0: तू खड़ी खड़ी क्या कर रही है? जा दूध से भरी मटकी माँ को दे।
2: अच्छा।
1: अरे अरे अरे देवदत्त, तुम उस घोड़े को संभालो। अरे उसने खूटा उखाड़ लिया है।
0: नहीं तात, ये काम आप प्रवाहन को ही सौंपिए, मैं बकरी के इस नवजात बच्चे को संभाल रहा हूँ।
3: अरे मगर... भाई ये क्या हो रहा है आज? अभी तक सभी लोग पशुओं की बातचीत में ही लगे हो। इन्हें चराने नहीं ले जाना क्या? तो सूरज भी निकलने वाला है। अरे देवदत्त
0: जी,
3: तुम्हारा वो नया खेत बनाने का काम पूरा हुआ या नहीं?
0: पिताजी बस थोड़ा सा ही काम बाकी है। वो उस खेत में बहुत झाड़ झंकार थे ना, तो उन्हें काटते काटते हमारी लोहे की कई कुल्हाड़ियाँ टूट गई। यज्ञ दत्त उन्हें ठीक करवाने बढ़इयों और लोहारों के घर गया है। उसके आते ही हम खेत चले जाएंगे।
3: ठीक है ठीक है। और हाँ, तुम वो बड़े बैलों वाली गाड़ी भी ले जाना।
0: जी पिताजी।
3: उसमें रख कर कुछ शीशम के लट्ठे ले आना।
0: ठीक है।
3: टूटे बाड़े को भी ठीक करना है। कल वो काला घोड़ा वहाँ से निकल भागा था।
0: जी पिताजी, गाड़ी तो हमने पहले ही तैयार कर ली है।
3: अरे प्रवाहन।
1: जी पिताजी।
3: तो मुझे बहुत सुस्त और ढीले लग रहे हो।
1: वो पिताजी।
3: अजीत और हरिराज भी ढीले हो गए हैं। तुम्हारे खेतों की जुताई भी अभी पूरी नहीं हुई। कुछ पता भी है? कार्तिक महीने के भी कुछ दिन चढ़ गए हैं।
1: जी वो
3: तुम्हारे चाचा के परिवार ने तो अपने खेतों में गेहूं और जौ बो भी दिए।
1: पिताजी हमारे खेत भी गेहूं और जौ की बुआई के लिए तैयारी समझिए, बस एक दो जुताई और करनी है। क्यों अजीत?
0: हाँ हाँ पिताजी, इस बार मैंने बहुत ज्यादा काम किया है और इस साल हमारी उड़द और धान की खेती बहुत अच्छी हुई है। अरे हाँ, अब तक तो हम उसकी कटाई और मड़ाई में ही लगे रह गए थे। क्यों देवदत्त?
4: हाँ हाँ पिताजी।
1: और पिताजी हम तो अपने साथ हरिराज शत्रु मर्दन को भी ले जा रहे हैं।
0: हाँ।
1: आज हम चार चार बैलों वाले तीन हलों से जुताई करेंगे। खेत बस तैयारी समझिए।
3: नहीं नहीं, हरिराज और शत्रु मर्दन तुम्हारे साथ नहीं जाएंगे खेतों में।
1: जी
3: नहीं, कल हस्तिनापुर जाना है।
0: पर क्यों पिताजी?
3: वहाँ महाराजा हरिराज जन्मेजय ने यज्ञ का आयोजन किया है, इन्हें तो जाने की तैयारी करनी होगी। वहाँ रथों की दौड़ भी होगी।
0: पिताजी हमारे जाने की पूरी तैयारी हो गई है।
1: जी पिताजी।
0: हमारा रथ और घोड़े दोनों तैयार हैं।
3: बहुत अच्छा।
0: और हाँ पिताजी, हमने अपने घोड़ों को भी खूब खिलाया पिलाया है और पता है अब तो वो भी बहुत फुर्तीले हो गए हैं।
1: पिताजी देवों की इच्छा हुई तो रथों की दौड़ में इस बार हम ही जीतेंगे।
0: हाँ पिताजी, हम ही जीतेंगे।
3: देव तुम पर अवश्य प्रसन्न होंगे। देखो तुम लोग अपने साथ कुछ गेहूं जौ और चावल ले जाना।
0: जी पिताजी।
3: सम्राट ने यज्ञ के अवसर पर भंडारा भी चला रखा है।
0: अच्छा पिताजी।
3: सभी वर्णों के लोग भोजन कर रहे हैं। यही नहीं, गुरुकुलों के ब्रह्मचारी, गृहस्थ और साधु सन्यासी भी यज्ञ में बुलाए गए हैं।
0: अच्छा
1: पिताजी, हमने अन्न के साथ साथ महाराज को भेंट देने के लिए माँ के द्वारा बुना हुआ उत्तरीय भी रख लिया है। बहन धृताची ने इस उत्तरीय पर सोने के तारों से बहुत सुंदर कढ़ाई भी की है।
0: हाँ।
2: ये मेरा नाम क्यों लिया जा रहा है और कौन कहाँ जा रहा है?
3: आओ पुत्री आओ, तुम्हारे ये भाई हस्तिनापुर जा रहे हैं।
2: अच्छा पिताजी, इनसे मेरे लिए सोने के कंगन मंगवा दीजिए ना। सुना है हस्तिनापुर के सुनार बहुत सुंदर कंगन बनाते हैं।
1: चल चल बढ़िया है कंगन वाली। पिछले वर्ष तो तुझे सोने के कुंडल और हार ला कर दिए थे मैंने।
4: और क्या,
1: अब कुछ नहीं लाऊंगा। हाँ
2: मेरे अच्छे भैया, मेरे प्यारे भैया, देखो मैं तुम दोनों का कितना ध्यान रखती हूँ। मैंने छुपा छुपा कर तुम्हारे घोड़ों को घी भी पिलाया है।
1: अच्छा अच्छा चल ठीक है, ले ही आएंगे। अब तो खुश।
3: अरे ये तो खुश हो गई, पर तुम अपनी तैयारी पर ध्यान दो। हाँ अपने हथियारों को ठीक ठाक करके रख लो।
0: जी पिताजी।
3: कल सूर्योदय से पहले ही चल देना। आजकल इस रास्ते वाले वन में शेरों, चीतों और तेंदुओं का आतंक कुछ ज्यादा ही हो गया है। अंधेरा होने से पहले ही वन पार करके अपनी बुआ के गांव पहुंच जाना।
1: जी पिताजी, हमने लोहे की फाल वाले भाले और लोहे की नोक वाले पैने तीर भी रख लिए हैं। भला हमारे इन तीरों के सामने वो क्या टिकेंगे।
0: और पिताजी, एक परिव्राजक के द्वारा हमने अपने फुफेरे भाइयों को भी सूचित कर दिया है, वो भी हमारे साथ रथों की दौड़ में हिस्सा लेने जाएंगे।
1: भैया सुना है इस बार रथों की दौड़ में भाग लेने के लिए कौशल, काशी और विदेह से भी रथ आ रहे हैं।
0: हाँ।
1: इस बार कुछ ज्यादा ही बड़ा आयोजन है।
3: हाँ ये तो है।
0: हाँ, हाँ, हाँ, बड़ा आनंद आएगा।

0: इस बार तो हमारा रथ ही जीतेगा।
1: अरे हमने भी पूरी तैयारी की है,
0: याद है पिछले वर्ष रथों की दौड़ में कितना आनंद आया था। मित्र क्या इस बार भी तुम्हारे गांव का वही रथ दौड़ाने वाला आया है?
1: अरे नहीं भाई नहीं, इस बार दूसरा रथ दौड़ाने वाला आ रहा है। गांव में होने वाली प्रतियोगिता में तो उसने सबको पीछे छोड़ दिया था।
0: चलो देखते क्या होता है।
2: सुने सुने सुने, यज्ञ के आयोजन के इस अवसर पर अब प्रारंभ होती है रथों की दौड़।
3: अरे वो देखो वो देखो,
0: क्या
3: रथ की दौड़ शुरू हो गई। अरे वो देखो तो रेस शुरू हो गई।
0: अरे क्या बात है, सजीले सवार है।
3: वाह वाह वाह वाह वाह वाह, देखो देखो वो देखो बीच वाला रथ
4: इस वर्ष के रथों की दौड़ के आयोजन में विदेह का रथ विजेता घोषित किया जाता है।

ये आयोजन सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं था, इसमें राजा की शक्ति की परीक्षा भी होती थी। उत्तर वैदिक काल में राज्यों का विस्तार हो रहा था। राजा की शक्ति, पदवी और दबदबा बढ़ गया था। करों की वसूली होने लगी थी। राजकोष में खूब धन जमा होने लगा था। राजकाज चलाने में पुरोहित, सेनापति, रानियां और कुछ अन्य अधिकारी भी मदद करते थे। ग्राम पंचायतें प्रशासन संभालती थी। राजा को गांव से बड़ी मदद मिलती थी। उत्तर वैदिक काल में राजा की कोई स्थायी सेना नहीं होती थी। युद्ध के मौके पर गांव और कबीलों से लोगों को इकट्ठा करके सेना बनाई जाती थी। शिक्षा के लिए बालकों को गुरुकुल में जाना पड़ता था। गुरुकुल वनों के शांत और सुरम्य स्थानों पर बनाए जाते थे।

0: गुरुकुल के सभी ब्रह्मचारी मेरी बात को ध्यान से सुने, सावधान होकर सुने, क्योंकि मैं आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण समाचार दे रहा हूं। और समाचार ये है कि आज शाम तक आचार्य शाकल्य यहां पहुंच जाएंगे। उनके स्वागत का पूरा प्रबंध कर लिया गया है, ये तो आप जानते ही हैं। लेकिन उसी बात को दोहराने के लिए मैं यहां इसलिए उपस्थित हूं क्योंकि मैं चाहता हूं कि हमारे आश्रम की जो प्रतिष्ठा और परंपरा रही है वो सर्वदा बनी रहे। इसके लिए जरूरी है कि स्वागत कार्य के लिए जिस ब्रह्मचारी को जो भी कार्य सौंपा गया है उसे पूरा करने के प्रयास में तुरंत लग जाए। अंत में मैं धन्यवाद कहूंगा कि आपने मेरी बात को पूरी शांति से सुना और समझा। धन्यवाद।
1: मित्र, कुलपति का आदेश सुना तुमने?
2: कैसा आदेश मित्र? मुझे तो कुछ भी नहीं सुनाई पड़ा। मैं तो ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या में ही उलझा था कि आज एक और समस्या आ गई। गुरुजी कह रहे हैं पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते, अर्थात पूरे में से पूरा निकाल देने पर भी पूरा ही बच जाता है।
3: भोले ब्रह्मचारी,

0: और कुलपति के आदेश पर ध्यान दो और आचार्य शाकल्य के स्वागत की तैयारी में लग जाओ। सुना है आचार्य आयुर्वेद आदि अनेक विद्याओं के पंडित हैं।
1: अच्छा,
0: वे हमारे गुरुकुल में कुछ दिन रहकर छात्रों को इन विषयों की विशेष शिक्षा देंगे।
2: अरे वो देखो कितना सुंदर घोड़ा है।
3: अरे हाँ, चलो पास से देखते हैं।
2: हाँ, चलो चलो।
3: अरे ये देखो कितना अच्छा
1: घोड़ा। अरे
2: हाँ,
1: इसकी काठी तो देखो कितनी सुंदर है।
3: इसे पकड़ लेते हैं।
2: चलो चलो।
3: अरे अरे अरे, चलो इसे पकड़ लेते हैं।
4: ये पकड़ा।
1: अरे ये कोलाहल कैसा है?
5: छोड़ दो छोड़ दो, ये महाराजा धीराज जन्मेजय का अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा है। तुम्हें इसके मस्तक पर सम्राट का विजय पत्र नहीं दिखा? इस घोड़े की सुनहरी लगाम और काठी तो दूर से दिख जाती है। छोड़ दो छोड़ दो, शीघ्र छोड़ दो, नहीं तो हमारे तीरों के तीखे प्रहार सहने पड़ेंगे।
1: अरे ये तो हमारे गुरुकुल के एक क्षत्रिय कुमारों ने घोड़े को पकड़ रखा है। अरे अरे, इन पर तो सैनिकों की चेतावनी का भी कोई असर नहीं हो रहा है।
2: अरे चलो चलो भाग चलें, आचार्य को बता दें, कहीं क्षत्रिय कुमार सैनिकों से युद्ध न कर बैठे।
1: अरे रुको तो सही। अरे देखो देखो,
2: क्या
1: आचार्य तो वही पहुंच गए हैं। और हाँ, वो देखो, आचार्य की आज्ञा मानकर क्षत्रिय कुमारों ने उस घोड़े को छोड़ भी दिया है।
2: हाँ, अच्छा हुआ संकट टल गया। अब ये सैनिक इस घोड़े को सारे राज्यों में घुमाकर हस्तिनापुर ले जाएंगे।
1: हाँ।
2: जहाँ अश्वमेध यज्ञ करके महाराज जन्मेजय चक्रवर्ती सम्राट बन जाएंगे।
1: हाँ।
2: उनका प्रभाव कीर्ति और ख्याति चारों दिशाओं में फैल जाएगी।
6: और इसी तरह राजा की शक्ति और सत्ता धीरे धीरे बढ़ती गई।

0: कबीले के सरदार से वो चक्रवर्ती सम्राट बने, फिर उनके बेटे सम्राट बने और फिर उनके बेटे। इस तरह राज पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहा। उत्तर वैदिक काल धीरे धीरे समाप्त हो गया और ये सम्राट एक काल को दूसरे काल से जोड़ते चले गए।
1: अभी आपने सुना कार्यक्रम उत्तर वैदिक काल और इसी के साथ अब हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अपने मित्र अजीत
2: और विमलेश को तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
1: नमस्कार।
3: उमंग उमंग उमंग उमंग।
4: NCERT द्वारा प्रायोजित शैक्षिक कार्यक्रम उमंग अभी आप सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है, FM के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर। दिन के 3:30 हुए हैं। थोड़ी ही देर में सुनवाएंगे आपको सुगम संगीत का कार्यक्रम।

0: ने सुना कार्यक्रम उत्तर वैदिक काल, और इसी के साथ अब हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अपने मित्र अजीत
1: और विमलेश को तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार।
2: उमंग उमंग उमंग उमंग।
3: अभी आप सुन रहे थे ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है FM के 102.4 MHz पर। दिन के 3:30 हुए हैं। थोड़ी ही देर में सुनवाएंगे आपको सुगम संगीत का कार्यक्रम।

0: नमस्कार युवा साथियों,
1: आज हम ट्यून इन कीजिए 102.4 मेगाहर्ट्ज पर आने वाले शो क्यू वाणी के साथ,
0: जहां बात होगी भारत के स्वतंत्रता

0: भूपिंदर सिंह और मिताली सिंह की आवाज़ों में चंद गज़लियाँ भी आप सुन रहे थे। इसी के साथ सुगम संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न हुआ। आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है ये, एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। दिन के 3:45 होने को हैं, आइए सुने लोकगीतों का कार्यक्रम।
1: कार्यक्रम लोकगीत सुनने वाले सभी सुधीर श्रोताओं को हमारा प्यार भरा नमस्कार, जोहार और बहुत बहुत स्वागत। आइए सुनते हैं विजया भारती झा और साथियों के स्वर में अंगिका लोकगीत।

एफएम बैंड के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम लोकगीत। आज के कलाकार हैं विद्या भारती झा। आइए सुनते हैं अंगिका में ये अगली प्रस्तुति।

0: विजया भारती झा और साथियों के स्वर में गाए अंगिका लोकगीत के साथ ही हमारा आज का कार्यक्रम लोकगीत अब यहीं पर संपन्न होता है। अनिमेश को दीजिए अनुमति।
1: लोकगीतों का कार्यक्रम अभी आप सुन रहे थे, आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है ये, FM के 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर।

FM के 102.4 MHz पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र। शाम के 4 बजने वाले हैं। थोड़ी ही देर में सुनिएगा आकाशवाणी के रांची केंद्र से मुख्य समाचार, और शाम 4:02 पर आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से आप सुन सकेंगे कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर। कृपया समाचारों के लिए अभी थोड़ी प्रतीक्षा करें।

0: रांची केंद्र है, आइए सुनते हैं अब तक के प्रादेशिक मुख्य समाचार।
1: नमस्कार, अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं पूजा कुमारी। राज्य सरकार ने नई दिल्ली में आयोजित दो दिवसीय नेशनल स्टेक होल्डर्स कंसल्टेशन के आखिरी दिन राज्य के डिजिटल परिवर्तन को गति देने तथा झारखंड को सार्वजनिक प्रशासन आधारित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI के क्षेत्र में देश का अग्रणी राज्य बनाने के उद्देश्य से एक व्यापक रोड मैप प्रस्तुत किया। इसका उद्देश्य शासन, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, उद्योग तथा नागरिक सेवाओं में कृत्रिम बुद्धिमत्ता का प्रभावी उपयोग, पारदर्शी, त्वरित जवाबदेह तथा डेटा आधारित निर्णय प्रणाली विकसित करना है। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी से आज रिम्स 2 निर्माण से प्रभावित रैयत और ग्रामीणों ने मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने श्री मरांडी को समस्याओं से अवगत कराया और सहयोग की अपील की। बाद में पत्रकारों से बातचीत में नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि नगड़ी में रिम्स 2 के निर्माण को लेकर राज्य सरकार हठधर्मिता पर अड़ी है। श्री मरांडी ने कहा कि बेकार पड़ी बंजर भूमि पर रिम्स 2 का निर्माण होना चाहिए। जामताड़ा जिले के सभी प्रखंडों में निर्धारित तिथियों को चरणबद्ध प्रखंड स्तरीय ड्राइविंग लाइसेंस कैंप का आयोजन किया जा रहा है। इसी क्रम में आज नारायणपुर प्रखंड कार्यालय परिसर में ड्राइविंग लाइसेंस कैंप का आयोजन किया गया। जिला परिवहन पदाधिकारी मुकेश कुमार ने बताया कि आवेदकों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर आवश्यक प्रक्रिया के बाद लर्निंग

ड्राइविंग लाइसेंस निर्गत किया जा रहा है। अयोध्या स्थित श्री राम मंदिर में कथित करोड़ों रुपए के वित्तीय अनियमितता के आरोपों की न्यायिक जांच की मांग को लेकर आज जमशेदपुर में झामुमो ने प्रदर्शन किया। इस दौरान पार्टी कार्यकर्ताओं ने साक्षी से उपायुक्त कार्यालय तक रैली निकालकर राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा और निष्पक्ष जांच की मांग की। मौसम विज्ञान केंद्र ने तत्कालिक पूर्वानुमान में बताया है कि अगले कुछ घंटों के दौरान पूर्वी तथा पश्चिमी सिंहभूम, लोहरदगा, खूंटी, गढ़वा, पलामू, रांची, सरायकेला खरसावां और सिमडेगा जिले में गरज के साथ बारिश हो सकती है। इस दौरान वज्रपात होने की भी संभावना है, जिसे लेकर चेतावनी जारी की गई है। इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 5 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: 102.6 देश के नंबर वन रेडियो आपके अपने रेनबो पर प्रोग्राम संदेश टू सोल्जर्स शाहिद आपके साथ और आज के हमारे खास मेहमान हैं संदेश टू सोल्जर्स में श्री शिवम कुमार सहायक कमांडेंट सशस्त्र सीमा बल सर बहुत बहुत स्वागत है आपका संदेश टू सोल्जर्स के हमारे प्रोग्राम आकाशवाणी रेनबो पर।
1: धन्यवाद। सर्वप्रथम मैं सशस्त्र सीमा बल के महानिदेशक इन्फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट सेल और FM रेडियो रेनबो का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आज हमें मौका दिया गया है कि मैं अपने संदेश को पूरे देश और विदेश के सभी लोगों के साथ साझा कर सकूं।
0: बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने समय निकाला, आपने अपना कीमती वक्त दिया और आप हमारे पास आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, यह हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपके आने का।
1: सर धन्यवाद।
0: आपको बता दें कि श्री शिवम कुमार असिस्टेंट कमांडेंट सशस्त्र सीमा बल राष्ट्रपति द्वारा अपनी वीरता अदम्य साहस सेवा और उत्कृष्ट कार्य के लिए पुलिस मेडल फॉर गैलेंट्री से भी सम्मानित किए जा चुके हैं और इसके अलावा बहुत सारे अवार्ड्स मेडल्स कमेंडेशंस और एप्रिसिएशंस सर्टिफिकेट्स तो उनको मिले ही हैं, वो हम आपको आगे बताएंगे। तो सर एक बार फिर से हम आपका स्वागत करते हैं संदेश टू सोल्जर्स में और आपसे जानना चाहते हैं कि सर आपके बारे में हमने जब जाना तो आपने फैशन टेक्नोलॉजी में बैचलर डिग्री हासिल की विद डिस्टिंक्शन फ्रॉम नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी। तो SSB और NIFT तो काफ़ी मतलब सिमिलैरिटी नहीं है, तो कुछ बताइए इसके बारे में।
1: सर इसके बारे में मैं शुरुआत करना चाहूंगा कि अंग्रेजी के एक पोएट है रॉबर्ट फ्रॉस्ट, उनकी एक बड़ी अच्छी पंक्ति है, टू रोड्स डाइवर्ज इन अ वुड एंड आई टुक द वन लेस ट्रेवल्ड बाय।
0: ओके,
1: मेरी कहानी है कुछ ऐसी ही रही है
0: जी।
1: जब शुरुआत से बचपन से तो यूं मैं नहीं कहूंगा कि मुझे फौज में आने का शौक था
0: जी,
1: लेकिन जब मैं नौकरी कर रहा था NIFT के उपरांत तो हमारे सोसाइटी में एक शहीद मेजर नितेश राय थे जो शहीद हुए थे अफगानिस्तान के इंडियन आर्मी के एक मिशन में और उनके सम्मान में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था हमारे सोसाइटी में जिसमें मुझे होस्ट करने का मौका मिला।
0: अच्छा, तो आप उस जमाने में पढ़ रहे थे?
1: नहीं, मैं कॉलेज के बाद में नौकरी कर रहा था।
0: अच्छा,
1: तो उसके जब उस होस्टिंग के दौरान मुझे उनकी पूरी जीवनी जानने का मौका मिला, उन्होंने क्या क्या त्याग किए देश के लिए इसको जानने का मौका मिला, उनके साहस और शौर्य से वो कहीं ना कहीं मेरे हृदय के किसी कोने में जाके बैठ गई
0: जी।
1: उसके बाद मैंने सोचा कि अब मुझे भी यही करना है, वर्दी तो धारण करनी है देश के लिए और राष्ट्र सेवा में ही
0: जी। तो जो शहीद मेजर थे वो आपके प्रेरणा स्रोत बने और आप फैशन टेक्नोलॉजी से सीधा सशस्त्र सीमा बल।
1: जी बिल्कुल, फैशन से ये सशस्त्र सीमा बल का जो सफर है
0: जी,
1: उसको
0: जी।
1: उनको मैं शहीद मेजर नितेश राय को डेडिकेट करता हूँ।
0: क्या बात है सर। सर यहाँ ये भी बताइए हमें शिवम कुमार जी के ये जो सफर आपका रहा, मतलब आपने जैसे कहा कि मैंने कभी सोचा नहीं था, तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन आया उससे आपकी जिंदगी पर क्या असर पड़ा, आपने क्या महसूस किया उस वक्त, जो जज्बा आपका रहा होगा वो प्लीज बताइए।
1: उस वक्त जब मैंने ये जाना, उनके जीवन के बारे में जाना, उनके महज 25 साल की उम्र में वो शहीद हो गए और उन्होंने देश के जो के लिए जो किया है, तो ये वाकई में एक प्रेरणा स्रोत था मेरे लिए। मैंने देखा कि आपके व्यक्तित्व के कई ऐसे आयाम हैं जिससे कि आप अपरिचित होते हैं, लेकिन जब आप फौज की नौकरी में आते हैं तो ये विभिन्न आयाम से आप परिचित होते हैं, तो आपको लगता है कि व्यक्ति से बड़ा समाज है, समाज से बड़ा राष्ट्र है। इस जज्बे को मैंने पहचाना जब मैं फौज की ट्रेनिंग में आया, जब मैं फौज में आया।
0: क्या बात है सर, देशभक्ति से बढ़कर मोहब्बत कोई नहीं हो सकती।
1: जी बिल्कुल।
0: तो फिर आपका ये सफर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी से बैचलर डिग्री विद डिस्टिंक्शन हासिल करने के बाद एक फैशन ग्रेजुएट बंदा फिर सशस्त्र सीमा बल का एक सिपाही बन जाता है, तो वो सफर अब

0: आगे जब शुरू होता है उसके बारे में बताइए।
1: जी, 2018 यूपीएससी में मैंने फॉर्म भरा और उसके बाद फाइनली मेरा सिलेक्शन हुआ। 2020 के जनवरी माह में सशस्त्र सीमा बल एकेडमी में मैं बतौर डायरेक्ट असिस्टेंट कमांडेंट वहां पे अपनी बेसिक ट्रेनिंग की शुरुआत हुई
0: जी।
1: और एक साल के कठिन परिश्रम के उपरांत, एक साल की कठिन ट्रेनिंग के उपरांत, जो कि काफ़ी ज़्यादा डिमांडिंग थी मेरे लिए क्योंकि मैं फिजिकली उस टाइम पर बहुत ज़्यादा साउंड नहीं था, उस ट्रेनिंग के उपरांत मैंने जाकर के फिर वो तमगा हासिल किया। मैं असिस्टेंट कमांडेंट बतौर फील्ड में उसके बाद मेरी नियुक्ति हुई।
0: जी जी, तो वो सफ़र जिस तरीके से रहा, आपको फैशन एक बिल्कुल ही अलग एक फील्ड हो गई और उसके बाद आप फौज का एक हिस्सा बनते हैं, आप एक फौजी बन गए, एक सोल्जर बन गए। तो वो जो हथियारों के साथ जब आपका एक रिश्ता बना, तो वो कैसा महसूस आपने किया? एक आम जनमानस जो है, एक आम इंसान जो है, वो इस चीज़ को शायद आपकी बातों से कुछ महसूस कर पाए, उस जज्बे को।
1: बिल्कुल बिल्कुल, जब मैं ट्रेनिंग कर रहा था तो हमें एक चीज़ सिखाई जाती थी
0: जी,
1: जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी
0: जी,
1: माता और मदरलैंड इससे, ये स्वर्ग से भी ऊपर है और इस चीज़ को आपके हृदय में, आपके खून में, आपके अंतर मन में अंतर्निहित कर दिया जाता है ट्रेनिंग के अंदर
0: जी।
1: और यही मेरे साथ हुआ। उसके बाद मैंने ठान लिया कि आज से मेरी दो माएँ हैं
0: जी,
1: एक मेरी माँ अपनी जिन्होंने मुझे जन्म दिया है और एक मेरा
0: मातृभूमि।
1: मातृभूमि,
0: क्या बात है सर। यही जो आपके जोशीले और जज्बात से भरे हुए जो जज्बा है आपका, जो शब्द हैं आपके, आप इस मौके पर, अभी हम आगे बढ़ेंगे, आपके करियर को जानेंगे, आपके अचीवमेंट्स को जानेंगे, आप हमारे जो देश का युवा है उसके लिए कुछ कहना चाहेंगे इसी जज्बे के साथ?
1: जी, मैं देश के युवाओं के लिए एक पंक्ति है जो मैं उनके लिए कहना चाहूंगा
0: जी,
1: कि देश के युवाओं में अपने आप के अंदर, उसके अंदर पौरुष होना चाहिए। पौरुष सबसे पहले युवाओं में जरूरी है क्योंकि जिसके अंदर पौरुष है, जिसके अंदर पुरुषार्थ है, आप उसी से, आप उसी के प्रति आप अपनी इज्जत रखते हैं, आप उसी के प्रति अपनी सांत्वना रखते हैं। अगर आपके अंदर पौरुष नहीं होगा तो आप समाज के लिए, अपने देश के लिए, अपने राज्य के लिए कुछ नहीं कर पाएंगे और ये सब सर्वोपरि है। आप अपने अंदर पुरुषार्थ को धारण करें, चाहे वो किसी भी रूप में हो, वो फौज की सेवा में आके हो, या आप वो टीचर बन के हो, या आकाशवाणी की सेवा में जैसा आप कर रहे हैं, तो पुरुषार्थ होना सबसे आवश्यक है
0: जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपके इन शब्दों के लिए। और हम समझते हैं कि जो आपने बात की बहुत ही सच्ची और बहुत ही दिल से आपकी जो बात निकली है वो दिल तक पहुंचेगी, हमारे माध्यम से भी और आपके जरिए भी, दिल से दिल तक, आकाशवाणी के माध्यम से। आपने जो एसएसबी जब ज्वाइन किया तो आपने बताया कि किस तरीके से आपकी ये शुरुआत हुई, लेकिन आपने इसके अलावा ज्वाइन करने के बाद भी कई प्रोफेशनल कोर्सेज किए, जैसे कि आइडेंटिफिकेशन एंड हैंडलिंग ऑफ एक्सप्लोजिव और सिक्योरिंग, आपने पहली पोजिशन भी हासिल करी थी। उसके अलावा आपने GIS कोर्स किया SSB की अकेडमी भोपाल से। तो वो जो एक कोर्स आपने किया आइडेंटिफिकेशन एंड हैंडलिंग ऑफ एक्सप्लोजिव, वो कितना, मतलब क्या बहुत खतरनाक, बहुत आसान था? क्योंकि देखने में, पढ़ने में नहीं लग रहा कि बहुत आसान रहा होगा।
1: जी बिल्कुल, ये भारत के बदलते सुरक्षा परिदृश्य में
0: जी
1: एक्सप्लोजिव IED जैसी घटनाएं आमतौर पर कई ज़्यादा देखने को मिलती थी। तो बतौर अ सोल्जर ये एक व्यक्ति को ट्रेन होना चाहिए कि वो आइडेंटिफाई कर सके कि कौन सा एरिया में कहाँ एक्सप्लोजिव लगाया जा सकता है, कैसे एक्सप्लोजिव को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इन चीज़ों के विषय में इस कोर्स में बताया गया ताकि उस क्षेत्र की जो जनता है उस क्षेत्र में फोर्स ऑपरेट कर सके और उस क्षेत्र की जनता को सुरक्षित कर सके
0: जी। तो शिवम कुमार जी, हमें ये भी बताइए कि आपने GIS कोर्स, क्योंकि ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम जो कोर्स आपने किया, उससे आपकी ट्रेनिंग के लिए और आपकी जो सेवाएं हैं उसमें किस तरीके से आप उसको और बढ़ा सके, सेवाएं अपनी और बढ़ा सके आप?
1: जी बिल्कुल, ये हमारे जनरली जो हमारा इलाका होता है जहाँ पे कि हम अपनी सेवाएं देते हैं, वो बहुत सुदूर और रिमोट एरियाज में रहता है, तो वहाँ पे हमको एक रेडी टू अवेलेबल एक मैप चाहिए होता है जिसको कि हम डिजिटली देख सकें और देख सकें कि कहाँ कहाँ हमारी तैनाती हुई है। तो इसके लिए ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम का ज्ञान होना बहुत ही आवश्यक है, जिससे कि हम अपने ट्रूप्स के मूवमेंट पे नज़र रख सकते हैं, वो कहाँ कहाँ हमारी तैनाती है इस पर नज़र रख सकते हैं। इसके लिए GIS कोर्स महत्वपूर्ण है।
0: तो आप ऑलरेडी एक सहायक कमांडेंट थे, उसके बाद भी SSB के ही आप जरिए ये सब कोर्सेस कर पाए, इतना आगे और बढ़ पाए, अपनी स्किल्स को और ज़्यादा बढ़ा पाए और इम्प्रूव कर पाए, तो इसमें फिर आपको आगे भी इस तरीके के फिर मौके मिले जहाँ पर आप अपनी सेवाएं उस तरह से दें?
1: बिल्कुल बिल्कुल, ये जो बेसिक ट्रेनिंग होती है वो हमारे एक जेंटलमैन को वो एक फौजी में तब्दील करती है, लेकिन दैट इज द बेस वो बेस है, फाउंडेशन है, उसके ऊपर आपको लगातार कोर्सेज करने हैं ताकि आप एक हुनरमंद और एक आप एबल ऑफिसर बन सकें। तो इसके लिए सारे कोर्सेज,
0: मतलब आप अपनी निपुणता को लगातार जो है बढ़ाते रहें।

0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: उसमें एडिशन करते रहे। इसी एडिशन में आपकी एक बहुत जबरदस्त जो आपने ग्वालदाम उत्तराखंड में की, कमांडो ट्रेनिंग भी आपने की इन सब के साथ साथ, तो उसका एक्सपीरियंस कैसा रहा?
0: जी, कमांडो जो है वो एक फिजिकल और मेंटल दोनों तरीके से आपको सशक्त बनाता है कि आप विषम परिस्थितियों में, दुर्गम पहाड़, दुर्गम वनों में आप लंबे लंबे ऑपरेशंस कर सकें, अपनी ट्रूप्स को मोराल को हाई रख सकें और ऑपरेशंस में सामरिक रणनीति के साथ ऑपरेशन में विजय हासिल कर सकें।
1: तो सर, ये तो ट्रेनिंग बहुत टफ रही होगी, कैसा रहा आपका वो एक्सपीरियंस इस कमांडो ट्रेनिंग वाला?
0: जी बिल्कुल, ये ट्रेनिंग तो टफ होती है, इसमें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि ट्रेनिंग तो बहुत टफ रहती है, लेकिन आपके अंदर जो वो जज्बा होना चाहिए वो ऐसा निहित कर दिया जाता है उस्तादों के द्वारा, इंस्ट्रक्टर्स के द्वारा, कि वो समय धीरे धीरे पार हो जाता है और आप जब बिगर पिक्चर की ओर देखते हैं, जब आप देखते हैं कि यहाँ से जब आप तप के जाएंगे, जब आप निखर के जाएंगे यहाँ से, तो फील्ड में इसके कई फायदे होते हैं, जो कि फायदे आज हमें महसूस कर रहा हूँ मैं।
1: सर, आपने इतनी सब ट्रेनिंग हासिल करी, आपने अपनी एक बहुत ही एक अलग इमेज, एक बहुत ही बड़ी पोजीशन आपने बनाई, और इसके ही एवज में आपको अपनी सेवाओं के बदले ही बहुत ज़्यादा अवार्ड से भी नवाजा गया, आपको बहुत सारी कमेंडेशंस, एप्रिसिएशंस भी मिले, और साथ ही साथ आपने अपनी जो लीडरशिप स्किल थी, ऑपरेशनल एक्सेलेंस थे, और ख़ास तौर पर एंटी नक्सल ऑपरेशंस, उसमें भी आपने न सिर्फ उनको अच्छे से किया बल्कि उनमें निपुणता हासिल करके एक अपनी एक ऐसी पोजीशन बनाई जिसकी वजह से आपको वो रिकॉग्निशन, वो अवार्ड्स, वो मेडल्स से नवाजा गया।
0: जी बिल्कुल, मेरा ये सौभाग्य था कि एकेडमी से निकलते ही मुझे पहली ही पोस्टिंग एंटी नक्सल ऑपरेशंस के थिएटर में मिली
1: जी,
0: जो कि बिहार के लखीसराय जिले में था, और क्योंकि मैं झारखंड बिहार से मेरा ताल्लुक है
1: जी,
0: तो सन ऑफ सॉइल होने का फायदा मुझे वहां पर मिला, मतलब वहां पे लोगों की क्या पीड़ाएं हैं, नक्सल का मोडस ऑपरेंडी क्या है, वो कैसे कम्युनिकेट करते हैं विलेजर्स के साथ, कैसे उनको ब्रेन वॉश करते हैं, ये समझना मेरे लिए ज्यादा आसान था क्योंकि लोग मुझसे ज्यादा कनेक्ट कर पाते थे, बीइंग अ लोकल मुझे ये फायदा मिला। और फिर फाइनली जो आगे की रणनीति थी, जो सीनियर्स का सपोर्ट था, उसके हिसाब से आगे की प्लानिंग हुई।
1: और आगे हम आपसे जानेंगे कि जो एंटी नक्सल ऑपरेशन आपने किए, एंटी माइस्ट ऑपरेशंस भी आपने किए, और बिहार का एक बहुत ही जबरदस्त और बहुत ही यादगार एक ऑपरेशन था जिसके ही बदले में आपको उस सेवा के ही एवज में पुलिस मेडल फॉर गैलेंट्री से भी सम्मानित किया गया, और हम उसके बारे में आपसे जानेंगे आगे। और साथ ही साथ हम आपको बता दें कि यहाँ पर लगातार बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं हमारे सुनने वालों के, हमारे श्रोताओं के, आपके लिए। आज के संदेश टू सोल्जर्स के हमारे खास मेहमान हैं श्री शिवम कुमार, सहायक कमांडेंट सशस्त्र सीमा बल।

0: भारत तुझे सलाम। देश के नंबर वन रेडियो आकाशवाणी रेनबो पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम संदेश टू सोल्जर शाहिद के साथ, और आज के हमारे स्पेशल गेस्ट खास मेहमान हैं श्री शिवम कुमार, सहायक कमांडेंट सशस्त्र सीमा बल। सर बहुत बहुत स्वागत मैं करना चाहूंगा एक बार फिर आपका आज के इस बहुत ही स्पेशल शो में, जिसमें जोश से भरपूर श्री शिवम कुमार हमारे साथ मौजूद हैं।
1: धन्यवाद साहिब जी।
0: और मैं अपने लिसनर्स को, अपने श्रोताओं को बता दूं कि आप हमें, हमारे पास लगातार आपके मैसेजेस आ रहे हैं, और आप हमें व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं 9868107070 पर, जिन लोगों को अभी तक मैं नंबर नहीं बता पाया था। और आप साथ ही हमारी मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR के माध्यम से दुनिया भर में हमसे हैं जुड़े हुए। तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी से हुआ सफर शुरू बैचलर डिग्री विद डिस्टिंक्शन के साथ श्री शिवम कुमार का, और उसके बाद कुछ ऐसा हुआ कि जिंदगी पूरी तरह से बदल गई और वो बन गए एक जोशीले जांबाज सिपाही सशस्त्र सीमा बल के। सर आपकी पूरी सर्विस में, अभी तक की आप अभी भी सर्विस में हैं, और सर्विस के दौरान आपकी पोस्टिंग रही SSB एकेडमी भोपाल मध्य प्रदेश में और 32 बटालियन SSB बिहार में, और फिलहाल आप सर्व कर रहे हैं CI & JW स्कूल ग्वालदाम। तो सर ये जो आप प्रेजेंटली जो सर्विंग है आपकी, ये इसके बारे में थोड़ा सा बताइए, CI & JW स्कूल में आप क्या करते हैं और ये क्या है?
1: काउंटर इंसर्जेंसी एंड जंगल वॉरफेयर स्कूल ग्वालदाम में उत्तराखंड में स्थापित है। ये हमारे इन सर्विस ट्रेनिंग सेंटर है, जहाँ पे कि जैसा मैंने आपको बताया कि बेसिक ट्रेनिंग के उपरांत कई सारे ऐसे कोर्सेज होते हैं जिसे कि सभी बलकर्मी इरेस्पेक्टिव ऑफ रैंक उस कोर्सेज को पूरा करते हैं ताकि वो अपनी सेवा में और दक्षता हासिल कर सकें। तो हमारे CI & JW स्कूल ग्वालदम में माउंटेनियरिंग विंग है, जहाँ पे कि मैं गर्व से कहना चाहूँगा कि SSB की टीम माउंट एवरेस्ट की सीमाओं पर भी, माउंट एवरेस्ट की चोटी पर
0: जी
1: अपना विजयी तिरंगा फहरा चुकी है।
0: बहुत खूब सर, क्या बात है।
1: इसके अतिरिक्त वहाँ पे एक्सप्लोजिव की ट्रेनिंग होती है, कमांडोज की ट्रेनिंग होती है, बहुआयामी ट्रेनिंग सेंटर है ये।
0: तो आप इस ट्रेनिंग सेंटर में एज ए ट्रेनर अपनी सेवाएं दे रहे हैं?
1: जी बिल्कुल, मैं यहाँ पे बतौर इंस्ट्रक्टर या ट्रेनर के रूप में अपनी सेवाएं दे रहा हूँ।
0: जी तो सर किस तरीके का एक्सपीरियंस है, क्योंकि आप पहले सर्व कर चुके उसके बाद फिर आप अब ट्रेनिंग भी दे रहे हैं, तो सीखना और फिर सिखाना, इन दोनों में कितना अंतर आप पाते हैं और क्या ज्यादा कठिन आपको लगता है?
1: मुझे ऐसा लगता है कि दोनों ही का अपना अपना महत्व है। जिस व्यक्ति ने धरातल पर कार्य किया है, जिसे धरातल की जो भी कठिनाइयां हैं, चुनौतियां हैं, वो पता है, वो बेहतर तरीके से उसको अपने आने वाली पीढ़ी को या जो भी ट्रेनीज रहते हैं उसको बता सकता है। और यही करने की मैं कोशिश करता हूँ, जो भी मैंने ग्राउंड में अपने अनुभव से और जो हमारा एक वहाँ पर

0: टेन्योर रहा है, उससे सीखा है, उसको ट्रेनीज को बताने की मेरी चेष्टा होती है ताकि वो ग्राउंड के लिए रेडी बन सके।
1: जी अच्छा शिवम कुमार जी, हम यहाँ पर एक बात जानना चाहेंगे कि एक जब फौजी बन रहा होता है तो उसके दिल में क्या अरमान, क्या जज्बा होता है देश सेवा को लेकर के? क्या वो सब चीज़ें चाहता है कि वो जाएगा फ्रंट पर और जैसे दुश्मनों का मुकाबला करेगा, और वो बिल्कुल एकदम बेखौफ होकर के निडर बिल्कुल साहस के साथ उनका सामना करेगा भले ही फिर वो अपनी जान की परवाह ना करे, कुछ भी हो जाए, वो जज्बा कैसा होता है?
0: बिल्कुल शाही जी, इसमें ऐसा है कि जब हम बेसिक ट्रेनिंग के उपरांत धीरे धीरे हमारी नौकरी आदि बढ़ती जाती है
1: जी,
0: तो हमें ये समझ में आ जाता है कि एक फौजी के जीवन का ध्येय वाक्य होता है कि लड़ाई ना तो अधूरी होती है और ना ही अधूरे मन से लड़ी जाती है।
1: क्या बात है।
0: तो एक फौजी अपने पूरा जीवन न्यौछावर करता है, इसी के लिए वो तपता है ताकि जब मौत सामने नाच रही हो
1: जी
0: तो फौजी उसका डट कर सामना करे और अपने देशवासियों का, अपने राष्ट्रवासियों का, जिसकी सुरक्षा का जिम्मा उसे दिया गया है
1: जी,
0: उसे बखूबी निभाए।
1: क्या बात है, ये जोशीले स्वर आ रहे हैं हमारी तरफ श्री शिवम कुमार जो हैं असिस्टेंट कमांडेंट सशस्त्र सीमा बल। सर ये जज्बा और ये जोश आप जो जिस तरीके से हम महसूस कर रहे हैं आपको देख करके और आपसे सुन करके, तो इस जज्बे के साथ ही हमारा युवा अगर इसमें जाना चाहता है तो किस तरीके से आप उसको गाइड करना चाहेंगे?
0: जी, युवाओं के लिए सशस्त्र सीमा बल में जाने के 3 रास्ते हैं
1: जी।
0: अगर कोई कांस्टेबल लेवल पे भर्ती होना चाहता है तो SSC द्वारा GD की परीक्षा आयोजित की जाती है जिसका मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन उसकी मैट्रिकुलेशन होती है,
1: ठीक है।
0: इसके उपरांत कोई अगर सबऑर्डिनेट ऑफिसर या सब इंस्पेक्टर के पद पे जाना चाहे
1: जी
0: तो SSC द्वारा CPO की परीक्षा आयोजित की जाती है जिसका मिनिमम क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया ग्रेजुएशन होता है किसी भी स्ट्रीम में, और बतौर डायरेक्ट क्लास ए ऑफिसर असिस्टेंट कमांडेंट अगर इसमें कोई जाना चाहे
1: जी
0: तो UPSC द्वारा आयोजित सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस एग्जामिनेशन करवाई जाती है जिसके लिए मिनिमम आपको ग्रेजुएट होना जरूरी है।
1: ओके, जैसे कि आपने UPSC पास करके
0: जी बिल्कुल
1: एज एन असिस्टेंट कमांडेंट आपने ज्वाइन किया
0: जी बिल्कुल।
1: लगातार हमारे पास हमारे आज के मेहमान श्री शिवम कुमार के लिए यहाँ पर मैसेजेस का सिलसिला लगातार जारी है। शिवम कुमार जी, मैं आपको वो मैसेज पढ़ के सुनाऊंगा और मैं चाहता हूँ कि मैं आपसे आपका जो बहुत ही ज्यादा एक यादगार मैं कहूँ और वो हर तरह से यादगार एंटी मास्ट ऑपरेशन आपने जो किया लखीसराय बिहार में फरवरी 2022, उसके बारे में हम बात करेंगे कि वो कितना क्रिटिकल था वो ऑपरेशन, कितना कामयाब था और कितना खतरनाक था वो ऑपरेशन।
0: जी बिल्कुल, ये मेरा सौभाग्य था कि मुझे अपनी नौकरी के पहले 1-2 वर्षों में ही
1: जी
0: ऐसे नक्सल एंटी नक्सल ऑपरेशन में शामिल होने का मौका मिला और इसके लिए मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा श्री सोमी जोशी सर जो इंस्पेक्टर जनरल थे
1: जी,
0: श्री दीपक सिंह जो मेरे बटालियन के कमांडेंट थे 32वीं वाहिनी के, इसके अतिरिक्त मेरे जो सीनियर्स थे श्री नरपत सिंह
1: जी,
0: श्री जसवीर सिंह तोमर, श्री गुलशन झा, और जो मेरे सबऑर्डिनेट्स और कलीग थे ऋतुराज, अरविंद
1: जी,
0: राणा और प्रदीप का, जिन सबके टीम वर्क ने जिन्होंने मुझे मोटिवेट किया, मुझे ग्रूम किया इस चीज़ के लिए क्योंकि मैं बिल्कुल नया था फौज के लिए, मुझे ग्रूम किया ताकि मैं इस ऑपरेशन में पार्टिसिपेट कर सकूं, लीड कर सकूं और विजय हासिल कर सकूं
1: जी। और आपको हम बताना चाहेंगे कि शिवम कुमार जी हमारे पिछले संदेश सोल्जर्स में कुमार ऋतुराज जी भी हमारे साथ इस शो में मौजूद थे, तो वो आपके सीनियर थे, उन्होंने भी बहुत गाइड किया आपको।
0: जी जी बिल्कुल, वो मेरे साथ काम करते थे, वो मेरे सबऑर्डिनेट थे और उनका भी सहयोग रहा है इस चीज में
1: जी। तो हम यहाँ पर ये जानना चाहेंगे ये ऑपरेशन किस तरीके से आपने कंप्लीट किया और कितना टफ था, कैसे प्लानिंग करी और कितने चैलेंजेस का आपको सामना करना पड़ा, आपका टीम वर्क कैसा था?
0: जी बिल्कुल, सर्वप्रथम यह है कि किसी भी ऑपरेशन को
1: जी
0: सिर्फ आप असले और बारूद के बल पे आप नहीं जीत सकते हैं। ऑपरेशन जीता जाता है टीम वर्क से, साथियों के सहयोग से
1: जी,
0: एक उचित मार्गदर्शन से और सामरिक रणनीति से। इस ऑपरेशन में भी हमने सबसे पहले जो किसी भी ऑपरेशन का मूल आधार होता है वो है इंटेलिजेंस इकट्ठा करना
1: जी।
0: सबसे पहले हमने इंटेलिजेंस इकट्ठा की माओवादियों के बारे में, जिस एरिया में मैं काम करता था
1: जी
0: लखीसराय बिहार में, वहाँ जितेंद्र कोड़ा, विनोद कोड़ा और अर्जुन कोड़ा, ये सब आतंक के प्रतीक थे जिनके ऊपर 50 से अधिक हत्याओं के मामले चल रहे थे, ये सभी नक्सली टीम के मेंबर्स थे और 50 से अधिक हत्याओं के इन पे मामले थे। हमने उनके बारे में आसूचना हासिल की, इंटेलिजेंस हासिल किया उनके बारे में, इसमें कि हमारे ह्यूमन इंटेलिजेंस भी थे
1: जी,
0: और टेक्निकल चीज़ों का भी हमने मदद लिया, गैजेट्स का हमने मदद लिया। उसके बाद उनको हमने एक चक्रव्यूह में फंसाया

0: जिस चक्रव्यूह में सभी नक्सली फंसते चले गए और फाइनली ये ऑपरेशन, एक लंबी कहानी है ये, एक दिन का सफर नहीं था, 3 महीने तक इसकी तैयारी चली।
1: ओके, तो आपने ये जो ड्रेडेड क्रिमिनल्स थे इनको न्यूट्रलाइज भी किया और इनको, मतलब इनके जो काम थे इनके, उनके जो क्रिमिनल एक्टिविटीज थी उनको भी आपने पूरी तरीके से खत्म कर दिया इस ऑपरेशन के माध्यम से।
0: जी बिल्कुल, उनका उनका जो शैली था उनका, वो किडनैपिंग करते थे, एबडक्शन करते थे
1: जी,
0: लोगों में उनका आतंक था, कभी भी रात में किसी भी घर, किसी के घर घुस जाना और बंदूक की नोक पे उससे ऐसे कार्य करवाना जिसको कि वो नहीं चाहता है करना, और उनके डर के कारण वहाँ की जो जनता थी कभी खुल के हमसे बात नहीं करती थी, अपनी शिकायतों को नहीं रखती थी। तो इस चीज़ पे हमने काम किया और फिर ये एक पूरी प्रक्रिया थी जिसको कि हमने किया, इंटेलिजेंस जनरेशन से लेकर के और ऑपरेशन एग्जीक्यूशन तक।
1: और जाहिर है कि जब इस ऑपरेशन को सक्सेसफुली एग्जीक्यूट किया गया तो फिर वो जो एक भरोसा जो टूट रहा था वो जनता में भी फिर दोबारा से कायम हुआ होगा।
0: जी बिल्कुल, इसमें ऑपरेशन के एग्जीक्यूशन के उपरांत असली खुशी तो वही होती है, असली खुशी ये नहीं है कि आपने नक्सली को मार दिया
1: जी
0: या आतंकवादी को मार दिया, असली खुशी वो है कि जब आप जम्मू कश्मीर के जवाहर टनल से निकले, जब आपका कॉन्वॉय निकले
1: जी,
0: या छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा या बिहार के भीमबांध से जब आपकी गाड़ी निकले और तब कोई बच्चा हाथ में झंडा लिए जय हिंद आपको करता है,
1: क्या बात है,
0: तब जो उसके चेहरे की जो वो सुरक्षा का भाव उसके चेहरे पे रहता है, ये आपकी असली जीत है बतौर फौजी।
1: क्या बात है। तो उस झंडे के साथ और उस जय हिंद के नारे के साथ वो जो खुशी मिलती है वो खुशी सबसे बढ़कर होती है।
0: जी बिल्कुल, वो हमारे लिए सबसे बड़ी खुशी वही है कि जनता का विश्वास जो हमने जीता है
1: जी,
0: वो हमारे लिए सबसे बड़ी खुशी है और इस ऑपरेशन के माध्यम से हम ये करने में सक्षम हुए थे।
1: जी बिल्कुल, क्या बात है। और यही वो ऑपरेशन था जिसकी वजह से आपको प्रेस्टीजियस पुलिस मेडल फॉर गैलेंट्री से नवाजा गया राष्ट्रपति द्वारा 2024 में।
0: जी बिल्कुल, इस ऑपरेशन में सबका सहयोग था, सीनियर से लेकर के जूनियर सबका सहयोग था
1: जी।
0: मैं आपको छोटा सा वृतांत इस ऑपरेशन का बताना चाहता हूँ।
1: जरूर जरूर।
0: ये हमारी प्लानिंग चल रही थी, जो बिहार के लखीसराय में मैं लोकेटेड था वहाँ पे मेरी पोस्टिंग थी, तो हमारी प्लानिंग चल रही थी कि वहाँ का जो नक्सल ग्रुप है उसको कैसे ट्रैप किया जाए, अपने चक्रव्यूह में कैसे लाया जाए। तो जिन सीनियर्स के मैंने नाम बताया आप
1: जी,
0: उनके सानिध्य में हमारी प्लानिंग चली, फिर हमने एक गुप्तचर को प्लांट किया उनके नक्सली टीम में और फिर उसके द्वारा दी गई सटीक जानकारी के बेसिस पे हमें ये पता चला कि दिनांक 2 फरवरी 2022 जो मुठभेड़ का दिन था
1: जी,
0: उस दिन ये नक्सली जंगल में आने वाले थे, कोई एक खास जगह थी जहाँ पे वो आने वाले थे। तो उसके लिए हम पहले से ही तैयार थे, हमने पहले से एक लंबी प्लानिंग कर रखी थी। तो हमारी टीम उसके अंदर लॉन्च हुई
1: जी,
0: हम अपने पूरे फुल स्ट्रेंथ स्क्वाड के साथ लॉन्च हुए और हमारे हमारे जो कमांडेंट जो थे श्री दीपक सिंह एवं श्री सुशील कुमार जो लखीसराय बिहार के SP थे एवं श्री मनोरंजन पांडे हमारे कमांडेंट सर थे, उनके मार्गदर्शन में हमारी पूरी टीम लॉन्च हुई जिसमें नरपत सिंह डिप्टी कमांडेंट, गुलशन झा सर, जसवीर तोमर सर और मैं, और मेरे साथ अलग अलग रैंक्स के लड़के थे। हमने 2 टीमें बनाई और जंगल की अपनी चुनौतियां हैं।
1: बिल्कुल,
0: जंगल में आपको ये नहीं पता होता है कि गोली कब किधर से आएगी, क्योंकि कोई फिक्स्ड पॉइंट नहीं होता है। तो हमें एक जनरल इलाका पता था कि यहाँ पे नक्सली आने वाले हैं
1: जी,
0: तो हम उस इलाके की तरफ बढ़ रहे थे अपनी पूरी फुल स्ट्रेंथ स्क्वाड के साथ। और 2 तारीख को लगभग 9 बजे सुबह की बात है ये
1: जी,
0: सीधे गोलियों की बौछार हम पे आई।
1: ओके, तो यानी कि आपकी जब आंख खुलती है तो सीधा गोलियों से आपका स्वागत करते हैं वो लोग।
0: जी बिल्कुल, हम जब आगे बढ़ रहे थे उस एरिया की तरफ जा रहे थे तो एकदम से हमारी गोलियों की बौछार हमारे ऊपर आई, क्यों, और जंगल में एक सिद्धांत चलता है
1: जी,
0: यू मिस एंड आई हिट।
1: और
0: पहली गोली जो थी नक्सलियों की वो उन्होंने मिस कर दिया था, से किसी को भी वो उनकी पहली गोली नहीं लगी। तब हमें पता था कि अब हमें क्या करना है, उसने मिस कर दिया, वी आर गोइंग टू हिट देम।
1: एग्जैक्टली, मतलब हम नहीं मिस करेंगे किसी भी कीमत पर।
0: बिल्कुल, एक हमारी ट्रेनिंग ही इसलिए होती है कि हमको उसको हिट करना है। तो हमने वहीं पे रणनीति बनाई कि कौन किधर से कैसे अटैक करेगा और फिर जवाबी जो हमारी कार्रवाई थी वो हमने फुल स्ट्रेंथ में जवाबी कार्रवाई की नक्सलियों के ऊपर। क्रॉस फायरिंग चली, बहुत देर तक फायरिंग चलती रही, लगभग आधे घंटे तक ये फायरिंग चली, उसके उपरांत जाकर के ये फायरिंग समाप्त हुई। तो ये जो यज्ञ, ये जो नक्सल एनकाउंटर होता है ना, ये हम फौजियों के लिए एक यज्ञ जैसा है, एक धार्मिक अनुष्ठान जैसा है, जिसमें कि हम अपना तन मन धन सब झोंक देते हैं। तो फिर जब ये फायरिंग खत्म हुई
1: जी,
0: उसके बाद जाकर के हमने देखा तो हमने पाया कि 2 बॉडीज वहां पे हमें मिली और संयोग से वो दोनों बॉडीज थी जितेंद्र कोड़ा और विनोद कोड़ा की,
1: मतलब जो उनके लीडर्स थे।
0: जी बिल्कुल।

0: उनके लीडर्स थे जिनका आतंक जो है वो पूरे पूरे लखीसराय क्षेत्र में कहें, पूरे बिहार क्षेत्र में फैला हुआ था, और जिनके आतंक के कारण जनता हमसे कुछ बात नहीं करती थी, हमारे नज़दीक नहीं आती थी, उन दोनों की बॉडीज़ हमें वहाँ मिली। और उसके अतिरिक्त एक उनका और लीडर था अर्जुन कोड़ा
1: जी,
0: जिसको कि उसके राइट थाई में जाकर के हमारी गोली फंस गई थी, और फिर आगे आने वाले एक महीने बाद
1: जी
0: उसने उसने सरेंडर किया एक दूसरी फोर्स के सामने, और उसने ये बताया
1: जी
0: कि उस दिन एसएसबी के साथ हुई मुठभेड़ में वो गोली जो है मेरे थाई में आके फंस गई है, और अगर मैंने सरेंडर इसलिए किया है क्योंकि अगर मैं इलाज नहीं करवाऊंगा तो मैं
1: मर जाऊंगा। तो उसके बाद इसके अलावा कोई दूसरा चारा नहीं बचा
0: जी, बिल्कुल। तो हमारे लिए ये एक बहुत बड़ा बहुत बड़ी जीत थी, मैं इसे अपने जीवन का सबसे स्वर्णिम पल अविस्मरणीय क्षण मानूंगा, जहाँ पे कि मुझे गर्व है कि मैं अपनी पूरे टीम के साथ ऐसे राक्षस से लड़ा
1: जी
0: और उसे पराजित किया, और उसका जो फल मिला वो सबसे सुखद फल था कि जो हमारा ध्येय वाक्य है सेवा सुरक्षा बंधुत्व
1: जी,
0: हमने सेवाएं दी वहां की जनता को, उनके मन में नक्सलियों को मारने के उपरांत
1: जी
0: उनके मन में एक सुरक्षा का भाव पैदा हुआ
1: बिल्कुल,
0: और अंततः वो बंधुत्व में तब बदला जब मैं उसी गांव वाले के साथ जो हमसे बात नहीं करता
1: जी
0: था उसी के साथ मैं बैठ करके चाय पीता था
1: और क्या बात है,
0: खाना खाता था,
1: क्या बात है
0: तो
1: सर,
0: ये सशस्त्र सीमा बल की जीत थी।
1: बेशक बेशक, बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं कि ये जो आपका इतना डायरिंग ऑपरेशन था उसके बाद इसमें जो आपने कामयाबी हासिल करी तो यही सबसे बड़ी जीत थी कि जो विश्वास जो आपने बनाया उन लोगों में जो आपसे पहले बात करने में डरते थे। यहाँ जिस तरीके से शिवम कुमार आप अपनी जिस तरीके से ऑपरेशन के बारे में बता रहे थे, भाई इमेजिन कर रहा था स्टूडियो में बैठ करके कि वो क्या सिचुएशन वो मंजर रहा होगा। तो मैं सर ये जानना चाहता हूँ, एक शायद लिसनर भी जानना चाहता है, और इतने मैसेजेस मेरे पास आ रहे हैं मैं उनको अभी ले नहीं पा रहा, बाद में लूंगा। तो क्या ये जो हम अक्सर मैं बात करता हूँ कि हम इस तरीके की कुछ सिचुएशंस देखते हैं, आप आमने सामने से दो ग्रुप में जो फायरिंग चल रही है, बैटल चल रही है, वॉर सिचुएशन है, तो हम फिल्मों में जो देखते हैं तो बड़ा एक्साइटमेंट सा होता है, लेकिन आप उस सिचुएशन को फेस कर रहे हैं, वहाँ पर मौजूद हैं, और आप अपने देश के लिए अपनी जान की बाजी वहाँ पर लगा रहे हैं उन क्रिमिनल से, उन आतंकवादियों से लड़ने के लिए। सर वो मोमेंट, वो जज्बा, वो जो एक फीलिंग होती है वो क्या होती है, वो खौफ, वो डर, वो सिचुएशन, वो थोड़ा सा हम जानना चाहेंगे आपके अपने शब्दों में।
0: सबसे पहले तो मैं जो सुन रहे हैं जितनी भी श्रोतागण
1: हैं
0: मैं उनको बताना चाहूंगा कि ये फिल्मों में जो ग्लैमराइज किया जाता है, फौज में आने के सबसे पहले दिन तो आपका ग्लैमर जाता है, वो ग्लैमर छूटता है सबसे पहले, क्योंकि आप ग्लैमर के बल पे आप ये बहुत लंबी सेवा नहीं दे सकते हैं
1: जी।
0: इसमें आपके अंदर जो राष्ट्र प्रेम की भावना
1: जी,
0: जो राष्ट्र के प्रति जो आपकी सेवा भाव है जो अंतर्निहित किया जाता है, वही आपको लंबे समय तक बतौर फौजी आपको खींचेगा। तो जैसा आप बता रहे हैं कि जब गोलियां चलती हैं
1: जी,
0: तो हमारी तैयारी इसी क्षण के लिए होती है। एक फौजी के जीवन में ये सबसे बड़ा क्षण होता है कि जब उसको सामने एक ऐसा व्यक्ति है जिसने समाज के में कई हत्याएं की हैं
1: जी,
0: कई बेगुनाहों की जान ली है, जब वो उसका खात्मा करता है तो हम इसे किलिंग नहीं, इसे हम वध मानते हैं, और एक राक्षस का वध करते हुए जो अनुभूति होती है, जो आनंद आता है, वो
1: उसके कहने क्या है,
0: उसको लफ्जों में बयान नहीं किया जा,
1: क्या बात है। और इसीलिए देश की मिट्टी को सलाम करने को जी चाहता है उसी जज्बे के साथ, जिस जज्बे के साथ शिवम कुमार ने इस खतरनाक ऑपरेशन को कामयाबी के साथ अंजाम दिया। सर मैं और अब इंतजार नहीं कर सकता, मैं आपको एक एक करके कुछ मैसेजेस पढ़ करके सुनाऊंगा। शुरुआत जो सबसे पहले मैसेज आया हमारे पास यहां पर, बोथ आरजे एंड असिस्टेंट कमांडेंट शिवम जी एंड ऑल एआईआर न्यू दिल्ली फ्रॉम, ये मुबारकबाद दे रहे हैं, वणकम नमस्कारम। और ये हैं श्रीरंगम राजेश, श्रीरंगम त्रिची त्रिचुपल्ली तमिलनाडु से
0: जी, धन्यवाद और जय हिंद राजेश जी आपको।
1: और इसके बाद है एक मैसेज, जय हिंद साहब, बहुत बहुत मुबारक सर आपको, एसएसबी के जरिए पूरे देश का नाम रोशन कर रहे हैं आप, आपके साथ
0: कजरा लिखा है,
1: हाँ कजरा में काम कर रहे, बहुत कुछ सीखने को मिला साहब, जय हिंद। सर ये आपके कोई एसोसिएट, कोई आपके साथी या जूनियर लगते हैं?
0: बिल्कुल ये मेरे साथ के हैं, मेरे अच्छा। जूनियर और सीनियर तो है, ये पूरी टीम की बात है क्योंकि
1: जी बिल्कुल बिल्कुल
0: मेरे टीम के साथी हैं,
1: साथी है,
0: कार्य किया है हमारे साथ।
1: और इसके बाद ये जय हिंद टू रेस्पेक्टेड गेस्ट सर एंड आरजे सर हियर, आई वुड लाइक टू पे माय ग्रेटिट्यूड टू शिवम सर एंड ऑल आवर इंडियन आर्मी फ्रॉम बॉटम ऑफ माय हार्ट, इट्स बिकॉज देयर सेल्फलेस सर्विस विद डेडिकेशन डिवोशन दे डिस्चार्ज देयर ड्यूटी फेयरलेसली, दे आर रियल हीरोज, I bow my hat to them, so I would say Jai Hind, Bharat Mata ki Jai, Vande Mataram. Myself, Shankar Lodh, and my wife, Anjali Lodh, offer obedience to

0: टू देम माई रिक्वेस्ट टू आज सर प्लीज फॉरवर्ड माई मैसेज शिवम सर. थैंक यू सर, आपका मैसेज हमने पहुंचा दिया है, शिवम सर सुन रहे हैं.
1: जी धन्यवाद मिसेज एंड मिस्टर लोध जी. मैं आशा करता हूं कि आप ये सभी संदेश जो फौजियों के द्वारा दिया जा रहा है उसको सुन रहे हैं
0: जी,
1: और इस चीज के लिए आपका धन्यवाद
0: जी. इसके अलावा मैसेज है ये, शुभ संध्या कह रहे हैं, जय हिंद, राजेश भल्ला एडवोकेट है कंकड़खेड़ा मेरठ से.
1: जी बिल्कुल, धन्यवाद आपको राजेश जी. मुझे और खुशी है कि
0: जी
1: एडवोकेट से लेकर के टीचर सभी वर्ग के लोग हमारा इस संदेश को सुन रहे हैं.
0: बिल्कुल सर, अपने कर्म और मजबूत इरादों के लिए पहचाने गए नक्सल उन्मूलन हेतु कृत संकल्प राष्ट्र प्रेमी को सैल्यूट है. ललन मिश्र रांची झारखंड से सर ये मैसेज कर रहे हैं आपको.
1: जी बिल्कुल, रांची मेरी जन्मभूमि कर्मभूमि रही है, तो यहां से ये मैसेज आया.
0: बिल्कुल, आपके अदम्य साहस और त्याग के कारण ही हम अपने घरों में सुरक्षित चैन की नींद सो पाते हैं. आप हमारे असली नायक हैं. जय हिंद जय भारत. ये है नेहा मिश्रा सर.
1: मुझे खुशी है कि समाज के सभी लोग फौज के कार्यों का, फौज की जो भी ड्यूटीज होती हैं उसका इतना सम्मान कर रहे हैं.
0: और ये है सर, जय हिंद सर, प्लीज एक कविता भारत माँ के नाम कहिए. रोहित मेहर हैं ये, विजयपुर बारगढ़ उड़ीसा से.
1: जी रोहित जी धन्यवाद, मैं कविता सुनाऊंगा आपको अंत में.
0: जी बिल्कुल बिल्कुल, हम जरूर सुनना चाहेंगे सर. हम लोगों का शिवम सर के साथ काजरा बिहार में कार्य करने का अनुभव बहुत उम्दा रहा. शिवम सर का पुलिस को जनता से करीब लाने का बहुत बड़ा योगदान रहा है काजरा लखीसराय बिहार में. सर ये भी आपके कोई साथी लगते हैं, सौम्य झा इनका नाम आ रहा है.
1: जी बिल्कुल, ये मेरे साथ के ही हैं, और हमारा उद्देश्य यही होता था कि जनता और पुलिस के बीच, फोर्स के बीच की जो खाई है उसको, उस खाई को पाटना ही हमारा उद्देश्य था.
0: बिल्कुल, करीब लाना है. जय हिंद सर, मैं आपको सुन रही हूँ, आपकी बातें और आपकी, आपके जज्बे को सलाम करती हूँ. उम्मीद करती हूँ हमारे देश के नौजवान प्रभावित होकर देश सेवा के लिए आगे बढ़ेंगे. धन्यवाद, मैं शबनम हूँ बी के दत्त कॉलोनी नई दिल्ली से. गैलेंट्री अवार्ड के लिए बहुत बहुत बधाई दे रही है सर आपको.
1: धन्यवाद शबनम जी, जय हिंद.
0: और ये हैं शिवम जी, यू आर अ पर्सन ऑफ ग्रेट विल पावर एंड करेज, एट द सेम टाइम यू आर वेरी काइंड ह्यूमन, अ ट्रू इंस्पिरेशन फॉर आवर यंगर जनरेशन. मैसेज आया सर ये विश्वजीत बिहार से, प्राइड ऑफ नेशन, प्राइड ऑफ बिहार, शिवम कुमार.
1: धन्यवाद विश्वजीत जी हमारे कार्यों की सराहना करने के लिए.
0: जी और ये है सर, हेलो सर, ग्वालदाम में महिलाओं की ट्रेनिंग के लिए बहुत अच्छे से आपने काम किया है. ये है मृदुल झा.
1: जी धन्यवाद मृदुल जी आपको, ये मुझे उम्मीद है कि ये शायद हमारे यहाँ माउंटेनियरिंग कोर्स जो महिलाओं का
0: जी जी जी उसकी, ये उसकी जरूर जरूर पार्टिसिपेंट रही होंगी. मैं नरपत सिंह, उप कमांडेंट सशस्त्र सीमा बल अंतागढ़ कांकेर छत्तीसगढ़, अपने 60 जवानों के साथ आपका कार्यक्रम सुन रहे हैं सर. ये FM रेनबो की पूरी टीम को हार्दिक आभार, कार्यक्रम अत्यंत प्रेरणादायक और आनंददायक है. हमारे साथ श्री दकेश्वर प्रसाद चंद्र सहायक कमांडेंट भी उपस्थित हैं, उनकी ओर से भी शिवम जी एवं पूरी टीम को विशेष रूप से जय हिंद.
1: नरपत सर 4 बार के गैलेंट्री विनर हैं, मैं
0: okay.
1: तो अपना गुरु मानता हूं, और हमारे टीम के ये ग्राउंड कमांडर्स में से एक थे, तो okay. जो मैंने सीखा है इन्हीं सीनियर्स से सीखा है.
0: क्या तो, बात है सर. तो नरपत सिंह जी भी हम बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं अपने इस शो के माध्यम से, आपने हमें मैसेज भी किया सर, बहुत बहुत धन्यवाद. और ये है शिवम सर, एन इंस्पिरेशन फॉर मेनी, फीलिंग वेरी प्राउड ऑफ हिम, ही ट्रूली डिजर्व्स ऑल द एक्लेड्स because of his team and their dedicated efforts, a lot of people today live terror-free. Proud of him. Ayush Dadich hai ye, Nayi Delhi se.
1: Ji bilkul, ye hamare junior hain aur main ummeed karta hoon ki jis pehal ki shuruaat hum logon ne ki hai,
0: ji.
1: us pehal ko aage aane wale jitne bhi adhikari hain usko maqam tak le jayenge apni team ke saath.
0: Bilkul, aur Ayush bhi uska hissa rahenge.
1: Ji bilkul.
0: Aur ye hain Naxali operation ko successful banane ke liye bahut bahut badhai Shivam ji, proud of Shalini Pathak likh rahi hain aapke liye.
1: Dhanyawad Shalini ji aapka.
0: और यह है मैं सोता हूँ रातों को चैन से क्योंकि मैं जानता हूँ मेरे लिए कोई जाग रहा है. शिव है ये मेरठ से.
1: ये हमारा फर्ज है, हमने राष्ट्र सेवा की कसम खाई है और आप ऐसे ही आप चैन से सोएं, यही हमारी कल्पना है.
0: और यह है सर शिवम सर के साथ कचरा में काम करने का अवसर मिला, कई ऑपरेशन में उन्होंने अपनी टीम का नेतृत्व किया. शिवम सर का नक्सलियों के लिए डायलॉग था कि ये कि या तो तुम अपनी हरकत छोड़कर समर्पण कर दो या ये देश, वरना अंजाम तो जानते ही हो. टीम को सदा फ्रंट से लीड किया है, ये कह रहे हैं पंकज लखीसराय से. सर आपके साथ ही हैं भी.
1: जी पंकज हमारे साथ के थे और ये सभी जाबाज ये टीम मेंबर्स हैं मेरे, जिन्होंने गोलियों के सामने जिन्होंने सभी ऑपरेशंस को अंजाम दिया है.
0: जी जी जी, और आपका पूरा पूरा साथ दिया और अपने आपको बिल्कुल कदम से कदम मिलाकर के.
1: जी बिल्कुल, ये इनके बिना ये सारी उपलब्धि या ये सारा ऑपरेशन संभव ही नहीं था.
0: बिल्कुल. और एक और मैसेज है सर, जय हिंद सर, जब भी आपका प्रोग्राम सुनते हैं संदेश टू सोल्जर हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं. सर आपको बहुत बहुत बहुत जय हिंद. हम भी सर अपने बच्चों के को आर्मी में भेजना चाहते हैं. हम संजय बोल रहे हैं उत्तम नगर से नई दिल्ली, और आपका प्रोग्राम बहुत बहुत अच्छा है और हमारे आर्मी के सभी जवानों को जय हिंद कह रहे हैं। ये
1: धन्यवाद संजय जी, और एक बार फिर से जैसा इन्होंने कहा, मैं एफएम रेडियो को, एफएम रेनबो को धन्यवाद देना चाहता हूं
0: जी,
1: कि जो देश विदेश के सभी लोगों को फौज के द्वारा जो भी कार्य किए जा रहे हैं उससे अवगत करा रहा है, और फौज के राष्ट्रप्रेम से, राष्ट्रप्रेम की झागना को, भावना को प्रज्वलित कर रहा है लोगों के अंदर।
0: बिल्कुल सर, आकाशवाणी रेनबो का ये हमारे आर्म्ड फोर्सेस को डेडिकेटेड शो है ये, और ये है संदेश टू सोल्जर्स। सर, आपके साथ बातचीत का ये सिलसिला जारी रहेगा, जो समय हमारे पास बचा है वो बहुत तेजी के साथ गुजर रहा है आपके साथ बातचीत करते हुए, इस जोश और जज्बे के साथ। हमारे साथ हैं श्री शिवम कुमार, असिस्टेंट कमांडेंट सशस्त्र सीमा बल। आप सुन रहे हैं संदेश टू सोल्जर्स शाहिद के साथ।

0: आप हैं शायद के साथ, और हमारे साथ हमारे आज के खास मेहमान श्री शिवम कुमार, सहायक कमांडेंट हैं सशस्त्र सीमा बल। सर, हम आपसे बहुत ही शानदार और जोश और जज्बे से भरी हुई बातें यहाँ पर कर रहे हैं, और लगातार मैसेजेस का भी सिलसिला जारी है, मैं आपको जैसे अभी बता रहा था। तो हम यहाँ पर अब आगे बढ़ेंगे सर, और जानना चाहेंगे कि आपकी जो लीडरशिप स्किल्स हैं, आपका ऑपरेशनल एक्सेलेंस है जो आपने एंटी नक्सल ऑपरेशंस में दिखाया, उसके अलावा आपने कई खतरनाक वांटेड एक्सट्रीमिस्ट और क्रिमिनल्स को भी ढेर करा, उनको पकड़ने में पूरे पूरे सक्सेसफुल ऑपरेशन चलाए, उसके अलावा आपने इसके अलावा भी कई हाई रिस्क ऑपरेशंस अंजाम दिए हैं जिनके लिए आपको बहुत सारे अवार्ड से नवाजा गया है, जिसमें सबसे पहला प्रेस्टिजियस अवार्ड था पुलिस मेडल फॉर गैलेंट्री 2024 में। उसके अलावा आपको कई सारे मेडल्स, कमेंडेशंस और एप्रिसिएशन मिले हैं, सर्टिफिकेट्स मिले हैं डायरेक्टर जनरल SSB से, इंस्पेक्टर जनरल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से, सुपरिनटेंडेंट ऑफ पुलिस से, और कमांडेंट से, और अदर सीनियर ऑफिसर से भी आपको आपकी परफॉर्मेंस के लिए, आपकी ऑपरेशनल अचीवमेंट्स के लिए, आपकी लीडरशिप के लिए, आपके प्रोफेशनलिज्म के लिए, पब्लिक स्पीकिंग, और साथ ही एक चीज और भी जो आपके साथ जुड़ी हुई, इतनी सारी आपकी जो खूबियां हैं उनके साथ साथ कि आपकी जो लीडरशिप स्किल है, पब्लिक स्पीकिंग है, आप किस तरीके से मोटिवेट करते हैं यंगस्टर्स को, और साथ ही साथ फोर्स लेवल डिबेट कॉम्पिटिशंस भी आप कंडक्ट कर चुके हैं और बहुत ही शानदार तरीके से उसको परफॉर्म करते हैं, तो इसके बारे में कुछ बताइए।
1: जी शाजी जी, इसमें सबसे प्रथम यह है कि आप जिसके साथ भी कार्य करते हैं, तो हमारे के जितने भी टीम मेंबर्स होते थे, हमारे जितने भी साथी होते हैं, इरेस्पेक्टिव ऑफ रैंक
0: जी,
1: आपको ये समझना पड़ेगा कि आप फर्स्ट अमंग द इक्वल्स हैं, आप उनके साथ के ही हैं। जब आप उनकी परिस्थिति को समझेंगे, जब आप उनके शूज में आएंगे, तभी आप उनको मोटिवेट कर सकते हैं। तो एक कमांडर का सर्वप्रथम यह कार्य है कि वो अपने साथियों की परेशानियों को समझे
0: जी,
1: उनको बेस्ट से बेस्ट फैसिलिटीज़ मुहैया करवाए, और उनको मोटिवेटेड रखे कि हर परिस्थिति में, चाहे वो प्रोफेशनल हो या पर्सनल इश्यूज हो
0: जी,
1: लगातार उसको केटर करे, उसकी उसकी समस्या का निराकरण करने की कोशिश करे, और हर वक्त उसके साथ खड़ा हो, उसके अच्छे दिन में, उसके बुरे दिन में, तभी जा कर के वो फौजी या वो जो भी आपका सबॉर्डिनेट है
0: जी,
1: वो आपसे आगे, जब भी बाधा आएगी, जब भी गोली आएगी, तभी वो आपसे आगे, कमांडर के आगे वो खड़ा होगा। जब उसको पता होगा कि उसका कमांडर उसके लिए हर क्षण खड़ा है, तभी वो आपके लिए खड़ा होगा,
0: तभी वो खड़ा होगा, क्योंकि आप उसके लिए पहले से खड़े हैं। सर, हम आपके अवार्ड्स और जो कमेंडेशंस हैं और जो आपके मेडल्स हैं उनकी बात करते हैं। नवंबर 2025 में एंटी नक्सल ऑपरेशंस और शानदार लीडरशिप के लिए ऑनरेबल गवर्नर साहब और चीफ मिनिस्टर ऑफ झारखंड ने भी आपको अवार्ड से सम्मानित किया था, वो कौन सा अवार्ड था?
1: जी, मुझे एंटी नक्सल ऑपरेशंस के लिए 2024 के नवंबर में
0: जी
1: 2025 के
0: 2025 नवंबर जी
1: 2025 के नवंबर में, क्योंकि मैं झारखंड का रेसिडेंट हूँ
0: जी,
1: तो मुझे झारखंड के ऑनरेबल गवर्नर एवं ऑनरेबल CM के द्वारा सम्मानित किया गया था, क्योंकि मैं वहाँ का वासी हूँ, मेरा स्टेट झारखंड है, और मैंने अपने फोर्स के लिए और अपने देश के लिए या अपनी टीम के साथ मिलकर मुझे ये कार्य करने का अवसर मिला था
0: जी,
1: इसका सम्मान किया गया था झारखंड सरकार के द्वारा
0: जी। और सर, इसके अलावा आपको उत्तराखंड सरकार की तरफ से भी, चीफ मिनिस्टर साहब की तरफ से भी जनवरी 2026 में भी आपको सम्मानित किया गया था। आपकी जो एज ए ट्रेनर CINJW स्कूल SSB गोलदाम में आपने जो अपनी सेवाएं दी एज ए ट्रेनर, उसके लिए भी आपको ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तराखंड ने भी सम्मानित किया था
1: जी। मैं मेरी अभी जो करेंटली जो मेरी पोस्टिंग है
0: जी,
1: वो CINJW स्कूल SSB ग्वालदम में उत्तराखंड में, जहां मैं बतौर ट्रेनर हूं, तो पिछले 2 वर्षों से मेरी सेवाओं को फैसिलिटेट करने के, उसको सम्मानित करने के लिए मुझे ये मौका मिला कि मेरे सीनियर्स के द्वारा मेरा नाम नामित किया गया। मेरे DIG सर थे, श्री DN बॉम्बे सर, उन्होंने मेरा नाम नामित किया और मुझे झारखंड उत्तराखंड के माननीय मुख्यमंत्री द्वारा ये पुरस्कार दिया गया
0: जी। तो ये सर इतने सारे पुरस्कार हैं, इतने सारे आपके जो कमेंडेशंस हैं, मेडल्स हैं, अवार्ड्स हैं, इनको पा करके आप सर कैसा महसूस कर रहे थे और करते हैं?
1: सच पूछूं तो जब भी कोई ये कार्य करता है, अपने एंटी नक्सल ऑपरेशंस में मैं जा रहा था, तो सर्वप्रथम इसमें ऐसा नहीं था कि पुरस्कार के लिए ये चीज़ें की जाती हैं
0: जी, बिल्कुल।
1: तब सिर्फ राष्ट्रहित और देशहित का जो जज्बा है, वही आपको इन चीज़ों के लिए मोटिवेट करता है, लेकिन पुरस्कार उसका फल है। तो मैंने जितने भी ऑपरेशंस किए, मैंने अपने सीनियर से सीखा है कि आप फल के पीछे ना भागें, क्योंकि ये ऐसी चीज़ है जहाँ पे कि जिंदगी और मौत जो है वो लाइन पे खड़ी होती है। तो इसके लिए पुरस्कार सिर्फ आपका मोटिवेटिंग फैक्टर नहीं हो सकता, ये टीम एफर्ट है, राष्ट्रहित की भावना है जिसके लिए मैं ये कर रहा था
0: जी।
1: और जब पुरस्कार से इसको नवाजा जाता है, तो निश्चित रूप से ये अच्छा प्रतीत होता है,
0: बेशक, और हौसला और भी बढ़ता है, और आपके जो भी साथी होते हैं उनको भी हौसला मिलता है। सर, ये सब ऑपरेशंस में, इतनी सारी आपकी ट्रेनिंग में, इतने आपके कोर्सेज में, और

0: फैशन टेक्नोलॉजी से एसएसबी में आने में परिवार का आपका किस तरीके से पूरा एक रोल रहा, सहयोग रहा, कैसी सपोर्ट रही, ये भी बताइए
1: जी। मैं बताना चाहूँगा कि मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मैं बड़े परिवार से आता हूँ जिसमें कि हम लोग चार भाई बहन हैं और मेरे माता पिता हैं और मेरी शादी हो चुकी है, मेरी धर्म पत्नी भी हैं
0: जी।
1: तो मेरे पिताजी ने और मेरी माँ ने इसका खुले दिल से इसका सपोर्ट किया जब मैं फोर्स में आना चाहता था। हालांकि मेरी माँ डरती थी इस चीज़ से, लेकिन मेरे पिताजी ने बहुत बार मुझे मोटिवेट किया। और मेरे जितने भी भाई बहन हैं और जितने मेरे रिलेटिव्स हैं, मेरे बड़े भाई, मेरी बड़ी बहन, मेरी दो बहनें बड़ी हैं, एक मेरे बड़े भाई साहब हैं,
0: अच्छा
1: उन्होंने मुझे मोटिवेट किया इस चीज़ के लिए लगातार। और अंत में जिस व्यक्ति का एक और बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है वो
0: जी
1: है मेरी पत्नी। उन्होंने लगातार, क्योंकि सबसे ज़्यादा उनको ही इस कठिनाई को झेलना पड़ता था जब मैं बाहर रहता था,
0: जी
1: 3-4 दिनों तक मेरी बात नहीं होती थी उनसे, तो
0: तो
1: वो
0: जाहिर ये
1: बहुत
0: सपोर्ट तो सबसे इम्पोर्टेंट
1: सबसे
0: सपोर्ट।
1: हाँ ये ऐसा सपोर्ट था जिसकी कि मैं कल्पना नहीं की थी मैंने, तो मैं उसके लिए सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे ऐसा परिवार मिला है।
0: सर बिल्कुल समय हमारे पास खत्म हो चुका है और बातें बहुत सारी बची हुई हैं और मैसेजेस इतने आ चुके हैं मेरे पास कि अगर मैं पढ़ना शुरू करूं तो मुझे लग रहा है कि 15-20 मिनट उसी में निकल जाएंगे। लेकिन मैं बस चलते चलते आपसे एक दो मैसेज पढ़ने के बाद चाहूंगा कि आप युवाओं को मोटिवेट करने के लिए कोई बात कहना चाहें तो वो कहें और साथ ही अपनी वो एक स्पेशल कविता की चंद पंक्तियां भी जरूर सुनाइएगा। और मैं आपको तब तक एक दो पैसेज बता दूं सर, ये है वी आर प्राउड ऑफ यू शिवम सर, रागिनी है गुवाहाटी से। इसके अलावा जय हिंद सर, रजनीकांत रघुनाथ पाटिल महाराष्ट्र वार्ड 1 से। इसके अलावा ये हैं हमारे देश के फौजी भाइयों की हमारे और से सल्यूट और काफी लंबा मैसेज है। ये है पंडित चनप्पा सौंदर्य तेजस्विनी सरवाद से और आप इसी तरह सभी को प्रेरणा देते रहें और जय हिंद कह रहे हैं। ये हैं सरिता मिश्रा जी। और इसके अलावा प्रसाद दुबासी HC आर्मर सर, यू आर लीडरशिप इज इंस्पायरिंग एंड यू आर एन एक्सेलेंट ऑफिसर और वी अप्रिशिएट योर डेडिकेशन एंड प्रोफेशनलिज्म। शायद आपके साथ ही होंगे।
1: बिल्कुल मेरे साथ ही हैं और मुझे इस बात का गर्व है कि इसमें से मोस्टली जितने हैं उन्होंने मेरे साथ कार्य किया है, तो ये एक अच्छी बात।
0: सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप हमारे शो में आए और अपना समय निकाला। श्री शिवम कुमार सहायक कमांडेंट सशस्त्र सीमा बल आज के संदेश सोलर के हमारे खास मेहमान। धन्यवाद बहुत बहुत सभी लिसनर्स का और हमारे आज के खास मेहमान का।
1: धन्यवाद सर।
0: जय हिंद
1: जय हिंद जय भारत।

0: ये संदेश टू सोल्जर्स हमारे दिल्ली केंद्र से, हम आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से बोल रहे हैं। कुछ ही पलों में समाचार प्रसारित होंगे।
1: तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं पूजा कुमारी। राज्य सरकार ने नई दिल्ली में आयोजित दो दिवसीय नेशनल स्टेक होल्डर्स कंसल्टेशन के आखिरी दिन आज राज्य के डिजिटल परिवर्तन को गति देने तथा झारखंड को सार्वजनिक प्रशासन आधारित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI के क्षेत्र में देश का अग्रणी राज्य बनाने के उद्देश्य से एक व्यापक रोड मैप प्रस्तुत किया गया। इस दौरान वक्ताओं ने राज्य की अमूल्य धरोहर की झलक भी देखने को मिली। इस मौके पर वक्ताओं ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के विजन की सराहना की। पुलिस महानिदेशक तदाशा मिश्रा की अध्यक्षता में आज रांची में जगन्नाथपुर रथ मेले के सफल आयोजन को लेकर उच्च स्तरीय बैठक हुई। DGP ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि मेले में सुरक्षा व्यवस्था में किसी प्रकार की लापरवाही नहीं होनी चाहिए। उन्होंने मेला क्षेत्र और रथ यात्रा मार्ग पर निगरानी बढ़ाने, पर्याप्त पुलिस बल की तैनाती करने और महिला श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए विशेष व्यवस्था सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया। झारखंड उच्च न्यायालय में आज JPSC संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा की प्रारंभिक परीक्षा के परीक्षा फल को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई हुई। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति MS सोनक और न्यायमूर्ति राजेश शंकर की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए प्रार्थी को किसी तरह की राहत नहीं देते हुए याचिका खारिज कर दी। छात्र संगठन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ABVP ने आज 78वां स्थापना दिवस मनाया। इस मौके पर राजधानी रांची समेत राज्य भर में कई कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। इस दौरान रांची के मोरहाबादी स्थित सेंट्रल लाइब्रेरी में संगोष्ठी का आयोजन किया गया। मौके पर अधिवक्ता राजेंद्र कृष्णन ने कहा कि ABVP का इतिहास गौरवशाली रहा है और राष्ट्र के विकास में महत्वपूर्ण योगदान है। मौसम विज्ञान केंद्र ने तत्कालिक पूर्वानुमान में बताया है कि अगले कुछ घंटों के दौरान चतरा और हजारीबाग जिले के कुछ हिस्सों में गरज के साथ बारिश हो सकती है। इस दौरान वज्रपात होने की भी संभावना है, जिसे लेकर

0: चेतावनी जारी की गई है। इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 6 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: अभी आप सुन रहे थे समाचार मुख्यांश हमारे रांची केंद्र से। ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है, एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर। कार्यक्रम युवाणी आप सुनेंगे इस अंतराल के बाद।
2: वर्क फ्रॉम होम, हाई सैलरी, बस एक क्लिक में। अरे वाह,
3: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। आरबीआई कहता है
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
1: प्रस्तुत है युवा श्रोताओं के लिए हमारा दैनिक कार्यक्रम युवाणी।

0: नमस्कार युवा साथियों, यह आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है और आप सुन रहे हैं युवाणी कार्यक्रम FM 102.4 मेगाहर्ट्ज पे। दोस्तों, मॉनसून की पहली फुहार के साथ वर्षा ऋतु का आगाज हो चुका है। बारिश की बूंदों में भीगना हम सबको भाता है, लेकिन दोस्तों, बारिश सिर्फ अपने साथ खुशियां ही नहीं, मौसमी बीमारियां और संक्रमण भी लाती है। इसलिए इस सुहाने मौसम का आनंद लेते समय अपनी सेहत का विशेष ध्यान रखिए, पौष्टिक भोजन कीजिए और संक्रमण से बचने के लिए नियमित उपाय कीजिए। बारिश वाली शाम की अलग ही खूबसूरती होती है।
1: और दोस्तों, आज के इसी शाम में हम बात करेंगे ऐसे आंदोलन की जिसने भारत को आजादी का नया सपना दिया और देश को नई तकदीर दी। भारत छोड़ो आंदोलन, जहां भारतीय नागरिक विरोध प्रदर्शन के लिए सड़क पर उतर गए थे। साथ ही सड़क अतिक्रमण और शहर में बढ़ती पार्किंग की समस्या पर भी बात करेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे भारत और एशिया के सबसे पुराने शेयर मार्केट बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पर। मैं हूं नीलेश राज।
0: और मैं हूं आयुषी झा, और आपका स्वागत करती हूं इस कार्यक्रम में। अपनी इस सुहानी शाम को और सुनहरा बनाने के लिए हमारे साथ ट्यून इन रहिए अगले आधे घंटे तक युवाणी कार्यक्रम से।

0: दोस्तों, अब हम बात करेंगे ऐसे आंदोलन की जिसने भारतवासियों में देश प्रेम की भावना जगाई और भारत के स्वतंत्रता संग्राम को निर्णायक मोड़ दिया।
1: ये केवल एक आंदोलन नहीं था, बल्कि देश के करोड़ों लोगों की तीव्र आकांक्षा और अटूट संकल्प का भी प्रतीक था।
0: जब ब्रिटिश शासन के अत्याचार अपनी सीमा पार कर चुके थे और देशवासी पूर्ण स्वतंत्रता के लिए दृढ़ निश्चय कर चुके थे, तब पूरे राष्ट्र ने एकजुट होकर ब्रिटिश शासन के विरुद्ध अपनी आवाज बुलंद की और ब्रिटिश शासन की नींव हिला दी।
1: ये वो ऐतिहासिक क्षण था जब भारत के कोने कोने से एक ही स्वर गूंज रहा था, अंग्रेजों भारत छोड़ो। इस आंदोलन ने हर वर्ग, हर समुदाय, हर युवा, हर महिला और हर नागरिक के मन में राष्ट्र प्रेम और बलिदान की भावना को और भी प्रबल कर दिया था।
0: साथ ही इस आंदोलन ने भारत की स्वतंत्रता की राह को अधिक सशक्त बनाया तथा इतिहास की स्वर्णिम पृष्ठों पर अपनी अमिट छाप छोड़ दी।
1: वर्ष 1942 में द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था। ब्रिटिश सरकार ने भारतीय नेताओं से परामर्श किए बिना ही भारत को युद्ध में शामिल कर दिया था। इसके बाद देश में असंतोष बढ़ने लगा। इसी बीच मार्च 1942 में ब्रिटिश शासन ने क्रिप्स मिशन को भारत में इंट्रोड्यूस किया। इस मिशन का उद्देश्य था भारतीय नेताओं का सहयोग प्राप्त करना। लेकिन इंडियन नेशनल कांग्रेस ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार किया। इसके बाद आया वह ऐतिहासिक दिन 8 अगस्त 1942, स्थान था ग्वालियर टैंक मैदान, मुंबई, जिसे आज अगस्त क्रांति मैदान के नाम से भी जाना जाता है। आयुषी, क्या तुम जानती हो यहाँ क्या हुआ था?
0: बिल्कुल, यहाँ अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक हुई थी। इसी सभा में महात्मा गांधी ने देशवासियों को प्रेरित करते हुए अमर संदेश दिया, डू और डाई। इसी दिन भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया गया था और ब्रिटिशर्स से

0: स्पष्ट शब्दों में कहा गया, अंग्रेजों भारत छोड़ो।
1: लेकिन अंग्रेजी सरकार ने आंदोलन को दबाने के लिए बहुत प्रयास किया। 9 अगस्त 1942 की सुबह महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना अबुल कलाम आजाद तथा अनेक राष्ट्रीय नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया, किंतु आंदोलन रुका नहीं।
0: बिल्कुल, नेताओं की अनुपस्थिति में भी देश के कोने कोने से छात्र, युवा, महिलाएं, किसान, मजदूर और नागरिक स्वयं आगे आए। अनेक स्थानों पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन हुए, ब्रिटिश गवर्नमेंट का विरोध किया गया और स्वतंत्रता की मांग पहले से भी अधिक प्रबल हो गई। कई क्षेत्रों में स्थानीय स्तर पर स्वशासन की व्यवस्था स्थापित करने का प्रयास भी किया गया।
1: बिल्कुल, फिर विदेशी शासन ने आंदोलन को दबाने के लिए कठोर कदम उठाए। हजारों लोगों को गिरफ्तार किया गया, अनेक स्थानों पर लाठी चार्ज हुए और गोलाबारी भी हुई, फिर भी भारतीय का साहस और आत्मविश्वास नहीं टूटा।
0: यह आंदोलन भले तुरंत स्वतंत्रता ना दिला सका, लेकिन इसने ये स्पष्ट कर दिया था कि भारत पर ब्रिटिश शासन अधिक समय तक नहीं टिक सकता। अंततः 15 अगस्त 1947 भारत के इतिहास का सबसे सुनहरा दिन, हमारी भारत माता स्वतंत्र हुई थी।
1: इस आंदोलन ने राष्ट्र एकता, साहस, आत्मविश्वास, त्याग और देशभक्ति की भावना को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। महिलाओं, युवाओं और सामान्य नागरिकों की सक्रिय भागीदारी ने यह सिद्ध किया कि राष्ट्र निर्माण में प्रत्येक व्यक्ति की भूमिका महत्वपूर्ण होती है।
0: आज हम उन सभी स्वतंत्रता सेनानियों और असंख्य ज्ञात अज्ञात नागरिकों को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, जिन्होंने अपने साहस, संघर्ष और बलिदान से हमें स्वतंत्र भारत का अमूल्य उपहार दिया।
1: उनके त्याग के कारण ही आज हम स्वतंत्र वातावरण में अपने अधिकारों का उपयोग कर पा रहे हैं। उनका योगदान सदैव हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत रहेगा।
0: लेकिन इस आंदोलन का महत्व केवल इतिहास तक सीमित नहीं है। यह आंदोलन हमें सिखाता है कि जब समाज एक लक्ष्य के लिए एकजुट होकर लड़ता है तो परिवर्तन अवश्य प्राप्त होती है।
1: बिल्कुल, यही कहा। साथ ही यह आंदोलन हमें साहस और दृढ़ संकल्प की सीख भी देता है। परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों ना हो, यदि हमारा उद्देश्य सही हो तो हमें हार नहीं माननी चाहिए।
0: इसके अलावा एक महत्वपूर्ण सीख कर्तव्य और जिम्मेदारी भी है। हमारे पूर्वजों ने हमें कितने परिश्रम से आजादी दिलाई थी, इनके बलिदानों को मन में रखकर हमें भी अपने देश की उन्नति और विकास में अपना योगदान देना चाहिए।
1: आज देशभक्ति का अर्थ केवल बड़े बड़े कार्य करना नहीं है, अपने दैनिक जीवन में ईमानदारी से कार्य करना, नियमों का पालन करना, पर्यावरण की रक्षा करना, स्वच्छता बनाए रखना और दूसरों का सम्मान करना भी सच्ची देशभक्ति ही है।
0: यदि हम भारत छोड़ो आंदोलन की सीख को अपने जीवन में अपनाएं, तो हमें न केवल अच्छे नागरिक बनेंगे बल्कि एक मजबूत, समृद्ध और विकसित भारत के निर्माण में भी अपना महत्वपूर्ण योगदान दे सकेंगे।

0: दोस्तों, हमने जाना कि कैसे हमारे देशवासियों ने हमारी आज़ादी के लिए सड़क पर विरोध प्रदर्शन की, भीड़ इकट्ठा की और अंग्रेज़ों से एकता की शक्ति को भी परिचय करवाया। किंतु आजकल हम लोग सड़क पर अतिक्रमण और अवैध पार्किंग करते नजर आते हैं।
1: अब सबसे पहले समझते हैं कि अतिक्रमण क्या होता है। जब भी कोई व्यक्ति या संस्था बिना अनुमति के सार्वजनिक सड़क, फुटपाथ या सरकारी भूमि पर अपना कब्जा कर लेती है या वहां दुकान, ठेला, निर्माण सामग्री, रेत, ईंट, वाहन या अन्य सामान रख देती है जिससे लोगों के आने जाने में बाधा उत्पन्न होती है, तो उसे अतिक्रमण कहते हैं।
0: इसी प्रकार जब कोई वाहन जैसी जगह ऐसी जगह खड़ा करता है जहां पार्किंग की अनुमति नहीं होती, जहां वाहन खड़ा करने से यातायात बाधित होता है, तो उसे अवैध पार्किंग कहा जाता है। जैसे नो पार्किंग एरिया चौराहों के पास, फुटपाथ पर, बस स्टॉप के सामने, अस्पताल या स्कूल के एंट्री गेट पर, ज़ेब्रा क्रॉसिंग के पास या सड़क के बीचों बीच वाहन खड़ा करना ही अवैध पार्किंग कहलाता है।
1: पर दिलेश, लोग ऐसा क्यों करते हैं?
0: आयुषी, कई बार सुविधा के लिए, कई बार लापरवाही में और कभी कभी नियमों की जानकारी ना होने पर लोग ऐसा करते हैं।
1: लेकिन कारण चाहे जो भी हो, इसका परिणाम पूरे समाज को भुगतना पड़ता है।
0: बिल्कुल, सड़क पर अतिक्रमण और अवैध पार्किंग से होने वाले

0: समस्याएं सबको ही अफेक्ट करती हैं।
1: सबसे कॉमन प्रॉब्लम है ट्रैफिक जाम। रोड का एक हिस्सा घिर जाने से वाहनों की गति धीमी हो जाती है और लंबा जाम लग जाता है। इससे लोगों का बहुमूल्य समय नष्ट होता है। एम्प्लॉयज ऑफिस के लिए और स्टूडेंट्स एग्जाम के लिए लेट हो जाते हैं।
0: बिल्कुल। दूसरी बड़ी समस्या है दुर्घटनाओं का बढ़ता हुआ खतरा। सड़क संकरी होने पर वाहन चालकों की विजिबिलिटी कम हो जाती है। अचानक सामने आने वाले वाहन, पैदल यात्री दुर्घटनाओं का कारण बन सकते हैं।
1: इसके अलावा आपातकालीन सेवाओं में बाधा भी बड़ी समस्या है। सोचिए, यदि किसी मरीज को लेकर जा रही एम्बुलेंस ट्रैफिक जाम में फंस जाए या फायर ब्रिगेड किसी आग लगने की जगह पर समय पर ना पहुंच सके। कुछ मिनटों की देरी भी किसी के जान पर भारी पड़ जाती है। साथ ही पैदल यात्रियों पर इसका बहुत दुष्प्रभाव पड़ता है और दुर्घटना की संभावना कई गुना बढ़ जाती है।
0: इसके अलावा ईंधन की बर्बादी, वायु और ध्वनि प्रदूषण, दूसरों में तनाव और शहर की सुंदरता भी इसका नकारात्मक प्रभाव है।
1: दोस्तों, भारत की यातायात नियमों का पालन करना केवल कानूनी दायित्व ही नहीं बल्कि नैतिक जिम्मेदारी भी है। रोड पर अतिक्रमण और अवैध पार्किंग के विरुद्ध स्थानीय प्रशासन और पुलिस समय समय पर अभियान चलाते हैं। यदि कोई व्यक्ति अवैध पार्किंग करता है तो उसके वाहन का चालान काटा जा सकता है।
0: आवश्यकता पड़ने पर वाहन को क्रेन द्वारा उठाकर टोइंग यार्ड ले जाया जा सकता है। वाहन वापस लेने के लिए जुर्माना के साथ साथ टोइंग शुल्क भी देना पड़ता है।
1: बार बार नियमों का उल्लंघन करने वाले के विरुद्ध कठोर कार्यवाही की जा सकती है।
0: इसी प्रकार सार्वजनिक सड़क या फुटपाथ पर अतिक्रमण करने वालों के विरुद्ध भी संबंधित प्रशासन कार्यवाही करता है। अवैध निर्माण या कब्जा हटाया जा सकता है और स्थानीय नियमों के अनुसार जुर्माना या अन्य कानूनी कार्यवाही भी की जा सकती है।
1: दोस्तों, कानून का उद्देश्य केवल दंड देना नहीं बल्कि लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। यदि हम स्वयं नियमों का पालन करेंगे तो दंड की नौबत ही नहीं आएगी।
0: एक जिम्मेदार नागरिक के लिए यह जरूरी है कि वह सभी रूल्स का फॉलो करे, निर्धारित पार्किंग स्थल पर ही वाहन खड़ा करे और फुटपाथ, चौराहों और नो पार्किंग क्षेत्र में वाहन ना खड़ा करे।
1: रोड पर निर्माण सामग्री या अन्य सामान नहीं रखे और दुकान या ठेलों के सार्वजनिक सड़क तक नहीं फैलाएं। यातायात संकेतों और पुलिस के निर्देशों का पालन करें।
0: यदि कहीं अतिक्रमण या अवैध पार्किंग से लोगों को परेशानी हो रही है तो संबंधित प्रशासन या यातायात विभाग को इसकी जानकारी अवश्य दें।
1: याद रखिए दोस्तों, सड़क किसी एक व्यक्ति की नहीं बल्कि हम सभी की साझा संपत्ति है। इनका सही उपयोग करना हमारा अधिकार भी है और कर्तव्य भी।
0: एक छोटी सी लापरवाही हजारों लोगों की परेशानी का कारण बन जाती है, जबकि एक छोटा सा जिम्मेदारी कदम भी पूरे समाज को सुरक्षित और व्यवस्थित बना सकता है।
1: दोस्तों, सड़कें केवल कंक्रीट से बनी हुई पट्टियां नहीं है, यह हमारे शहर और गांव की जीवन रेखा है। इन्हीं रोड से बच्चे स्कूल पहुंचते हैं, किसान अपनी उपज मंडी तक ले जाते हैं, कर्मचारी अपने कार्यालय पहुंचते हैं, मरीज अस्पताल पहुंचते हैं और आपातकालीन सेवाएं भी इन्हीं रास्तों का उपयोग करती है। ऐसे में यदि सड़क पर अतिक्रमण हो जाए या वाहन गलत तरीके से खड़े कर दिए जाएं, तो इसका असर पूरे समाज पर पड़ता है।
0: आइए आज हम सभी यह संकल्प लें कि ना सड़क पर अतिक्रमण करेंगे, ना अवैध पार्किंग करेंगे और ना किसी दूसरे को ऐसा करने के लिए प्रोत्साहित करेंगे, क्योंकि सुरक्षित सड़कें, सुगम यातायात और अनुशासित नागरिक इन्हीं से बनता है एक विकसित और जिम्मेदार भारत। आइए सुनते हैं युवाओं की इस विषय पर क्या सोच है।
2: नमस्कार, मेरा नाम रिचा पोद्दार है और मैं एक टीचर हूँ और रोज बच्चों को अच्छी आदतें और जिम्मेदारी की बात सिखाती हूँ। लेकिन मुझे लगता है कि बच्चे सिर्फ क्लासरूम से नहीं बल्कि हमें देखकर भी सीखते हैं। अगर हम ही सड़क पर अतिक्रमण करेंगे, गाड़ी कहीं भी खड़ा कर देंगे या फुटपाथ पर कब्जा करेंगे तो बच्चे भी यही समझेंगे कि ये सब ठीक है। इसीलिए मेरी सभी लोगों से यही सलाह है कि हम जो भी करें ऐसा करें जिससे दूसरों पर परेशानी ना हो, ना पब्लिक जगह पर सबका बराबर अधिकार होता है। अगर हम आज अनुशासन और जिम्मेदारी का परिचय देंगे तो कल हमारे बच्चे भी एक जिम्मेदार नागरिक बनेंगे। समाज को बदलने की शुरुआत हमेशा हमारे अपने व्यवहार से होती है। धन्यवाद।
3: नमस्कार, मेरा नाम ऋचा कुमारी है और मैं जमशेदपुर के निवासी हूँ। मैं बात करूँगी सड़क अतिक्रमण पे। इससे केवल रोड जाम ही नहीं और भी बहुत प्रॉब्लम होती है। एक्सीडेंट का खतरा भी बढ़ जाता है और टाइम भी बहुत बर्बाद होता है। हम लोग ज़रूरी जगह पर लेट से पहुँचते हैं। इसके अलावा पेट्रोल भी बर्बाद होता है, इसलिए जितना हो सके उतना रोड जाम करने से बचना चाहिए ताकि हमारे कारण दूसरे लोगों को प्रॉब्लम ना हो। धन्यवाद।
1: आइए अब सुनते हैं एक ऐसा गीत जो आपकी इस शाम को और रंगीन बनाएगा।

0: अभी आपने सुना दिलवाले फिल्म का गीत। गायक थे अरिजीत सिंह और अंतरा मित्रा, गीतकार थे अमिताभ भट्टाचार्य, संगीतकार थे प्रीतम।
1: दोस्तों, जब भी हम किसी विकसित राष्ट्र की कल्पना करते हैं तो उसके उद्योग, व्यापार और मजबूत अर्थव्यवस्था की भी चर्चा होती है। इन सब के पीछे एक सशक्त पूंजी बाजार की भूमिका होती है और भारत में इस व्यवस्था की नींव रखने का श्रेय जाता है भारत और एशिया के सबसे पुराने बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को।
0: बिल्कुल, ईयर 1875 में इसकी शुरुआत कुछ व्यापारियों द्वारा मुंबई के टाउन हॉल के समीप एक वट वृक्ष के नीचे बैठकर की गई थी। आज वही संस्था विश्व के प्रमुख शेयर बाजारों में अपना सम्मानजनक स्थान रखती है।
1: सरल शब्दों में कहें तो शेयर बाजार वो मंच है जहां कंपनियां अपनी कैपिटल जुटाने के लिए अपने डिविडेंड अर्थात शेयर जनता को उपलब्ध कराती है। बदले में इन्वेस्टर्स उस कंपनी के शेयर होल्डर बन जाते हैं। इस प्रकार इंडस्ट्री को विकास के लिए धन मिलता है और नागरिकों को इन्वेस्टमेंट का अवसर।
0: बिल्कुल आयुषी, यही कारण है कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज केवल शेयर की को खरीदने या बेचने का स्थान नहीं है, बल्कि यह भारत की आर्थिक प्रगति का महत्वपूर्ण आधार भी है। जब इंडस्ट्रीज और कैपिटल मिलता है तो नए फैक्ट्रीज स्थापित होते हैं, प्रोडक्शन बढ़ता है और एम्प्लॉयमेंट के अवसर उत्पन्न होते हैं।
1: सही कहा निलेश, यदि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जैसी संस्थाएं ना हो तो कंपनीज के लिए ग्रो करना कितना कठिन है। यही कारण है कि इसे देश का बैकबोन ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट भी कहा जाता है।
0: जानती हो, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का एक महत्वपूर्ण पक्ष है सेंसेक्स। यह प्रमुख कंपनियों के प्रदर्शन का इंडेक्स है। जहां सेंसेक्स में वृद्धि होती है तो इन्वेस्टर्स का विश्वास और बढ़ता है, वहीं गिरावट में हमें सतर्क रहने का संदेश देती है।
1: बिल्कुल, आज के समय में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पूरी तरह मॉडर्न टेक्निक से जुड़ चुका है। अब इन्वेस्टर्स अपने मोबाइल या कंप्यूटर्स के माध्यम से घर बैठे ही इन्वेस्ट कर सकते हैं। इससे पारदर्शिता, गति और विश्वसनीयता में सिग्निफिकेंट ग्रोथ हुई है।
0: लेकिन एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, शेयर मार्केट प्रॉफिट का चांस अवश्य देता है लेकिन इसमें रिस्क भी होता है, इसलिए बिना जानकारी या बिना अध्ययन के उसमें निवेश करना जोखिम भरा है।
1: I agree. Successful investment का आधार है धैर्य, विवेक और लॉन्ग टर्म थिंकिंग। फाइनेंशियल लिटरेसी ही हमें सही निर्णय लेने की क्षमता प्रदान करती है।
0: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज केवल एशिया का सबसे पुराना शेयर मार्केट ही नहीं बल्कि भारत की आर्थिक प्रगति, औद्योगिक विकास, निवेशकों की विश्वास और लाखों लोगों की रोजगार के भी जुड़ा है। यह हमारे देश की फाइनेंशियल सिस्टम का एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है।
1: तो दोस्तों,

0: आर्थिक विषयों की सही जानकारी प्राप्त करें, जागरूक निवेशक बनें और राष्ट्र के विकास में अपनी सकारात्मक भागीदारी निभाएं। अब बढ़ते हैं स्पोर्ट्स हेडलाइंस की ओर। पूरे विश्व में फीफा का खुमार चढ़ा है, ग्रुप स्टेज समाप्त हो चुकी है और फुटबॉल फैंस की नजर क्वार्टर फाइनल्स पर है।
1: आज रात 1:30 बजे से फ्रांस वर्सेस मोरक्को का मैच बोस्टन स्टेडियम फॉक्सबॉर में खेला जाएगा।
0: आज रात 10 बजे से इंडिया वर्सेस इंग्लैंड का T20 मैच शुरू होने वाला है। ये श्रृंखला 5 मैच की है और 2-0 से इंग्लैंड लीड कर रही है।
1: कल से इंडियन विमेंस क्रिकेट टीम वर्सेस इंग्लैंड विमेंस क्रिकेट टीम का टेस्ट मैच शुरू होने वाला है। मैच लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड लंदन में खेला जाएगा।
0: दिन धीरे धीरे ढल रहा है और अब अपने शांत कदमों के साथ संध्या धरती पर उतरने लगी है। अस्त होती सूर्य की सुनहरी किरणें कल फिर मिलने का वादा कर रही है। बरसात के मौसम में संध्या और भी मनोहर हो उठती है। सचमुच संध्या बेला प्रकृति का अनुपम उपहार है, जो अपने शांत मधुर और मोहक रूप से हृदय को आनंद, सुकून और नई प्रेरणा से भर देती है।
1: बिल्कुल, और आज की सुनहरी संध्या में हम अवगत हुए हैं भारतवासियों के आजादी की लड़ाई के लिए एक महत्वपूर्ण गाथा से, और इसी गाथा से प्रेरणा लेते हुए हमने संकल्प लिया कि हम सड़क पर न अतिक्रमण करेंगे, न किसी और को करने देंगे। इसके अलावा हमने जाना कि भारत और एशिया के सबसे पुराने स्टॉक मार्केट के बारे में। मैं हूँ नीलेश राज
0: और मैं हूँ आयुषी झा, और आपसे विदा लेने की अनुमति चाहूंगी। हम फिर मिलेंगे नई ऊर्जा और नई बातों के साथ। सुनते रहिए आकाशवाणी जमशेदपुर FM 102.4 MHz पर।
1: साइनिंग ऑफ,
0: नमस्कार युवा साथियों।

युववाणी, ये था युवा श्रोताओं के लिए हमारा दैनिक कार्यक्रम। हम आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से बोल रहे हैं, एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर। इस समय शाम के 5:30 हुए हैं। प्रस्तुत है श्रमिक श्रोताओं के लिए हमारा दैनिक कार्यक्रम कल कारखाने।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: कल कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोता साथियों को स्नेहलता का नमस्कार। श्रोता साथी, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन हमारे इस कार्यक्रम में।

सबसे पहले आपको आज की अंक की रूपरेखा बता दें श्रोताओं। आज हम आपको सुनवाने जा रहे हैं भेंटवार्ता स्वरुचि से रोजगार। इसके साथ

श्रोता साथी, एक महिला जब माँ बनने की तैयारी करती है तब उसे सिर्फ परिवार के प्यार और देखभाल की ही नहीं बल्कि कार्यस्थल पर सहयोग और कानूनी सुरक्षा की भी जरूरत होती है। इसी उद्देश्य से हमारे देश में मातृत्व लाभ अधिनियम बनाया गया और गर्भवती महिलाओं को मातृत्व अवकाश का अवसर मिला। श्रोताओं, ये सिर्फ अवकाश नहीं बल्कि महिलाओं का अधिकार है। ये सिर्फ छुट्टी नहीं बल्कि माँ और नवजात शिशु के बेहतर देखभाल और सुरक्षित भविष्य की नींव है।

बात अधिनियम की करें श्रोताओं, तो इससे जुड़ी महत्वपूर्ण बातें हैं। यदि किसी संस्थान में 10 या उससे अधिक कर्मचारी कार्यरत हैं तो वहां ये कानून लागू होता है। पहली या दूसरी संतान के जन्म पर पात्र महिला कर्मचारियों को 26 सप्ताह यानी लगभग 6 महीने का सवेतन मातृत्व अवकाश मिल सकता है। इनमें से अधिकतम 8 सप्ताह का अवकाश प्रसव से पहले लिया जा सकता है। तीसरी या उससे अधिक संतान होने पर 12 सप्ताह का मातृत्व अवकाश मिलता है। यदि कोई महिला शिशु को गोद लेती है या महिला सिरोगेसी से मां बनती है तो भी 12 सप्ताह का मातृत्व अवकाश का प्रावधान है। कुछ परिस्थितियों में कार्य की प्रकृति और नियोक्ता की सहमति हो तो वर्क फ्रॉम होम की भी सुविधा दी जा सकती है यदि मातृत्व अवकाश समाप्त हो गया हो तो। श्रोता साथी, ये अवकाश केवल सुविधा नहीं बल्कि माँ और शिशु के स्वास्थ्य, सम्मान और अधिकार की सुरक्षा का माध्यम है और गर्भावस्था के कारण महिला से भेदभाव या नौकरी से निकाल देना कानून के विरुद्ध है। और वैसी महिला जो नियमित या संविदा पर कार्यरत है, दोनों के साथ समान व्यवहार का निर्धारण ही कानूनी रूप से सही है।

रंग दे बसंती फिल्म में अभी आप सुन रहे थे। लता मंगेशकर और एआर रहमान को शब्द रचना प्रसून जोशी के थे और संगीत निर्देशन था एआर रहमान का।

0: बड़े श्रोताओं कार्यक्रम में आगे लेते हैं जानकारी भेंट वार्ता के जरिए। विषय है स्वरुचि से रोजगार। जानकारी दे रही हैं सुमन चौधरी, बातचीत कर रही हैं हमारी सहयोगी मंजू कुमारी।
1: श्रोताओं, कला वो गुण है जो इंसान को खास बनाती है। एक कलाकार की पहचान ही उसकी कला से होती है, लेकिन अपनी कला से कलाकार बनने तक के सफर में हमारा साथ निभाती है हमारा हौसला, विश्वास, जोश, जुनून और जज्बा। आज हम आपकी मुलाकात एक ऐसे ही शख्स से करवाने जा रहे हैं जिन्होंने अपनी कला के दम पर अपनी एक खास पहचान बनाई है, जिन्होंने अपनी कला से अपने जीवन को संवारा है, जो हर महिला के लिए एक मिसाल है। तहे दिल से स्वागत करते हैं हम हमारे आकाशवाणी जमशेदपुर के स्टूडियो में सुमन चौधरी जी का। सुमन जी नमस्कार।
2: नमस्कार जय श्री श्याम।
1: सुमन जी, आज हमारे साथ अपने स्वरुचि से स्वरोजगार तक की दिलचस्प दास्ता साझा करने वाली है, तो शुरुआत में जानना चाहेंगे आपसे कि पोशाक निर्माण आपका शौक है या आज आप इसे अपने करियर के तौर पर अपनाई हुई है?
2: शौक और करियर दोनों अलग चीजें, लेकिन इन दोनों से भी अलग एक फैक्टर आती है कि किसी की जरूरत, किसी की हेल्प करना।
1: जी, ये तो बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छी बात है।
2: और ये मैंने जब स्टार्ट किया था, ऐसे कोई एक मतलब एक जरूरतमंद एक लेडी थी।
1: अच्छा।
2: जिस मतलब ऑल ऑफ सडन उनका कुछ बिजनेस में लॉस एंड वगैरह हुआ था, वो मुझे बहुत अच्छे से जानती थी, तो उसने मुझे कहा कि मैं आपको सामान दूंगी, आप उस सामान को जब सेल कर लोगे देन वो आप मुझे पैसे देना।
1: अच्छा।
2: और मैं अपने एक्सपेंसेस निकालूंगी। और मैं ट्रूली मतलब बाबा का नाम लेके जब मैंने इससे चालू किया,
1: मैंने बिजनेस
2: को मैंने चालू किया, उसने मुझे सामान दिया, मैंने 5,000 रुपीज उसे सिर्फ दिया था।
1: अच्छा।
2: 5,000 से आज मैंने चालू किया था और उससे उसकी बहुत मदद मिली और उस वो बिजनेस आज किसी की अच्छी नीयत, किसी की हेल्प करने की नीयत से मैंने जो चालू किया, वो बिजनेस धीरे धीरे तरक्की के रास्ते पर चलता रहा और आज बाबा की कृपा से मैं इस पोजीशन पर हूँ।
1: जी, बहुत अच्छी बात है ये। यानी कि वो जो महिला थी जो आपसे जुड़ी, वो आपके लिए एक कह सकते हैं कि वो प्रेरणादायक थी इस बिजनेस को शुरू करने के लिए।
2: अदरवाइज एक वो बोलते खाली दिमाग शैतान का घर होता है, उसकी वजह से मुझे एक मोटिव मिला कि चलो मैं भी कुछ करूं।
1: जी हाँ।
2: भले फैमिली है, बच्चे हैं, सब कुछ है, लेकिन 2 घंटे का भी अगर खाली समय मिलता है तो उसमें भी हमें कुछ करना चाहिए और उसकी वजह से मुझे ये प्रेरणा मिली। मैं उसको बहुत ज्यादा थैंकफुल करती हूँ और उसकी मतलब उसकी वजह से मैंने आगे बढ़ा।
1: यानी कि उस महिला की स्थिति ने आपको आगे बढ़ने के लिए, इस सोच के साथ खड़े होने के लिए आपने मतलब उससे शुरुआत की और आज आप तरक्की की राह पर आगे बढ़ रही है और उस महिला का भी जीवन आपने संवारा है।
2: संवारा तो देखिए भगवान नहीं है, वो जरिया किसी को भी बना देते हैं। मेरे लिए जरिया उनको बनाया, उनके लिए जरिया मुझे बनाया।
1: जी हाँ। तो चलिए, ये तो हमने जान लिया कि आपने इस बिजनेस की शुरुआत कैसे की, कैसे अपनाया, इस कारवां में आगे बढ़ते हैं। तो जब आपने इस बिजनेस को शुरू किया, इस कारोबार को शुरू करने का ये ख्याल आपके जीवन में आया कि हुनर से जीवन संवारा जाए, और जब आपने इसे करियर के तौर पे अपनाया, तो क्या चुनौतियां आपके सामने थी?
2: चुनौतियां तो हर एक सीढ़ी पर आती है। आज अगर एक बच्चा चलने से सीढ़ी चढ़ने तक का सफर भी तय करता है तो कई बार गिरता है, कई बार उठता है। मेरी लाइफ में भी वही हुआ, मतलब जितनी बार और आगे बढ़ने की चेष्टा किया, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए वैसे वैसे अलग अलग एक चुनौती आती गई। बहुत लोगों के क्वेश्चन आते गए कि अगर आप करते हो तो आप मार्केट में क्यों नहीं हो, इनविजिबल बन के क्यों करते हो, आप अपने घर से कर रहे हो, आप एग्जीबिशन क्यों नहीं लगाते, या फिर आप कर रही जो भी है, मतलब इतनी चुनौतियां आती है। अगर आपके पास एक जन अच्छे तो 100 जन सवाल खड़े करने वाले होते हैं, लेकिन अगर आप हौसला धीरज नहीं रख पाओगे तो कोई भी बिजनेस में तरक्की पाना बहुत
1: जी मुश्किल है। ये हौसला रखना, हौसला धैर्य बनाए रखना, ये तो
2: बहुत जरूरी है,
1: कि बिजनेस में ही नहीं हर एक चीज में, जिंदगी के हर पड़ाव पे ये जरूरी होता
2: है। बहुत जरूरी है क्योंकि आपको आगे बढ़ते देखने वाले बहुत गिने चुने मिलते हैं, लेकिन जब आप तरक्की कर रहे हो तो बहुत लोग क्रिटिसाइज करके ये सोचते हैं कि नहीं चलो इसको थोड़ा और क्रिटिसाइज कर डीमोरलाइज किया जाए, लेकिन अपने ऊपर कंट्रोल होना, पेशेंस रखना, धीरज रखना और बहुत ही बुद्धिमानी के साथ काम करके आगे बढ़ना, ये बहुत जरूरी है। अगर आप कोई भी फील्ड में पेशेंस नहीं रखोगे, उतार चढ़ाव हर फील्ड में आते हैं,
1: आगे बढ़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। जी हाँ।
2: जब भी मुझे ऐसा लगा, मैं बचपन में स्पाइडरमैन की कहानी मैंने सुनी थी,
1: जी
2: वो 7 बार गिरता है, 7 बार चढ़ता है, फिर भी उसने अपनी हिम्मत नहीं तोड़ी।
1: जी हाँ।
2: तो वही कहानी को मैं बार बार अपने मन में रिपीट करती
3: जी
2: और हर वक्त मेरे को ऐसा लगता है कि मेरा श्याम बाबा, मेरा खाटू नरेश हर वक्त मेरे साथ है और मैं हमेशा जीवन में आगे बढ़ती गई।
3: आप अपनी जिंदगी में इसी तरह यूं ही आगे बढ़ते रहे। और आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपने कारोबार को और किस तरह आगे बढ़ाया है, आपका जो ये कारोबार है आज कहाँ तक पहुँच रहा और आज आप कितने बड़े तौर पे कर रही हैं, क्या क्या कर रही हैं, ये जरा हमारे
2: अकेले मैं अपने ही बलबूते पे मैंने ये चालू किया था, मीन्स अकेले ही मैं घर बैठे कर रही थी। देन जैसे जैसे मुझे थोड़ी तरक्की मिलती गई, रिक्वायरमेंट और आता गया, सबने बोला आप ये करते हो, आप मंदिर का सेट बनाना चालू करिए, अच्छा आप एक काम करिए आप मंदिरों का, मतलब बड़े बड़े भगवान का, जैसे राजस्थान हो गया है या और भी दूसरे नगर में, हमारे आज हर समाज में मंदिर है, उन मंदिरों के पोशाक बनाना।

0: और आज
1: आरंभ
0: तो
1: करिए।
0: हर एक मंदिर की बात, तो चलिए ये बड़ी बात है ही, मंदिर के में जो भगवान उनके लिए पोशाक निर्माण करना। और जैसे कि आजकल पर्व त्योहार भी लोग बड़े पैमाने पे बहुत अच्छे से
1: बहुत
0: हर
1: बहुत
0: घर में सेलिब्रेट किया
1: घर
0: जाता
1: में
0: है, तो
1: सेलिब्रेट
0: हर
1: किया
0: एक
1: जाता है।
0: घर में इंसान अपने भगवान को सजाने के लिए, उनको संवारने के लिए, उनके लिए पोशाक तो खरीदता ही है।
1: देखिए, हर भगवान के लिए पोशाक खरीदते हैं, लेकिन आज के जमाने में हर परिवार के लिए एक लड्डू गोपाल उनके एक बच्चे के समान हो
0: जी,
1: गया है।
0: उनकी भावनाएं जुड़ी
1: उनकी
0: हुई हैं।
1: भावनाएं इतनी जुड़ गई हैं कि अगर वो अपने लिए या कोई भी त्योहार पे अपने लिए या अपने बच्चों के लिए कुछ खरीदते हैं तो सबसे पहले स्टार्टिंग वो लड्डू गोपाल से करते हैं।
0: जी बिल्कुल।
1: और ये काम मैंने आज से लगभग 5.5 साल पहले चालू किया था।
0: अच्छा।
1: और उसके बाद जैसे जैसे रिक्वायरमेंट बढ़ती गई वैसे वैसे मैंने अपना थोड़ा इंडस्ट्री टाइप बिठाया है। मेरे अंडर में
0: अच्छा।
1: अभी 10 से ज्यादा महिलाएं काम करती
0: अच्छा,
1: हैं।
0: आपने मतलब इतने लोगों को रोजगार देकर रखा है।
1: एकदम रोजगार
0: हाँ।
1: ऐसे भी दिया, और काफी महिलाएं ऐसी हैं मेरे पास से जो आती थी, मतलब कोरोना एक ऐसा टाइम आया था जिसमें लोगों के पास न रोजगार थे न परिवार था,
0: बहुत ही मुश्किल समय
1: बहुत
0: था वो
1: मुश्किल
0: सबके
1: समय
0: लिए।
1: था। बट मैं बोलूंगी खाटू नरेश की कृपा से वो मेरा सबसे बूम समय था,
0: अच्छा।
1: क्योंकि उस वक्त इतनी महिलाएं मेरे पास आई थी और मेरे मन में एक ही चीज था, अगर मैं नियत और अपनी ईमानदारी रख के काम करूंगी ना तो मैं जिंदगी के इस सफलता के पथ पर बहुत आगे अग्रसर होती रहूंगी। मैंने काफी सारी लेडीज लोग को रिटर्न बेसिस पे, जो आज के जमाने में कोई नहीं करता है, रिटर्न बेसिस पे मैंने उनको माल दिया कि ठीक है आप ले जाओ, आपको एक रुपए नहीं इन्वेस्ट करने हैं, जब आपके बिक जाएंगे तो मुझे पैसे दे देना। और ये वाला मुझे मोटिवेशन वो फर्स्ट लेडी से आया था,
0: उनसे ही मिली थी
1: कि
0: जी।
1: आज उसकी अगर तरक्की हुई तो बाकी सबकी भी होगी।
0: बिल्कुल।
1: और इसी टाइप से कई महिलाएं हर एक क्षेत्र से, यहाँ तक कि टाटा से बाहर से भी, चापुलिया से, घाटशिला से, चाईबासा से, और कई अलग अलग क्षेत्र से महिलाएं मेरे पास आती, वो सम्मान ले करके जाती, मैं एक लिस्ट में सिर्फ उनको लिख के देती और उसके बाद जब वो बिक जाता तो वो मुझे पैसे ला करके देती और जो सामान ऑल्टर कर, मतलब चेंज करके लेके जाने करते। इस टाइप से काफी महिलाएं और आगे बढ़ी है जिनकी संख्या शायद मैंने देखे ना गिनो तो ही अच्छा है। यहाँ तक कि बर्गर से एक 70 साल की एक महिला है और यहाँ अपनी जमशेदपुर की भी काफी एक ओल्ड एज लेडी है जिन्होंने मतलब बहुत ही स्मॉल अमाउंट से मेरे पास से काम चालू किया
0: अच्छा।
1: था और आज एक अच्छे से एरिया में वो अपनी एक अच्छे से दुकान लेकर के बैठी है
0: जी, ये
1: लेकिन
0: बहुत
1: ये
0: अच्छी
1: मेरे
0: बात
1: बाबा
0: है।
1: की कृपा ही है। जो एक वो बोलते हैं ना कि खाटू नरेश जब भी जिसको जरिया बनाता है कोई उसको कभी भूलता नहीं है, आज तक मुझे भी किसी ने नहीं भूला और मतलब मैं भी उनको कभी नहीं भूलती हूँ
0: जी। ये तो अच्छी बात है ही। वैसे भी जब इंसान अपने जीवन में आगे बढ़ता है, जो उसका जरिया बनता है, जो उसे आगे बढ़ाता है, उसे भूलना मुश्किल होता है। तो जैसा कि आप अभी बता रही थी कि आपका ये जो पोशाक निर्माण आप करती है वो आज मतलब कहाँ कहाँ आप इन पोशाकों का
1: नहीं मेरा
0: की सप्लाई होती
1: अभी
0: है?
1: सभी मतलब भारत के मोस्ट प्रोबेबली सभी देश प्रदेश में जाते हैं, यहाँ तक कि मथुरा वृंदावन से राधा कृष्ण की मूर्तियां डायरेक्टली मेरे पास आती है और
0: अच्छा।
1: वो पोशाक पहन करके और उनके एक्स्ट्रा पोशाक बन के कई लंदन में भी है, USA में भी है,
0: अच्छा।
1: कस्टमर्स उनके रिलेटिव्स यहाँ रहते हैं वो सब जानते, एक बार में बनवा करके ले जाते क्योंकि इतना दूर मतलब वो नहीं हो पाता है पॉसिबल क्योंकि कोरियर चार्जेस वगैरह जो भी है, लंदन USA सब जगह हमारा बाबा की कृपा से पोशाक बन के जाते हैं, वहाँ के भगवान भी पहनते हैं, हमें बहुत खुशी होती है जब वो फोटो क्लिक करके भेजते हैं, देखिए आपके पहनाए हुए पोशाक में हमारे भगवान कितने अच्छे लग रहे हैं, देखिए दीदी इसमें कितना श्रृंगार
0: कितनी खुशी महसूस होती है,
1: खुशी उसमें बहुत ज्यादा होती है। और उससे ज्यादा खुशी ये होती है, देखिये पैसा तो हर कोई कमा सकता है, पैसा अगर मैं 5.5 साल से सिर्फ पैसे कमाने का मोटिव रखती ना तो आज मैं भी शायद अच्छे खासे एरिया में अपना बंगलो लेकर के बैठी होती, क्योंकि आज मैं बाबा ने मुझे हमेशा तरक्की दी है, मैं मुझे कभी पीछे मुड़ के देखना नहीं पड़ा। लेकिन एक अगर आप अपने साथ किसी और को लेकर के चल रहे हो तो एक दिन जिस मुकाम पे आप पहुंचोगे ना वो मुकाम मतलब देखने के लिए लोगों को अपना सर ऊंचा करना पड़ेगा
0: और ये सोच रखना है, ये बहुत बड़ी बात होती है, खुद में भी मतलब बहुत अच्छा महसूस करते हैं दूसरों की मदद
1: होता है। मेरे को मैंने जितना अर्न किया उससे ज्यादा मेरे को ये दो बात का फील होता है, जब लोग बोलते हैं देखिए सुमन जी आपके बनाए हुए श्रृंगार में हमारे भगवान कितने सुंदर लग रहे हैं, आपके हाथ में कला है, आपने मतलब यही सब वो भी पूछते हैं कि आपने कहाँ से सीखा, पहले से जानती थी एंड ऑल वगैरह। और दूसरा चीज, चलिए आपके अंडर में इतनी महिलाएं, मैं उनको एक ही बात बोलती है कि 10 महिला तो कुछ नहीं है, मैं एक इंडस्ट्री खड़ा करना चाहती हूँ कि मतलब यहाँ तक कि गोविंदपुर से भी मेरे पास काम करने के लिए डेली
0: अच्छा।
1: बेसिस पे एक छोटी सी बच्ची आती थी, मैं बोली नहीं बेटा आप घर में ले जाओ वहीं पे काम करो, एक बार में आ जाना है, बार बार आना इज नॉट सुटेबल फॉर हर, जो भी है. मतलब मेरा एक पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि मैं एक ऐसा इंडस्ट्री, ये भगवान की सेवा में एक ऐसी इंडस्ट्री खड़ी करूं जहां सब मन से काम करें और उसी के जरिए उनको रोजगार भी मिलती रहे.
0: जी बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है. आपने

0: जानना चाहेंगे कि आप में ये जो कला है ये शुरुआत से आप में थी या आपने कहीं से
1: मैं एक्चुअली सुई में सूता भी नहीं पोना जानती थी।
0: अच्छा, तो फिर कैसे आप
1: शादी के पहले मतलब अगर स्कूल में भी जो हमारे आर्ट एंड क्राफ्ट होते उसमें अगर मुझे कोई वो टीचर दे देती थी कि ये स्टिचिंग का काम करना है मैं लाके अपनी मम्मी या दीदी को पकड़ा देती थी हमको ये मत देना मेरे काम का नहीं है मेरे से नहीं होने का ये चीज। कहते हैं ना कि अगर मन में आपका है
0: कुछ करना है उसको पूरा करने के रास्ते बन जाते हैं।
1: मेरे अंदर जो भी ये कला आई वो उस स्टार्टिंग लेडी की वजह से आई कि मन में जब मैंने उसको देखा ना कि कुछ रुपए को लेकर के बिना आंख में आंसू लाए हिम्मत करके जब वो आगे बढ़ सकती है तो हम तो क्या ही है।
0: यानी कि उस महिला की मदद करने की सोच के साथ ही आप में इस
1: डेफिनेटली
0: कला जो है इस कला की उपज हुई आपके मन में।
1: एक्चुअली में अगर उनसे मेरा ट्रेडिंग चालू नहीं होता तो लोगों का मैन्युफैक्चरिंग का डिमांड नहीं आता। मैन्युफैक्चरिंग का अगर डिमांड नहीं आता तो मैं उसके लिए इनोवेशन नहीं करती।
0: बिल्कुल,
1: और इनोवेशन करने के लिए मुझे सुई में सूते भी पोने होंगे और टेलर लोग को सिखाना भी होगा सब
0: जी।
1: जो भी है बहुत काम करने पड़ते
0: तो खुद से ही मतलब आपने बस, ये
1: बस,
0: सारा
1: वो
0: कुछ
1: धीरे धीरे अपने आप बोलते हैं ना आप जिस रास्ते पे जा रहे हो आपको मालूम नहीं है कि आगे क्या आने वाला है बट मंजिल मालूम है तो वो रास्ता अपने आप निकल जाता है।
0: उसके जरिए आप एक कलाकार भी बन गई और आज जो है आप लोगों तक भगवान की अच्छी पोशाकें पहुंच रही है।
1: सब बोलते हैं सब बहुत खुश है और अच्छी जब बोलते हैं कि आप बहुत सुंदर लग रहे हैं हमारे भगवान तब और ज्यादा खुशी मिलती है।
0: तो सुमन जी आज तो आपकी जो जिंदगी है वाकई में ये जो स्वरुचि से स्वरोजगार तक का जो सफर है ये काफी दिलचस्प है और प्रेरणादायक भी है। वैसे तो आपसे और भी बहुत कुछ जानने की इच्छा हो रही है लेकिन समय की कमी है हमारे पास, तो आपसे अब ये कहना चाहेंगे कि स्वावलंबी बनने का सपना बुन रही उन महिलाओं को आप क्या कहना चाहेंगी, क्या संदेश होगा आपका हमारी श्रमिक महिलाओं के नाम?
1: मैं एक ही बात बोलना चाहूंगी, देखिए एक तो कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। अगर आप घर में बैठ के एक घंटा दो घंटा कुछ भी समय निकाल रहे हो आप कुछ जरूर करो, आप कुछ भी कर रहे हो, अगर आप जॉब कर रहे हो तो उसे अपना काम समझ के करो कि कंपनी की भी तरक्की और आपकी भी, और अगर आप अपना बिजनेस कर रहे हो तो उसे जॉब समझ के करो ताकि सामने वालों को भी खुशी मिले और आपकी भी तरक्की हो। मैं यही सोचकर अपने काम में अपने जीवन को व्यस्त करके रख
0: जी। बहुत अच्छी बात है। तो सुमन जी आप हमारे स्टूडियो में आई और इतनी अच्छी जानकारियों भरी बातें आप हमारे साथ साझा की, इतनी सारी जानकारियां हमारे साथ साझा करने के लिए और हमारे आकाशवाणी जमशेदपुर के स्टूडियो में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: थैंक यू सो मच।
2: श्रोता साथी आपने सुनी भेंटवार्ता, स्वरुचि से रोजगार ये विषय था आज की भेंटवार्ता का। भेंटवार्ताकार थी सुमन चौधरी, बातचीत कर रही थी हमारी सहयोगी मंजू कुमारी। हम आपको बता दें श्रोताओं इस भेंटवार्ता का पुनः प्रसारण किया गया।

आप सुन रहे थे डोर फिल्म में शफाकत अमानत अली और सलीम मर्चेंट को, शब्द रचना थे मीर अली हुसैन का और संगीत निर्देशन था सलीम सुलेमान का। श्रोताओं, इसी गीत के साथ कल कारखाने का आज का ये अंक यहीं संपन्न होता है। दीजिए अपनी दोस्त स्नेहलता को अनुमति। आप सभी को मेरा नमस्कार।

कल कारखाने, ये था श्रमिक श्रोताओं के लिए हमारा दैनिक कार्यक्रम। आकाशवाणी का ये जमशेदपुर केंद्र है FM के 102.4 MHz पर। इस समय शाम के 6 बजे हैं। कुछ ही पलों में समाचार प्रसारित होंगे।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि 21वीं सदी का भारत एक विकसित राष्ट्र बनने के लक्ष्य की ओर अग्रसर है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज का भारत अधिक विकास और उपलब्धियां हासिल करने में विश्वास रखता है। ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में आज प्रवासी भारतीय समुदाय के कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी वर्ष 2014 की यात्रा 28 वर्ष बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री की ऑस्ट्रेलिया यात्रा थी।
1: मैं जब साल 2014 में ऑस्ट्रेलिया आया था तो 28 साल के बाद भारत का कोई पीएम यहाँ पहुंचा था। तब मैंने कहा था कि अब आपको 28 साल इंतजार नहीं करना पड़ेगा। पिछले 12 वर्षों में मैं तीसरी बार यहाँ आया हूँ, यानी इस बार हैट्रिक लगी है। ये दिखाता है कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के रिश्ते किस ऊंचाई पर है।
0: इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के बीच आज मेलबर्न में तीसरी ऑस्ट्रेलिया भारत वार्षिक शिखर वार्ता हुई। इस दौरान दोनों नेताओं ने प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता में द्विपक्षीय संबंधों को और सशक्त बनाने पर चर्चा की। शिखर सम्मेलन के समापन के बाद विक्टोरिया के गवर्नमेंट हाउस में संयुक्त वक्तव्य जारी किया गया। संवाददाताओं को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों ने यूरेनियम आपूर्ति और महत्वपूर्ण खनिज गलियारे से जुड़े ऐतिहासिक समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज ने कहा कि इस भविष्य उन्मुख भारत ऑस्ट्रेलिया साझेदारी का सबसे मजबूत आधार दोनों देशों के बीच सेतु का कार्य करने वाला जीवंत भारतीय प्रवासी समुदाय है। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने कहा है कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच संबंध गतिशील हैं और तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। आज मेलबर्न में श्री मिश्री ने कहा कि व्यापार, रक्षा और ऊर्जा सहित अनेक क्षेत्रों में दोनों देशों की द्विपक्षीय साझेदारी लगातार सुदृढ़ हुई है। गुजरात सरकार ने आज गांधीनगर के महात्मा मंदिर में विकसित भारत डेटा सेंटर नीति 2026-29 का शुभारंभ किया। इस नीति का उद्देश्य 8 गीगावाट क्षमता का लक्ष्य निर्धारित करते हुए गुजरात को भारत के अग्रणी

0: ग्रीन डेटा सेंटर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस केंद्र के रूप में स्थापित करना है। इस नीति का उद्देश्य राज्य में 6 लाख करोड़ रुपए के निवेश और अधिक रोजगार सृजित करना है। सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ ने आज जम्मू कश्मीर में पुंछ जिले की अग्रिम सीमा चौकियों का दौरा किया। सेना प्रमुख ने मौजूदा सुरक्षा स्थिति का जायजा लिया और सैन्य तैयारियों की समीक्षा की। पदभार ग्रहण करने के बाद सेना प्रमुख का पुंछ के अग्रिम क्षेत्रों का ये पहला दौरा है। सेना प्रमुख ने नगरोटा स्थित व्हाइट नाइट कोर मुख्यालय में वरिष्ठ कमांडरों से जम्मू क्षेत्र की सुरक्षा स्थिति और सैन्य तैयारियों की जानकारी ली। सरकार ने सोशल मीडिया पर उस दावे का खंडन किया है जिसमें भारत आ रहे एक एलपीजी टैंकर पर ईरान के मिसाइल हमले की बात कही गई है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने इस दावे को झूठा बताते हुए कहा है कि साझा की जा रही तस्वीर पिछले साल यमन के अदन तट के पास कैमरून के झंडे वाले एलपीजी टैंकर एमवी फाल्कन में विस्फोट के बाद लगी आग से संबंधित है। ईरान ने अमेरिका पर आज बुशहर परमाणु ऊर्जा संयंत्र के पास हवाई हमला करने का आरोप लगाया। ईरान की सरकारी समाचार एजेंसी ने बताया है कि ये कार्रवाई उस पर हमले समाप्त करने की अमेरिकी सेना की घोषणा के कुछ घंटों बाद हुई। अमेरिकी केंद्रीय कमान ने इसकी पुष्टि नहीं की है। अमेरिका ने आज सुबह ईरान पर फिर हवाई हमले किए। ईरान ने भी खाड़ी क्षेत्र में अमेरिका के सहयोगी देशों को निशाना बनाकर जवाबी कार्रवाई की। इन हमलों से पश्चिम एशिया में युद्ध समाप्त करने का अंतरिम समझौता खतरे में पड़ गया है। ईरान के स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार अमरीकी हवाई हमलों से 2 दिन में 14 लोग मारे गए हैं और 78 घायल हुए हैं। दक्षिण पश्चिम मानसून आज पूरे देश में सक्रिय हो गया है। मानसून राजस्थान, हरियाणा, पंजाब और उत्तरी अरब सागर के शेष हिस्सों में भी आगे बढ़ चुका है। विभाग ने हरियाणा सहित राष्ट्रीय राजधानी में तेज बारिश के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। भारत और इंग्लैंड के बीच चौथा T20 मैच आज रात 10 बजे से ब्रिस्टल में खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय अनुजा कुमार। Prime Minister Narendra Modi today outlined a powerful roadmap for a future-ready and developed India driven by the mantra, Grow More, Achieve More. Addressing the Indian diaspora in Melbourne, Mr. Modi highlighted India's economic and technological progress.
2: 21वीं सदी का भारत आज विकसित होने के लक्ष्य पर काम कर रहा है। ये वो भारत है जो कहता है ग्रो मोर एचीव मोर। हम 140 करोड़ एस्पिरेशन से भरे राष्ट्र है। हम अधीर है, बेसब्र है। हम दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती इकोनॉमी है।
1: While crediting the Indian community for strengthening bilateral partnership, Mr. Modi asserted that ties between India and Australia have reached great heights. Mr. Modi highlighted the cultural roots, mini India hubs and emotional bonds across borders. Speaking on the occasion, Australian Prime Minister Anthony Albanese said the enthusiasm at the event reflected the strength of the Australia-India partnership and the growing warmth in bilateral relations. Later, briefing media in Melbourne, Foreign Secretary Vikram Misri said the relationship between India and Australia is a dynamic and fast-growing one. Earlier in the day, Prime Minister Modi and his Australian counterpart participated in the third Australia-India Annual Leaders Summit in Melbourne, during which they held delegation-level talks aimed at strengthening bilateral ties. To secure peace and stability across the Indo-Pacific, the two leaders signed a landmark joint declaration on defence and security cooperation, institutionalised an annual defence ministers' dialogue, and launched a unified maritime security collaboration roadmap. In a joint press statement after the talks, Prime Minister Modi said the two countries have signed a significant agreement in the field of nuclear energy that will enable the supply of uranium from Australia to India. He also announced the operationalization of the Australia-India partnership on cyber, critical technologies and supply chains and a dedicated critical minerals corridor. Union Home Minister Amit Shah is chairing a conference of superintendents of police, SPs, from border states and union territories in New Delhi. SPs from Jammu and Kashmir, Punjab, Uttarakhand, Rajasthan, Gujarat, Uttar Pradesh, Bihar, West Bengal,

0: राकेश कुमार किशोर और साथियों के स्वर में गाए पंच परगनिया लोकगीत के साथ ही हमारा आज का कार्यक्रम अब यहीं पर संपन्न होता है। अनिमेश को दीजिए अनुमति।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम झारखंड के लोकगीत। हम आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से बोल रहे हैं एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। संस्कृत समाचार आप सुनेंगे अब से कुछ ही पलों में।

0: सम्प्रतिवार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः जतिन शर्मा। आदौ मुख्य वार्ताः। प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्र मोदिनः उद्घोषः एकविंशति शताब्द्याः नूतन भारतं विकसित राष्ट्र निर्माणस्य लक्ष्यं प्रति द्रुतगत्या अग्रेसरति। मेलबोर्न नगरे भारतीय समुदायस्य भव्यं सम्मेलनं चासौ सम्बोधयति। भारत ऑस्ट्रेलिया देशयोः मध्ये रक्षा सुरक्षा सहयोगाय ऐतिहासिकं संयुक्त घोषणापत्रं हस्ताक्षरितम्। अनेन सहैव ऑस्ट्रेलिया देशस्य यूरेनियम धातोः दीर्घकालिक आपूर्तेः महत्वपूर्ण सन्धिः अपि निष्पादितः। उपराष्ट्रपतिना सी पी राधाकृष्णनेन भुवनेश्वरे गभीर समुद्र मत्स्यपालन सम्पदः शाश्वत उपयोगाय राष्ट्रियाभियानस्य विहितं विधिवत् अनावरणम्। राष्ट्रिय शिक्षा नीतेः अन्तर्गतं वयस्क साक्षरता मानदण्डानवाप्य उत्तराखण्ड राज्यं देशस्य पूर्ण साक्षर राज्यानां गौरवपूर्ण सूच्यां सम्मिलितम्। प्रावृष्टावत् कृत्स्नेहि देशे व्याप्ता दिल्ल्यां विगतरात्रिकालात् अश्रान्त वृष्ट्या सामान्य जनजीवनम् अत्यन्तं बाधितम्। अपि च भारत इंग्लैण्डयोः मध्ये पञ्च क्रीडात्मिकायाः चतुर्थी अन्ताराष्ट्रिय प्रतिस्पर्धा अद्य रात्रौ तावत् दशवादने क्रीडिष्यते। अथ वार्ताः विशदीकृत्य। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी प्रावोचत् यत् एकविंशति शताब्द्याः भारतं विकसित भारतं भवितुं संकल्पबद्धो वर्तते। तेनोदीरितं यत् साम्प्रतं भारतं तादृशः देशः यः अधिक विकासे विश्वसिति।
1: 21वीं सदी का भारत आज विकसित होने के लक्ष्य पर काम कर रहा है। ये वो भारत है जो कहता है ग्रो मोर एचीव मोर। हम 140 करोड़ एस्पिरेशन से भरे राष्ट्र है। हम अधीर है, बेसब्र है। हम दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती इकोनॉमी है।
0: विगत द्वादश वर्षेषु स्वस्य तृतीयं ऑस्ट्रेलिया भ्रमणं हैट्रिक इति विज्ञापत पयता तेन प्रतिपादितं यत् एषः प्रवासः भारत ऑस्ट्रेलिया सम्बन्धानां ऊर्ध्वगामितां सूचयति। अत्रावसरे ऑस्ट्रेलिया देशस्य प्रधानमन्त्री एन्थनी अल्बनीज इत्यसावपि तत्र उपस्थितः आसीत्। तेन तत्रत्यं जन उत्साहं दृष्ट्वा एषा सहभागिता दृढतरा इत्युक्तम्। अस्मात् पुरा उभयोः देशयोः नेतृभ्यां मेलबर्न नगरे तृतीये भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलने भागं गृहीत्वा शिष्ट मंडल स्तरीया द्विपाक्षिकी वार्ता विहिता। हिंद प्रशांत क्षेत्रे शांतिं स्थिरतां च स्थापयितुं द्वाभ्यां नेतृभ्यां रक्षा सुरक्षा सहयोग संयुक्त घोषणा पत्रे हस्ताक्षरं विहितम्।
1: हमारे मैरिटाइम सिक्योरिटी कोलैबोरेशन रोडमैप से इंडो पैसिफिक में हमारे साझा प्रयासों को नई ताकत मिलेगी। हम शिप बिल्डिंग, शिप रिपेयर और मेंटेनेंस में भी मिलकर आगे बढ़ेंगे। फ्रेंड्स, आज हमने कई क्षेत्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी विस्तार पूर्वक चर्चा की।
0: वार्ताहरान् संबोधयन् प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी न्यगादीत् यत् भारत ऑस्ट्रेलिया देशाभ्यां परमाणु ऊर्जा क्षेत्रे कश्चन ऐतिहासिकः सहयोगः साधितः। अनेन ऑस्ट्रेलिया देशात् भारताय यूरेनियम इत्यस्य आपूर्तिः सुलभा भविष्यति। अयं संयोगः भारतस्य स्वच्छोर्जा लक्ष्याय नवीनां गतिं प्रदास्यति। अनेनैव सह साइबर क्रिटिकल टेक्नोलॉजी एवं सप्लाई चेन प्रणाल्याः संचालनेन सहैव एकात्म महत्वपूर्ण खनिज वीथि निर्माणेन सामरिक प्रौद्योगिकी सुरक्षा क्षेत्रम् अनवरतम् समेधते।
1: आज हमने एक महत्वपूर्ण समझौता किया है। इससे ऑस्ट्रेलिया से भारत को यूरेनियम सप्लाई का मार्ग खुलेगा और हमारे क्लीन एनर्जी के उद्देश्यों को नई ताकत मिलेगी। क्रिटिकल मिनरल्स में हमारा सहयोग हमारी स्ट्रेटेजिक सिक्योरिटी और क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन के लिए महत्वपूर्ण है।
0: अद्य प्रातः तावत् उभौ प्रधानमन्त्रिणौ भारत ऑस्ट्रेलिया सीईओ फोरम इत्यस्मिन् भागं गृहीतवन्तौ। उपराष्ट्रपतिना सीपी राधाकृष्णन इत्यनेन अद्य भुवनेश्वरे ओडिशा कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालयस्य प्रांगणे भारतस्य उच्च समुद्र मत्स्यपालन संपदः शाश्वत उपयोगाय एकस्य ऐतिहासिक राष्ट्रीय अभियानस्य विधिवत शुभारम्भः अकारि। अत्रावसरे ब्लू इकोनॉमी इति समुद्राधारितार्थव्यवस्था इत्येतत् राष्ट्रीय समृद्धेः एकं दूरगामी परिवर्तनकारी इंजन इति वर्णयन् उपराष्ट्रपतिः देशस्य यूनां प्रति आह्वानं कृतवान्। तैः विकसित भारतस्य आधारशिलात्वेन आधुनिकाः प्रौद्योगिकी संचालिताः मत्स्यपालन सामुद्रिक वृत्तयः पूर्णोत्साहेन अंगीकरणीयाः। संस्कृत वार्तायाः संस्करणमिदं इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज ऑन एआईआर चलदूरभाषीय तन्त्रांशे अपि समुपलब्धो भविष्यति। उत्तराखण्ड राज्यं राष्ट्रिय शिक्षा नीति विंशतेः उल्लास इति नूतन भारत साक्षरता कार्यक्रमस्यान्तर्गतं निर्धारितान् वयस्क साक्षरता मानदण्डान् सम्प्राप्य देशस्य षष्ठं पूर्ण साक्षर राज्यं भवितुं गौरवास्पदं स्थानम् अवाप्तवान्। केन्द्रीय शिक्षा मन्त्रालयस्य विद्यालय शिक्षा एवं साक्षरता विभाग द्वारा निर्धारितानां मानदण्डानां पूर्त्यनन्तरं ह्यः राज्यपालेन अस्याः ऐतिहासिक घोषणायाः अनुमोदनं कृतम्। अन्यासाम् उपलब्धीनां श्रृंखलायाम् अनेन कीर्तिमानेन सह उत्तराखण्डः अधुना मिजोरम गोवा त्रिपुरा हिमाचल प्रदेश सिक्किम इत्यादीनां पूर्ण साक्षर राज्यानां सूच्यां सम्मिलितो जातः। यः राज्यस्य शैक्षणिक विकासस्य यात्रायामेकः महत्वपूर्णः अवसरो वर्तते। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इमाम् उपलब्धिम् ऐतिहासिकी इति वर्णयन् सहर्षं प्रावोचत् यत् सफलतेयं सर्वकारस्य निरन्तर प्रयासानां सममेव राज्यस्य नागरिकाणां सक्रिय सहभागितायाः एव सुखदः परिणामो वर्तते।

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: प्रस्तुत है ग्रामीण श्रोताओं के लिए हमारा दैनिक कार्यक्रम कृषि जगत।

0: एफएम बैंड के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर ज्ञान, सूचना, मनोरंजन और जानकारियों से भरपूर कार्यक्रम कृषि जगत सुनने वाले मेरे प्यारे किसान भाई बहनों, साथ ही कार्यक्रम सुन रहे सभी सुनी श्रोताओं को हमारा प्यार भरा नमस्कार, जोहार और बहुत बहुत स्वागत। आज के ज्ञानवर्धक अंक के साथ हूँ मैं आपका रेडियो मित्र अनिमेश कुमार बक्सी। कृषक मित्रों, आज के अंक में कृषि एवं संबंध क्षेत्रों पर अल नीनो के प्रभाव का समन विषय पर सुनिएगा भेंटवार्ता। भेंटवार्ताकार होंगी कृषि विज्ञान केंद्र दारिशाई की हेड और गृह वैज्ञानिक डॉक्टर सीमा सिंह जी। सुनिएगा कुछ गीत और कुछ जरूरी सूचनाएं और जानकारियां, लेकिन इन सबसे पहले बातें कर लेते हैं पीएम आशा योजना के बारे में। कृषक मित्रों, प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान, जिसे पीएम आशा के नाम से जाना जाता है, केंद्र सरकार की एक प्रमुख योजना है, जिसे 20 सितंबर 2018 में किसान भाई बहनों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाने और उन्हें बाजार के उतार चढ़ाव से बचाने के लिए शुरू किया गया था। इसका मुख्य लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि किसान भाई बहनों को उनकी फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP प्राप्त हो। यह योजना मुख्य रूप से दालों, तिलहनों और खोपरा जैसी फसलों पर केंद्रित है। इसे सफलता पूर्वक संचालित करने के लिए मुख्य रूप से तीन भाग में बांटा गया है। पहला भाग है मूल्य समर्थन योजना, यानी कि प्राइस सपोर्ट स्कीम, जिसे कि PSS के नाम से जाना जाता है। इस घटक के तहत नाफेड और भारतीय खाद्य निगम FCI जैसी केंद्रीय नोडल एजेंसियां राज्य सरकारों के सहयोग से किसान भाई बहनों से सीधे उनकी फसल की MSP पर खरीदती है। दूसरा भाग है मूल्य घाटा भुगतान योजना, यानी प्राइस डिफिशियंसी पेमेंट स्कीम, जिसे कि PDPS के नाम से जाना जाता है। इसमें फसल की भौतिक खरीद नहीं की जाती है। इसके बजाय यदि कोई किसान भाई बहन अपनी फसल को MSP से कम दाम पर बाजार में बेचता है, तो बाजार मूल्य और MSP के बीच का जो वित्तीय अंतर होता है, उसका भुगतान सीधे किसान भाई बहनों के बैंक खाते में सरकार द्वारा किया जाता है। और तीसरा भाग है निजी खरीद एवं स्टॉकिस्ट योजना, यानी प्राइवेट प्रोक्योरमेंट एंड स्टॉकिस्ट स्कीम, जिसे कि PPPS के नाम से जाना जाता है। इसके तहत राज्यों को यह विकल्प दिया जाता है कि वे कुछ तिलहन फसलों के लिए निजी व्यापारियों को बाजार में उतारने के लिए प्रोत्साहित कर सके। यदि निजी व्यापारी MSP से कम दाम पर खरीदते हैं, तो सरकार उन्हें एक निश्चित सीमा तक सेवा शुल्क या नुकसान का भुगतान करती है, ताकि किसान भाई बहनों को पूरा MSP का लाभ मिल सके। योजना के मुख्य लाभ और पंजीकरण के बारे में भी बात कर लेते हैं। इस योजना का विस्तार 2025-26 तक किया जा चुका है, जिसके लिए 35,000 करोड़ रुपए का बजटीय आवंटन भी किया गया है। इसका लाभ उठाने के लिए किसान भाई बहनों को कृषि विभाग या संबंधित राज्यों की ई उपार्जन या कृषि पोर्टल के माध्यम से अपना पंजीकरण कराना होता है। पंजीकरण के लिए आधार कार्ड, बैंक खाता विवरण, खसरा के कागजात और फसल संबंधी जानकारी जैसे दस्तावेज आवश्यक होते हैं। अधिक जानकारी अपने राज्य में लागू घटकों की स्थिति और पंजीकरण की प्रक्रिया जानने के लिए किसान भाई बहन कृषि मंत्रालय की आधिकारिक वेबसाइट यानी डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर पर जाकर देख सकते हैं, रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। अगर किसी भी किसान भाई बहन के फसल का भाव MSP से कम है, तो तुरंत अपने जिले के कृषि विभाग या नाफेड केंद्र में संपर्क करें या फिर PSS के तहत रजिस्ट्रेशन करवा लें। मित्रों, यह थी जानकारी पीएम आशा योजना के बारे में, और आइए अब सुनते हैं भेंट वार्ता। विषय है कृषि एवं संबंध क्षेत्रों पर अल नीनो के प्रभाव का समन, और इस विषय पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर साथ हैं कृषि विज्ञान केंद्र दारिशाई जिला पूर्वी सिंहभूम की हेड डॉक्टर सीमा सिंह जी, और इनसे बातचीत की है आपके रेडियो मित्र अनिमेश ने। आइए सुनते हैं यह महत्वपूर्ण भेंट वार्ता। ग्रामीण किसान भाई बहनों, आज के कार्यक्रम कृषि जगत में हम बात करने वाले हैं कृषि एवं संबंध क्षेत्रों पर अल नीनो के प्रभाव के समन के बारे में। जी हाँ, कृषि एवं संबंध क्षेत्रों पर अल नीनो के प्रभाव के शमन के बारे में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इन दिनों महासागरीय धाराओं की वजह से अल नीनो का प्रभाव गहराता जा रहा है, जिसका सीधा प्रभाव जलवायु परिवर्तन और संबंध क्षेत्रों पर पड़ रहा है, तो कृषि क्षेत्र भी इससे अछूता नहीं है। और इस विषय पर जानकारियों को साझा करने के लिए आज हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर साथ हैं डॉक्टर सीमा सिंह, जो कृषि विज्ञान केंद्र दारिसाई की प्रमुख हैं और कृषि वैज्ञानिक हैं। डॉक्टर सीमा सिंह जी, आपका हमारे इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार।
1: नमस्कार।
2: क्या कुछ कहना चाहेंगी अल नीनो के प्रभाव के बारे में?
1: किसान भाई एवं कृषक बहनें, आपका हार्दिक स्वागत है। बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पे हम लोग चर्चा करेंगे, जिसका सीधा प्रभाव हमारी खेती, पशुपालन, मत्स्य पालन, आजीविका पर पड़ता है।

0: इस विषय का नाम है एलिनो। एलिनो क्या है? एलिनो एक प्राकृतिक जलवायु घटना है जिसमें प्रशांत महासागर का पानी सामान्य से अधिक गर्म हो जाता है और इसका प्रभाव पूरी दुनिया के मौसम पर पड़ता है। भारत में प्रायः के कारण मानसून कमजोर हो जाता है, वर्षा कम होती है जैसा कि अभी हो रहा है, तापमान बढ़ जाता है तथा सूखे जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तो हम अपने जिले में क्या संभावित प्रभाव है पूर्वी सिंहभूम जिले में, ये इस पे विशेष रूप से चर्चा करने के लिए यहाँ पे आपके बीच में मौजूद हैं। पूर्वी सिंहभूम मुख्यतः वर्षा आधारित कृषि क्षेत्र है। यहाँ एलिनो के कारण समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं, जैसे मानसून देर से आना, वर्षा का असमान वितरण, धान की रोपाई में विलंब, फसलों में नमी की कमी, उत्पादन एवं आय में गिरावट, पशुओं के लिए हरे चारे की कमी, जल स्रोतों का सूखना, मत्स्य उत्पादन में कमी, कृषि में समन के उपाय। तो ऐसे में हम लोग किसान भाई क्या करेंगे? फसल विविधीकरण अपना है, केवल धान पे निर्भर न रहें। मोटे अनाज से श्री अन्य कहते हैं मरुआ, ज्वार, बाजरा भी अपने खेत में लगाएं, दलहन एवं तिलहन को लगाएं, अरहर की खेती, उड़द की खेती, तिल की खेती इसको भी खेत में लगाएं, मक्का, अरहर, मूंग, उड़द, रागी, कोदो, कुटकी जैसी कम पानी में होने वाली फसलों को लगाना होगा धान के जगह पे। सूखा और सहनशील किस्मों का चयन करना होगा, जो कि कम अवधि एवं सूखा सहन करने वाली धान की किस्में को लेना होगा। प्रमाणित एवं गुणवत्ता युक्त बीजों का उपयोग करना है। जल संरक्षण पे भी ध्यान देना है, खेत में मेवबंदी करना है, वर्षा जल का संचयन करना है, डोभा बनाएं, चेक डैम, जल संग्रहण संरचनाओं का उपयोग करें, सूक्ष्म सिंचाई में ड्रिप एवं स्प्रिंकलर सिंचाई अपनाएं, मल्चिंग का उपयोग करें, फसल अवशेष जैसे पुआल एवं सूखी पत्तियों से मल्चिंग करें, इसमें नमी लंबे समय तक बनी रहती है तथा खर पतवार भी कम उगते हैं खेत में।
1: अच्छा।
0: पोषण प्रबंधन के लिए गोबर की खाद, वर्मी कम्पोस्ट, जैव उर्वरक का उपयोग को बढ़ाना होगा, संतुलित उर्वरक प्रबंधन करना होगा, प्राकृतिक खेती को अपनाना होगा, गो देसी गाय आधारित खेती करना होगा, प्राकृतिक खेती जिसमें रसायन का उपयोग नहीं करना है, और गोमूत्र गोबर का उपयोग करके खेतों में जीवामृत, बीजामृत, घन जीवामृत आदि का प्रयोग करना होगा। बागवानी क्षेत्र में भी हम लोग जा सकते हैं, फलदार पौधे के चारों का चारे लगाएं, उसका मल्चिंग करें, ड्रिप सिंचाई बागवानी में भी करना होगा, छायादार पौधों एवं वायु अवरोधक भी लगाना है, पौधे की समय पर सिंचाई एवं पोषण करना है। फिर पशुपालन में पशुओं के लिए स्वच्छ एवं पर्याप्त पेयजल उपलब्ध रखना होगा, हरा चारा जैसे अजोला वगैरह को खेती कर सकते हैं, उसको उत्पादन में ला सकते हैं, नेपियर घास, बरसीम, बहुवर्षीय चारा लगाना होगा।
1: अच्छा।
0: कृषि वानिकी में भी हम लोग को खेत की मेरों पर फलदार वृक्ष लगाना है।
1: तो कौन कौन से फलदार वृक्ष लगा सकते हैं मैम?
0: जैसे सहजन लगा सकते हैं ना, नींबू, आंवला, ये सब कम पानी में और शुष्क वातावरण में ही अच्छी उपज देते हैं।
1: अच्छा।
0: वृक्ष जो है वो मिट्टी और नमी दोनों के संरक्षण में सहायक होते हैं।
1: और मिट्टी के कटाव को भी ये रोकते हैं।
0: मिट्टी के कटाव को ये रोकेंगे,
1: तो इससे कृषि जो से संबंधित जो फसलें हैं वो नुकसान भी कम होगा और जो पानी की जो निकासी है वो भी होगी और पानी का जितना जरूरत है उतना उपयोग में संभव हो पाएगा।
0: बिल्कुल।
1: ये एलिनो जो है अभी इसका कितना प्रभाव देखने को मिलेगा
0: एलिनो का प्रभाव तो है, तो उसी को कम करने के लिए हम लोग को वैकल्पिक व्यवस्था जो है ध्यान देना होगा कि मतलब धान का खेती में असर पड़ेगा तो धान की सीधी बुवाई करनी है, मोटे अनाज को लगाना है क्योंकि अभी मोटे अनाज जो मरुआ हो गया, बाजरा हो गया, ये सब जो है इसका ज्यादा मांग है बाजार में।
1: अच्छा।
0: इसके जो उत्पाद हैं, ब्रेड है, केक है, बिस्किट है, इसका अभी बाजार में ज्यादा मूल्य मिलता है, तो अगर इसको बढ़ावा देंगे तो कहीं ना कहीं वो हमारे आजीविका पे भी प्रभाव डालेगा, सुदृढ़ होगा।
1: अच्छा।
0: तो मोटे अनाज को अपना सकते हैं।
1: और किसानों को क्या क्या सावधानियां जो है बरतनी चाहिए, जो सामान्य सावधानियां हैं वो क्या होनी चाहिए?
0: मौसम पूर्वानुमान नियमित देखना होगा, कृषि वैज्ञानिक से सलाह लेके वैज्ञानिक पे ध्यान देना होगा, फसल बीमा योजना का लाभ उठाना है, FPO से जुड़ के अपनी खेती को सुदृढ़ कर सकते हैं क्योंकि बहुत सारे योजनाएं जो है FPO के लिए हैं, सामुदायिक रूप से जल संरक्षण कार्यों में भाग लेना है और आधुनिक तकनीकों एवं कृषि यंत्रों का उपयोग करना है, वीडर वगैरह जो है उसका उपयोग करके, क्योंकि बहुत सारे कृषि यंत्र जो है वीडर जो है उसका उपयोग करके या फिर सीधी बुआई के लिए यूज करके उसको कम ज्यादा श्रम भी नहीं होगा, महिलाओं

0: का योगदान खेती में बहुत ज्यादा होता है, श्रम उनका ज्यादा लगता है।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: तो उपज वगैरह का यूज करके एक तो सीधी बुआई कर सकते हैं और खरपतवार पे नियंत्रण कर सकते हैं, तो श्रम भी कम लगेगा और ज्यादा उपज भी होगा और महिलाओं के स्वास्थ्य की भी सुरक्षा होगी।
1: तो कुल मिलाकर कहा जाए तो अलनीनो के लिए हमें ये ध्यान रखना होगा कि जो मौसम की सलाह है जो वैज्ञानिकों द्वारा समय समय पर दी जाती है उस पर किसान भाई बहनों को एक टक नजर गड़ाए रखना होगा। कहीं पर कुछ भी प्रभाव अगर दिखता है या मौसम की कुछ भी जानकारी दी जाती है तो उसको मतलब अक्षरशः पालन करना है, तभी हम अलनीनो के प्रभाव से जो है वो बच सकते हैं। नहीं तो फिर हमारा जो कृषि क्षेत्र संबंध क्षेत्र है अगर हम ध्यान नहीं देंगे तो ये बर्बाद भी हो सकता है।
0: बिल्कुल। मतलब हमारा ये संदेश होगा किसान भाइयों के लिए, एक एक पेड़ एक किसान, एक श्री अन्न, यही है जलवायु परिवर्तन से लड़ने का सशक्त अभियान योगदान।
1: हमारी भारत सरकार के द्वारा भी मैम अलनीनो के लिए बहुत सारे प्रबाय किए जा रहे हैं, जानकारियां भी प्रसिद्ध की जा रही हैं, तो आपके हिसाब से क्या क्या भारत सरकार की तरफ से जानकारियां जो है वो दी जा रही हैं, एक बार आप अपने शब्दों में कह दें।
0: जैसे अभी जो सूखा रोधी किस्में है CR धान, सीधी वो किस्म लगाएं और सीधी बुआई करें, बिना चारा बनाए उसको सीधी बुआई करें, है ना। और मौसम की जानकारी तो नियमित देखना है और उसको अक्षर पालन भी करना है। फसल बीमा योजना में उसका लाभ लेना है। और मरुआ की खेती जो करेंगे, मोटे अनाज जो रागी हो गया या बाजरा ज्वार ये सब की खेती करेंगे, तो अगर आप रजिस्ट्रेशन करा के करेंगे तो प्रति एकड़ अगर मरुआ की खेती करते हैं या मोटे कोई भी अनाज की खेती करते हैं तो प्रति एकड़ 3,000 रुपया सरकार के तरफ से आपको लाभ मिलेगा प्रोत्साहन राशि के रूप में। तो एक तो मरुआ में कम पानी में और ऐसा सूखा प्रभावित क्षेत्र में जो कि ऊपरी जमीन में उसकी खेती हो सकती है तो वो खेती हम कर पाएंगे सफलतापूर्वक, साथ में कुछ हमें प्रोत्साहन राशि मिलेगा जिसका कि हम फिर कोई भी कृषि यंत्र या खाद बीज ये सब खरीदने के लिए उसका उपयोग करके अपने खेती को और अच्छा बना सकते हैं और आजीविका को भी सुरक्षित कर सकते हैं।
1: और मैम एक बात मैं आपसे और जानना चाहूंगा कि अलनीनो के प्रभाव से हवा की जो दिशा है वो क्या त्वरित बदल जाती है क्या?
0: हाँ बदल जाती है।
1: मतलब जो एक्सपेक्टेशन किया गया है उस एक्सपेक्टेशन को वो दूर भी कर सकता है, मतलब वो हो भी नहीं सकता है।
0: सही बात, जलवायु परिवर्तन इतना तेजी से हो रहा है।
1: जलवायु परिवर्तन के तेजी के चलते ही ये सारी समस्याएं जो है वो उत्पन्न हो रही है,
0: इसीलिए मतलब प्राकृतिक खेती पे अभी ज्यादा जोर दिया जा रहा है क्योंकि प्राकृतिक खेती ही जलवायु अनुकूल खेती माना जा रहा है। एक तो उसमें रसायन का 0 प्रयोग है ना, और फसल चक्र को उसमें अपनाना है, मिश्रित खेती करना है, इंटरक्रॉपिंग, इंटीग्रेटेड फार्मिंग अप्रोच करना है ना, कि एक साथ आप मान लीजिए तालाब लगा रहे हैं तो तालाब के चारों ओर फलदार वृक्ष लगा लीजिए, उससे कुछ उद्यानिकी फल अमरूद आम केला पपीता ये सब भी लाभ ले सकते हैं, कुछ बत्तख पालन मुर्गी पालन मछली पालन भी उसका भी लाभ ले सकते हैं, साथ में मशरूम पालन कर सकते हैं, मधुमक्खी पालन कर सकते हैं, तो इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम अप्रोच रखना होगा ना, तभी जो है एलिनो जैसे प्रभाव को हम लोग के जोखिम को कम कर सकते हैं।
1: तो किसान भाई बहनों ये थी डॉक्टर सीमा सिंह जी और हमें जानकारी दे रही थी कि अलनीनो का प्रभाव क्या है और कृषि और संबंध क्षेत्रों पर के प्रभाव को हम कैसे शमन कर सकते हैं, इस विषय पर जानकारियों को साझा कर रही थी। और मैं समझता हूँ कि अलनीनो का जो प्रभाव है उसको आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे और क्या क्या सावधानियां हमें बरतनी चाहिए जिसके बारे में भी आपने सुना होगा। डॉक्टर सीमा सिंह जी आपने इतनी अच्छी जानकारी हमारे किसान भाई बहनों के साथ साझा की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद।

0: किसान भाई बहनों, अभी आप कृषि एवं संबंध क्षेत्रों पर अल नीनो के प्रभाव के समन विषय पर कृषि विज्ञान केंद्र तारीशाही जिला पूर्वी सिंहभूम की गृह वैज्ञानिक और प्रमुख डॉक्टर सीमा सिंह जी से ली गई भेंटवार्ता का प्रसारण सुन रहे थे। बाह्य ध्वनि अंकन पर टेलीफोनिक आधारित थी यह भेंटवार्ता। आगे बढ़ने से पहले सुनते हैं यह संदेश।
1: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
2: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
1: और अब तो आप घर

0: दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
1: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
0: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001-4242 पर।
1: 8700001-4242।
2: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
3: किसान भाई बहनों, आइए एक नजर डाल लेते हैं मौसम और फसल सलाह पर। किसान भाई बहनों, कल दिनांक 10 जुलाई 2026 के मौसम के संदर्भ में कहा गया है कि आसमान में काले बादल छाए रहेंगे, दिन उमस भरा रहेगा, कहीं कहीं बारिश और कहीं कहीं धूप भी खिली रह सकती है, हवा का दबाव भी रहेगा तथा इसकी दिशा होगी उत्तर से दक्षिण की ओर और रफ्तार रहेगी 13 किलोमीटर प्रति घंटा। कल का अधिकतम तापमान रह सकता है 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस। सापेक्षिक आर्द्रता रहेगी अधिकतम 88% और न्यूनतम 45%। अब एक नजर फसल सलाह पर। धान की नर्सरी यदि 20 से 25 दिन की हो गई हो तो तैयार खेतों में धान की रोपाई शुरू करें। पंक्ति से पंक्ति की दूरी 20 सेंटीमीटर तथा पौध से पौध की दूरी 10 सेंटीमीटर रखें। उर्वरकों में 100 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस, 40 किलोग्राम पोटास और 25 किलोग्राम जिंक सल्फेट या प्रति हेक्टेयर की दर से डालें तथा नील हरित सहवाल 1 पैकेट प्रति एकड़ का प्रयोग उन्हीं खेतों में करें जहां पानी खड़ा रहता हो ताकि मृदा में नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ाई जा सके। जिन किसान भाई बहनों की धान की पौधशाला लग गई हो वे बकानी रोग के लिए पौधशाला की निगरानी करते रहें तथा लक्षण पाए जाने पर कार्बोडाजिम 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में मिलाकर घोल बनाकर छिड़काव करें। धान की पौधशाला में यदि पौधों का रंग पीला पड़ रहा है तो इसमें लौह तत्व की कमी हो सकती है। पौधे को ऊपरी पत्तियां यदि पीली और नीचे की हरी हो तो यह लौह तत्व की कमी दर्शाता है। इसके लिए 0.5% फेरस सल्फेट और 0.25% चूने के घोल को मिलाकर छिड़काव करना चाहिए। किसान भाई बहनों, फसल सलाह के बाद आइए सुनते हैं वीरेंद्र उपाध्याय और साथियों के स्वर में भोजपुरी लोकगीत।
4: Oh.

किसान भाई बहनों, अभी आप वीरेंद्र उपाध्याय और साथियों के स्वर में भोजपुरी लोकगीत सुन रहे थे। लोकगीत के इस प्रसारण के साथ ही हमारा आज का कार्यक्रम कृषि जगत बस यहीं तक। अपने रेडियो मित्र अनिमेश को दीजिए अनुमति, लेकिन इस बात के साथ कि अपनी धरती माँ और पर्यावरण की सेहत के लिए प्लास्टिक का उपयोग को ना कहेंगे, क्योंकि हम लोग अपनी सुविधा के लिए इसे प्रयोग में लाते हैं और फिर फेंक देते हैं, जिसके इसके अंदर मौजूद विषैले रसायनों का प्रभाव से मृदा पर काफी असर पड़ता है। इस जानकारी के बाद रखिए अपना पूरा पूरा ख्याल। नमस्कार, जोहार।

कृषि जगत, ये था ग्रामीण श्रोताओं के लिए हमारा दैनिक कार्यक्रम। हम आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से बोल रहे हैं, एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। इस समय शाम के 6:55 हुए हैं। हमारा अगला प्रसारण कुछ ही पलों में आकाशवाणी के रांची केंद्र से, जहां से 7 बजे आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार 7:10 पर जिले में आज कल।

0: घर घर तक पहुंचाएं आपका विज्ञापन, आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न चैनल, देश के किसी भी कोने में विज्ञापन देने के लिए प्रसार भारती के मार्केटिंग प्रभाग से संपर्क कीजिए।
1: मेरे प्यारे देशवासियों, आज हर घर में मोबाइल फोन, लैपटॉप, टैबलेट जैसी डिवाइसेस आम हो चली है। देश भर में इनकी संख्या बिलियंस में होगी। आज के लेटेस्ट डिवाइस भविष्य के ई वेस्ट भी होते हैं। अगर ई वेस्ट को ठीक से डिस्पोज नहीं किया गया तो यह हमारे पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचा सकता है। लेकिन अगर सावधानी पूर्वक ऐसा किया जाता है तो रिसाइकल और रीयूज की सर्कुलर इकोनॉमी की बहुत बड़ी ताकत बन सकता है। आप जानकर चौंक जाएंगे कि अलग अलग प्रोसेस के जरिए इस ई वेस्ट से करीब 17 प्रकार के प्रेशियस मेटल्स निकाले जा सकते हैं। इसमें गोल्ड, सिल्वर, कॉपर और निकल शामिल है। इसलिए ई वेस्ट का सदुपयोग करना कचरे को कंचन बनाने से कम नहीं है। आज ऐसे स्टार्टअप्स की कमी नहीं जो इस दिशा में इनोवेट काम कर रहे हैं। इस सेक्टर ने हजारों लोगों को सीधे तौर पर रोजगार भी दिया है। ये सभी भारत को ग्लोबल रिसाइकलिंग हब बनाने में मदद कर रहे हैं। लेकिन ऐसे इनिशिएटिव की सफलता के लिए

एक जरूरी शर्त भी है, वो ये है कि ई वेस्ट के निपटारे से सुरक्षित उपयोगी तरीकों के बारे में लोगों को जागरूक करते रहना होगा।

0: भारती, भारत का लोक सेवा प्रसारक।
1: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पूजा कुमारी। पहले मुख्य समाचार। नई दिल्ली में आयोजित 2 दिवसीय नेशनल स्टैक होल्डर्स कंसल्टेशन सम्मेलन में झारखंड सरकार ने प्रस्तुत किया रोड मैप। 1150 करोड़ का निवेश रोड मैप तैयार। राज्य में SIR की प्रक्रिया जारी। राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया, अब तक 82% से अधिक मतदाताओं का हुआ मैपिंग। रथ मेले की तैयारियां तेज। पुलिस महानिदेशक ने की सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा। पर्याप्त संख्या में सुरक्षा बलों की तैनाती का दिया निर्देश। नेता प्रतिपक्ष से मिले रिम्स 2 निर्माण से प्रभावित रैयत, समस्याओं से कराया अवगत। बाबूलाल मरांडी ने राज्य सरकार को घेरा। और सरायकेला खरसावां जिले में CISCI जोनल कबड्डी प्रतियोगिता शुरू। कोल्हान प्रक्षेत्र के 16 विद्यालयों के लगभग 800 विद्यार्थी ले रहे हिस्सा। और अब समाचार विस्तार से। राज्य सरकार ने झारखंड को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI आधारित सुशासन और डिजिटल नवाचार का राष्ट्रीय मॉडल बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। नई दिल्ली में आयोजित 2 दिवसीय नेशनल स्टेक होल्डर्स कंसल्टेशन सम्मेलन का आखिरी दिन आज राज्य सरकार ने विजन 2050 और प्रस्तावित AI नीति 2026-31 का विस्तृत रोड मैप प्रस्तुत किया। इसके तहत अगले 5 वर्षों में 1,150 करोड़ रुपए के निवेश से राज्य में AI आधारित डिजिटल इकोसिस्टम विकसित किया जाएगा। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता संदीप वर्मा ने राज्य सरकार पर निवेश के लिए उपयुक्त माहौल बनाने में असफल रहने का आरोप लगाया है। श्री वर्मा ने आज रांची में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि केंद्र सरकार के महत्वाकांक्षी स्टार्टअप इंडिया में राज्य सरकार सहयोग नहीं कर रही है। उन्होंने ट्रेजरी घोटाले को लेकर भी राज्य सरकार को आड़े हाथों लिया।
1: प्रदेश में इस तरह से इन्वेस्टमेंट के नाम पर राज्य सरकार या ये कहें कि मुख्यमंत्री जी झारखंड की जनता को बेवकूफ लगातार बनाने का काम कर रहे हैं। अगर आप देखेंगे कि अगर सबसे बड़ा धोखा कोई एक होता है तो वो होता है सपना दिखाना और फिर उस सपने को तोड़ देना।
0: राज्य में इन दिनों मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के तहत BLO द्वारा मतदाताओं से e-numeration फॉर्म भरवाया जा रहा है। राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने बताया कि वर्तमान में 82% से अधिक मतदाताओं का मैपिंग कार्य पूरा कर लिया गया है। इधर राज्य अल्पसंख्यक आयोग ने मतदाता सूची पुनरीक्षण की धीमी गति पर चिंता व्यक्त की है।
2: BLO को जो कार्य करना चाहिए वो घर घर जाने में असमर्थ हैं। साथ ही साथ जिस बूथ के BLO हैं वहीं पर आम मतदाता को बुला करके फॉर्म देने का काम कर रहे हैं। आयोग का ये कहना है अगर BLO पर सख्ती नहीं किया गया, जो SIR का जो सपना है

0: हमको नहीं लगता है कि वो पूरा होता हुआ दिख रहा है।
1: ऐतिहासिक जगन्नाथपुर रथ मेले के शांतिपूर्ण आयोजन को लेकर पुलिस ने तैयारियां तेज कर दी है। पुलिस महानिदेशक डीजीपी तदाशा मिश्रा की अध्यक्षता में आज रांची में मेले के सफल आयोजन को लेकर उच्च स्तरीय बैठक हुई। बैठक में डीजीपी ने अधिकारियों को मेला क्षेत्र तथा रथ यात्रा मार्ग पर निगरानी बढ़ाने, पर्याप्त पुलिस बल की तैनाती करने और महिला श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए विशेष व्यवस्था सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।
2: पारंपरिक व्यवस्था है, नजर रहेगा, सीसीटीवी रहेंगे, फोर्स रहेगा, लाइट बिजली पानी सबकी व्यवस्था रहेगी और उसमें कोई चीज इमरजेंसी होगा तो उसको भी देखने के लिए हम लोग हैं। मेडिकल कैंप्स रहेंगे, वुमेन सेफ्टी के लिए हम लोग महिला पुलिस तैनात रखते हैं।
1: केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी पीएम सूर्य घर योजना का उद्देश्य घरों की छत पर सोलर पैनल लगाकर लोगों को मुफ्त में बिजली उपलब्ध कराना है। इस योजना का लाभ झारखंड और बिहार के लोगों तक पहुंचाने के लिए आज हजारीबाग में सांसद मनीष जायसवाल ने फ्रेंचाइजी केंद्र का उद्घाटन किया। मौके पर श्री जायसवाल ने बताया कि इस योजना का लाभ लेकर लोग बिजली बिल देने से मुक्त हो सकते हैं और सोलर पैनल से उत्पादित बिजली बेचकर आर्थिक रूप से संपन्न भी हो सकते हैं।
3: पीएम सूर्य घर योजना के माध्यम से 10 किलोवाट तक का जो है सोलर पैनल इन्वर्टर के साथ आपके घर पे लगाने का प्रोविजन है, जिसमें केंद्र सरकार से आपको 78,000 रुपए का सब्सिडी मिल जाता है। 78,000 का आपको सब्सिडी मिलता है। इसके दो फायदे हैं, एक तो आपका बिजली का बिल कम हो जाएगा, तो दूसरा फायदा है कि आज जो पावर कट का झंझट जो है उससे भी आप मुक्त हो जाते हैं।
1: झारखंड उच्च न्यायालय में आज JPSC संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा के प्रारंभिक परीक्षा के परीक्षा फल को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई हुई। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति MS सोनक और न्यायमूर्ति राजेश शंकर की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए प्रार्थी को किसी तरह की राहत नहीं देते हुए याचिका खारिज कर दी। आकाशवाणी के ताज़ा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। ताज़ा समाचार @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIRNewsRanchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी से आज रिम्स 2 निर्माण से प्रभावित रैयत और ग्रामीणों ने मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने श्री मरांडी को समस्याओं से अवगत कराया और सहयोग की अपील की। बाद में पत्रकारों से बातचीत में नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि नगड़ी में रिम्स 2 के निर्माण को लेकर राज्य सरकार हठधर्मिता पर अड़ी है। श्री मरांडी ने कहा कि बेकार पड़ी बंजर भूमि पर रिम्स 2 का निर्माण होना चाहिए।
4: युद्ध पर सरकार अड़ी हुई है, जिस जनता को आज वो उजाड़ रही है वही लोग आने वाला सरकार को लोग उजाड़ देगी। भाई हर खेती की जमीन आदिवासियों की है और आप हॉस्पिटल के नाम से जबरदस्ती आप उसको छीन रहे हैं। लोग विरोध कर रहे हैं, लोग लोगों से मिल रहे हैं और मैं समझता हूँ कि भाई सभी पॉलिटिकल पार्टी को और राज्य की जनता को भी ऐसे लोगों को साथ दीजिए।
1: प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने जमीन कारोबारी कमलेश कुमार सिंह की लगभग 66 एकड़ जमीन जब्त कर ली है। गौरतलब है कि ईडी ने जमीन कारोबारी द्वारा जमीन की खरीद बिक्री की जांच के दौरान यह पाया था कि वह कांके और नगड़ी अंचल में 66 एकड़ जमीन में से कुछ का फर्जी दस्तावेज बनाकर बेच दिया है। इससे पहले जांच के बाद कारोबारी सहित अन्य के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया जा चुका है और जांच जारी है। छात्र संगठन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ABVP ने आज 78वां स्थापना दिवस मनाया। इस मौके पर राजधानी रांची समेत राज्य भर में कई कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। इस दौरान रांची के मोराबादी स्थित सेंट्रल लाइब्रेरी में संगोष्ठी का आयोजन किया गया। मौके पर अधिवक्ता राजेश कृष्णन ने कहा कि ABVP का इतिहास गौरवशाली रहा है और राष्ट्र के विकास में महत्वपूर्ण योगदान है।
5: आज अगर देश हमारा जिस जगह पर खड़ा है, मुझे ये लगता है कि इसमें सबसे बड़ा हक और योगदान ABVP है। इसका सामाजिक स्थान, इसका नेशनल कंट्रीब्यूशन और

0: सामाजिक सद्भावना में उसी जो दमिता रही गहरे विचार से आज समाज का हर व्यक्ति हर कौन विकास की ओर जा रहा है।
1: उधर हजारीबाग में एबीवीपी के स्थापना दिवस पर मैराथन दौड़ का आयोजन हुआ जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया। रांची महानगर कांग्रेस छात्रों की गूंज मुहिम के तहत 12 जुलाई को रांची में छात्र मैराथन का आयोजन करेगा। मोराबादी मैदान में आयोजित इस मैराथन में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और बड़ी संख्या में छात्र हिस्सा लेंगे। मैराथन के संयोजक कुमार राजा ने अधिक से अधिक छात्रों को इसमें शामिल होने की अपील की है।
2: कैंपेन का मंशा ही यही है, उनको बताएं कि किस तरीके से उनके भविष्य के लिए हम संघर्ष कर रहे हैं, हम चिंतित हैं और आपको अपनी आवाज बुलंद करनी पड़ेगी अगर आप चाहते हैं कि आपको पेपर लीक मुक्त परीक्षा मिले। दूसरा अगर भर्ती परीक्षा का भी कैलेंडर आए और छात्र को पता रहे कि किस समय पे कौन सी परीक्षा होने वाली है जिससे उसको भी नौकरी भर्ती मिलेगा।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फिट इंडिया मूवमेंट और खेलो इंडिया अभियान की परिकल्पना को जमीनी स्तर पर साकार करते हुए सरायकेला खरसावां जिले के जेवियर स्कूल परिसर में आज से CISCI जोनल कबड्डी प्रतियोगिता शुरू हुई। 2 दिवसीय इस खेल महाकुंभ में कुल्हान प्रक्षेत्र के 16 विद्यालयों के लगभग 800 विद्यार्थी हिस्सा ले रहे हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। नई दिल्ली में आयोजित 2 दिवसीय नेशनल स्टेक होल्डर्स कंसल्टेशन सम्मेलन में झारखंड सरकार ने प्रस्तुत किया रोड मैप। 1150 करोड़ का निवेश रोड मैप तैयार। राज्य में SIR की प्रक्रिया जारी। राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया अब तक 82% से अधिक मतदाताओं का हुआ मैपिंग। रथ मेले की तैयारियां तेज। पुलिस महानिदेशक ने की सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा। पर्याप्त संख्या में सुरक्षा बलों की तैनाती का दिया निर्देश। नेता प्रतिपक्ष से मिले रिम्स 2 निर्माण से प्रभावित रैयत, समस्याओं से कराया अवगत। बाबूलाल मरांडी ने राज्य सरकार को घेरा। और सरायकेला खरसावां जिले में CISCI जोनल कबड्डी प्रतियोगिता शुरू। कोल्हान प्रक्षेत्र के 16 विद्यालयों के लगभग 800 विद्यार्थी ले रहे हिस्सा। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन कल सुबह 8:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: इस अंक में आप सुनेंगे बोकारो जिले की ताजा गतिविधियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट। रिपोर्ट के साथ हमारे बोकारो संवाददाता।
1: बोकारो जिले में SIR के तहत मतदाता गणना प्रपत्र का वितरण युद्ध स्तर पर चल रहा है। उपायुक्त अजय नाथ झा ने बताया, बोकारो स्टील सिटी शहरी क्षेत्र के मतदाता BLO को सहयोग नहीं कर रहे हैं। उपायुक्त ने सभी से सहयोग करने की अपील की है।
2: हमारा उद्देश्य है कि जो भी बोकारो के नागरिक हैं, कोई भी नागरिक इसमें छूटे नहीं। सभी नागरिकों से भी अपील है कि BLO को 1,000-1,200 लोगों को तक जाना है। अगर वो आपके पास जा रहे हैं, स्पेशली मैं देख रहा हूँ BS सिटी के क्षेत्र में दो दो घंटे वेट करा रहे हैं, कह रहे हैं 1 घंटे के बाद आइए, 2 घंटे बाद आइए, ऐसा मत करिए। आप उनको इंतजार मत कराइए, वो अपना सब काम छोड़कर आपके पास आए हैं आपका मतदाता सूची को अपडेट करने के लिए, उसको SIR की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए।
1: बरसात के दिनों में हाथियों का झुंड भोजन की तलाश में ग्रामीण क्षेत्रों में आ जाता है। वन पदाधिकारी संदीप सिंधे ने गोमिया प्रखंड के ग्रामीणों को खासकर रात में घर से बाहर नहीं निकलने की सलाह दी है।
3: बोकारो जिले के गोमिया प्रखंड में 30 हाथियों के झुंड की होने की सूचना है। ये जो झुंड है अभी फिलहाल बड़की पुन्नू गोपो पालू कुसुमडी कानीडी एरिया में पाया गया है और इनके मूवमेंट की वजह से ये छितरा भी गया है और 2-3 अलग अलग झुंड में ये देखा जा रहा है। इस झुंड में बताते चले आपको कि 2 से 3 गर्भवती जो हथनियाँ हैं, इस वजह से ये झुंड आक्रामक होने की संभावना है। खास तौर पर इसी वजह से एहतियात रखने की हम आपके माध्यम से ही सबको रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि झुंड के पास ना जाए।

0: सेल्फी लेने पास में ना जाए, और जो रात के समय में भी अपने घर से बाहर ना निकले, आप कोई वन क्षेत्र में कोई गाड़ी या वाहन लेकर लाइट लेकर वहां ना जाए।
1: बोकारो स्टील सिटी के मोहन कुमार मंगलम स्टेडियम में 18 से 27 अगस्त तक राष्ट्रीय तीरंदाजी प्रतियोगिता होने जा रहा है। राष्ट्रीय तीरंदाज बोकारो जिला तीरंदाजी संघ की महासचिव एंजेला सिंह ने कहा, इस प्रतियोगिता से स्थानीय खिलाड़ियों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा।
2: बोकारो में नेशनल हो जाना भी हम तो इमेजिन भी नहीं कर सकते थे। इतना दिन के बाद हम लोग ने इस बार सर का थ्रू से ट्राई, सर ने बोले कि हम लोग बोकारो कर सकते हैं। उनके अरुण मुंडा जी और हमारा सेक्रेटरी पूर्णिमा महतो जी ने साथ दिए, मेरे लिए तो बहुत खुशी की बात है। हम लोग झारखंड का गौरव दीपिका जी जो आ ही रही है, और जितना बेस्ट प्लेयर सब है जो हम लोग अभी ओलंपिक में जितना अभी जो खेलने गए, वर्ल्ड कप में जो मेडल जितना लोग लाए हैं सब आ रहे हैं।
1: नशा के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के दौरान उपायुक्त अजय नाथ झा ने बच्चों को नशा से दूर रहने की नसीहत दी है।
3: ऐसी चीजों के प्रलोभन से दूर रहते हुए उस समय इमोशनली स्ट्रांग होते हुए और अपने लक्ष्य पर केंद्रित करते हुए कि आप देश के एक इम्पोर्टेंट ह्यूमन रिसोर्स है, उस दृष्टि से आप सोचते हुए कि हमको देश के लिए कंट्रीब्यूट करना, अपने परिवार समाज के लिए कंट्रीब्यूट करना है, नशे के चक्कर में नहीं पड़ना है। ये एक ऐसी चीज है कि एक बार आपने गलती से हाँ कर दिया तो निकलने का रास्ता बहुत कठिन है। इसलिए स्पष्ट रूप से हमारा मैसेज है कि नशा के खिलाफ हम सब लोग एकजुट हों।
1: पिछले दो दिनों से रुक रुक कर हो रही बारिश से किसान खुश हैं। जिले के किसान कृषि कार्य में जुट गए हैं। मनोज कुमार, आकाशवाणी समाचार, बोकारो।
4: अभी आप सुन रहे थे बोकारो जिले की ताजा गतिविधियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट पर आधारित कार्यक्रम जिले में आजकल।

0: जिले में।
1: FM 102.4 मेगाहर्ट्ज पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी जमशेदपुर। प्रस्तुत है बंगला प्रेमी श्रोताओं के लिए हमारा दैनिक बंगला कार्यक्रम।

0: ये था बंगला प्रेमी श्रोताओं के लिए हमारा दैनिक बंगला कार्यक्रम। हम आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से बोल रहे हैं FM के 102.4 MHz पर। प्रस्तुत है खेल प्रेमी श्रोताओं के लिए हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम खेल खिलाड़ी।
1: खेल खिलाड़ी।
2: खेल प्रेमी श्रोताओं को राजीव का नमस्कार और आपका स्वागत है हमारे आज के इस खेल खिलाड़ी कार्यक्रम में।
1: शुरुआत सामयिक विषयों पर बातचीत से।
2: आज के अंक में हम बातें करेंगे फुटबॉल में फीफा वर्ल्ड कप 2026 की, साथ ही आपको लेकर चलेंगे क्रिकेट की ओर, जहां भारतीय टीम 5 T20 मैचों की श्रृंखला इंग्लैंड के साथ इंग्लैंड में खेल रही है। वहीं टेनिस में चल रहे सबसे प्रतिष्ठित ग्रैंड स्लैम विंबलडन की, साथ ही जमशेदपुर में आयोजित हैंडबॉल के नेशनल कैंप की बातें भी होंगी। तो चलिए आज के इस यादगार सफर की ओर चलते हैं और शुरुआत करते हैं फुटबॉल से। दोस्तों, फुटबॉल में फीफा विश्व कप की खुमारी पूरे विश्व में हर फुटबॉल प्रेमियों पर साफ दिख रही है। हर तरफ प्रशंसक अपनी अपनी टीमों का हौसला बढ़ाने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। राउंड ऑफ 16 के मुकाबले अब खत्म हो चुके हैं और 8 क्वार्टर फाइनलिस्ट मिल चुके हैं। अब क्वार्टर फाइनल मुकाबलों की शुरुआत कल यानी 10 तारीख से होगी, जिसमें पहला क्वार्टर फाइनल मुकाबला पिछले विश्व कप की रनर अप टीम फ्रांस और मोरक्को के बीच खेला जाएगा, तो वहीं दूसरा क्वार्टर फाइनल मुकाबला स्पेन और बेल्जियम, तीसरा मुकाबला नॉर्वे और इंग्लैंड और अंतिम क्वार्टर फाइनल मुकाबला अर्जेंटीना और स्विट्जरलैंड के बीच खेला जाएगा। इससे पहले राउंड ऑफ 16 में मोरक्को ने कनाडा को 3-0 से हराकर अगले राउंड में प्रवेश किया था। मोरक्को की तरफ से 2 गोल ओनाही और 1 गोल रहीमी ने किया था। वहीं राउंड ऑफ 16 के दूसरे मुकाबले में फ्रांस ने किलियन एम्बाबे के शानदार गोल की बदौलत पैराग्वे को 1-0 से हराया था। राउंड ऑफ 16 के एक और मुकाबले में बेल्जियम ने यूएसए को 4-1 से हराया था। इस मुकाबले में बेल्जियम की तरफ से केटेलेरे ने 2 गोल, वेनेकन ने 1 गोल और लुकाकू ने 1 गोल दागा था। वहीं यूएसए की तरफ से टिलमैन ने एकमात्र गोल किया था। राउंड 16 के दूसरे मुकाबले में पुर्तगाल और स्पेन के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिली, जिसमें स्पेन ने मेरिनो के शानदार गोल की बदौलत पुर्तगाल को 1-0 से हराकर एक बार फिर से पुर्तगाल के क्रिस्टियानो रोनाल्डो के विश्व कप जीतने के सपने पर पानी फेर दिया। वहीं राउंड ऑफ 16 के पांचवें मुकाबले में नॉर्वे ने ब्राजील को 2-1 से हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। नॉर्वे की तरफ से हॉलैंड ने 2 गोल किए, तो वहीं ब्राजील की तरफ से नेमार ने पेनल्टी स्ट्रोक को गोल में तब्दील कर ब्राजील के खाते में एकमात्र गोल किया। वहीं मैच हारने के बाद ब्राजील के स्टार प्लेयर नेमार ने अंतर्राष्ट्रीय मैचों से रिटायरमेंट का भी ऐलान कर दिया। राउंड ऑफ 16 के छठे मुकाबले में इंग्लैंड ने मेजबान मैक्सिको को कड़े मुकाबले में 3-2 से हराया। इंग्लैंड की तरफ से बेलिंगम ने 2 और कप्तान हैरी केन ने 1 गोल किया। वहीं राउंड ऑफ 16 का

0: सबसे मजेदार मुकाबला स्विट्जरलैंड और कोलंबिया के बीच खेला गया, जिसमें फुल टाइम तक दोनों टीमों में से किसी ने भी गोल नहीं किया और मैच का फैसला पेनल्टी शूटआउट से हुआ, जिसमें स्विट्जरलैंड ने कोलंबिया को 4-3 से हराकर क्वार्टर फाइनल का टिकट कटवाया, जहां उसका मुकाबला डिफेंडिंग चैंपियन अर्जेंटीना से होगा। अर्जेंटीना ने एक बेहद रोमांचक मुकाबले में मिस्र से 2 गोल से पिछड़ने के बाद शानदार वापसी करते हुए 3-2 से यह मैच अपने नाम कर लिया। इस मैच में मिस्र के इब्राहिम ने मात्र 15वें मिनट में पहला गोल करके अर्जेंटीना को यह बता दिया कि यह मैच आसान नहीं होने वाला है। उसके बाद मिस्र के जीको ने 67वें मिनट में दूसरा गोल करके मिस्र को 2-0 की बढ़त दिला दी। अर्जेंटीना को इस मैच में वापसी रोमेरो की गोल से हुई, जो मैच के 79वें मिनट में आया। उसके ठीक 4 मिनट बाद ही लियोनेल मेस्सी ने शानदार गोल कर मैच को बराबरी पर ला दिया और अंत में अर्जेंटीना के इगो फर्नांडेज ने मैच के अतिरिक्त समय में गोल कर अर्जेंटीना को अगले राउंड में पहुंचा दिया। दोस्तों, अगर हम आंकड़ों की बातें करें तो लियोनेल मेस्सी 8 गोल के साथ गोल्डन बूट के रेस में सबसे आगे हैं, वहीं अर्लिंग ब्रूट हॉलैंड, किलियन एम्बाबे 7-7 गोल के साथ संयुक्त रूप से दूसरे और इंग्लैंड के हैरी केन 6 गोल के साथ तीसरे स्थान पर हैं। वहीं क्वार्टर फाइनल के पहले मैच के पहले मोरक्को के प्लेयर ब्राहिम डायज ने प्रेस से बातचीत में बताया कि
1: थैंक यू फॉर एवरीवन टू कम, यू नो द अदर डे वी शो द मेंटालिटी, वी शो वी आर कैपेबल ऑफ डूइंग, एंड आई थिंक दिस इज द मेंटालिटी वी नीड टू डू, यू नो द माइंडसेट इज अमेजिंग। द अदर डे वी शो इट इन द फर्स्ट हाफ, वी टू बी ऑनेस्ट वी डिडंट प्ले आवर गेम, बट इन द सेकंड हाफ विद द कोच एंड द स्टाफ टेल अस व्हाट टू डू, वी केम बैक एंड वी डिड व्हाट वी डिड. And this is our mentality. We want to keep going. And tomorrow is a big game for us, which everyone want to play this kind of game. Yeah, you know, Aurelien and Kylian, they are my teammates in Real Madrid. They are brilliant players, also brilliant person. But tomorrow we are rival. We both everyone want to win, and this is the most important. I trust my team. I know we will do a big game, and that's all I can say. Yeah, you know, we have experience also. I think we played big games already, and of course it will be an experience game, but I trust my team. If you see our lineup, if you see the player who come from the bench, or if you see the staff, the coach, everything, I think we have experience enough to show tomorrow that we can win.
0: दोस्तों, अब FIFA विश्व कप के सारे मैचेस काफी रोमांचक होने वाले हैं, जिसमें सभी 8 टीमें सेमीफाइनल में जगह बनाने के लिए एक दूसरे के साथ लड़ेंगी और बेस्ट 4 टीम्स सेमीफाइनल में अपना जगह सुनिश्चित करेंगी। दोस्तों, फुटबॉल के बाद अब सीधे रुख करते हैं क्रिकेट की ओर। क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच इंग्लैंड में 5 मैचों की T20 श्रृंखला खेली जा रही है, जिसमें इंग्लैंड ने पहला मैच बारिश से प्रभावित होने के बाद दूसरा और तीसरा मैच जीतकर श्रृंखला में अजेय बढ़त बना ली है। तीसरा मैच इंग्लैंड के ट्रेंट ब्रिज में खेला गया, जिसमें भारतीय टीम ने टॉस जीता और इंग्लैंड को पहले बल्लेबाजी करने का न्योता दिया। इंग्लैंड ने पहले बैटिंग करते हुए फिल सॉल्ट के शानदार 70 रन, सैम करन के नाबाद 41 रन और जोश बटलर के 36 रनों की बदौलत निर्धारित 20 ओवर में 7 विकेट खोकर 201 रन बनाए और भारत के सामने जीत के लिए 202 रनों का लक्ष्य रखा। भारत की तरफ से प्रिंस यादव ने शानदार गेंदबाजी करते हुए 4 ओवर में मात्र 30 रन देकर 2 खिलाड़ियों का शिकार किया। वहीं हर्षित राणा के खाते में भी 2 सफलताएं हाथ लगी। जवाब में 202 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय टीम ताश के पत्तों की तरह ढह गई और मात्र 76 रन पर ऑल आउट हो गई। भारतीय बल्लेबाजी का खराब प्रदर्शन का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि वैभव सूर्यवंशी और ईशान किशन 13 रन बनाकर हाईएस्ट रन स्कोरर रहे। इस मैच में भारतीय टीम की रणनीति की आलोचना सभी तरफ से हुई। भारतीय टीम के 5 खिलाड़ी पावर प्ले में ही पवेलियन लौट चुके थे। वहीं अक्षर पटेल को बैटिंग करने के लिए तिलक वर्मा से पहले और हर्षित राणा को बैटिंग करने के लिए शिवम दुबे से पहले भेजा गया। इंग्लैंड के गेंदबाजों ने एक बार फिर से इंडियन टीम की बैटिंग लाइनअप की कमियों को उजागर कर दिया, जहां मिडिल ऑर्डर पूरी तरह से फ्लॉप नजर आया। इंग्लैंड की तरफ से जोश टंग ने 4 खिलाड़ियों का शिकार किया, तो वहीं जोफ्रा आर्चर ने 3 खिलाड़ियों को पवेलियन का रास्ता दिखाया। जोफ्रा आर्चर को उनके शानदार

0: जो क्लैरिटी संजू सैमसन को मिलनी चाहिए थी वो मेरी तरफ से मिल चुकी, और वो कॉन्वर्सेशन सिर्फ एक हेड कोच और एक प्लेयर के बीच में। वो कॉन्वर्सेशन हम बाहर तो बताएंगे नहीं कि क्या कॉन्वर्सेशन है वो। और जहाँ तक कि क्लैरिटी की बात है, वी आर एब्सोल्युटली क्लियर दैट संजू व्हाट ही इज डन फॉर इंडिया ड्यूरिंग द वर्ल्ड कप हैज बीन फेनोमिनल, एंड समटाइम्स यू जस्ट हैव टू लुक एट द फॉर्म एज वेल ऑफ अ सर्टेन प्लेयर। और ऐसा कुछ नहीं है कि देर इज एनी हार्ड एंड फास्ट रूल दैट ही कैन नॉट मेक अ कमबैक इन दिस सीरीज, एंड मोर इम्पॉर्टेंटली वी अल्टीमेटली इंटरनेशनल क्रिकेट इज अबाउट रिजल्ट्स, तो वट एवर वी फील इज द बेस्ट कॉम्बिनेशन टू गिव अस द रिजल्ट्स, वी प्ले दैट कॉम्बिनेशन, वी प्ले दैट प्लेइंग 11, एंड दैट इज वॉट आई ऑलवेज बीन अ बिग बिलीवर दैट एवरीवन नीड्स टू अर्न देयर प्लेस, एवरीवन नीड्स टू अर्न द राइट टू प्ले फॉर इंडिया। या अडैप्टेबिलिटी ऑब्वियसली वी हैव एन अडैप्टेड वेल, रियलिटी यही, चाहे वो आयरलैंड हो चाहे वो यहाँ पर इंग्लैंड में हो, तभी आपके हमारे सामने रिजल्ट्स हैं। अगर बेटर अडाप्ट किया होता, अगर हम बेटर क्रिकेट खेले होते तो शायद हम 4 मैचेस लगातार हारते ना। आई डोंट नो व्हाट इंग्लैंड इज गोना ट्राई एंड डू, बट वी गॉट टू कीप गेटिंग बेटर एट प्लेइंग पेस, एज सिंपल एज इट कैन गेट। एंड मोर इम्पोर्टेंटली आई थॉट दैट टुडे वाज प्रॉब्ली वन ऑफ द ऑफ डेज, बिकॉज इफ यू सी द लास्ट 2 T20s वी गॉट 190 ऑन द बोर्ड इन बोथ द T20 गेम्स। सो समटाइम्स व्हेन यू प्ले अ हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड गेम दिस थिंग्स कैन हैपन, यू कैन गेट बंडल आउट फॉर द स्कोर, एंड दैट इज हाउ दैट इज व्हाट हैज मेड अस सक्सेसफुल, एंड वी विल ट्राई एंड कंटिन्यू टू प्ले द सेम वे। वी ऑलवेज बिलीव दैट इन अ T20 गेम इट्स ऑल अबाउट गोइंग आउट देयर एंड एक्सप्रेसिंग योरसेल्फ, and sometimes you do get the results and sometimes you don't get the results. I've always believed that England is a proper white ball team, whether it's 50 over format or T20 format, the kind of quality batters they've got, the kind of quality bowling they've got. Obviously, even when you go back to that semi-final against India at Mumbai, we won the game by 5 runs, so obviously we knew that how dangerous England can be, and that's probably one of the reasons why they also play high risk, high reward, and that's why they've got the results, but they've got the results in last 21 T20s. I'm sure, absolutely, because when you've got so much of experience with likes of Phil Saul, George Butler and all those guys, with Chopra and all those guys, obviously they're high quality side with so much of experience. That do play a huge part when you play in batting friendly wickets back in India. So when you play in these conditions, obviously it's far more easier as a bowling group as compared to when you play the IPL. I think he still has a lot to improve. I think that is where we need to get better as well. I think he started off his T20 career really well, especially today, because with on these conditions and against a batting lineup like this, obviously he had put his hand up and perform phenomenally well, but again he's got a lot to improve as well. देखिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव carry forward कर सकते हैं नहीं, बिकॉज द काइंड ऑफ डे वी हैड, बट यस प्रिंस यादव, जैसे आपने बात करी, प्रिंस यादव जो अपना दूसरा T20 मैच खेल रहे थे, मुझे लगता है कि जिस तरीके से उन्होंने गेंदबाजी करी, बिकॉज एनालिसिस देखना बहुत आसान है, लेकिन जो ओवर उन्होंने डाले, चाहे वो 6th ओवर हो पाप ले का, चाहे वो डेथ में 19वां ओवर हो, जब आप मुश्किल ओवर्स डालते हो उसके बावजूद अगर आप इस तरीके की परफॉर्मेंस देते हो जब आप दूसरा T20 मैच खेल रहे हो, तो जस्ट शोज कि द बॉयज गॉट अ ब्राइट फ्यूचर, एंड आई होप ही कीप्स वर्किंग हार्ड एंड कीप्स गेटिंग बेटर। देखिए थोड़ा बहुत कंडीशंस मैटर करती है, लेकिन अगर आप देखें तो चेंजेस हुए हैं T20 टीम में। अगर आप इतने जब आप फिर से रीसेट करने जाते हैं अपनी T20 साइड को, तो कई बार आपको ऐसी परफॉर्मेंसेज मिलती हैं, बिकॉज अगर आप जो लास्ट वर्ल्ड कप फाइनल में प्लेइंग 11 खेली थी और जो आज खेली है 4 T20s के बाद, उसमें काफ़ी चेंजेस है, चाहे वो आप कैप्टन को ले लीजिए, चाहे आप ओपनिंग बैट्समैन को ले लीजिए, चाहे आप हार्दिक पांड्या नहीं है, जसप्रीत बुमराह नहीं है, तो जब आप फिर से रीसेट करने जा रहे हैं तो थोड़ा बहुत वक्त लगता है। बिकॉज अगर आप देखें 15 साल के एक खिलाड़ी ओपन कर रहे हैं, आपके पास प्रिंस यादव है जो अपना दूसरा T20 मैच खेल रहे हैं, हर्षित राणा इंजरी के बाद वापस आ रहे हैं, तो ये चीज़ें आप बहुत आसानी से बोल सकते हैं, क्योंकि हम अल्टीमेटली रिजल्ट देखते हैं, और नो डाउट कि रिजल्ट इंटरनेशनल क्रिकेट में इंपॉर्टेंट है, लेकिन प्रैक्टिकल होके देखना भी बहुत इंपॉर्टेंट है।
1: दोस्तों अब इस सीरीज के बाकी बचे हुए 2 मैच आज ब्रिस्टल में और 11 जुलाई को द एजेज बॉल वेस्ट एंड में खेले जाएंगे, जिसे भारतीय टीम दोनों मैच जीतकर श्रृंखला को कम से कम ड्रॉ करने के इरादे से उतरेगी। दोस्तों इससे पहले आईसीसी वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप का खिताब एक बार फिर से ऑस्ट्रेलिया की लड़कियों ने जीत लिया है। फाइनल मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया महिला टीम ने इंग्लैंड महिला टीम को 7 विकेट से हराकर यह खिताब 7वीं बार अपने नाम कर लिया है। फाइनल मुकाबला इंग्लैंड के लॉर्ड्स स्टेडियम में खेला गया, जहां इंग्लैंड ने पहले बैटिंग करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 4 विकेट खोकर 150 रन ही बना सकी। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से सदी हुई गेंदबाजी देखने को मिली, और इंग्लैंड की तरफ से नैट शीवर ब्रंट ने धीमी बल्लेबाजी करते हुए 53 गेंदों में नाबाद 58 रन की पारी खेली। जवाब में लक्ष्य का पीछा करने उतरी ऑस्ट्रेलियन वेमेन्स टीम निर्धारित लक्ष्य को मात्र 17.1 ओवर में ही हासिल कर ली। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से बेथ मूनी ने शानदार 49 गेंदों में 64 रनों की पारी खेली। वहीं लिचफील्ड ने भी 48 रनों का बहुमूल्य योगदान दिया। इस टूर्नामेंट में और फाइनल मैच में शानदार प्रदर्शन करने के लिए ऑस्ट्रेलियन ओपनर बेथ मूनी को प्लेयर ऑफ द मैच

0: अब चलते हैं अपने जमशेदपुर में चल रहे खेल गतिविधियों की ओर। दोस्तों, जेआरडी टाटा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में अंडर 21 नेशनल हैंडबॉल टीम का नेशनल कैंप लगा हुआ है और यह कैंप 12 तारीख तक रहेगा, जिसमें देश के अलग अलग हिस्सों से आए हैंडबॉल प्लेयर ट्रेनिंग कर रहे हैं, जिसके बारे में विस्तार से जानकारी दे रहे हैं झारखंड हैंडबॉल एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हसन इमाम।
1: हसन इमाम साहब, ये जो अंडर 21 का आप लोग यहाँ पर इंडिया कैंप लगा रहे हैं हैंडबॉल का, ये एक अपने आप में भी बहुत बड़ी उपलब्धि है जमशेदपुर के लिए भी और फेडरेशन के लिए भी। क्या कुछ होने वाला है, क्या कुछ रहेगा, और जो चाइना टीम जाने वाली है उसकी तैयारियों को लेकर क्या कुछ विशेष होने वाला, पूरा विस्तार से बताएं।
2: जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं हैंडबॉल एसोसिएशन इंडिया का बेहद शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने झारखंड को चुना और खास करके टाटा नगर में जो टाटा स्टील ने जो हमें बेहद वर्ल्ड क्लास हैंडबॉल फैसिलिटी दिया है, ग्राउंड दिया है, हम मिट्टी में खेलते थे हैंडबॉल का। मुझे बेहद खुशी है कि हमारे झारखंड के सेक्रेटरी इमरान मसूद, जो काफी प्रयासरत थे कि उनको नेशनल मिले या कोई जूनियर सीनियर कुछ भी मिले, लेकिन जो बोलते हैं ना कि जब आदमी मेहनत करता है तो अच्छा फल मिलता है, तो आज हम लोग को फर्स्ट टाइम झारखंड में टाटा जीआरडी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के अंदर एशियन चैंपियनशिप में जाने वाली जूनियर हैंडबॉल टीम का कैंप मिला। मैं अभी उसके यहाँ मैं सुपरवाइज पूरा सुपरवाइज मैं देख रहा हूँ, तो यहाँ 24 बच्चे आए हैं और 4 कोचेज हैं। तो कैंप शुरू हो गया, हमारे ओपनिंग सेरेमनी में हमारे कैप्टन मनीष सिन्हा जो हेड स्पोर्ट्स है, उन्होंने ओपनिंग करके बच्चों को बेस्ट ऑफ लक कहा। आज अभी आपने देखा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारे प्रेसिडेंट बन्ना गुप्ता जी, जिनकी मदद से, जिनके रिक्वेस्ट पे टाटा स्टील ने मदद किया, तो रहने के लिए क्या खिलाड़ी को क्या चाहिए, अच्छा रहने को मिल जाए, अच्छा फूड मिल जाए। तो मैं टाटा स्टील फाउंडेशन का भी बेहद शुक्र गुजार हूँ, CSR डिपार्टमेंट का, जिनके कैप्टन अमिताभ आए थे, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे। तो ये आज हम लोग के लिए मानो जैसे कि ईद है। आज मैं अपनी जिंदगी का लगभग पूरा हिस्सा 13 साल की उम्र से हैंडबॉल खेल रहा हूँ, इंटरनेशनल कोच बना हूँ, टाटा स्टील ने नौकरी दिया और कई खिलाड़ी इस ग्राउंड से निकले हैं, और इस खिलाड़ियों में हरिंदर सिंह जैसे कोच है, फिरोज खान जैसे कोच है, रॉबर्ट बोसन जैसे कोच है, अभी मैं कोचिंग दे रहा हूँ। ये सभी कोचेस का बलिदान है, मेहनत है कि 100-200 से ज्यादा खिलाड़ी पैदा हुए, तो ये बड़ी खुशी की बात है। और अब यही हम लोग को करना है कि जितना दिन खिलाड़ी यहाँ है उनको मेहनत कराना है, ताकि अब वो हरियाणा, राजस्थान या यूपी से नहीं है, अब वो भारतीय टीम का हिस्सा है। अब भारत का परचम हमारे देश की शान है, उसको लहराने का प्रयास हम शुभकामना भी देंगे। हमारे कोचेस मेहनत कर रहे हैं, चूंकि जमशेदपुर में ट्रेनिंग सेंटर में मैं कोच हूँ, इंचार्ज हूँ, तो मेरे ऊपर एक जिम्मेदारी बनता है, इसीलिए 2 दिन से काफी सुबह उठना पड़ रहा है बच्चों के साथ उसको तैयारी करने में, और हमारे जो कोचेस हैं वो भी काफी मेहनत कर रहे हैं।
1: इमाम साहब, ये जो कैंप है इसका ड्यूरेशन क्या होगा? हाँ। और जो इंडिया टीम जो चाइना जा रही है, अंडर 21 की टीम जो चाइना जा रही है, उस टूर्नामेंट के बारे में भी बताएं कि क्या कुछ होने वाला है।
2: नहीं, ये एशियन चैंपियनशिप होने वाला है 15 से 27 तक, और यहाँ हमारा जो कैंप चलेगा वो शुरू हो गया है कल से, सुबह मॉर्निंग में सेशन था और चल रहा है, वो 12 तक चलेगा, 13 को कलकत्ता जाना है टीम को और वहीं से चाइना चली जाएगी टीम।
1: तो हैंडबॉल जैसे खेल में अगर हम बात करें तो जो कड़ी प्रतिस्पर्धा मिलती है, खासकर जो जापान की टीम है, चाइना की टीम है, कोरिया की टीम है, उन टीमों से जो प्रतिस्पर्धा के जो चीजें चाहिए वो यहाँ पर आप लोग किस तरह से बच्चों में डेवलप करेंगे?
2: बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने किया। देखिए, 50 साल हो गया हैंडबॉल को, सभी ने मेहनत किया, जो भी हमारे बुजुर्ग थे, मैं किसी की तरह ये नहीं कहूंगा, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि डॉक्टर आनंदन सर पांडे के सेक्रेटरी जनरल बनने के बाद से, और तेजराज जो हमारे अभी सेक्रेटरी जनरल हैं, और हमारे कोचेस की मेहनत से, एक तो मेरे लिए गर्व की बात है कि जिस डिपार्टमेंट में बैठ के आपको इंटरव्यू दे रहा हूँ, इसी डिपार्टमेंट का 2 बच्चा देव कुमार और रंजीत सिंह ने सिल्वर मेडल जीता था कॉमनवेल्थ में दिल्ली में। उसके बाद मैं जिस टीम को लेकर ताशकंद गया था वो सिल्वर मेडल जीते। अभी हमारे एक कोच है जो आए हुए हैं, वो जो टीम को लेकर बीच हैंडबॉल में गए सिल्वर मेडल जीते। तो मेडल का सिलसिला जिस तेजी से बढ़ा है, अभी हमारे फिरोज खान बंटी जो इंडिया टीम के बेस्ट प्लेयरों में से एक आते हैं, अगर इस जोन में 3 खिलाड़ी को अब निकालिएगा तो बंटी, जमील और हकीम गोलकीपर, ये इंडिया के 20 में इनका सिलेक्शन होगा। NIS भी टॉपर किया फिरोज, और अभी भिलाई में है कोच नेशनल।

0: एकेडमी बीएससीएसएफ में और जमील सेकंड कमांड माने बहुत बड़ी बात है कमांडेंट बनने वाले और एक अभी जमशेदपुर में पोस्टिंग हकीम की। मैं इसलिए डॉक्टर अंजन प्रसाद उनका ख्वाब उनका नींद उनका उठना उनका बैठना हैंडबॉल है। तेज प्रताप सिंह जो लवि वो हमारे हनुमान जी जो हमारे गार्जियन थे उनके बेटे हैं। ये दो लोगों ने मिलके और पूरे नई कमेटी ने मेडल तक पहुंचाने में और एकेडमी खुला इंडिया में एशियन चैंपियनशिप हुआ एशियन यूथ चैंपियनशिप हुआ कॉमनवेल्थ हुआ ये सब कर रहे हैं पांडे साहब। ये बहुत बड़ी बात है और हम लोग को मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि मैं इस फाउंडेशन का हिस्सा हूँ।
1: एक लास्ट सवाल इमाम साहब की ये जो 21 बच्चे हैं 24 कहाँ कहाँ से बच्चे हैं और झारखंड या विशेषता अगर हम जमशेदपुर की बात करें तो जमशेदपुर के भी कोई कुछ बच्चे हैं या झारखंड से तो कुछ उनके बारे में बताएं और कहां कहां से ये बच्चे आए हैं।
0: ये पूरे इंडिया से राजस्थान से है यूपी से है कर्नाटक से है तमिलनाडु से है
2: झारखंड से
0: 7 बच्चे कैंप में है टीम में नहीं है। लेकिन इससे पहले हमारी रिमझिम कुमारी वो इंडिया टीम की हिस्सा थी उससे पहले दुमका के खिलाड़ी है वो टीम के हिस्सा थे उससे पहले मैं 2-3 बार इंडियन टीम का कोच बन के एशियन चैंपियनशिप में ख्वाब में भी नहीं सोचता था पहले कि एक झारखंड या बिहार का एक खिलाड़ी। लेकिन बता रहा हूँ कि इस फेडरेशन ने पूरे हिंदुस्तान में हैंडबॉल का विकास किया है। जैसे इमरान मसूद ने एक एक कोने में गांव में हर स्टेट में हैंडबॉल को बढ़ाने के लिए मेहनत कर रहे हैं।
1: तो अभी जो कैंप लग रहा है इसमें 7 बच्चे झारखंड से
0: झारखंड के ट्रेनिंग कर रहे हैं लेकिन टीम में नहीं है बच्चे जी वो टीम का सिलेक्शन हो चुका है। लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि इसके बाद जाने वाली टीम में हमारे बच्चे जरूर होंगे क्योंकि हमारे पास 2 बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं एक गोलकीपर है वक्त आने पे नाम बताऊंगा 2 खिलाड़ी बहुत जल्दी जाने वाले।
3: दोस्तों यही टीम 15 तारीख से चीन में होने वाले अंडर 21 हैंडबॉल एशियन चैंपियनशिप में शिरकत करने वाली है। हमारी टीम चैंपियनशिप जीत कर आए यही हम सब की शुभकामनाएं हैं। इसके साथ ही हमारा आज का खेल खिलाड़ी कार्यक्रम अब समाप्त होता है। कार्यक्रम की प्रस्तुति से मुझे यानी राजीव को दीजिए इजाजत। नमस्कार।
4: खेल खिलाड़ी खेल खिलाड़ी खेल खिलाड़ी।
5: खेल खिलाड़ी ये था खेल प्रेमी श्रोताओं के लिए हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम। ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है FM के 102.4 MHz पर। प्रस्तुत है फिल्म संगीत।

0: तुमसे अच्छा कौन है, अभी आपने इस फिल्म का गीत सुना। आवाज कुमार सानू की थी, गीतकार थे समीर, संगीत था नदीम श्रवण का।
1: हेलो डॉक्टर,
2: आकाशवाणी जमशेदपुर का लाइव फोन इन कार्यक्रम।
1: हेलो डॉक्टर,
2: सुनिए हर माह के आखिरी बुधवार को रात 8 बजे से FM 102.4 मेगाहर्ट्ज पर विशेषज्ञों से कीजिए बातें लाइव कार्यक्रम के दौरान और पाइए अपनी समस्याओं से निदान। तो कॉल कीजिए साथियों 0657-2960-445 पर। नंबर एक बार पुनः सुनिए 0657-2960-445 और बातें कीजिए लाइव डॉक्टर के साथ। हेलो डॉक्टर,
0: आइए अब सुनते हैं अलका याग्निक की आवाज में फिल्म साजन का ये गीत, जिसे लिखा है समीर ने और संगीतबद्ध किया है नदीम श्रवण ने।

0: मन की बात प्रधानमंत्री आकाशवाणी पर।
1: मेरी मन की बात के संबंध में अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो आप मन की बात आकाशवाणी संसद मार्ग नई दिल्ली, अगर चिट्ठी भी भेज देंगे और कुछ सुझाव देंगे वो जरूर मुझ तक पहुंच जाएगा और मैं जरूर उसको गंभीरता से लूंगा।
0: यदि आप माननीय प्रधानमंत्री को मन की बात के लिए कोई सुझाव देना चाहते हैं तो पता नोट करें। मन की बात आकाशवाणी संसद मार्ग नई दिल्ली 110001।
1: मैं आपको निमंत्रण देता हूँ, मेरे मन की बात के लिए आपके मन की बात भी जुड़नी चाहिए।

0: हेलो मन भावन, आप सुनेंगे नए अंदाज में मेरी यानी निमिषा के साथ। प्रत्येक रविवार दिन के 11 बजे आकाशवाणी जमशेदपुर के विविध भारती केंद्र से 100.8 मेगाहर्ट्ज पर। आपके फोन कॉल्स की रिकॉर्डिंग होगी प्रत्येक बुधवार दोपहर 12 बजे से 12:30 बजे के बीच। हमारा टेलीफोन नंबर है 2960445 और कोड है 0657। तो आप भी जुड़ जाइए हेलो मन भावन कार्यक्रम से।
1: आइए अब सुनते हैं अलका याग्निक की आवाज में फिल्म राजा हिंदुस्तानी का ये गीत। गीतकार हैं समीर, संगीतकार नदीम श्रवण।

इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है, FM के 102.4 MHz पर। इस समय रात्रि के 8:45 हुए हैं। समाचार संध्या आप सुनेंगे अब से कुछ ही पलों में हमारी दिल्ली केंद्र से।

0: आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने शांतिपूर्ण और स्थिर हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए रक्षा और सुरक्षा सहयोग पर संयुक्त घोषणा पत्र को स्वीकार किया। ऑस्ट्रेलिया से यूरेनियम की आपूर्ति के लिए भी समझौता हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत अधिक विकास अधिक उपलब्धि के मंत्र के साथ दुनिया की शीर्ष तीन अर्थव्यवस्थाओं में से एक बनना चाहता है। मेलबर्न में भारतीय समुदाय को संबोधित किया। राष्ट्रीय महिला आयोग ने IVF केंद्रों को नियंत्रित करने वाले नियमों और कानूनों की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया। सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए उनमें इस्तेमाल होने वाले मुख्य पुर्जों पर मूल सीमा शुल्क में छूट दी। ईरान ने अमरीका पर बुशहर परमाणु ऊर्जा संयंत्र के पास हवाई हमला करने का आरोप लगाया। जवाब में बहरीन, कुवैत और कतर में अमरीकी ठिकानों पर हमले किए। और फीफा विश्व कप के पहले क्वार्टर फाइनल में आज रात फ्रांस का मुकाबला मोरक्को से। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के बीच आज मेलबर्न में तीसरी ऑस्ट्रेलिया भारत वार्षिक शिखर वार्ता हुई। इस दौरान दोनों नेताओं ने प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता में द्विपक्षीय संबंधों को और सशक्त बनाने पर चर्चा की। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों में आए परिवर्तनकारी महत्वपूर्ण बदलाव का स्वागत करते हुए क्षेत्रीय स्थिरता, ऊर्जा सुरक्षा और प्रौद्योगिकी नवाचार के लिए व्यापक सहयोग ढांचे को अंतिम रूप दिया। हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति और स्थिरता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से दोनों देशों ने रक्षा और सुरक्षा सहयोग पर ऐतिहासिक संयुक्त घोषणा पत्र को स्वीकार किया, वार्षिक रक्षा मंत्रियों के संवाद को संस्थागत स्वरूप प्रदान किया तथा समुद्री सुरक्षा सहयोग का प्रारूप जारी किया।
1: हमारे मैरिटाइम सिक्योरिटी कोलैबोरेशन रोडमैप से इंडो पैसिफिक में हमारे साझा प्रयासों को नई ताकत मिलेगी। हम शिप बिल्डिंग, शिप रिपेयर और मेंटेनेंस में भी मिलकर आगे बढ़ेंगे। फ्रेंड्स, आज हमने कई क्षेत्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी विस्तार पूर्वक चर्चा की।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि दोनों देशों ने यूरेनियम आपूर्ति और महत्वपूर्ण खनिज गलियारे पर ऐतिहासिक समझौतों पर हस्ताक्षर किए।
1: पीएम सूर्यघर योजना को सपोर्ट करने के लिए हमने मिलकर गुजरात में रूपटॉप सोलर ट्रेनिंग एकेडमी बनाई है। यह एकेडमी अनेक महिलाओं और युवाओं की कैपेसिटी बिल्डिंग में योगदान देगी। न्यूक्लियर एनर्जी के क्षेत्र में आज हमने एक महत्वपूर्ण समझौता किया है। इससे ऑस्ट्रेलिया से भारत को यूरेनियम सप्लाई का मार्ग खुलेगा और हमारे क्लीन एनर्जी के उद्देश्यों को नई ताकत मिलेगी।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि रणनीतिक प्रौद्योगिकी और संसाधन सुरक्षा के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। इसके अंतर्गत ऑस्ट्रेलिया भारत साइबर महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकी तथा आपूर्ति श्रृंखला साझेदारी को कार्यान्वित किया गया है। बाद में प्रधानमंत्री मोदी ने ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में मेलबर्न मीट्स मोदी कार्यक्रम में कहा कि भारत ऑस्ट्रेलिया गठबंधन नई ऊंचाइयों पर पहुंच गया है। 12

0: वर्षों में ऑस्ट्रेलिया की अपनी तीसरी यात्रा में प्रधानमंत्री ने 10 लाख से अधिक प्रवासी भारतीयों को द्विपक्षीय मित्रता का आधार स्तंभ बताया। श्री मोदी ने कहा कि 21वीं सदी का भारत एक विकसित राष्ट्र बनने के लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है।
1: 21वीं सदी का भारत आज विकसित होने के लक्ष्य पर काम कर रहा है। ये वो भारत है जो कहता है ग्रो मोर एचीव मोर। हम 140 करोड़ एस्पिरेशन से भरे राष्ट्र है। हम अधीर है, बेसब्र है। हम दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती इकोनॉमी है, लेकिन हम जल्द से जल्द दुनिया की टॉप 3 इकोनॉमी बनना चाहते हैं।
0: श्री मोदी ने कहा कि भारत में चिप से लेकर जहाजों तक के विनिर्माण का तंत्र विकसित किया जा रहा है।
1: आज चिप से लेकर शिप तक मैन्युफैक्चरिंग का भारत में एक नया इकोसिस्टम डेवलप किया जा रहा है। भारत के बड़े सपनों, बड़ी एस्पिरेशंस की नींव है पीपल फर्स्ट, यानी नागरिक देवो भव का मंत्र। ये आज के भारत की गवर्नेंस का मूल मंत्र बन गया।
0: इस अवसर पर ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने कहा कि इस आयोजन की ऊर्जा स्पष्ट रूप से महसूस की जा सकती है। एक रिपोर्ट।
2: भारत ऑस्ट्रेलिया के रिश्ते सामान्य कूटनीति से कहीं आगे बढ़ चुके हैं। ये मार्बल स्टेडियम में गूंजती तालियां और लोगों के उत्साह से बयां होता है। प्रधानमंत्री मोदी का एक महत्वाकांक्षी और विकसित भारत का दृष्टिकोण, जिसमें वैश्विक विनिर्माण में कामयाबी से लेकर ऑपरेशन ब्रह्मा के अंतर्गत अहम मानवीय मदद तक शामिल है, साबित करता है कि भारत मानवता के हित में लगातार काम कर रहा है। प्रधानमंत्री अल्बनीज ने ऑस्ट्रेलिया में भारतीय समुदाय को दोनों देशों के बीच महत्वपूर्ण सेतु बताया। इससे ये साफ होता है कि भारतीय समुदाय दोनों देशों की व्यवस्था और रणनीतिक रक्षा गलियारे को मजबूती दे रहा है, जिससे हमारा साझा भविष्य सुरक्षित और समृद्ध बना रहे और हम आपसी भरोसे से जुड़े रहें। मेलबर्न से सुहास राम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
0: विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने आज कहा कि तीसरा वार्षिक भारत ऑस्ट्रेलिया शिखर सम्मेलन ऊर्जा सुरक्षा के क्षेत्र में भारत के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। विदेश सचिव ने संवाददाता सम्मेलन में कहा कि शिखर सम्मेलन में भारत को ऑस्ट्रेलिया से यूरेनियम की दीर्घकालिक आपूर्ति सुनिश्चित करने को अंतिम रूप दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ऑस्ट्रेलिया की बेहद सफल राजकीय यात्रा का कल समापन हो रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने कल ऑस्ट्रेलिया के विपक्ष के नेता एंगस टेलर से मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ प्रतिष्ठित मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड का दौरा करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री न्यूजीलैंड के लिए रवाना होंगे। न्यूजीलैंड में प्रवासी भारतीय समुदाय के आर्थिक योगदान पर आधारित एक रिपोर्ट आज ऑकलैंड में जारी की गई। हमारी संवाददाता ने बताया है कि इस अवसर पर न्यूजीलैंड के राजस्व और जलवायु परिवर्तन मंत्री तथा न्यूजीलैंड में भारत के उच्चायुक्त सहित कई गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे।
3: ऑकलैंड में वाइटाकरे इंडियन एसोसिएशन द्वारा आयोजित एक समारोह में न्यूजीलैंड में बसे भारतीय समुदाय के आर्थिक योगदान पर आधारित एक रिपोर्ट जारी की गई। इस रिपोर्ट में न्यूजीलैंड की अर्थव्यवस्था में भारतीय समुदाय की बढ़ती भागीदारी और उसके व्यापक आर्थिक प्रभाव का आकलन किया गया है। रिपोर्ट में बताया गया है कि भारतीय समुदाय उद्यमिता, सूचना प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य, शिक्षा, आतिथ्य, खुदरा व्यापार तथा अन्य क्षेत्रों में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। रिपोर्ट के प्रमुख निष्कर्ष प्रस्तुत करते हुए इन्फोमेट्रिक्स के मुख्य कार्यकारी अधिकारी ब्रेड ऑल्सन ने कहा कि भारतीय समुदाय न्यूजीलैंड के सबसे तेजी से आगे बढ़ने वाले समुदायों में से एक है। मंजू मीना, आकाशवाणी समाचार, ऑकलैंड।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं।

0: नियंत्रित करने वाले नियामक ढांचे और संबंधित कानूनों की व्यापक समीक्षा करेगी। इसमें महिलाओं के प्रजनन अधिकारों, गरिमा और सुरक्षा की रक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। दिल्ली उच्च न्यायालय की पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति आशा मेनन इस विशेषज्ञ समिति की अध्यक्षता करेंगी। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने आज कहा कि वर्ष 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बदलने के लिए बुनियादी विज्ञान में मजबूत आधार होना अत्यंत आवश्यक है। भुवनेश्वर में राष्ट्रीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान के 15वें दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने ये बात कही। एक रिपोर्ट।
1: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा कि वैज्ञानिक क्षमता विकसित भारत की आधारशिला है। नाइजर के 15वें दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था बनाने, राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करने और टिकाऊ विकास सुनिश्चित करने के लिए बुनियादी विज्ञान में मजबूत नींव का होना बहुत जरूरी है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि ये ऐसे युवा शोधकर्ताओं को तैयार कर रहा है जो जलवायु परिवर्तन, सार्वजनिक स्वास्थ्य आपात स्थितियों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और क्वांटम टेक्नोलॉजी जैसे उभरती वैश्विक चुनौतियों का सामना करने में सक्षम है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने आज राज्य में समान नागरिक संहिता यूसीसी लागू करने के लिए रूपरेखा तैयार करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय की पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजना देसाई की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय समिति के गठन की घोषणा की। प्रस्तावित कानून में धर्म की परवाह किए बिना विवाह, तलाक, विरासत, उत्तराधिकार और गोद लेने जैसे मामलों को शामिल किए जाने की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि समिति राज्य सरकार को अपनी सिफारिशें सौंपने से पहले प्रस्तावित कानून के कानूनी, संवैधानिक और सामाजिक पहलुओं की जांच करेगी। सरकार ने स्मार्टफोन, लैपटॉप, पहनने योग्य स्मार्ट उपकरणों और स्मार्ट टीवी जैसे इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के निर्माण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से डिस्प्ले असेंबली, लिथियम आयन सेल और इंडक्टर कॉयल मॉड्यूल के निर्माण में उपयोग होने वाले सामान पर मूल सीमा शुल्क में छूट देने का फैसला किया है। ईरान ने अमेरिका पर आज बुशहर परमाणु ऊर्जा संयंत्र के पास हवाई हमला करने का आरोप लगाया। ईरान की सरकारी समाचार एजेंसी ने बताया कि ये कार्रवाई उस पर हमले समाप्त करने की अमेरिकी सेना की घोषणा के कुछ घंटों बाद हुई। अमेरिकी केंद्रीय कमान ने इसकी पुष्टि नहीं की है। अमेरिका ने आज सुबह ईरान पर फिर हवाई हमले किए। ईरान ने भी खाड़ी क्षेत्र में अमेरिका के सहयोगी देशों को निशाना बनाकर जवाबी कार्रवाई की। ईरानी मिसाइलों ने कुवैत और कतर को निशाना बनाया। इन हमलों से पश्चिम एशिया में युद्ध समाप्त करने का अंतरिम समझौता खतरे में पड़ गया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने बताया है कि दक्षिण पश्चिम मॉनसून ने पूरे देश को अपनी चपेट में ले लिया है। उत्तराखंड में कल तेज वर्षा और कुछ स्थानों पर मूसलाधार वर्षा की चेतावनी जारी की है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्रों, सिक्किम तथा उत्तर प्रदेश के कुछ भागों में शुक्रवार को तेज वर्षा होगी। फीफा फुटबॉल विश्व कप के क्वार्टर फाइनल मुकाबले आज से शुरू हो रहे हैं। पहले मुकाबले में आज रात 1:30 बजे बोस्टन में फ्रांस का सामना मोरक्को से होगा। वहीं दूसरे क्वार्टर फाइनल मुकाबले में कल देर रात स्पेन और बेल्जियम आमने सामने होंगे। भारत और इंग्लैंड के बीच चौथा T20 मैच आज रात 10 बजे से ब्रिस्टल में खेला जाएगा। 5 मैचों की श्रृंखला में 2-0 से पीछे भारतीय टीम को सीरीज ड्रॉ कराने के लिए हर हाल में आज का मैच जीतना होगा। विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट में चेक गणराज्य की कैरोलिना मुखोवा ने महिला सिंगल्स के फाइनल में प्रवेश कर लिया है। कैरोलिना ने सेमीफाइनल में अमेरिका की कोको गॉफ को हराया। दूसरे सेमीफाइनल में मार्टा कोच्स्यूक का मुकाबला लिंडा नोस्कोवा से होगा। पुरुष सिंगल्स के सेमीफाइनल मुकाबले कल खेले जाएंगे। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने स्वतंत्र और मुक्त हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए रक्षा और सुरक्षा सहयोग पर संयुक्त घोषणा पत्र स्वीकार किया। ऑस्ट्रेलिया से यूरेनियम की आपूर्ति के लिए भी समझौता हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत अधिक विकास, अधिक उपलब्धि के मंत्र के साथ दुनिया की शीर्ष 3 अर्थव्यवस्थाओं में शामिल होने का इच्छुक। मेलबर्न में भारतीय समुदाय को संबोधित किया। राष्ट्रीय महिला आयोग ने IVF केंद्रों को नियंत्रित करने वाले नियमों और कानूनों की समीक्षा के लिए

0: Countrywide. ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम कंट्रीवाइड। इसके अंतर्गत सुनिए भारत में नवाचार, उच्च कौशल, रोजगार और वैश्विक प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने वाले ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं महासचिव डॉक्टर रंजीत मेहता। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं मनोज पाठक।
1: एक ओर भारत दुनिया में सबसे तेज गति से विकसित हो रहा देश है, दूसरी ओर दुनिया के तमाम देशों को भारत तकनीक, प्रतिभा और आगे बढ़ने के लिए उन्नत अवसर उपलब्ध कराने की दिशा में भी महत्वपूर्ण योगदान कर रहा है, जिससे हमारे श्रोता अपेक्षाकृत थोड़ा सा कम परिचित हैं। और यह है क्षेत्र भारत में वैश्विक क्षमता केंद्र। ये वैश्विक क्षमता केंद्र वस्तुतः क्या है, किस रूप में भारत ही नहीं दुनिया में अपना योगदान दे रहे हैं, और एक ओर प्रतिभा को उचित अवसर मिल रहा है, नए नए नवाचार हो रहे हैं और बड़े पैमाने पर रोजगार का सृजन हो रहा है। वैश्विक प्रतिस्पर्धा में भारत दुनिया के बड़ी बड़ी कंपनियों को आगे बढ़ने में योगदान दे रहा है। कुछ इन्हीं विषयों पर हम आज चर्चा करेंगे अपने इस अंक में। हमारे साथ इस विषय पर चर्चा के लिए आमंत्रित है डॉक्टर रंजीत मेहता, सीईओ और सेक्रेटरी जनरल पीएचडी सीआईआई। स्वागत है आपका डॉक्टर मेहता।
2: बहुत बहुत धन्यवाद।
1: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने आज नई दिल्ली में भारतीय उद्योग परिसंघ की ओर से आयोजित जीसीसी बिजनेस समिट को संबोधित किया।
3: Today, the greatest competitive advantage lies in generating knowledge, applying technology, and solving complex problems. That's what the GCCs are. It's not as if it's the slightly upgraded version of your backroom, back off, or office space, the BOPs. No, this is a completely different domain. It has a lot of technology, no doubt, but the new human intervention, human skills and the human knowledge which gets crystallized, what makes this century going to stand out in the name of GCC?
1: शुरुआत डॉक्टर साहब हम यहीं से करना चाहेंगे कि वैश्विक प्रतिस्पर्धा में हमारी जो वैश्विक क्षमता केंद्र हैं वो किस रूप में योगदान दे रहे हैं, और उससे भी पहले समझना चाहेंगे आम जुबान में आम लोगों के लिए ये वैश्विक क्षमता केंद्र क्या हैं और किस रूप में यहाँ प्रतिभा का, तकनीक का संगम हो रहा, बड़ी कंपनियों के लिए हम उत्पाद बना रहे।
2: पिछले अगर दशक में देखें तो भारत एक बहुत ही प्रेफर्ड डेस्टिनेशन हो गया है ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स के लिए। और जो इससे पहले क्या होता था, भारत में सिर्फ बैक ऑफिस लोग रखते थे, उसमें कॉल सेंटर्स ये सब आते थे, लेकिन पिछले दशक में जिस तरीके से भारत में एक आमूलचूल परिवर्तन हुआ है और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और नए नए जो भारत के कार्यक्रम जो कि जैसे मेक इन इंडिया है, स्किल इंडिया है, डिजिटल इंडिया है, ये सारे नए नए जो कार्यक्रम आए उससे जो है एक भारत जो है एक इवॉल्व हो चुका है हाई वैल्यू स्ट्रेटेजिक सेंटर्स के तौर पे, जिसमें सिर्फ एक बैक ऑफिस ऑपरेशन तक ही ये सीमित नहीं है, बल्कि जिसमें रिसर्च होती है, प्रोडक्ट डेवलपमेंट होता है, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन है, अब तो एक नया आ गया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, साइबर सिक्योरिटी है, इंजीनियरिंग है, फाइनेंस, फिनटेक, लीगल सर्विसेज, ऑल जो ग्लोबल बिजनेस ऑपरेशंस हैं जिसमें जो भी चीजें यूज होती हैं, आज भारत उसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण हब बन चुका है। आज भारत में 1800 से ज्यादा ऐसे ग्लोबल कैपेबिलिटीज सेंटर्स हैं जिसमें कि 20 लाख से अधिक लोगों को, आज प्रोफेशनल्स को एम्प्लॉयमेंट मिलता है। अगर आप देखें इसमें, जो कि भारत डेफिनेटली एक टैलेंट

0: कैपिटल भी है। आज अगर आप देखें भारत जो है 65% जो भारत की जनता है वो 35 साल से कम उम्र के लोग हैं। तो भारत एक यंग कंट्री है, एक यंग कंट्री होने के नाते हमारे पास टैलेंट पूल है। बट टैलेंट पूल होने के साथ साथ हमने पिछले करीब दशक में देखा है कि भारत एक स्टार्टअप इकोसिस्टम बन चुका है। आज जो भारत का आप देखिए, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने 2016 में जब स्टार्टअप इंडिया का लॉन्च हुआ था तब भारत में सिर्फ करीब 300-400 रजिस्टर्ड स्टार्टअप थे, लेकिन आज जब हमें बात कर रहे हैं 1.5 लाख से ज्यादा रजिस्टर्ड स्टार्टअप जो है भारत के अंदर है, और भारत जो है दुनिया का थर्ड लार्जेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम बन चुका है। ये इसलिए बहुत जरूरी है क्योंकि जब आप इनोवेशन की बात करते हैं, इनोवेशन कैपिटल बनाने की बात करते हैं, क्योंकि टैलेंट कैपिटल तो है ही भारत विश्व का, लेकिन एक इनोवेशन कैपिटल बनाने की दिशा में भी भारत जो है आगे बढ़ रहा है, क्योंकि जिस तरीके से जो ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स बनने जा रहे हैं इसमें जो है आगे चल के मैं समझता हूं आगे चल के सिर्फ एक कॉस्ट आर्बिट्रेज, क्या कॉस्ट के बेसिस पे कि भारत में लेबर सस्ती है, इस बेसिस पे ही आप अपना एक कॉम्पिटिटिव जो एडवांटेज है उसको आप नहीं ले सकते। आगे चलने के लिए हमें एक वर्ल्ड क्लास टैलेंट की जरूरत है, और उसमें कितना हम इनोवेशन करते हैं, कितना हम उसको ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस को इसमें इंटीग्रेट करते हैं, इस पे डिपेंड करेगा। और जब हम एक ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर बनाने की बात कर रहे हैं तो मैं समझता हूं उसके जो तीन मुख्य पिलर होंगे ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर के। पहला पिलर मैं समझता हूं एक स्किल, कि क्या हमारे पास स्किल सेट्स हैं आज भारत में। आप टेक्नोलॉजी इतनी तेजी से बदल रही है, आप देखिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ चुका है, जेनरेटिव AI आ चुका है, क्लाउड कंप्यूटिंग है, रोबोटिक्स है, सेमीकंडक्टर है, इस साइड डेटा एनालिटिक्स है, साइबर सिक्योरिटी और सस्टेनेबिलिटी भी ऐसी एक नया एक स्टेप आ चुका है जिससे जो है हर इंडस्ट्री अपना ट्रांसफॉर्म हो रही है, एक चर्निंग हो रही है इंडस्ट्री में, क्योंकि भारत ने ऑलरेडी 2070 तक नेट जीरो होने का अपना एक कमिटमेंट कर चुके हैं। अगर आप लंबी दिशा में अगर आप देखना चाहते हैं तो उसमें ट्रेडिशनल जो एजुकेशन है जो हम करते आ रहे हैं वही सफिशियंट नहीं होगा, बल्कि इस दिशा में हमें अपने एजुकेशन को भी ले जाना है। तो जिससे कि भारत ने एक न्यू एजुकेशन पॉलिसी ऑलरेडी भारत की आ चुकी है, भारत के अंदर इकोसिस्टम तैयार करना है जिसमें कि कंटिन्यूअस लर्निंग हो, जहां पे इंडस्ट्री एकेडमिया गवर्नमेंट सब साथ मिलके जो है जो हमारी वर्कफोर्स है उसको जो है हमें फ्यूचर रेडी बनाना है।
1: श्रोताओं, देश की राजधानी दिल्ली में आज भारतीय उद्योग परिसंघ की ओर से एक महत्वपूर्ण सम्मेलन का आयोजन किया गया जिसमें ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर केंद्र कई सारी बातों पर चर्चा हुई, बहुत सारे विचार रखे गए, और सबसे बेहतर हमारे विशेषज्ञ ने जो कहा कि एक ओर शिक्षा प्रतिभा कौशल, दूसरी ओर उद्योग, और तीसरी ओर देश की नीतियां इस दिशा में हो कि हम वास्तुतः दुनिया को दिशा दिखा सकें और तीनों का एकीकरण कर सकें। इस अवसर पर सम्मेलन को संबोधित करते हुए इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव ने कहा,
2: What is it that AI can do to enhance productivity, enhance efficiency and effectiveness across a range of sectors? How is it that India can adapt AI and what is it that India can contribute in this space? And which is why the thought was that India really needs to become the application and AI-based solution capital of the world. And the way in which we can actually roll out using our talent, what is the way in which we roll out AI for the rest of the world? Today, one of the things that many people, many experts do comment is that while there's a lot of investment taking place in building out data centers, in, you know, the chips that need to be done for this, the high bandwidth memory that needs to work in the data centers, on the infrastructure side, there's a lot of effort which is going on into building the models. But ultimately, all these are just the infrastructure piece of the play. What happens with what actually gets deployed at the enterprise level and at various levels? And the deployment of AI in enterprises is still lagging across the world, not just in India, but across the world. And that is truly where I think GCCs in India will come in and play that critical role.
1: डॉक्टर मेहता, यहाँ से दिशाएं स्पष्ट होनी शुरू हो रही हैं कि हमारा भविष्य क्या है और किस रूप में इसे कार्यान्वित करना है। यहाँ पर हमारा सवाल ये होगा कि जो लक्ष्य हम सामने रख रहे हैं कि उच्च कौशल और तकनीक का जो वास्तविक उत्पाद है AI के ऐप के रूप में, वह किस रूप में पूरी क्षमता के साथ हम दुनिया के सामने रख सकेंगे।
0: अभी सेक्रेटरी ने भी कहा कि कैसे

0: से हम स्किल सेट्स को, यहाँ पे सिर्फ बीपीओ जॉब्स, हमें बीपीओ जॉब के लिए ही नहीं काम करना है, बल्कि जो ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स बन रहे हैं उसमें हमें हायर लेवल जॉब्स के लिए जो है अपने आप को तैयार करना है। तो उसमें जो पहला पिलर मैंने बताया स्किल है, और जो सेकेंड पिलर है वो होगा इनोवेशन। क्योंकि आप जो नेक्स्ट लेवल के जीसीसी आएंगे वो सिर्फ यहाँ पे भारत में सिर्फ ग्लोबल मैंडेट को सिर्फ एग्जीक्यूट करने के लिए नहीं होंगे, बल्कि हमें एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्रिएट करनी पड़ेगी, इनोवेशन का हब बनाना पड़ेगा, नई नई टेक्नोलॉजीज पे काम करना है, नई टेक्नोलॉजीज डेवलप करनी पड़ेंगी, और उसके लिए हमें एक प्रोडक्ट हब बनाना पड़ेगा जिसमें कि हम विश्व के लिए इसमें प्रोडक्ट को बना सकें। जैसे कि मेक इन इंडिया हमारा एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इनिशिएटिव है, जो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इसको लॉन्च किया था आज से 10 साल पहले, उसमें कई सारी प्रोग्रेस हुई है। और क्योंकि इसमें सबसे बड़ी बात है, इंडिया के पास एक बहुत ही यूनिक टैलेंट है। आप अगर देखें तो साइंटिफिक टैलेंट इंडिया में सबसे ज्यादा है। आप देखिए जो हमारी एंटरप्रेन्योरियल एनर्जी है, जो प्रोवेस है, आपने देखा कि किस तरीके से कोविड के टाइम में भारत के एंटरप्राइजेस ने पूरी दुनिया में कैसे काम किया। भारत जो है एक फार्मा हब बन गया था कोविड के टाइम में, कैसे नई वैक्सीन हमने जनरेट की। तो एंटरप्रेन्योरियल एनर्जी हमारे यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत हमारा एक स्ट्रेंथ है। और तीसरा जो हमारा स्ट्रेंथ है इनोवेशन के लिए वो है हमारा स्टार्टअप इकोसिस्टम। क्योंकि हमारा स्टार्टअप इकोसिस्टम बहुत ही काफी स्ट्रांग हो चुका है। आज हमारे देश में नए नए जो बच्चे हैं 18 साल 20 साल 30 साल से कम उम्र के जो युवा हैं वो भी आपने देखा यूनिकॉर्न का स्टेटस ले चुके हैं। ऐसी ऐसी कंपनी देश में अभी आई है जिसमें कि 1.5 साल 2 साल के अंदर वो यूनिकॉर्न बन चुके हैं। यूनिकॉर्न वो कंपनी होती है जिसका वैल्यूएशन $1 बिलियन करीब, आज के अगर टर्म में देखें तो करीब 10,000 करोड़ से ऊपर जिसका वैल्यूएशन है वो एक यूनिकॉर्न मानी जाती है कंपनी। तो ये हमारे देश में एक इनोवेशन का जो एक कल्चर बन चुका है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें फर्दर इसको स्ट्रॉन्ग करना है, इंडस्ट्री एकेडमिया और गवर्नमेंट का कोऑर्डिनेशन करके एक रिसर्च इंस्टीट्यूशन के साथ एक्सीलरेट करना है इनोवेशन को। तभी हम जो यूनिवर्सिटीज में टेक्नोलॉजी बनाई जाएगी उसको कैसे हम कॉमर्शियली उसको वायबल बनाएं, इस पे हमें काम करना है, जिससे कि जो विश्व की समस्याएं हैं तो उसको हम भारत में टेक्नोलॉजी डेवलप करके उसको हम कैसे सॉल्यूशन निकालें। जो थर्ड पिलर है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पिलर है वो है ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस। अब ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस कैसे आएगी? सबसे पहले हमारे यहाँ वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट जो कि बहुत कुछ हो रहा है। आज अगर आप रोड की बात करें, भारत जो है विश्व का लार्जेस्ट रोड इंफ्रास्ट्रक्चर आज बन चुका है। तो इसमें ग्लोबल जो इन्वेस्टर्स हैं भारत की तरफ आ रहे हैं क्योंकि हमारी पॉलिसीज स्टेबल हैं और हमारा जो एक पॉलिटिकल सिस्टम है बहुत उसमें स्टेबिलिटी है, और हमारे पास आज एक वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर हम लोग तैयार कर रहे हैं, उसमें बहुत कुछ हो चुका है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में इतने सारे काम हो रहे हैं, और जो भारत का एक रिफॉर्म का जो मुहिम चली है वो बिल्कुल आगे चलती जा रही है। और डिजिटल कनेक्टिविटी की बात करें जिसमें कि 1.4 बिलियन 140 करोड़ के देश में 100 करोड़ मोबाइल से वो लोग कनेक्टेड हैं, तो डिजिटल कनेक्टिविटी हमारे गांव तक है, लास्ट माइल तक है। ग्लोबली कॉम्पिटिटिव जो हम बनने की कोशिश कर रहे हैं इन्हीं सब चीजों से होता है। और इंडिया ने कई ऐसे रिमार्केबल इनिशिएटिव लिए हैं जैसे कि डिजिटल इंडिया। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इसमें समय से पहले ही इन सब चीजों का ऐलान किया था और आज उसमें कई सारी प्रोग्रेस हो चुकी है। जैसे डिजिटल इंडिया है, स्टार्टअप इंडिया है, स्किल इंडिया है, मेक इन इंडिया है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, ये जो सारे रिफॉर्म्स हैं इससे जो है हमारे जो ग्लोबल इन्वेस्टर्स इंडिया में आ रहे हैं उनका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। आर्बिट्रेशन के फील्ड में, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के फील्ड में हमने काम किए हैं। इंडिया जो है अपने आप को एक वर्ल्ड का फास्टेस्ट ग्रोइंग इनोवेशन इकोसिस्टम बनने की तरफ इसमें काम कर रहा है।
1: डॉक्टर मेहता, आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
0: बहुत बहुत धन्यवाद।
2: अभी आप सुन रहे थे भारत में नवाचार, उच्च कौशल रोजगार और वैश्विक प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने वाले ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं महासचिव डॉक्टर रंजीत मेहता। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे मनोज पाठक। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।
3: Countrywide.

दूसरा आदमी फिल्म का गीत अभी आपने सुना, लता मंगेशकर, किशोर कुमार और मोहम्मद रफी की आवाजों में। गीतकार थे मजरू सुल्तानपुरी, संगीत था राजेश रोशन का।

पूनम की रात। अभी आपने इस फिल्म का गीत सुना। आवाजें थी लता मंगेशकर और लता मंगेशकर की। गीत लिखा था शैलेंद्र ने और इसे संगीतबद्ध किया था सलिल चौधरी ने।

किशोर कुमार की आवाज में अभी आपने सुना फिल्म अनुरोध का गीत, जिसे लिखा था आनंद बख्शी ने, धुन बनाई थी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। किशोर कुमार की ही आवाज में आइए सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत फिल्म पेइंग गेस्ट से, जिसे लिखा है मजरू सुल्तानपुरी ने, धुन बनाई है एसडी बर्मन ने।

इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से बोल रहे हैं FM के 102.4 MHz पर। इस समय रात्रि के 10:30 हुए हैं। प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम। इसमें आज सुनिए उस्ताद निषाद खां का सितार वादन, राग है चांदनी कल्याण।

अभी आप सुन रहे थे उस्ताद निषाद खां का सितार वादन, राग था चांदनी कल्याण। और इसी के साथ शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से बोल रहे हैं, एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। इस समय रात्रि के 11 बजे हैं। कुछ ही पलों में समाचार प्रसारित होंगे।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने स्वतंत्र और मुक्त हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए रक्षा और सुरक्षा सहयोग पर संयुक्त घोषणा पत्र को स्वीकार किया। ऑस्ट्रेलिया से यूरेनियम की आपूर्ति के लिए भी समझौता हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज के साथ आज

0: मेलबर्न में तीसरी ऑस्ट्रेलिया भारत वार्षिक शिखर वार्ता हुई। इस दौरान दोनों नेताओं ने प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता में द्विपक्षीय संबंधों को और सशक्त बनाने पर चर्चा की। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों में आए परिवर्तनकारी महत्वपूर्ण बदलाव का स्वागत करते हुए क्षेत्रीय स्थिरता, ऊर्जा सुरक्षा और प्रौद्योगिकी नवाचार के लिए व्यापक सहयोग ढांचे को अंतिम रूप दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बताया कि दोनों देशों ने यूरेनियम आपूर्ति और महत्वपूर्ण खनिज गलियारे पर ऐतिहासिक समझौते पर हस्ताक्षर किए।
1: पीएम सूर्यघर योजना को सपोर्ट करने के लिए हमने मिलकर गुजरात में रूफटॉप सोलर ट्रेनिंग एकेडमी बनाई है। यह एकेडमी अनेक महिलाओं और युवाओं की कैपेसिटी बिल्डिंग में योगदान देगी। न्यूक्लियर एनर्जी के क्षेत्र में आज हमने एक महत्वपूर्ण समझौता किया है। इससे ऑस्ट्रेलिया से भारत को यूरेनियम सप्लाई का मार्ग खुलेगा और हमारे क्लीन एनर्जी के उद्देश्यों को नई ताकत मिलेगी।
0: बाद में प्रधानमंत्री मोदी ने आज ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में मेलबर्न मीट्स मोदी कार्यक्रम में कहा कि भारत ऑस्ट्रेलिया गठबंधन नई ऊंचाइयों पर पहुंच गया है। 12 वर्षों में ऑस्ट्रेलिया की अपनी तीसरी यात्रा में प्रधानमंत्री ने 10 लाख से अधिक प्रवासी भारतीयों को द्विपक्षीय मित्रता का आधार स्तंभ बताया। श्री मोदी ने कहा है कि 21वीं सदी का भारत एक विकसित राष्ट्र बनने के लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने आज कहा कि तीसरा वार्षिक भारत ऑस्ट्रेलिया शिखर सम्मेलन ऊर्जा सुरक्षा के क्षेत्र में भारत के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ऑस्ट्रेलिया की बेहद सफल राजकीय यात्रा का समापन हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल ऑस्ट्रेलिया के विपक्ष के नेता एंगस टिलर से मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ प्रतिष्ठित मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड MCG का भी दौरा करेंगे। दोनों नेता इस अवसर पर ऐतिहासिक भारत ऑस्ट्रेलिया खेल सहयोग रोडमैप का अनावरण भी करेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल में होने वाले राज्यसभा उपचुनाव के लिए सुखेंदु शेखर रॉय, सुष्मिता देव और प्रकाश चिक बराइक को अपना उम्मीदवार घोषित किया है। इन तीनों सीटों के लिए 24 जुलाई को मतदान होगा। ये तीनों नेता हाल ही में अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। केंद्र सरकार जल्द ही फ्लेक्स फ्यूल वाहनों के लिए E85 ईंधन शुरू करने की योजना बना रही है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि इसकी कीमत E20 पेट्रोल से लगभग 20 रुपए प्रति लीटर कम होगी। एक निजी समाचार चैनल को दिए साक्षात्कार में श्री पुरी ने कहा कि इस पहल का उद्देश्य उपभोक्ताओं को आर्थिक राहत देना और सरकार के एथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम को बढ़ावा देना है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने आज राज्य में समान नागरिक संहिता UCC लागू करने के लिए रूपरेखा तैयार करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजना देसाई की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय समिति के गठन की घोषणा की। ईरान ने अमेरिका पर आज बुशहर परमाणु ऊर्जा संयंत्र के पास हवाई हमला करने का आरोप लगाया। ईरान की सरकारी समाचार एजेंसी ने बताया कि ये कार्रवाई उस पर हमले समाप्त करने की अमेरिकी सेना की घोषणा के कुछ घंटों बाद हुई। अमेरिकी केंद्रीय कमान ने इसकी पुष्टि नहीं की है। विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स में लिंडा नोस्कोवा ने फाइनल में जगह बना ली है। सेमीफाइनल में आज नोस्कोवा ने मार्ता कोस्तियुक को 6-4, 6-4 से हराया। महिला सिंगल्स का फाइनल मुकाबला 11 जुलाई को लिंडा नोस्कोवा और कैरोलिना मुचोवा के बीच खेला जाएगा। वहीं पुरुष सिंगल्स के पहले सेमीफाइनल में कल आर्थर फेरी का मुकाबला अलेक्जेंडर ज्वेरेव से और मौजूदा चैंपियन यानिक सिनर का सामना नोवाक जोकोविच से होगा। भारत और इंग्लैंड के बीच चौथा T20 क्रिकेट मुकाबला ब्रिस्टल में जारी है। ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 13 ओवर में 3 विकेट पर 94 रन बना लिए हैं। 5 मैचों की श्रृंखला में इंग्लैंड 2-0 से आगे है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के क्वार्टर फाइनल मुकाबले आज से शुरू हो रहे हैं। पहले मुकाबले में आज रात 1:30 बजे बोस्टन में फ्रांस का सामना मोरक्को से होगा। वहीं दूसरे क्वार्टर फाइनल मुकाबले में कल देर रात स्पेन और बेल्जियम आमने सामने होंगे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani. The news read by Abhineet Shukla. India and Australia today adopted a new joint declaration on defence and security cooperation and a maritime security collaboration roadmap to promote a free, open and inclusive Indo-Pacific. The deals were signed following delegation-level talks between Prime Minister Narendra Modi